0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिगरेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलो

0: किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विम्बल्डन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विम्बल्डन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi is holding delegation-level talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. Both leaders will be reviewing the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last 2 years, especially in the areas of trade and commerce and defence. In his opening remarks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. He said the two countries have now taken a significant step by establishing a strategic partnership which will guide future cooperation. Highlighting the shared democratic values and maritime ties between the two nations, Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
2: मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल रात्रि को आपका एयरपोर्ट पे आना ये अपने आप में बहुत बड़ा जेस्चर है और मेरी तरफ से मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपके मंत्री से पूरा समय मेरे साथ रहे रात को। मेरे लिए खुशी की बात है कि 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को वो छूने वाला है और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूं। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है। आप जब भारत आए थे और एफटीए के शुरुआत हुई और इतने कम समय में पूरा न्यूजीलैंड एक साथ होकर के एफटीए को जमीन पे उतारना, इतने कम शायद दुनिया में पहली बार इतने कम समय में ये सफलता हुई होगी और इसके लिए मैं आपके नेतृत्व को, आपकी सरकार को, आपकी टीम को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
1: Speaking on the occasion that New Zealand Prime Minister described Prime Minister Modi's visit as a historic milestone, marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. Later in the day, Prime Minister Modi will also interact with prominent business and sports personalities. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between the two countries, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora today. The Indian Navy is all set to commission its sixth Project 17A indigenous stealth frigate Mahendragiri F-38 into its eastern fleet at Visakhapatnam in Andhra Pradesh today. The ceremony will be presided over by the Defence Minister Rajnath Singh. Union Home Minister Amit Shah has said the government is firmly committed to making the country's coastal security unbreachable. Mr. Shah made the remarks while reviewing the progress made in the establishment of the Bureau of Port Security, BOPS, along with the Union Minister for Port, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat yesterday and held discussions on various facets of the cooperation between the two countries. In a social media post, Dr. Jaishankar said the talks focused on trade, investments, connectivity, maritime technology, defence and cyber AI domains. Indian Railways has approved 206 crore rupees of coverage deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In the FIFA World Cup, Spain has booked its place in the semi-finals, defeating Belgium 2-1 in the second quarter-finals at Los Angeles Stadium in Inglewood, United States, last night. In Wimbledon tennis, Czech Chia's Karolina Muchova will face compatriot Linda Noskova in the women's singles final in London today. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ है 6:10 और 14 सेकेंड। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आप सुनेंगे राहुल संकृतायन के जीवन से प्रसंग।

0: राहुल सांकृत्यायन एक बार रेल से तत्कालीन कलकत्ता यानी कोलकाता जा रहे थे। रेल में चढ़ते ही उन्हें उनके बचपन के एक मित्र मिल गए। दुआ सलाम के बाद उनके मित्र ने पूछा, कलकत्ता में कोई खास काम है?
1: नहीं, बस यूं ही, राहुल सांकृत्यायन ने कहा।
0: नहीं, कुछ तो काम होगा, दोस्त ने फिर पूछा।
1: अरे भाई, कुछ काम नहीं है, बस काफी दिन से कलकत्ता नहीं जा पाया था, सो इच्छा हो गई।
0: दोस्त मन ही मन ये सोचकर चुप हो गया कि कोई बहुत बड़ा काम है जो मुझसे छुपाना चाहते हैं। चलते चलते अचानक रेल बीच जंगल में रुक गई और काफी देर तक रुकी रही। राहुल सांकृत्यायन और उनके दोस्त रेल से उतरकर रेल चालक के पास गए और उनसे रेल रुकने का कारण पूछा, तो पता चला कि रास्ते में पटरी में कुछ खराबी आ गई।
1: ये भी पता चला कि अभी कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे।
0: चलो तब तक इस पास वाले गांव तक होकर आते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने अपने मित्र से कहा।
1: क्यों, क्या करेंगे?
0: उनका दोस्त बोला।
1: अरे भाई, तब तक यहां भी क्या करेंगे?
0: ना, मुझे नहीं जाना, दोस्त ने कहा। राहुल सांकृत्यायन अकेले ही उस गांव की ओर चल दिए। ठीक 2 घंटे बाद वापस आए तो मित्र ने पूछा,
1: क्या देखा है गांव में?
0: कुछ भी कहो दोस्त, सारे गांव एक से नहीं होते, सांकृत्यायन जी बस इतना कहकर चुप हो गए। हैरान परेशान उनका दोस्त फिर रेल चालक के पास गया और खबर लाया कि पटरी ठीक होने में अभी उतनी ही देर और लग सकती है।
1: चलो तब तक एक और गांव में होकर आता हूँ,
0: इस बार दोस्त से इतना कहकर सांकृत्यायन जी दूसरी दिशा की ओर चल दिए। करीब आधा घंटे के बाद रेल अपने गंतव्य की ओर बढ़ चुकी थी। दोस्त खिड़की से दूर तक राहुल सांकृत्यायन को निहारे जा रहा था। इस बार सांकृत्यायन जी वक्त से बहुत पीछे रह गए थे। दोस्त ने उनका बैग देखा तो पाया 3-4 जोड़ी कपड़े और एक डायरी उसमें रखी थी। उसमें 2 दिन पूर्व के पुणे यात्रा के कुछ संस्मरण लिखे थे। रेल सरपट भागी जा रही थी। दोस्त बार बार उनके संस्मरण पढ़े जा रहा था। 9 अप्रैल 1893 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के 15 गांव में जन्मे राहुल सांकृत्यायन जब 3री कक्षा में पहुंचे तो उर्दू की पाठ्य पुस्तक में एक शेर पढ़ने को मिला। सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। शायद यहीं से उनके बाल मन में कोई बात घर कर गई और पूरा जीवन घुमक्कड़ी में बिता दिया। राहुल

0: कीर्त्यायन को नियमित शिक्षा का अवसर प्राप्त न हो सका, पर स्वाध्याय से उन्होंने भारतीय संस्कृति, इतिहास, संस्कृत, वेद, दर्शन और विश्व की अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। बाल्यकाल से ही भ्रमण के लिए निकले राहुल जी जीवन भर कहीं भी जमकर नहीं रह सके। देश में ही नहीं, विदेशों में नेपाल, तिब्बत, लंका, रूस, इंग्लैंड, यूरोप, जापान, कोरिया, मंचूरिया, ईरान और चीन में इतना घूमे कि कई परिंदे भी इनकी उड़ान के आगे नतमस्तक थी। श्रीलंका में 19 महीने, तिब्बत में 1.25 बरस और नेपाल में लंबे समय तक अज्ञातवास में रहकर राहुल सांकृत्यायन ने साहित्य को अनगिनत अमिट रचनाएं दी।
1: आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस का संगीत में पाठ बालकांड भाग 113।

दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवा से पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती श्री राम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर

बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 28वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आप सुकृति सेन की गाए भजन सुन रहे थे। तबले पर संगत दी थी ऋतु मिश्रा ने, सितार पर थे रईस अहमद और हारमोनियम पर साथ दिया था दामोदरलाल घोष ने। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। तो गीतों भरी गुड मॉर्निंग में मैं कुसुम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सुप्रभात।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ये प्यारा सा गीत, फिल्म थी परिणीता। और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कुसुम पवार। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छी शुरुआत के साथ आगे बढ़ रहा होगा, और अब तक शायद कई लोग अपने कार्यस्थल की ओर निकल चुके होंगे जिनका आज वर्किंग है, और कुछ अपने काम में व्यस्त होंगे और कुछ घर की जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे भाव की जो जीवन को भीतर से समृद्ध बना देता है। सोचिए, जी हाँ, वो है आभार यानी ग्रेटिट्यूड। हम अक्सर उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन यदि एक पल ठहर कर ये देखें कि हमारे पास क्या क्या है, तो महसूस होगा कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। स्वस्थ शरीर, सांसें, परिवार, मित्र, सीखने के अवसर, एक नया दिन, ये सब अपने आप में अनमोल उपहार हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में ये फिल्म कयामत से कयामत तक, और हम बात कर रहे हैं आभार की। दोस्तों, आभार व्यक्त करने से ये मतलब ये केवल एक शब्द नहीं है, हमारे शब्द बदल देते हैं। आभार से हमें इतनी संतुष्टि मिलती है, बल्कि हमारी सोच भी बदल जाती है। जब मन धन्यवाद कहना सीख जाता है ना दोस्तों, तब छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी आ जाती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को अपने जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों का एहसास हो जाता है, वह बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। सुबह की ताजी हवा, उगता सूरज, परिवार का साथ, दो वक्त का भोजन, काम करने की क्षमता, सीखने का अवसर, ये सब हमें रोज मिलते हैं, लेकिन अक्सर हम उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें नहीं मिला, क्योंकि हमारा मन हमेशा उस चीज की ओर भागता है जो अभी हमारे पास नहीं है। तो देखिए, आज एक बहुत ही बढ़िया सा एक चीज मैं बताती हूँ आपको। एक काम कीजिएगा कि कोई मन में एक कलर सोचिए, कोई भी रंग अपने मन में सोचिए और आसपास देखिए। मान लीजिए आपने लाल रंग सोचा है, तो अपने पसंदीदा रंग को अपने आसपास ढूंढिए, और जब उस कलर को आप ढूंढेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो कलर आपने, जो रंग आपने मन में सोचा है ना, वो आपको हर जगह आज दिखाई देगा, क्योंकि आपका ध्यान उस खास कलर पर केंद्रित है, इसलिए आपको वो हमेशा अपने आसपास आज दिखाई देगा। आपको बाहर इस तरह की चीज़ें दिख जाएंगी, घर में उस तरह की चीज़ें दिख जाएंगी जो आप हमेशा देखते हैं, आपने कभी नोटिस नहीं किया है। आप ऐसा करके देखिए, फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अभी बहुत ही मज़ेदार है, और जब हम इससे हमें पता लगता है कि जब हमारा ध्यान किस पर केंद्रित होता है, वही चीज़ें हमें मिलती हैं। तो आइए सुनते हैं अगला ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण को, फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी, और आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और जिन भी श्रोताओं ने देर से हमें सुनना शुरू किया है, उन्हें बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं आभार की। आभार यानी जीवन में जो कुछ मिला है उसे पहचानना, उसके लिए धन्यवाद देना। क्या कभी आपने सोचा है दोस्तों कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या सोचते हैं? कई बार हमारी शुरुआत शिकायतों से होती है, और अक्सर हम इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हमें टेंशन होती है, शुरुआत टेंशन में ही करते हैं कि आज बहुत काम है, ट्रैफिक होगा, हम टाइम पे पहुंच पाएंगे या नहीं, समय बहुत कम है, ये नहीं वो नहीं, पता नहीं क्या क्या दिमाग में हमारे ख्याल चलते ही रहते हैं। लेकिन अगर हम दिन की शुरुआत एक छोटे से धन्यवाद से करें, थोड़े पल रुकें और शुरुआत में ही अच्छी एक लंबी गहरी सांस ले और आभार व्यक्त करें जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, हो सकता है कि सबकी अलग अलग चीज़ें हों, बहुत ज़्यादा हमें जो उम्मीदें थी हमारी पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन जब हम अपना फोकस, हमारी जो चीज़ें हैं जो हमें मिली हैं उसका धन्यवाद करेंगे तो हमें बहुत सुकून मिलेगा, तो हमारी सोच ही बदल जाएगी, तो जो हमारा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है वो ही बदल जाएगा। आभार हमें ये नहीं सिखाता कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, बल्कि ये सिखाता है कि दोस्तों कि कठिनाइयों के बीच भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत, फिल्म थी सागर। और हम बात कर रहे हैं आभार के बारे में। एक और खास बात आभार के बारे में कि आभार का संबंध केवल ईश्वर से नहीं होता दोस्तों, बल्कि इंसानों से है। क्या कभी आपने उस व्यक्ति को धन्यवाद कहा है जो हर सुबह हमारे घर दूध पहुंचाता है, जो सड़क साफ करता है, जो बस या ट्रेन चलाता है, या घर में हमारे लिए रोज़ खाना बनाता है? कई बार हम सबसे ज़रूरी लोगों को धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं दोस्तों कि जो लोग नियमित रूप से आभार व्यक्त करते हैं वे अधिक प्रसन्न रहते हैं, तनाव कम महसूस करते हैं, उनके रिश्ते भी अधिक मजबूत होते हैं, क्योंकि आभार हमारी सोच को कमी से निकालकर समृद्धि की ओर ले जाता है। और कहते हैं ना कि जो है उसका सम्मान कीजिए, जो नहीं है उसके लिए प्रयास कीजिए, लेकिन जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कहना कभी मत भूलिए। आभार वो चाबी है दोस्तों जो अभाव के दरवाजे बंद करके संतोष और आनंद के दरवाजे खोल देती है। जब हम जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद कहना सीख जाते हैं तो बड़ी खुशियां भी हमारी ओर बढ़ने लगती हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करना सीख जाता है उसके जीवन में शिकायतें कम और खुशियां ज़्यादा हो जाती हैं। तो आइए इसी सोच के साथ, इसी सकारात्मक सोच के साथ हम डेली हर सुबह अपनी शुरुआत करें आभार के साथ। तो दोस्तों, मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और इन्जॉय कीजिए इस गीत को। और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 8 बजने को हैं, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार्य समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
5: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
3: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
5: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मेरिट

0: देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
2: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
3: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। इस स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुज जलडमरू मध्य में

0: जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए दो शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2,000 रहेंगे, 5,000 रहेंगे, 10,000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
3: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायार मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नोस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: India and New Zealand sign 5 MOUs in key areas including defence, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. And now the news in detail. India and New Zealand today signed 5 key memorandums of understanding, MOUs, covering defence, animal husbandry and dairy, tourism, sports and disaster management, marking a new chapter in bilateral ties between the two nations. The deals were inked following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. We have more from our correspondent.
4: The two countries signed a memorandum of arrangement between the Ministry of Defence and the New Zealand Defence Force to enhance maritime cooperation aimed at strengthening security in the Indo-Pacific region. The agreement on animal husbandry and dairy will promote research, innovation and exchange of best practices. The tourism pact is expected to boost visitor exchanges and strengthen cooperation in the travel sector. Both sides also adopted a joint action plan on sport to deepen collaboration in sports development and athlete exchanges. An MOU on disaster management will enhance cooperation in disaster preparedness, emergency response and resilience. The 5 agreements reflect the growing India-New Zealand partnership and the shared commitment to expand cooperation across strategic, economic and people-to-people sectors. With Manju Meena's report from Auckland, this is Jigyasa Pandey for Akashvani News.
5: Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give a fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
6: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
5: Speaking on the occasion, the New Zealand Prime Minister described Mr. Modi's visit as a historic milestone, marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. Welcoming Prime Minister Modi, Mr. Luxon said it was a pleasure and an honour to host him, adding that the visit reflects the growing strength of bilateral ties.
7: This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity, and I'm therefore delighted to welcome you here. Thank you for the relationship and thank you for what you've put into it personally. I think we've made tremendous progress in a very short period of time on the trade agenda. But today's focus is about more than just the FTA. It's about where we go to next in this relationship and how we broaden that out. Very proud to announce that we will be forming a strategic partnership, which will give the relationship more framework and breadth for us to continue to expand as we go forward from here.

0: Security directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1. Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और मवेशियों के अफजाइश नस्ल समेत अहम शोबों में 5 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद इक्तसादी और दिफाई तआवुन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हममनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की है। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को ऐसा तारीखी संगमिल करार दिया है जिससे दोतरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्र गिरी को अपने कामकाज में शामिल करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरीन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का एक बुनियादी ज़मीन है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने बंदरगाहों की हिफाजत का ब्यूरो शुरू करने के काम में पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मजबूत साहिली सिक्योरिटी के इकदाम की हिदायत दी। फीफा आलमी कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। उधर आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस में आज खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में चेक जमहूरिया की कैरोलिना मुचोवा का मुकाबला अपनी हमवतन लिंडा नोस्कोवा से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड ने आज 5 अहम मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें दिफा, मवेशियों की अफजाइश नस्ल और डेरी, सियाहत, खेलकूद और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त के शोबे शामिल हैं। ये दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में एक नया बाब है। इन माहिदों पर दस्तखत ऑकलैंड में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत के बाद किए गए। इससे पहले वफ्द की सतह की बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड उनका ये दोतरफा ताल्लुकात में एक तारीखी संग मील की हैसियत रखता है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन इस्तेकाम और सलामती को मुस्तकम बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने जनाब मोदी के दौरे को एक तारीखी संग मील करार दिया, जो पिछले 40 बरसों में भारत के किसी वजीर आजम का न्यूजीलैंड का पहला दौरा है। जनाब लक्सन ने जनाब मोदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनकी मेजबानी उनके लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से दोतरफा ताल्लुकात की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा होता है। दोतरफा बातचीत से पहले गवर्नमेंट हाउस में एक इस्तकबालिया का अहतमाम किया गया था, जिसमें वजीर आजम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद में वजीर आजम मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हममनसब ने ऑकलैंड में 2026 की भारत न्यूजीलैंड तिजारती सरगर्मियों से मुतालिक एक तकरीब में शिरकत की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को मुस्तकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया। वजीर आजम के दौरे की खबरें देने वाली हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
3: वजीर आजम मोदी ने सरकर्दा ताजिरों से खिताब करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तिजारती समझौता महज 9 महीने में ही मुकम्मल कर लिया गया है, जिससे दोतरफा ताल्लुकात में एतबार और रफ्तार का अंदाज़ा होता है। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि दोतरफा तिजारत 2030 तक दोगुना हो जाएगी। वजीर आजम ने अगले 15 साल में भारत में $20 अरब अमरीकी डॉलर की सरमाकारी के न्यूजीलैंड के अज़्म को भी उजागर किया।

उन्होंने इसे बढ़ती हुई इकतसादी शराकतदारी में एक बड़ा संगमेल करार दिया। भारत को मौकों की सरजमीन करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत महज एक मार्केट नहीं है, बल्कि ये आलमी सतह पर तरक्की करने के लिए एक लॉन्च पैड भी है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि पॉलिसी असलाहत, मैनुफैक्चरिंग तरगीबात, आलमी दर्जे की मसनूआत साजी और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से भारत आलमी सरमायाकारी के लिए एक तरजीही मुल्क बन गया है।

0: को एक दूसरे के मुल्कों में लगातार दौरे करते रहना चाहिए ताकि तवील मुद्दती शराकत दारी कायम की जा सके। उन्होंने कहा कि नौजवान मुस्तकबिल में इख्तराकारों और कारोबारी भारत न्यूजीलैंड इक्तसादी तआवुन की तश्कील करेंगे। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से मंजू मीना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: जनाब मोदी, दोनों मुल्कों के दरमियान आवाम से आवाम के रिश्तों की अक्कासी के सिलसिले में आज भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म तीन मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले के तहत कल ऑकलैंड पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का दौरा किया था। भारतीय बहरिया अपने छठे प्रोजेक्ट 17A के तहत मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्रगिरी F-38 को आज आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में अपने मशरकी बेड़े में शामिल करेगी। इस तकरीब की सदारत वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे। ये दिफा के शोबे में खुद किफालत और जंगी जहाज़ों को मुल्क ही में तामीर करने की जानिब एक और अहम कदम है। इस जहाज़ को बहरिया में शामिल किए जाने की तकरीब के मौके पर बड़ा खाना के दौरान बहरी अमले से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने बहर हिंद खित्ते में अमन इस्तेहकाम के बुनियादी ज़मीन के तौर पर भारत के मौक़िफ को दोहराया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भारतीय बहरिया के जंगी जहाज़ों को डिज़ाइन करने वाले ब्यूरो के डिज़ाइन करदा और मुंबई में मजगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का तामीर करदा ये जहाज़ महेंद्रगिरी एक ऐसा जंगी जहाज़ है जो जदीद तरीन हथियारों, हसास आलात और इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम से लैस है। ये जहाज़ दुश्मन के हथियारों को फ़तह और ज़मीन में नीज आबदोज कर सकता है। ये समंदर में सलामती के लिए गश्त, तलाश और बचाव का काम भी अंजाम दे सकता है। ये जहाज़ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद, कुदरती आफात की सूरत में राहत कार्रवाई और बहर हिंद खित्ते में मुस्तकिल तैनाती की खिदमात भी अंजाम दे सकता है। इस जहाज़ का नाम मशरकी घाट के महेंद्रगिरी पहाड़ी सिलसिले पर रखा गया है। हुकूमत ने कहा है कि इसे कामकाज में शामिल किए जाने से भारतीय बहरिया की कार्रवाई की सलाहियत में इजाफा होगा और बहरी जहाज़ों की मुल्क ही में तामीर के मैदान में एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर भारत की हैसियत उजागर होगी। इस जहाज़ से बहर हिंद खित्ते में भारत को सलामती के शोबे में शराकतदार मुल्क के तौर पर एक तरजीह मुल्क की हैसियत कायम होगी। विशाखापट्टनम से अल्लू मुराली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: कोयले की वजारत ने कोयला ब्लॉकों की तजारती नीलामी के 15वें मरहले के लिए बोलियों का अमल शुरू कर दिया है। वजारत ने बताया कि इन मरहलों में जिन 23 कोयला ब्लॉकों की पेशकश की गई थी उनमें से 8 के लिए कुल 21 बोलियां मौसूल हुई हैं, जिससे भारत के तजारती कोयला कानकनी के फ्रेमवर्क में सनअतों की मजबूत शिरकत की अक्कासी होती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत मुल्क के साहिली सलामती के निज़ाम को इंतहाई पुख्ता बनाने के तई अहद बस्ता है। जनाब शाह ने बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनवाल के साथ ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS के क्याम से मुतालिक पेशरफ का जायजा लेते हुए ये बात कही। वजीर दाखला ने कहा कि बंदरगाहों की सलामती की जिम्मेदारी सिर्फ लाइसेंस याफ्ता प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को ही दी जानी चाहिए और उनकी हिफाजत के लिए CISF के जरिए तरबियत याफ्ता एहलकारों को ही तैनात किया जाना चाहिए। जनाब शाह ने BOPS के तहत तैनात किए जाने वाले सभी हिफाजती एहलकारों का जामे डेटाबेस तैयार करने की भी अफसरान को हिदायत दी। वजीर दाखला ने मजीद कहा कि BOPS हिफाजती फ्रेमवर्क के तहत आने वाली सभी बंदरगाहों को कंटेनर स्कैनिंग सहूलतों से लैस होना चाहिए। वजीर दाखला ने विशाखापट्टनम बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मुंदड़ा बंदरगाह समेत बड़ी बंदरगाहों पर मुजवजा सिक्योरिटी इंतजाम की आजमाइश करने की CISF को हिदायत दी। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS बहरी जहाज़ों और बंदरगाहों की सहूलतों की हिफाजत का मायना करने और उन्हें मुंजबित करने का जिम्मेदार है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: इस मीटिंग में मरकजी दाखला सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, सरहदी इंतजाम से मुतालिक सेक्रेटरी, बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजारत के सेक्रेटरी और माही परवरी के महकमे के सेक्रेटरी, नीज CISF के डायरेक्टर जनरल और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मर्चेंट जहाजरानी कानून 2025 की दफा 13 के तहत ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के क्याम को कानूनी इदारे की शक्ल दी जा रही है। ये ब्यूरो बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के तहत डायरेक्टर जनरल के मातहत काम करेगा। ये ब्यूरो सलामती से मुतालिक मालूमात मुश्तरक करने, तज्जिया करने और उन्हें बरवक्त जमा करने की यकीनी बनाएगा। इसके अलावा ब्यूरो साइबर सलामती पर खसूसी तवज्जो देगा। और एक मखसूस डिवीजन

0: साइबर हमलों के खिलाफ बंदरगाहों के आईटी बुनियादी ढांचे को तहफ्फुज़ फराहम करेगा। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: नायब सदर सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया का एक रोजा दौरा कर रहे हैं। इस दौरान नायब सदर गया के बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में बिहार कानून साज असेंबली के अराकीन के तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुखासिमत में हालिया इजाफे के बावजूद वाशिंगटन और तहरान बातचीत जारी रखने पर रजामंद हो गए हैं। ताहम सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया कि फरीकैन के दरमियान गुज़िश्ता महीने हुई जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बातचीत जारी रखने की दरख्वास्त की है और अमरीका इस पर राज़ी हो गया है। वहीं अमरीका ने भी मुतालबा किया है कि ईरान आबनाए हुरमुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमले बंद करे। आबनाए हुरमुज़ में जारी लड़ाई की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। सदर ट्रंप का ये बयान उस वक्त आया है जब 3 कतरी और सऊदी तिजारती टैंकरों पर हमले हुए हैं, जिसके बाद अमरीका को ईरानी मकामात पर हमले करने पड़े और जवाब में ईरान ने खलीजी ममालिक में वाक़ अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। वेनेजुएला में 24 जून को आए 2 तबाहकुन जलजलों में मरने वालों की तादाद 4,000 से तजावज़ कर गई है। वेनेजुएला की पार्लियामेंट के चीफ जॉर्ज रोड्रिगेज़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि लातिनी अमरीकी मुल्क में 7.2 और 7.5 शिद्दत के यके बाद दीगरे आए 2 जलजलों में कम अज़ कम 4,118 अफराद हलाक हो गए हैं और 16,740 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। हम अपनी सीरीज़ प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के तहत अपने आइंदा नशरिए में जनाब आशीष अग्रवाल से बातचीत करेंगे, जो माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी अपनाने के लिए लोगों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आप 100.1 मीटर पर आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुबह 9:10 पर सुन सकते हैं। आप ये प्रोग्राम न्यूज़ ऑन AIR ऐप और न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनलों पर भी सुन सकते हैं। फीफा आलमी कप में कल रात अमेरिका के इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले फ्रांस ने बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में मराकिश पर 2-0 की आसान जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। विंबलडन टेनिस के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में आज लंदन में चेक जमहूरिया की कैरोलिना मुचोवा का मुकाबला हमवतन लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खवातीन खिलाड़ी अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने की कोशिश कर रही हैं। पहली मर्तबा विंबलडन का फाइनल खेल रही मुचोवा पूरी तरह अपने खेल और तजुर्बे पर इन्हिसार कर रही हैं, जबकि अपनी सख्त हिटिंग के लिए मशहूर नोस्कोवा भी अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतना चाहेंगी। विंबलडन में कल मर्दों के सिंगल्स का फाइनल खेला जाएगा, जहां आलमी नंबर 1 यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। खवातीन क्रिकेट में लंदन के शहर लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी पहले टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली बारी के अपने स्कोर 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेल की शुरुआत करेगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 3 ममालिक के दौरे के आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचने की खबर को अहमियत दी है, जहां न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया, जबकि रोजनामा प्रताप ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज़ के जरिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दोनों ममालिक के दरमियान खेलों में ताउन बढ़ाने के लिए एक रोड मैप जारी किए जाने की खबर पर तवज्जो मरकूज की है। ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु के कदीम विरसे की वापसी पर नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने खुशी का इजहार किया और कहा कि भारत के मालामाल सकाफती विरसे को उसके मकाम पर वापस लाने की समत में ये एक अहम कदम है। इस खबर को रोजाना प्रताप ने उजागर किया है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और मवेशियों की अफजाइश नस्ल समेत अहम शोबों में 5 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद इक्तसादी और दिफाई तआवुन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को ऐसा तारीखी संग मील करार दिया जिससे दोतरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। भारतीय बहरिया आज शाम विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्र गिरी को अपने कामकाज में शामिल करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत बहर हिंद खत्ते में अमन इस्तेकाम का एक बुनियादी जामिन है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बंदरगाहों की हिफाजत का ब्यूरो शुरू करने के काम में पेशरफ का जायजा लिया। उन्होंने मजबूत साहली सिक्योरिटी के इकदाम की हिदायत दी।

0: इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ है 8:45 और 18 सेकंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। आप सभी का स्वागत है स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, आज के अंक में शामिल है भेंटवार्ता, सोरियोसिस और लाइकन प्लैनस, साथ ही विश्व जनसंख्या दिवस पर जानकारी और साथ ही जानेंगे आई फ्लू के बारे में। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले सुनते हैं भेंटवार्ता सोरियोसिस और लाइकन प्लैनस। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर चित्रा वासु, सीनियर मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ NCT, दिल्ली। आपसे बात कर रही हैं राजलक्ष्मी।
2: डॉक्टर चित्रा वासु आज हमारे साथ उपस्थित हैं आकाशवाणी के स्टूडियो में। आप एक होम्योपैथी एक्सपर्ट हैं, आपका स्वागत है।
3: थैंक यू
2: डॉक्टर साहब। जैसा कि हम जानते हैं कि त्वचा हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि त्वचा से संबंधित रोगों के बारे में आप कुछ बताएं कि कौन कौन से रोग त्वचा से संबंधित हैं।
3: त्वचा हमारी शरीर की, आपने बोला सही बोला, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी की। जो भी है हमारी मन या शरीर को पसंद नहीं है, वो तुरंत पहले स्किन में ही रिएक्शन आएंगे। पहले माइंड के बारे में हम उतना ध्यान नहीं देते, बट बेसिकली ऐसी होता है। सो कमिंग टू द पॉइंट, हमारी OPD में जो जो आता है इम्पॉर्टेंट कॉमन बीमारियां मैं बोलती हूँ, एक तो आता है एक्जिमा इन अक्यूट या क्रॉनिक फॉर्म में आता है, उसके अंदर ही आता है अलग अलग एटॉपिक डर्मेटाइटिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ग्रेविटेशनल एक्जिमा एक्सेट्रा, सो एंड सो। एंड देन अनदर कैटेगरी आता है पैपिलोस्क्वैमस डिसऑर्डर, उसमें आता है सोरियासिस, लाइकन प्लैनस जैसे बीमारियां। फिर इन्फेक्शियस डिसीज होता है जैसे टीनिया इन्फेक्शन या रिंगवो, अदर फंगल इन्फेक्शन भी होता है।
2: जी, तो जैसा कि आपने कहा, आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो मुख्यतः सोरियासिस और लाइकन प्लैनस के बारे में रहेगा। डॉक्टर साहब, सोरियासिस और लाइकन प्लैनस ये कौन सी बीमारी है, इनके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए।
3: ये दोनों एक पर्टिकुलर कैटेगरी है पैपिलोस्क्वैमस डिसऑर्डर, उसमें आता है सोरियासिस और लाइकन प्लैनस। सोरियासिस कंपेयर टू लाइकन प्लैनस, सोरियासिस की इंसिडेंस ज्यादा है हमारी OPD में। सो सोरियासिस में क्या होता है, अपनी स्किन में उभरी हुई लीशन आता है लाल रंग की, उसमें खुजली भी होता है, वही है। एंड लाइकन प्लैनस के बारे में बात करने तो वो है ना, थोड़ी फ्लैट लीशन है और थोड़ा वायलेट कलर या पर्पल या बैगनी रंग की वही होता है, उसमें भी खुजली होता है। सो दोनों में ये है, वो पपड़ी निकलता है, क्योंकि इसलिए मैं बोल दिया पैप्यूल और स्केल, ये दोनों होता है।
2: तो जैसा कि हम समझ पाए, इसका मतलब यह है कि सोरियासिस और लाइकन प्लैनस, इन दोनों में कोई लिंक है, या अगर कोई अंतर है तो उसके बारे में हमें बताएं।
3: हाँ, क्योंकि इसलिए मैं पहले बोल दिया दोनों पर्टिकुलर, क्योंकि उनकी पैथोलॉजी के अनुसार हम क्लासिफाई कर रहे हैं, मतलब पैथोलॉजी दोनों की एक तरीके से सेम है, इसलिए पैपुलोस्क्वैमस के अंडर क्लासिफाई कर दिया, क्योंकि दोनों में पैप्यूल और स्केलिंग होता है। सो बेसिकली वही है, और इन दोनों की इटियोलॉजी भी पता नहीं है, और उसमें ये हमारी इम्यून स्टेटस जब एक इम्बैलेंस होने वक्त ये आता है, इसलिए दोनों में ये बोलता है जब कोई भी नॉर्मल सेल्स को अटैक करता है, हमारी बॉडी की सेल्स नॉर्मल सेल्स को अटैक करता है, एंड एज अ रिजल्ट दोनों में क्या होता है, सेल ग्रोथ बहुत रैपिड हो जाता है और हमारी स्किन की टर्नओवर पीरियड नॉर्मली 40-56 होता है, वो रिड्यूस होकर 4-7 तक आता है। सो इसलिए इतनी ये ओल्ड स्किन ऊपर आने वाला वो टाइम है ना, बहुत कम हो जाता है। सो बिल्कुल इतनी पपड़ी निकलते हैं। सो बेसिकली वही, ये दोनों में ये मैकेनिज्म होता है।
2: तो जी, आपने इसके कारण बताए, इसका मतलब मैं ये समझूं कि सोरियासिस जिसको भी होगा, जिस भी मरीज को होगा, क्या लाइकन प्लैनस होने की संभावना बढ़ जाती है?
3: बिल्कुल, ऐसी नई चांसेस नहीं देखा आज तक, क्योंकि अलग अलग बीमारी है ना, अलग अलग है।
2: और इनके बीच में कोई विशेष अंतर आप बताना चाहेंगी?
3: रंग की हम पता कर सकते हैं, क्योंकि ये सोरियासिस बिल्कुल मैंने बोला वो पैप्यूल उभरी हुई लीशन है और उसमें खुजली होता है लाल रंग।

0: के और उसमें ब्लीडिंग पॉइंट्स होता है. अगर वेन्यू अब केस अटेंड करने वक्त है ना, आप पूछने वक्त पेशेंट खुजली खुजली कर कर उसमें ब्लीडिंग पॉइंट्स होता है. बट लाइकेन प्लानस में ये नहीं होता, वो थोड़ी वायलेट कलर पर्पल कलर की लेशन होता है, उसमें ऐसी नहीं होता और अपियरेंस से हमें पता चल जाता है. वेन यू अटेंड द केस हमें पता चल जाता है.
1: तो शरीर के किन किन अंगों को ये प्रभावित करते हैं और क्या ये किसी इंटरनल ऑर्गेन को भी प्रभावित कर सकते हैं?
0: पहले मैं शरीर की किन किन अंगों के बारे में बात करती हूँ. सोरियासिस यूजुअली अपने स्कैल्प में आ सकते हैं और अपनी ट्रंक, बैक साइड और अपनी एक्सट्रीमिटीज, अपना लिम्स पर भी आ सकते हैं. और लाइकेन प्लानस भी ऐसी है, वो अपनी यूजुअली लिम्स में आता है एंड ओरल मुंह के अंदर भी आ सकते हैं और अपनी जेनाइटल ऑर्गन्स में भी इसका अफेक्शन है, एक्चुअली प्रेडिलेक्शन है.
1: तो मैम, हम अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहेंगे कि कौन लोग हैं जो इससे ज़्यादा प्रभावित हैं, स्पेशली अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें या एल्डरली की बात करें, तो ये रोग, त्वचा रोग जो है, किसको ज़्यादा प्रभावित करता है या कौन लोग ज़्यादा प्रोन हैं इससे?
0: इसकी मैं स्पेसिफिकली आंसर बोलना चाहती हूँ एज पर द लिटरेचर, क्योंकि सोरियासिस एक जेनेटिक प्रेडिलेक्शन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट. कहने की मतलब है ये, अगर एक पेरेंट को है तो चांसेस है बच्चे को आने की. और ऐसा कोई जेंडर प्रेडिलेक्शन नहीं है, मेल को ज़्यादा फीमेल को ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है. और बाईमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, बाईमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक ही पर्सन की अर्ली लाइफ और लेटर लाइफ में भी सोरियासिस की एक्सेसरबेशन होता है. अगर लाइकेन प्लानस की बात करते तो ऐसी कोई, ऑफकोर्स उसमें भी है जेनेटिक वही है, मगर फीमेल्स आर मोर प्रोन टू द लेशन. ऐसा कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड ऐसा कोई मेंशनिंग नहीं है इन द लिटरेचर, बेसिकली वो ये. एंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अगर इफ आई एम एक्सप्लेनिंग, सोरियासिस की कॉम्प्लिकेशन है सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी. बेसिकली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं. ये लाइकेन प्लानस की जो कॉसेज है ना, उसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ. इनकी एसोसिएशन हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन से अभी है, मतलब प्रोडोमिनेंट अभी वी कैन सी इट, वी कैन, देर इज एन एसोसिएशन विथ हेपेटाइटिस सी. वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है. और मैंने लाइकेन प्लानस की एक सिचुएशन बोला ओरल, मतलब मुंह में. उसमें क्या होता है, कभी कभी जो ओरल या डेंटल फिलिंग होता है ना, उसकी मेटल की वजह से एलर्जी की, उसी वो वाला केसेस में भी एसोसिएशन मिल सकते हैं हमें लाइकेन प्लानस की. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन सोरियासिस की बेसिकली इतनी एक्सटेंसिव स्किन लेशन होने वक्त क्या होगा, हमारी जो पूरा जनरलाइज्ड सोरियासिस भी हो सकते हैं पूरा बॉडी में. सो क्या होगा, ये पूरा प्लेक्स है ना, अपने आप से मर्ज होकर एक एरिथ्रोडर्मा जैसे सिचुएशन, उसमें बहुत प्रोटीन लॉस हो सकता है, दैट इज लिटिल बिट डेंजरस. एंड सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सुपर एडेड हो सकता है सोरियासिस में. फिर सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी अपनी जॉइंट्स में भी अफेक्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी पेनफुल. एंड अनदर थिंग दैट खुजली की वजह से ना पेशेंट को नींद प्रॉपरली नहीं मिल सकते, सो वो भी एक स्लीप डिस्टर्बेंस ऐसे हो सकता है. एंड इवेंचुअली अपनी लो सेल्फ एस्टीम की वजह से थोड़ी सी डिप्रेसिव फेस में भी चल सकते. सो यू हैव टू गिव, मतलब वी डॉक्टर्स हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ दैट सपोर्ट एंड That is very important, क्योंकि मैंने बहुत सारा चीज देख लिया, they are very depressive, है ना, वो अपनी confidence भी कम है owing to this, obviously ये appearance की वजह से basically. And there is an association with cardiovascular disease also हो सकता है, and hypertension का भी association है psoriasis में. Lichen planus का I see एक्चुअली वो सेल्फ रिसोल्यूशन है, अपने आप से ठीक हो जाता है, दो तीन महीने आकर अपने psoriasis की तरह नहीं है. अगर ज्यादा सिम्टम्स है तो खुजली पसिस कर दिया तो यू हैव टू कंसल्ट द फिजिशियन.
1: इसका होम्योपैथिक चिकित्सा में क्या इलाज है मेडिकल साइंस में?
0: डेफिनेटली होम्योपैथी स्किन डिसीजेस के लिए सबको मालूम है बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं. और बिल्कुल अपनी ओपीडी में आने वक्त है ना, हम इंडिविजुअली केसेस अटेंड कर हम प्रिस्क्राइब करता है अपनी सिम्टम्स के अनुसार. जो पेशेंट्स के सिम्टम जो मेरे सामने आता है, नेचर ऑफ द पस्ट्यूल्स या नेचर ऑफ द प्लेक या बाकी पेशेंट की बाकी भी सिचुएशंस देखकर है ना, वी प्रिस्क्राइब एंड रिजल्ट हो जाता है. आई एम टेकिंग द थियरी, वन ऑफ द थियरीज बाय डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड. सबको मालूम है फ्रॉयडियन साइकोलॉजिकल थियरीज के बारे में. सो उन्होंने एक थियोरी फॉर्मुलेट कर दिया, थियोरी ऑफ सप्रेशन एंड रिप्रेशन. क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी ऑल द ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विद अ नंबर ऑफ डिसेयर्स एंड सब डिसेयर्स है ना फुलफिल नहीं नहीं होता है, हमको पता है. सो हम क्या करता है, हम सारा हमारी ये डिसेस को सप्रेस करता है इन ऑर्डर टू लिव नॉर्मली. बट कुछ कुछ सिचुएशंस होता है उसी टाइम अगेन दोबारा ये जो डिसेस है ना आगे आएगा, अगेन हम सप्रेस करते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रेशन एंड सप्रेशन. सो बेसिकली मैंने ऑब्जर्व कर दिया ये जो ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन या बहुत चीज़ अपनी पेनफुल सिचुएशन, अपनी ट्रॉमा अगर प्रॉपरली हील नहीं किया तो ना ये बिल्कुल स्किन कंडीशंस के रूप में आते हैं. सो वो लॉन्जिट्यूडिनल केस स्टडी लेने वक्त हमें तो ये पकड़ना है द ट्रू एसेंस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. सो वो ट्रू एसेंस अगर पकड़ लिया तो फॉर मी इट्स वेरी इजी, क्योंकि मैं पेशेंट्स को कैटेगराइज करती हूँ वेदर द पेशेंट इज ओवर प्रैक्टिकल या ओवर सेंसिटिव या ओवर इंटेलिजेंट और ओवर कॉन्फिडेंट. क्योंकि एक बैलेंस, ये चारों चीज पर एक बैलेंस होना चाहिए. अगर बैलेंस नहीं है तो आप सोचिए, सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है बट ओवर प्रैक्टिकल कैसी होगा, और ओवर सेंसिटिव है तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा. सो दिस डिफरेंस, एंड मैं अपनी मेडिसिन्स को ऐसी कैटेगराइज कर रखी हुई है एंड आई प्रिस्क्राइब इन दैट वे एंड दैट इज ऑफरिंग क्योर टू माई पेशेंट्स.
1: जी आखिरी में डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश का मौसम है, तो इस विषय में आप हमारे श्रोताओं को त्वचा संबंधित रोगों से बचाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, क्योंकि अभी बारिश की मौसम है, सबको मालूम है, सबको पसंद भी है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी, उनका भी बहुत फेवरेट मौसम है, इसलिए हमको तो फाइट करना पड़ेगा उनके खिलाफ, है ना. सो बेसिकली कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस है, स्कैबिस, इंडोट्रिगो या टीनिया इन्फेक्शन और एक्सिमा ऑल्सो, क्योंकि डैमनेस बहुत ज़्यादा है ना, और ये सब पर्टिकुलर डिजीज इसमें ये बारिश वाला मौसम में बहुत अधिकतर देखने को मिलता है. एंड स्कैबीज थोड़ा हम ध्यान से देखना है, क्योंकि बिल्कुल वो कंटेजियस डिजीज है, फैमिली के सब मेंबर्स को स्प्रेड हो सकता है. सो लिटिल बिट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग. एंड वो ये, एंड इसको प्रिकॉशंस के बारे में अगर बात करना चाहते हो ना, यू हैव टू अवॉइड स्ट्रीट फूड फर्स्टली, और अपने आप को हाइड्रेट करना, वार्म ड्रिंक से हाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड डैमनेस अवॉइड करना है, ऑलवेज कैरी योर अम्ब्रेला, क्योंकि एक्सिमा समटाइम्स यू नो रेन एक्सपोजर से भी अगर सेंसिटिव है तो यू कैन डेवलप अर्टिकेरिया एंड ऑल. सो ये सब आप ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, एंड एक्सरसाइज प्रॉपरली, ये सब प्रिकॉशंस कर सकते हैं.
1: डॉक्टर चित्रा वासु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, धन्यवाद.
0: थैंक यू.
2: सोरोसिस और लाइकन प्लैनस, अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे डॉक्टर चित्रा वासु से. आप सीनियर मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी की हैं, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में. आपसे बात कर रही थी राजलक्ष्मी. कार्यक्रम में आगे सुनिए विश्व जनसंख्या दिवस पर जानकारी. जानकारी दे रही हैं श्रृंगारिका उपाध्याय.
3: किसी भी देश की ताकत उसकी जनसंख्या ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर उसके लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन जब चीजें अनकंट्रोल हो जाए तो वो नुकसानदायक भी हो जाती है. वैसे ही अधिक जनसंख्या किसी भी देश के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, इसीलिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है. ये दिन जनसंख्या के मुद्दों के महत्व पर गौर करने के लिए समर्पित है. इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1990 में स्थापित किया गया था, जब वैश्विक जनसंख्या ने 5 अरब का आंकड़ा पार किया था. इस दिन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है. इस दिन विभिन्न कार्यक्रम, सेमिनार और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं, ताकि लोगों को इन विषयों के बारे में जागरूक किया जा सके. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गर्भावस्था या प्रसव के कारण हर 2 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो जाती है. इससे संघर्ष की स्थिति में मौतों की संख्या दोगुनी हो जाती है. तेजी से बढ़ती आबादी दुनिया भर में पर्यावरण के लिए कई बड़े खतरे पैदा कर रही है. साथ ही ये लोगों की आय में कमी, भुखमरी की स्थिति और पर्यावरण से जुड़े बदलाव का कारण बन रही है. इसके कारण कृषि योग्य भूमि की कमी हो जाती है, जिससे खदान उत्पाद भी प्रभावित होते हैं. जनसंख्या में वृद्धि के कारण वस्तुओं की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही है और वस्तुओं की आपूर्ति के अनुरूप नहीं है. इससे आने वाले दिनों के लिए कई गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती है. बढ़ती जनसंख्या से निपटने के लिए परिवार नियोजन जैसे समाधान मौजूद है।

0: लेकिन जागरूकता की कमी के कारण जनसंख्या पर काबू नहीं पाया जा रहा। दुनिया के तमाम देशों में बढ़ रही आबादी को नियंत्रित करने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम सब जनसंख्या दिवस के प्रति जागरूक हो और लोगों में जागरूकता फैलाएं, इस बात का संदेश पूरे समाज में दे कि छोटा परिवार सुखी परिवार।
1: अभी आप श्रृंगारिका उपाध्याय से सुन रहे थे विश्व जनसंख्या दिवस पर जानकारी। कार्यक्रम में आगे बहुत कुछ है, सुनते रहिए कार्यक्रम हमारी सेहत।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
1: मॉनसून के समय की आम परेशानी होती है आंख आना या आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस के बारे में समझने और इससे बचाव के तरीके जानने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। हमारा विषय है आई फ्लू, कारण, लक्षण और बचाव। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सुनीता दुबे। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। आज हमने सोचा हम आपसे जानकारी प्राप्त करते हैं आई फ्लू के बारे में। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। हमारा विषय आज का है आई फ्लू, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं श्रोताओं के लिए यही जानना चाहूंगी कि ये आई फ्लू होता क्या है, और हम बहुत सुनते हैं जब भी मौसम बदलता है कि फ्लू बहुत हो जाता है, तो क्या उससे इसकी क्या सिमिलैरिटीज हैं और हाउ इट इज डिफरेंट।
3: सो आई फ्लू मतलब कॉमन जो फ्लू हम कहते हैं, जो कि मॉनसून के बाद ज्यादा होता है, उससे रिलेटेड है। जैसे कि कॉमन फ्लू वायरस की वजह से होता है, तो आई फ्लू का भी मेन रीजन वायरल इन्फेक्शन होता है, और वायरल इन्फेक्शन ऑफ द कंजंक्टिवा, इसकी टर्मिनोलॉजी या टेक्निकल टर्म कंजंक्टिवाइटिस है, जिसमें कंजंक्टिवा जो कि आंखों की बाहर की लेयर है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और सूजन आ जाती है। और मोस्टली एज आई सेड इसका कारण होता है वायरल इन्फेक्शन, बट ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या फिर एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, पर अभी इसका मुख्य कारण वायरल इन्फेक्शन है। और मेन कारण जो इसका है वो है एक्सेसिव रेनफॉल, उसकी वजह से, और माहौल भी काफी ह्यूमिड हो गया है, तो ये बैक्टीरिया और वायरस के ग्रो करने का बहुत ही अच्छा साधन है, तो उसमें काफी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं।
1: जी जी, तो इसीलिए शायद डॉक्टर साहब हम अक्सर जब बरसात का मौसम होता है तभी सुनते हैं कि आई फ्लू हो रहा है या जनरल फ्लू हो रहा है। तो ये भी बताइए कि इसका कैसे पहचान करें, अगर किसी को आई फ्लू हो गया है तो उसे क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे।
3: तो सिम्टम्स नॉर्मली आंखों का लाल हो जाना, आंखों में से पानी निकलना, कीचड़ आना, आंखें सूज जाना, या पेशेंट को ग्रिटिनेस का सेंसेशन होना, ये सारे इसके लक्षण हैं। और पेशेंट्स को जनरली नॉर्मली सिम्टम्स, अगर ड्राइनेस भी होती है तो इतने सिम्टम्स नहीं होते, पर अचानक एक्यूटली जो सिम्टम्स आते हैं वो इस बीमारी के लक्षण हैं।
1: तो आपने जैसे कहा ड्राइनेस से भी यही सिम्टम्स होते हैं,
3: पर ड्राइनेस मतलब एकदम से सिम्टम्स एक्यूट नहीं होते, उसमें क्रॉनिकली आंखें जब ड्राई होती हैं तो ग्रिटिनेस होता है, डिसकंफर्ट होता है, पर इसमें आंखों का लाल हो जाना, आंखों में सूजन आना, ये सिम्टम्स ज्यादा, तो पानी बहना, डिस्चार्ज आना, ये जी, सारे सिम्टम्स होते हैं।
1: और ये संक्रमित होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैलता है। तो ये जो ये संक्रमण होता है कैसे होता है, मतलब आमतौर पर किन किन चीजों से बचाव करना चाहिए अगर हमें लगता है किसी को है घर में या कार्यस्थल पर, तो कैसे इससे अपना बचाव करें।
3: हाँ, तो आई थिंक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर किसी को कंजंक्टिवाइटिस है तो वो अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। पर्सनल हाइजीन से मेरा मतलब है कि अपनी आंखों को टच ना करें, और जिसको संक्रमण हो चुका है वो किसी और फैमिली मेंबर के साथ उठे बैठे नहीं, उनको अपने जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, जैसे तकिए हैं या फिर आई मेकअप है या कोई कॉन्टैक्ट लेंस है, वो सेपरेट रखने चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, और अपने आंखों को और हाथों को बार बार वॉश करना चाहिए, क्योंकि ये कंटेजियस बीमारी है। तो अगर कोई हाथों को बार बार नहीं धोएगा तो आंखों पे कीटाणु हो सकते हैं, हाथों पे कीटाणु हो सकते हैं, और वो दूसरे पर्सन पे ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने हाथों को बार बार वॉश करें और हाथों को आंखों पे ना ले जाएं।
1: जी, तो आपने ये कहा कि पर्सनल हाइजीन पे बहुत ध्यान देना है और हाथों को धोते रहना है, और कांटेक्ट में कोई भी चीज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरा ना इस्तेमाल करें। तो ऐसा पीरियड कितने

0: दिन तक का होता है? कितने दिन तक ये इस तरह से संक्रमित कर सकता है एक आदमी दूसरे को?
1: देखिए, डिपेंड करता है कि कितना सिवियर है। कई कई बार माइल्ड सा प्रॉब्लम होता है, कई बार डिजीज ज्यादा सिवियर हो जाती है। वो सिम्टम्स और साइंस को देख के हमें पता चलता है। तो कई कई बार ये 3-4 दिन में भी ठीक हो जाता है, और कई कई बार इसमें 15 से 20 दिन भी लग जाते हैं। तो जब तक आपकी आंखों में एक्टिव साइंस है, तब तक संक्रमित होने का डर होता है।
0: जी
1: तो इसीलिए जरूरी है कि जब तक आपकी आंखें लाल हो, उसमें से पानी आ रहा हो, डिस्चार्ज हो रहा, तब तक आप अपना और अपने साथ वालों का बचाव करते रहें।
0: जी तो हमने ये बात की कि सावधानी क्या, क्योंकि आपने जैसे बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन अगर पता लगता है कि आई फ्लू है या इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो क्या ट्रीटमेंट होता है इसका?
1: देखिए, जैसे मैंने कहा है कि माइल्ड केसेस में तो ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स देने की इतनी जरूरत नहीं होती है। तो सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, टीयर सब्स्टिट्यूट्स यूज कर सकते हैं, ठंडे पानी की सिकाई कर सकते हैं, या आंखों में कीचड़ आ रहा है तो उसको थोड़ा वार्म वाटर से क्लीन कर सकते हैं। तो जनरली दवाइयाँ सिर्फ आंखों को कंफर्ट देने के लिए होती है, पर अगर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है आंखों में, तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप देने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो अगर सिम्टम्स आपके ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड हैं, या आपको लग रहा है कि आंखें ठीक नहीं हो पा रही हैं 3-4 दिन में, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि देखा जा सके कि बीमारी ठीक हो रही है या उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं।
0: जी तो कॉम्प्लिकेशंस की जब हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो सकते हैं, कुछ जटिलताएं भी आ सकती हैं, तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और कैसे एक पेशेंट ये अपने आप समझे कि मेरा जो केस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे जाना चाहिए आई स्पेशलिस्ट के पास, तो ये और ये कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं?
1: नॉर्मली तो कंजंक्टिवा ही इन्वॉल्व होता है, पर जैसे मैंने कहा, ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें एडिनो वायरस जो है वो ज्यादा संक्रमित करता है। तो उसमें कॉर्निया, जो कि हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट है फ्रंट ऑफ दी आई, वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। उसमें छोटे छोटे वायरस के इन्फिल्ट्रेट्स जमा हो जाते हैं, और उसकी वजह से कई कई बार पेशेंट्स को ब्लरिंग ऑफ विजन भी हो सकता है, या फोटोफोबिया, जिसमें आंखें प्रॉपरली खुल नहीं पाती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो आप तुरंत ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से संपर्क करें, ताकि आपको दूसरे तरह की दवाइयां भी एडवाइस कर सकें। तो इस केस में कई कई बार स्टेरॉइड्स का यूज भी करना पड़ सकता है। अगर आपकी कॉर्निया इन्वॉल्व हो गई है, तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, पर वो अंडर सुपरविजन ऑफ ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। मतलब आप अपने आप स्टेरॉइड्स नहीं ले
0: जी
1: सकते,
0: बिल्कुल
1: तो उसके और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इस केस में जरूरी है कि आप अपने आंखों के डॉक्टर से सलाह करें।
0: जी जैसे आप बता रही हैं कॉम्प्लिकेशंस में सेल्फ मेडिकेशन बहुत हार्मफुल भी हो सकती है, लेकिन क्या कोई पर्टिकुलर वर्ग है जो ज्यादा प्रोन होता है आई इन्फेक्शंस के और आई फ्लू के, या जैसे किसी को कोमॉर्बिडिटीज हैं या वृद्धजन हैं, बच्चे हैं, या कोई वर्क प्लेस पे ऐसी चीज होती है जो उसको बढ़ावा देती है?
1: देखिए, मेनली तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, एल्डरली पीपल भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। हाँ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज अगर कोई होता है, तो उसमें सिम्टम्स और साइंस ज्यादा होते हैं। पर बेसिकली ये क्योंकि एक संक्रामक रोग है,
0: जी
1: इसीलिए क्राउडेड प्लेस में, और अगर आपके ऑफिस में या घर में सबको हुआ है, तो आपको चांसेस ज्यादा होते हैं होने के। तो इसीलिए किसी को भी ये हो सकता है। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो आपको होने के पूरे पूरे चांसेस हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बोला शुरुआत में या माइल्ड अगर किसी को होता है तो उसे जरूरत नहीं है डॉक्टर को दिखाने की, अपने आप भी ठीक हो सकता है, तो कुछ घरेलू उपचार है कोई जो करा जा सकता है? एक तो आपने बताया कि ठंडे पानी की सेक की जा सकती है, थोड़ा तो आपने बताया इस पर, आप थोड़ा सा और बताएं अगर विस्तृत जानकारी
1: घरेलू
0: देना चाहें।
1: उपचार मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपने फ्रीक्वेंटली आंखों को थोड़ा जो डिस्चार्ज आता है या कीचड़ आता है, उसको फ्रीक्वेंटली क्लीन करते रहिए। और ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स ओवर द काउंटर केमिस्ट की शॉप में मिल जाती है, जैसे टीयर आई ड्रॉप्स या किसी भी तरह की ल्यूब्रिकेटिंग, वो आप अपनी आंखों में डाल सकते हैं। पर मैं और कोई घरेलू उपचार, जैसे प्याज का रस या कुछ और इस तरह की कोई भी चीज रिकमेंड नहीं करूंगी।
0: जी
1: आप सिर्फ अपनी आंखों को प्रॉपरली वॉश करते रहिए और ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालते
0: जी
1: रहिए।
0: एक बहुत सामान्य सा प्रश्न होता है डॉक्टर साहब, हम जब भी बात करते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, कि डाइट का बहुत महत्व होता है, क्या इस केस में भी डाइट का कोई महत्व है आई फ्लू के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो?
1: जी, क्योंकि

0: एसोसिएटेड होता है वायरल इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, फीवर भी इसके साथ साथ हो सकता है, या ये वायरल इन्फेक्शन जब आपको हुआ है, फ्लू हुआ है, तो इसके साथ साथ आपको आई फ्लू भी हो सकता है. तो जनरल हेल्थ के लिए न्यूट्रिशियस डाइट, विटामिन्स, मिनरल्स, मतलब आपको अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए ये सब चीजें तो लेनी ही चाहिए. और स्पेशली जब आप बीमार हैं, जब आपको वायरल इन्फेक्शन है, तो आप मल्टी विटामिन्स ले सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं. बट डायरेक्टली अगर सिर्फ आई फ्लू हुआ है तो मतलब हेल्थ एनीवे ठीक होनी चाहिए, पर उससे डायरेक्टली ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है. तब आपको आई से रिलेटेड प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है.
1: तो निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को समझ में आ गया होगा कि आई फ्लू से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बचाव ही सबसे इम्पोर्टेंट है. आपको बचना है और किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं आना है जिसको ऑलरेडी आई फ्लू हुआ है, और इसके कारण और लक्षणों को पहचान कर जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलना है, जिससे कि किसी भी तरह की जटिलता से बचा जा सके. हम चलें इससे पहले डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि श्रोताओं को कुछ टिप्स आप जरूर दें कि कैसे अपने आंखों को स्वस्थ रखें और आई फ्लू से बचें.
0: तो आंखों को स्वस्थ रखने का एक ही तरीका है कि अगर आपके ऑफिस में या आपके काम करने की जगह पे लोगों को कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस लीजिए, उस जगह पे जाने से बचिए, और अपने हाथों को बार बार वॉश करते रहिए. और अपने हाथों को विदाउट वॉश करे कभी भी आंखों को रब ना करें, आंखों के पास हाथ ना लगाएं. आई थिंक अगर आप ये प्रिकॉशंस लेते हैं तो आप कंजंक्टिवाइटिस से बच सकते हैं. और जो कंजंक्टिवाइटिस से संक्रमित है उनको आप एडवाइस करें कि वो थोड़ा डार्क ग्लासेस पहन सकते हैं, वो भी अपने हाथों को बार बार वॉश करें, और नॉन इन्फेक्टेड लोगों के पास ना जाएं. और बेहतर होगा कि वो अपने घर में ही कुछ दिन आराम करें, अपने ऑफिस ना जाएं.
1: जी, तो जिससे कि बाकी लोगों को
0: ये इन्फेक्शन ना हो.
1: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने आई फ्लू के संबंध में डॉक्टर साहब हमारे साथ साझा करी. हमारे साथ स्टूडियो में रही डॉक्टर सुनीता दुबे, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ है, और आज हमने विस्तृत तौर पर डॉक्टर साहब से जाना कि आई फ्लू के क्या कारण होते हैं, लक्षण, और कैसे इससे बचा जा सकता है. आप हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में रहीं और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं. धन्यवाद. आई फ्लू, कारण, लक्षण और बचाव. अभी आप इस विषय पर डॉक्टर सुनीता दुबे, नेत्र रोग विशेषज्ञ से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे. आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल. दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? इस कार्यक्रम में और आप क्या सुनना चाहते हैं? आप हमें लिख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, हमारे कार्यक्रम में कोई सुझाव देना चाहें, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें, तो आप हमें मेल कर सकते हैं. नोट कर लीजिए हमारी मेल आईडी healthairdaily@gmail.com. इसके अलावा भी अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं, तो हमें अवश्य लिखिए. फिर मिलेंगे अगली बार. तब तक के लिए स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार.
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत.

0: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती आकाश।
2: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
3: ये मैं प्रदीप कुमार मुखर्जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिकी में सेवानिवृत्त प्रोफेसर हूँ। भारत में विंध्या, सतपुड़ा से लेकर पश्चिमी और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली पर्वत श्रृंखला न केवल भारत बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। लगभग 2 से 2.5 अरब वर्ष पुरानी इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग यानी प्रोटेरोजोइक काल में प्राचीन विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के कारण हुआ था। यह समय की बात है जब पृथ्वी पर महाद्वीप आकार ले रहे थे। अरावली पर्वत श्रृंखला हिमालय से भी कई अरब वर्ष पुरानी है। गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा से गुजरती हुई यह पर्वत श्रृंखला दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। असल में अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 4 राज्यों के कुल 37 जिलों में फैली है। इन पहाड़ियों का सबसे अधिक लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में है। इन 37 जिलों में 11 जिले राजस्थान, 7 जिले हरियाणा, 5 जिले गुजरात और 4 जिले दिल्ली में हैं। दिल्ली में 4 जिले रिज क्षेत्र में आते हैं जो दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के सिरोहा जिले में माउंट आबू में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पहाड़ियों की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। अरावली असल में संस्कृत के आरा और वली शब्दों से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है चोटियों की श्रृंखला। राजस्थान की स्थानीय भाषा में अरावली को आड़ा वाली भी कहते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यहाँ बहुमूल्य खनिजों का भंडार है, साथ ही ये पर्वत श्रृंखला जैव विविधता और पारिस्थितिकी का अद्भुत संगम है। लेकिन पिछले काफी समय से ही अवैध खनन और निर्माण एवं शहरीकरण संबंधी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप इसके अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे। वैसे तो विगत काल में भी अरावली को लेकर कई कानूनी विवाद रहे हैं, लेकिन बीते वर्ष में 20 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर अरावली की इस परिभाषा को स्वीकार करते हुए अपना फैसला सुनाया कि जमीन से कम 100 मीटर ऊंचे हिस्से को ही अरावली पहाड़ियों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। लेकिन इस फैसले ने पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों में घोर असंतोष को जन्म दिया। पर्यावरणविदों का कहना था कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां केवल 10% मात्र हैं और केवल इन्हीं पहाड़ियों को कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। अरावली की 90% पहाड़ियां कानूनी संरक्षण से बाहर होने के कारण खनन के लिए खुल जाएंगी। पर्यावरणविदों की मुख्य चिंता ये थी कि अवैध खनन के कारण अरावली की पहाड़ियां कमजोर पड़ जाएंगी। पर्यावरणविदों एवं स्थानीय लोगों के असंतोष और विरोध के फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 के अपने फैसले पर 29 दिसंबर 2025 को रोक लगा दी तथा 21 जनवरी 2026 को दोबारा सुनवाई के लिए कोर्ट ने नोटिस जारी किया। उस दिन न्यायालय ने 29 दिसंबर 2025 के अपने अंतरिम आदेश को आगे करते हुए दोहराया कि अवैध खनन से अरावली की अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है। उल्लेखनीय है कि ग्रेट ग्रीन वॉल के नाम से जाने जाने वाली अरावली जीवन रक्षक पर्वत श्रृंखला है जो थार मरुस्थल की रेत को उत्तर भारत में फैलने से रोकने वाली प्राकृतिक हरित दीवार की तरह काम करती है। बिना अरावली के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली ज्यादा शुष्क होते। ये मानसूनी हवाओं को प्रभावित कर वर्षा बढ़ाती है। इसके अलावा ये पर्वत श्रृंखला भौमजल पुनर्भरण, जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय जलवायु संरक्षण में महती भूमिका निभाती है, जिसका प्रभाव केवल पहाड़ियों तक ही सीमित न रहकर समस्त उत्तर भारत की जलवायु, जल सुरक्षा और जीवन गुणवत्ता पर भी गुणात्मक रूप से पड़ता है। अरावली की पहाड़ियाँ अनेक मुख्य नदियों जैसे लूणी, बनास, साहिबी और साबरमती का उद्गम स्थल है। ये नदियाँ कृषि और पेयजल के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक रूप से अरावली जल चक्र में मदद करती है। वर्षा का जल इसकी चट्टानों से रिसता है और भौम जल में परिवर्तित होता है। एक तरह से अरावली प्राकृतिक स्पॉन्ज जैसी है जो वर्षा जल को जमीन के नीचे भेजती है। अरावली का आर्थिक महत्व भी है क्योंकि खनिजों से भरपूर है। यहाँ जस्ता, सीसा, तांबा, चांदी जैसी धातुएं, द सैंडस्टोन, चूना पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट आदि प्रचुर परिमाण में पाए जाते हैं। अरावली में जैव विविधता और पारिस्थितिकी का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ पेड़ पौधों और जीव जंतु

0: पशुओं की नाना प्रजातियां पाई जाती हैं। इस प्रकार अरावली एक पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट के रूप में भी काम करती है। यहाँ पेड़ पौधों की 300 से अधिक प्रजातियां, 200 से अधिक देसी और प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां तथा 100 से अधिक तितलियों की प्रजातियां उपलब्ध है। पेड़ों में धौ या धौक, जिसका वैज्ञानिक नाम एनोजीसस पेंडुला है, नीम, बबूल, ढाक यानी पलाश, बेर एवं गुग्गुल, आंवला जैसे औषधीय पौधे तथा जंतु जानवरों में तेंदुआ, लकड़बग्घा, नीलगाय, जंगली बिल्ली और चौसिंगा, मृग, सियार, लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा मॉनिटर लिजार्ड, नेवला, मकड़ी, मेंढक, सांप, बिच्छू आदि जीवों के समूह भी देखने को मिलते हैं। अरावली में अनेक अभयारण्य भी हैं जो जैव विविधता संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अरावली की पहाड़ियों को सन 1975 के बाद से बेतहाशा भूमि अधिग्रहण, अवैध खनन और गैर वाणिज्यिक कार्यों के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ा है। वर्ष 1975 और 2019 के बीच अरावली पहाड़ियों का लगभग 8% यानी 5,773 वर्ग किलोमीटर हिस्सा या तो लुप्त हो गया है या अपना पहाड़ी स्वरूप खोकर समतल हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली में खनन तेजी से हो रहे विकास के कारण इन पहाड़ियों में अब तक 12 दरारें खुल चुकी हैं, जो राजस्थान में अजमेर की मगरा पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू के खेतड़ी और माधोगढ़ होते हुए हरियाणा के महेंद्रगढ़ तक फैल गई है। इन दरारों की वजह से थार रेगिस्तान की धूल और रेत अब दिल्ली तक पहुंच रही है। इसके अलावा अधिक भौमजल के दोहन से हरियाणा और राजस्थान में जल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। विभिन्न गतिविधियों के कारण गुरुग्राम, फरीदाबाद की अरावली पहाड़ी, जिसके वन क्षेत्र में 10,000 एकड़ की क्षति हुई है, के जंगलों में पानी की कम उपलब्धता के कारण अब जंगली जानवर कम देखे जा रहे हैं। नतीजतन मृदा क्षरण के साथ जैव विविधता तथा वनस्पति आवरण में कमी आई है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा वन विभाग की ओर से वर्तमान वर्ष के आरंभ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT में रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार फरीदाबाद, गुरुग्राम और नू जिलों के अरावली के जंगलों में अवैध खनन और अतिक्रमण के कारण जल निकायों, प्राकृतिक झरनों और तालाबों को बहुत क्षति पहुंची है। जहां 2.5 दशक पहले तक 265 जल निकायों और झरनों आदि का अस्तित्व था, वहीं अब केवल 55 के करीब ही बचे। फरीदाबाद स्थित भड़कल झील के सब झरने अब केवल इतिहास के पन्नों में सिमट गए हैं। वहीं गुरुग्राम के भौंडसी और दमदमा क्षेत्र के झरने अब सूखे पत्थरों के ढेर में परिवर्तित हो गए हैं। सूरजकुंड के पास स्थित प्राचीन तालाब और झरने, जो कभी भौमजल स्तर को बनाए रखने में अपनी महती भूमिका निभाते थे, अवैध निर्माण की भेंट चढ़ चुके हैं। अवैध खनन और अतिक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित तो नूह का जिला बताया गया है। अरावली की पहाड़ियों पर अगर इसी तरह खतरा बना रहेगा तो इसका मरुस्थलीकरण प्रभाव भी तेज होगा तथा भूमिगत जल के पुनर्भरण होने की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। परिणाम स्वरूप जल संकट, प्रदूषण और तापमान तीनों में बढ़ोतरी होगी। इसका असर खेती, पानी, जलवायु, वन्य जीव और मानवों पर भी नकारात्मक रूप से पड़ेगा। अतः अरावली पर्वत श्रृंखला की उपयोगिता और महत्व को देखते हुए इसके संरक्षण तथा इसकी संपदा को उजड़ने और नष्ट होने से बचाने के प्रयास सक्रिय और बड़े पैमाने पर किए जाने चाहिए। क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि अरावली की बेजुबान पहाड़ियां अपने मूक क्रंदन से इंसानियत से गुहार लगा रही हैं कि हमें बचा लो? क्या इस बेजुबान पर्वत श्रृंखला का शोक भरा क्रंदन हमारे कानों में पड़ेगा? कभी एक हिंदी फिल्म में गाना सुनने को मिला था कि कभी कभी बेजुबान पर्वत हिलते हैं, पर्वतों के डोलने से दिल हिलते हैं। देखना ये है करावरी को लेकर दिल डोलते हैं या नहीं।
1: नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि झा है। आज की इस वार्ता में हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि हमारे भविष्य से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। विषय है हमारी प्राचीन संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण। भारत की संस्कृति सदैव प्रकृति के प्रति श्रद्धा, संवेदना और संरक्षण की भावना से ओतप्रोत रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही ये समझ लिया था कि मानव और प्रकृति का संबंध केवल उपयोग का नहीं बल्कि सह अस्तित्व का है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन दाता और पूजनीय माना गया है। हमारे पर्व और त्योहार भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। वट सावित्री, तुलसी विवाह, आमला नवमी, नाग पंचमी, छठ महापर्व और गंगा दशहरा जैसे अनेक पर्व प्रकृति के विभिन्न रूपों के प्रति हमारी आस्था और जिम्मेदारी को प्रकट करते हैं। भारतीय समाज में पीपल, बरगद, नीम और तुलसी जैसे वृक्षों की पूजा की परंपरा केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक वैज्ञानिक तरीका भी है। हमारे गाँव में तालाब, कुएं, बावरियां और वर्षा जल संचयन की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति कितने सजग थे। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जल संकट और जैव विविधता के क्षरण जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब भारत की प्राचीन

संस्कृति विश्व को एक नई दिशा दिखा सकती है। हमारे वेदों ने हजार वर्ष पहले ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के 12वें मंत्र में कहा भी गया है, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। अथर्ववेद के इसी सूक्त में कहा भी गया है कि यस्याम वृक्षा वानस्पत्याः ध्रुवा अस्ति तिष्ठन्ति विश्वः पृथिव्यम विश्वधायसम धृतामिच्छा वदामसि, अर्थात जिस पृथ्वी पर वृक्ष और वनस्पतियां जीवन को धारण करती है उस पृथ्वी की रक्षा और सम्मान करना चाहिए। ऋग्वेद में जल का महत्व बताते हुए कहा भी गया है, आपो ही तिष्ठा मयो भुवः, अर्थात हे जल तुम सुख और जीवन प्रदान करने वाले हो। यजुर्वेद में शांति मंत्र के माध्यम से कहा भी गया है, ओम।

0: शांति ही, अर्थात आकाश में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, औषधियों में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो और समस्त सृष्टि में शांति हो। हमारे उपनिषदों ने हजारों वर्ष पहले ही पर्यावरण संरक्षण का मूल मंत्र दे दिया था। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, अर्थात हमें बताता है कि संपूर्ण सृष्टि ईश्वर का स्वरूप है, इसीलिए हमें प्रकृति का उपभोग नहीं बल्कि उसका संरक्षण करना चाहिए। वही तेन तक्तेन भुंजिथा का संदेश है कि आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का उपयोग करें, लालच से नहीं। यहाँ आज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भारतीय स्वरूप है। उपनिषदों में पर्यावरण संरक्षण शब्द आधुनिक अर्थों में नहीं मिलता, लेकिन प्राकृतिक समस्त सृष्टि के प्रति सम्मान, संयमित उपभोग, सह अस्तित्व और सभी प्राणियों के कल्याण का गहरा संदेश दिया गया है। विशेष रूप से ईशावास्यो, तैतरीयी, छांदोग्य, बृहदारण्यक और कट उपनिषद में ऐसा विचार मिलते हैं जो पर्यावरण संरक्षण के दार्शनिक आधार माने जाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख उपनिषद और उनके संदेश दिए जा रहे हैं। जैसे ईशावास्य उपनिषद में सबसे पहला मंत्र में लिखा गया है, ईशावास्य मिदम सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत् तेन तक्तेन भुंजिथा मा गृधा कस्य स्विधनम्, अर्थात हम संपूर्ण जगत में जो कुछ भी है वह ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए त्याग और संयम की भावना से उसका उपभोग करो, किसी वस्तु पर लालच मत करो। इसका पर्यावरण संदेश देते हुए कहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन नहीं करना चाहिए। पृथ्वी के संसाधन सभी के हैं, आवश्यकता अनुसार उपभोग और संरक्षण की भारतीय जीवन दर्शन है। तैतरीय उपनिषद में पृथ्वी, जल, अन्न और प्राण के संबंध को स्पष्ट किया गया है। इसका प्रसिद्ध वाक्य भी है, अन्नम न निन घात अन्नम बहु कुर्वीत, अर्थात अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए तथा अन्न की अधिक से अधिक उत्पत्ति करनी चाहिए। इसी का पर्यावरण संदेश देते हुए कहते हैं, कृषि और प्रकृति का संरक्षण, खाद्य संसाधनों का सम्मान और प्राकृतिक संपदा का संरक्षण। छांदोग्य उपनिषद में कहा भी गया है, सर्व खलिविदम ब्रह्म, अर्थात यह संपूर्ण सृष्टि ही ब्रह्म है। इसका पर्यावरण संदेश देते हुए कहते हैं, यदि संपूर्ण प्रकृति ही ईश्वर का स्वरूप है तो वृक्ष, नदी, पर्वत और सभी जीवों का सम्मान हमारा धर्म है। बृहदारण्यक उपनिषद में सभी प्राणियों को साथ सह अस्तित्व और करुणा का संदेश दिया गया है। इसका प्रसिद्ध प्रार्थना के स्वरूप में कहा गया है, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमय। यद्यपि ये सीधे पर्यावरण पर नहीं, लेकिन सत्य, संतुलन और कल्याण पूर्व जीवन का संदेश देता है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। कठ उपनिषद में मनुष्य को संयम, आत्मनियंत्रण और संतुलित जीवन अपनाने की शिक्षा दी गई है। आज तेजी से बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जंगल की कटाई और जैव विविधता के संकट ने हमें एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इसका उत्तर हमारी प्राचीन संस्कृति में छुपा है। यदि हम प्रकृति के प्रति सम्मान, संयम और संरक्षण की भारतीय परंपरा को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, तो पर्यावरण की अनेक समस्याओं का समाधान संभव है। हमारे ऋषियों ने हजार वर्ष पहले ही संदेश दे दिया था कि प्रकृति का सम्मान ही मानव सभ्यता का सम्मान है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत और पुराणों में वृक्षों और वनों के महत्व का उल्लेख किया है। उनका एक प्रसिद्ध उक्ति भी है, दश कूप समावापी, दश वापी समो हृदय, दश हृदय समः पुत्रो, दश पुत्रो समः द्रुमः। अर्थ, दस कुओं के बराबर एक तालाब, दस तालाब के बराबर एक झील, दस झीलों के बराबर एक पुत्र और दस पुत्र के समान एक वृक्ष माना गया है। हम सभी छोटी छोटी आदतों से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, जल की बचत करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, स्वच्छता बनाए रखना और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, यही हमारी संस्कृति का संदेश भी है और समय की आवश्यकता भी।
1: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न।

0: होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती आकाश और अब समय हो गया है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का। कुछ ही पलों में सुनेंगे आपकी कार्यक्रम।

0: पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके हाजिर हां मैं बलविंदर। दिन दी शुरुआत एक वधिया विचार दे नाल। किसी ने कहा है कि जो मनुख हर रोज कुछ नवा सीखण दी कोशिश करदा है वो कदी भी पिछे नहीं रहिंदा। आओ जानदे हां अज दे प्रोग्राम दी तफसील। अज तुसी सुनोगे वार्ता जिसका विषय है वधदी वसों अते चुनौतियां। वार्ताकार होणगे डॉक्टर करमपाल सिंह। इस तो बाद सूफियाना कलाम भी सुनवाया जाएगा। पर सब तो पहला आज दे दिन विशेष बारे कुछ गल्ला। 11 जुलाई नू हर साल विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जांदा है। इस दिन नू संयुक्त राष्ट्र संगठन वालों साल 1999 विच शुरू किया गया सी। इस दा मुख उद्देश विश्व भर विच तेजी नाल वध रही जनसंख्या अते इस नाल जुड़ियां चुनौतियां बारे लोकां विच जागरूकता पैदा करना है। आज दुनिया दी जनसंख्या लगभग 8.2 बिलियन तो वध हो चुकी है। भारत विश्व दा सब तो वध आबादी वाला देश बन चुका है, जिस विच लगभग 1.44 बिलियन लोग वसते ने। इस वधदी जनसंख्या कारण भोजन, पानी, ऊर्जा, रोजगार ते सेहत सेवावां उत्ते बहुत वड्डा दबाव पै रहा है। संसाधना की घाट कारण वधदी आबादी कारण भोजन सुरक्षा अते साफ पानी की घाट वध रही है। वातावरण प्रदूषण की समस्या ने गंभीर रूप धार लिया है ते जलवायु तब्दीली तेज हो रही है। बेरोजगारी ते गरीबी विच इजाफा होया है। सेहत अते सिक्ख्या दियां सहूलतां घट रही ने। विश्व जनसंख्या दिवस ए चेते करांदा है कि जनसंख्या वधनी तां चाहीदी है पर इस नूं योजनाबद्ध ते टिकाऊ ढंग नाल वधाउणा चाहीदा है। देश भर विच इस दिन लोकां नूं जागरूक करन लई सैमीनार, वर्कशॉप्स ते रैलियां करवाईयां जांदियां ने। विश्व जनसंख्या दिवस ए याद दिवाउण वाला दिन है कि असी इस धरती उत्ते इक्को परिवार हां ते सानूं सब नूं मिल के इस नूं बचाउणा होएगा। जनसंख्या वधाउण तों पहलां उस नूं पालण दी योगता वधाओ। योजनाबद्ध जनसंख्या ही टिकाऊ विकास ते खुशहाल भविख दी कुंजी है। ते इसे नाल संबंधित वार्ता आओ सुणदे हां जिसका विशा है वधदी वसों अते चुनौतियां। वार्ताकार ने डॉक्टर करमपाल सिंह।
1: वसो तो भाव किसी भी देश जा खेतर विच रहन वाले लोकां दी कुल गिनती है। मनुखी वसों ही किसी राष्ट्र दी आर्थिक, समाजिक अते सभ्याचारक तरक्की दा आधार हुंदी है। मनुख अपने हुनर, मेहनत अते बुद्धि नाल देश दी उन्नति विच योगदान पाउंदे हन, जिवें कि उद्योग, खेतीबाड़ी, सिक्ख्या, विज्ञान अते टेक्नोलॉजी आदि सब मनुखी स्रोतां उत्ते ही निर्भर करदे हन। इस लई वसों अपने आप विच इक कीमती संपत्ति है, पर जदों इह असंतुलित हो जांदी है तां समस्यावां पैदा होण लग जांदियां हन। इस करके वसों किसे भी देश दी ताकत भी हो सकती है अते बोझ भी हो सकती है। इह इस गल ते निर्भर करदा है कि उसदा प्रबंधन किवें कीता जा रहा है। जे वसों नूं सही दिशा विच वरत्या जावे तां इह विकास दी माध्यम बन सकती है, पर जे इह बेलगाम हो जावे तां इह गरीबी, बेरोजगारी अते वातावरणी संकटां दा कारण बन जांदी है। वधदी वसों अज दे समें दी इक गंभीर समस्या है। इस दे पिछे कई समाजिक, आर्थिक अते सेहत नाल जुड़े होए कारण हन। इह समस्या एक दिन विच नहीं बनी, सगों लंबे समय तो वख-वख कारणां करके वसों विच तेजी नाल वाधा हो रहा है। सब तो पहला मौत दर विच कमी वधदी वसों दा एक

0: ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेंदे हन। तीजा कारण समाजिक अते धार्मिक धारनावां हन। कुछ समाजां विच इह सोच पाई जांदी है कि वध बच्चे परिवार की ताकत हुंदे हन जां पुत्तर की इच्छा कारण परिवार वड्डा हो जांदा है। यह सोच भी वसों वधाउण विच योगदान पाउंदी है। चौथा कारण गरीबी है। गरीब परिवारां विच अक्सर सिक्ख्या की कमी हुंदी है अते लोग सोचते हैं कि वध बच्चे कम करन अते आमदन वधाउण विच मदद कर सकते हैं। इस करके परिवारां दा आकार फैल जांदा है। इस तो इलावा परिवार नियोजन दीआं सहूलतां तक घट पहुँच भी एक वड्डा कारण है। कई पिंडां अते पछड़े इलाकियां विच लोकां नूं सिहत सहूलतां अते जागरूकता प्रोग्रामां दी सही जानकारी नहीं मिलदी। अज दे समें विच विश्व विच वसों दी तेजी नाल वध रही रफ्तार खासकर विकासशील देशां विच इह समस्या होर भी गंभीर रूप लै रही है। शहरां विच लोकां दी भीड़ वध रही है अते पिंडां तों शहरां वल हो रहे विस्थापन ने इस संकट नूं होर जटिल बना दिता है। स्रोत सीमित हन पर उन्हां दी मंग लगातार वध रही है। इस असंतुलन कारण समाजिक अते आर्थिक दबाव वध रहा है। वधदी वसों नाल कई गंभीर चुनौतियां सामने आ रही हन, जिमें कि समाजिक अर्थव्यवस्था अते वातावरण तिन्हां उत्ते बहुत माड़ा असर पाउंदियां हन। सब तो पहली अते महत्वपूर्ण चुनौती बेरोज़गारी है। जिमें जिमें लोकां दी गिनती वधदी है तिवें तिवें नौकरियां दी मंग भी वधदी है, पर रुजगार दे मौके उसे अनुपात विच नहीं वधदे। इस नाल नौजवानां विच निराशा अते आर्थिक असंतुलन पैदा हुंदा है। दूजी वड्डी चुनौती गरीबी है। जदों परिवारां दी आमदन घट अते मैंबर ज़्यादा होण तां हर व्यक्ति दीआं बुनियादी लोड़ां पूरियां करनियां मुश्किल हो जांदा है, जिस नाल जीवन पद्धर विच निघार आउंदा है अते समाज विच असमानता वधदी है। तीजी वड्डी चुनौती सिक्ख्या उत्ते वध रहे दबाव दी है। जिवें कि स्कूलां अते कालजां विच विद्यार्थियों की गिनती वध रही है, पर अध्यापकां अते स्रोतां दी सीमित उपलब्धता होण कारण गुणवत्ता वाली सिक्ख्या तों विद्यार्थी वांझे रह जांदे हन। इस नाल ही सिहत सेवावां उत्ते भी वधदी वसों दे असर नूं देखिया जा सकता है। जिवें कि हस्पतालां विच मरीजां दी वधदी गिनती डाक्टरी सहूलतां उत्ते दबाव पैदा करदी है अते समें सिर इलाज ना मिलन कारण कई वारी स्थिति गंभीर हो जांदी है। पानी, जमीन, जंगल अते ऊर्जा वर्गे स्रोत भी सीमित मात्रा विच उपलब्ध हन अते वधदी हुई वसों कुदरती स्रोतां उत्ते भी दबाव पैदा कर रही है, जिवें कि पानी की कमी, जंगलों की कटाई, वधदे वाहन, वातावरण प्रदूषण भी वध रहे हन। पिंडां तों लोक शहरां वल नूं सिक्ख्या, रोज़गार अते चंगे जीवन म्यार दी आस विच विस्थापित हो रहे हन, जिस नाल शहर विच ट्रैफिक जाम, घरां दी कमी अते बुनियादी सहूलतां उत्ते दबाव वध रहा है। इउं वधदी वसों इक समस्या वजों देखी जा रही है, पर जे इस दा सही प्रबंधन कीता जा सके तां इह इक वड्डी ताकत अते विकास दा साधन बन सकदी है। जिवें कि लोकां नूं सही सिक्ख्या, हुनर मुहैया करवा के इस दा वड्डी मजदूर शक्ति वजों लाभ लिया जा सकता है अते इस दे नाल ही उद्योग, खेतीबाड़ी, निर्माण अते सेवा खेत्र विच भी बहुत वड्डा विकास दर्ज किया जा सकता है। एक कहा जा सकता है कि वधदी वसों विश्व पद्धरी समस्यावां पैदा कर रही है, उत्थे ही वधदी वसों एक वड्डा खपतकार बाजार, नौजवानी की ताकत आदि राही देश दे विकास विच महत्वपूर्ण योगदान भी पा रही है। वधदी वसों तो पैदा हुई चुनौतियों नाल निजिठण लई विश्व पद्धरी आर्थिक अते राजनीतिक संस्थावां नूं अगे आ के विश्वव्यापी नीतियां नूं उलीकण दी वड्डी लोड़ है अते उत्थे ही नीतियां नूं उसारू ढंग नाल लागू करवाउण दी एक वड्डी जिम्मेवारी है। समाजिक संस्थावां भी वधदी वसों दीआं चुनौतियां दा मुकाबला करन विच अहम योगदान पा सकदियां हन, जिवें कि समाज विच जागरूकता, सिक्ख्या दा विस्तार अते लिंगक समानता दे प्रचार राहीं वधदी वसों नाल नजिठिया जा सकता है। सो इस तरीके योजनाबद्ध प्रबंधन राही वधदी वसों की चुनौती नूं एक वड्डी ताकत विच बदलिया जा सकता है।
1: तुसी सुन रहे सी वार्ता जिसका विषय सी वधदी वसों अते चुनौतियां। वार्ताकार सन डॉक्टर करमपाल सिंह। ते आओ हुण सुनदे हां पूरन चंद वडाली ते साथियां दी आवाज विच ए सुफियाना कलाम।

सांवला ना मार नैणा दे तीर। पूरन चंद वडाली ते साथियां दी आवाज विच गुलाम फरीद दी लिखी ए काफी हुणे तुसी सुन रहे सी। ते आओ हुण सुनदे हां सलीम इकबाल दी आवाज विच बुल्ले शाह दी ए काफी।

वाह सोनिया तेरी चाल अजायब लटका नाल चलेंदे हो। सलीम इकबाल की आवाज़ विच बुल्ले शाह दी काफ़ी हुणी तुसी सुन रहे सी। ते आओ जांदे जांदे सुनदे हाँ आबिदा परवीन की आवाज़ विच बुल्ले शाह दा एक कलाम।

इश्क नचाया करके थैया थैया। आबिदा परवीन दी आवाज विच बुल्ले शाह दा एक कलाम हुणे तुसी सुन रहे सी। आस करदे हां कि अज दा पंजाबी प्रोग्राम तुहानू चंगा लग्या होवेगा। इस दे नाल ही प्रोग्राम दा वेला हुण खत्म हुंदा है। बलविंदर नू इजाजत दिओ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी थी महक, और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सबसे पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय

0: प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: न्यूजीलैंड की इनोवेशन, एंटरप्राइज और फ्यूचर ओरिएंटेड सोच का प्रतीक है। भारत की ओर से मैं 140 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस और एम्बिशंस का संदेश लेकर आया। फ्रेंड, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। यह केवल एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन नहीं है, यह हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्रगिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी जाएंगे। इस दौरान श्री राधाकृष्णन बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन पिछले महीने हुए युद्ध विराम समाप्त हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा दिन में आज राजधानी दिल्ली में बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. India and New Zealand today elevated their ties to a strategic partnership and set a 5-year target to double their annual bilateral trade in goods and services to 35,000 crore rupees by 2030, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों सुबह के 10:10 स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक हो चुके हैं और अब ये जो पसंदीदा कार्यक्रम है आपका और मेरा ये शुरू हो चुका है। अब आज ट्विस्ट सिर्फ इतना सा है कि आज रविवार की जगह शनिवार को मुलाकात हो रही है। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त सुषमा और आज भी ढेर सारी बातें आपसे करूँगी। उम्मीद है कि आप इस वक्त रेडियो सेट के साथ बिल्कुल बने हुए हैं, सुन रहे हैं हमारा शो लगातार, क्योंकि 24/7 हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम, फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम और अलग अलग तरह के तराने, बच्चों के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाओं के शहरी महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम। और फिलहाल अब समय हो चुका है हमारे और आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और अपनी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। यूं ही बने रहे इस कार्यक्रम में पूरे 11 बजे तक।

ये बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे कोई मिल गया फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। और दोस्तों हमेशा की तरह हम आज भी आपसे पूछेंगे एक सवाल और उम्मीद करेंगे कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहेंगे और देंगे अपना जवाब। जी तो जवाब सिर्फ इतना सा जैसे जादू। आज सोचा क्यों ना आपसे ये पूछूं कि आपका ऐसा कौन सा रिश्ता या ऐसी कौन सी चीज़ है जब आप बहुत टेंशन में होते हैं या कुछ तनाव होता है या कुछ परेशानी होती है, आपको लगता है कि बस इससे बात की जाए या ये काम किया जाए इससे जादू हो जाएगा, छू मंत्र हो जाएगी मेरी ये टेंशन और मुझे दिमागी तौर पे तो शांति मिलेगी ही, साथ ही साथ चीज़ का हल भी मिल जाएगा, जो भी परेशानी है उसका हल भी मिल जाएगा। अगर इस तरह का साथी, आपका ऐसा दोस्त, ऐसा खास इंसान या कोई और बात जो आपको आपके दिल के करीब है और वो आपके लिए जादू का काम करता है, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं हमारे सभी श्रोता हमें ज़रूर अपने आंसर भेजेंगे। वैसे मैं देख रही हूँ स्क्रीन पर बहुत सारी मेल्स आ चुकी हैं, तो साथियों मेल्स तो मैं अब आपकी इस कार्यक्रम के शुरू होते जब 10:10 पर कार्यक्रम शुरू है तभी से लेना शुरू करूँगी। उससे पहले मुझे पता है बहुत सारी मेल्स आ चुकी हैं और इसके लिए आप मुझसे नाराज़गी भी रखेंगे, बट आप साथी है ना, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो आप इस सवाल का जवाब जरूर दें और बने रहें हमारे इस कार्यक्रम के साथ। और एक अगला गीत बहुत ही खूबसूरत है लता मंगेशकर जी की आवाज में। हाँ गीत आपको लग सकता है कि कितने अजीब हैं ये रिश्ते, जी हाँ पेजरी फिल्म से गीत है। गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है और देखा जाए तो इसका एक एक शब्द हकीकत को बयान करता है, लेकिन फिर भी हम ऐसे ही बहुत सारे रिश्तों से घिरे रहते हैं और इन्हीं रिश्तों के साथ हम अपने जीवन को भी आगे बढ़ाते हैं। तो सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को। और आपको बता दें जिन श्रोताओं ने थोड़ा लेट ट्विन इन किया है हमारे इस कार्यक्रम को, तो उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम एम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम आपका अपना मनपसंद, आपकी पसंद।

0: रिश्तों के साथ हम घिरे हुए हैं और इसी में हमें जीना भी है और इन रिश्तों की डोर में ही हमें आगे भी बढ़ना है। तो दोस्तों, आप यूं ही बने रहिए हमारे इस कार्यक्रम के साथ। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो इस छोटे से ब्रेक के बाद दोस्तों, अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मेल्स हमारे पास आ चुकी हैं और अब हम कुछ मेल्स अपने साथियों की शामिल भी करेंगे। तो थोड़ा सा आपको हमारे इस स्टूडियो में थोड़ी हलचल दिखाई दे रही होगी, आवाज़ कुछ, तो भाई कार्यक्रम चल रहा है, हमारे और भी बहुत सारे साथी हैं, कुछ साथी हमारे पास यहीं पर मिलने भी आ जाते हैं। तो फिलहाल अब जो पहली मेल हम ले रहे हैं वो है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीट छावड़ा। तो ये लिखते हैं कि जब भी मेरे जीवन में कोई परेशानी होती है तो मैं डायरेक्ट प्रभु परमात्मा से बात करता हूँ, वो भी मेडिटेशन के माध्यम से, फिर सब जादू की तरह ठीक हो जाता है। और ये हम जानते ही हैं कि ये हमारे नियमित श्रोता हैं, तो बस हम यही कहेंगे कि आप अपनी दुआओं में हमें याद रखें। और इन्होंने बहुत ही अच्छे से इन्होंने कहा कि किसी भी गीत में हमें शामिल न रखें। और अगला मेल हम अब लेंगे जो हमारे अगले साथी हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मेल्स आ रही हैं। ये है हरजिंदर सिंह भाटिया जी का संदेश और इन्होंने कहाँ से भेजा ये भी हम पढ़ेंगे ज़रूर। ये लिखते हैं कि मैं जब भी परेशान होता हूँ तो मैं गुरुद्वारा चला जाता हूँ और रब से अरदास करता हूं और मेरी सारी परेशानी तुरंत गायब हो जाती है। और इन्होंने जमशेदपुर से स्टेशन रोड से ये संदेश हम तक पहुंचाया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया के साथ। और अगला संदेश हम ले रहे हैं, ये है प्रोग्राम, ये लिखते हैं हमारे इस कार्यक्रम के लिए कि प्रोग्राम बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा लग रहा है। और कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाहजहां बेगम ने ये संदेश हम तक पहुँचाया है। और अगला जो गीत है साथियों, वो भी उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आए। और भी मेल्स हम शामिल कर रहे हैं, बस पहले आप सुने ये छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक।

जी हाँ, ये म्यूजिकल ब्रेक जो है ये आपको सुनने को मिलेगा। कुछ एक संदेश हम चाहते हैं कि और शामिल कर लें। तो जब हमें कोई टेंशन होती है और अपने दोस्त रेडियो से तो मैं जुड़ जाता हूँ, जो कुछ ही पल में टेंशन को खत्म कर देता है। हुआ ना ये जादू, जिससे हमारे जीवन की समस्या का बहुत हद तक हल मिल जाता है। और ये लिख रहे हैं लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास माणिकपुरी, राजा दास माणिकपुरी और रानी माणिकपुरी। तो भैया, इससे अच्छा और साथी कौन हो सकता है? वैसे तो सबके अच्छे अच्छे और भी साथी हैं, लेकिन रेडियो को अगर अपना साथी बना लेते हैं आप, तो इससे अच्छी हमारे लिए कोई खुशकिस्मती नहीं होगी कि आप हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे इस रेडियो को, अलग अलग शोज़ को, आप प्रोग्राम्स को सुनते हैं और आपको सारे कार्यक्रम भी पसंद आते हैं और अच्छा लगता है जब आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। और देखिए, आज ही का सवाल जो हमने पूछा था कि आपका ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई दोस्त, ऐसा मित्र, ऐसा घर का कोई सदस्य या पशु पक्षी, वन, पृथ्वी, जल, वायु, कहते इतने सारे तत्व हैं यहाँ पर, और इसके अलावा भी बहुत सारी सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं। क्या उस समय करना पसंद करते हैं हम जब हमें कोई समस्या होती है, या किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं, पशु सेवा कर लेते हैं, पक्षियों को दाना खिला लेते हैं, कहीं बाहर ही विचरण कर आ जाते हैं, व्यायाम कर लेते हैं, घूम लेते हैं, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जब हम परेशानी में होते हैं और वो लगता है कि यही हमारा सच्चा मित्र है, यही हमारा अच्छा काम है जो हमें इस तनाव से राहत दिलाता है। तो अगला जो संदेश भेजा है ये है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल कुमार, अजित कुमार और आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमदा ग्राम सुखरी कला से भी इन्होंने अपने साथ ही शकुन जंघेल, आरुषि और ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल के साथ ये संदेश हम तक पहुंचाया है। अपनी पसंद की फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही लिखते हैं कि टेंशन दुख इज इक्वल टू जीवन में आगे सुधार करने के लिए आते हैं और उसे टेंशन, उसे दुख से हमें सीख मिलती है। एक प्रकार का ये शारीरिक व्यायाम होते हैं। तो आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन इस स्थिति को सब कोई हैंडल नहीं कर पाता और इस स्थिति को कैसे हैंडल कर सकें ये बहुत मुश्किल होता है। और अगला जो साथी, जो अगला संदेश है ये है ऊपरकोट मोहल्ला चुखंटी बुलंदशहर से। ये हमारे साथी हैं मोहम्मद सईद आबासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आबासी परिवार के सभी सदस्यों ने ये संदेश हम तक पहुंचाया। और ये लिखते हैं कि अभिनेता गौरव कुमार यानी मनोज तुली जी का आज जन्मदिन है, तो जिनकी पहली फिल्म थी लव स्टोरी, सभी जानते हैं हम राजेंद्र कुमार जी के बेटे थे, तो इन्होंने उन्हीं की फिल्म से का एक गीत सुनना चाहा है। कोशिश करेंगे आपकी पसंद का गीत हम जरूर सुनवाएं आवासी जी। और अब हम सुन लेते हैं जो गीत हमने आपको कहा था कि एक म्यूजिकल ब्रेक आपको सुनने को मिलेगा, इस गीत को भी। लेकिन हाँ, इस गीत के साथ साथ जब तक ये गीत आप सुनना शुरू करेंगे, आपको हम बता दें कि एक और संदेश हमें मिल चुका है और ये है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी।

हाँ, ऐसा कोई साथी जिसके पास आप उस वक्त जा सके, दिल खोलकर बात कर सके और अपने दिल का पूरा हाल जब आप बयां करें तो आपको एक अच्छा सा महसूस हो, आपको लगे कि बस जो मेरी परेशानी, वो जो मेरी टेंशन थी, वो सारी छू मंतर हो गई है। अगर इस तरह की कोई आपकी साथी है, भैया हमारी बहनों, हमारी जो साथी हैं महिला मित्र, उनसे भी तो गुजारिश है, वो भी तो अपना संदेश हम तक पहुँचाए। हमारी, हम देख रहे हैं कि पुरुष जो हमारे साथी हैं, भाई मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि क्या महिलाएं घर के किचन के काम ही करती रहती हैं या फिर हमारे कार्यक्रम को भी ध्यान से सुनती हैं या फिर उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं भी देती हैं। तो अभी तक तो जितने भी संदेश पहुँचे हैं वो मैं देख रही हूँ, सारे हमारे जो पुरुष साथी हैं उन्हीं के आ रहे हैं। मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन

मैं चाहती हूँ हमारी महिला मित्र भी आगे आए। और देखिए नीटू मल्होत्रा जी का आ गया है एक संदेश हमारे पास, तो उम्मीद करती हूँ कि हमारी और साथी हैं वो भी जागेंगी और अपने दिल की भड़ास जरूर निकालेंगी। वो भी बताएंगी कि भाई वो क्या करती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस तो महिलाएं झेलती हैं ना, उनके ऊपर बच्चे हैं, घर के बड़े बूढ़े, और कई बार क्या होता है उन्हें फ्रस्ट्रेशन इस बात की होती है, इस बात की भी हो जाती है कि भाई अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही है।

और अब जो संदेश मैं देख रही हूँ ये आया है सतीश अनेजा जी का। ये लिखते हैं कि विषय आज का बहुत अच्छा है और ये बड़े अच्छे से इन्होंने अपने इस विषय पर अपनी बात लिखी है। ये लिखते हैं कि जब कोई परेशानी या कोई ऐसी बात हो जाए तो रिश्तेदार मित्रों की तरफ ध्यान तो जाता है। सोचता हूँ हर लगभग इंसान किसी न किसी रूप में हल्का तनाव में होता ही है। हम परमात्मा के नतमस्तक हो जाते हैं और उसको कहते हैं ये जीवन आपने दिया है, सांसें भी आपकी और ये जो परेशानी है ये भी आपकी और आप ही संभालिए। हम तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करेंगे, परेशान क्यों। यकीनन मन को सुकून और पावर मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह का अगर मेडिटेशन, इस तरह का अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो इससे अच्छी तो कोई और बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन हाँ, विश्वास सभी ऐसा नहीं कर पाते। और दोस्तों को बता दें कि आप सुने हमारा प्रोग्राम आपकी पसंद अपनी दोस्त सुषमा के साथ। है तो आज शनिवार लेकिन मुलाकात हो रही है आपकी आज सुषमा के साथ ही। और गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से हमें स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर सिंह, गुरलाल और अविराज सिंह, इन सब ने हमें अपना संदेश भेजा लेकिन इन्होंने इस विषय पर कुछ अपनी राय नहीं दी। बस इतना लिखा कि आप इस कार्यक्रम में हमें जरूर शामिल करें, हमारे नाम जरूर आप पढ़ें। तो लीजिए, आपका संदेश हम शामिल कर चुके हैं। हरमन जी ने ये है हीरामन शेंडे किशोर नगर अमरावती से। इन्होंने लिखा है कि जब भी मैं टेंशन में होता हूं तो मेरी पत्नी यानी मेरी अर्धांगिनी सामने आकर मुस्कुरा देती है तो सारी मेरी टेंशन दूर हो जाती है। ये तो बहुत ही आसान सा और अच्छा सा उपाय है। आप जिनकी पत्नी नहीं है वो क्या करते होंगे भाई। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी पत्नी के का विश्वास जीतते हैं, उन्हें भी आपके ऊपर विश्वास है। और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि एक दूसरे के आप मतलब कहते ना, एक मुस्कुरान से ही, एक मुस्कान से ही आपकी टेंशन छूमंतर हो जाती है। तो इससे कोई और बड़ी बात नहीं हो सकती। यही है रिश्तों में आपसे विश्वास, आपसी तालमेल। और इसी की कमी है आजकल के युवाओं में, आजकल के जेनरेशन में, क्योंकि वो रिश्तों में विश्वास कम करते हैं और एआई के और अपने दोस्तों के चक्कर में ज्यादा पड़ते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो भटक भी जाते हैं। तो भटकना नहीं है बल्कि ऐसे साथी को देखना है जो आपके लिए जादू का काम करे। वो आपकी बुक भी हो सकती है जिसको आप पढ़ें, आप कोई रीडिंग करते हो, आप कुछ अच्छा देखना पसंद करते हो, तो वो भी आपके लिए जादू का काम कर सकता है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे पास संदेश आया है यशमीत, यशो, निरंजन सिंह, सौम्य और अविरल सिंह का। ये कहते हैं कि कोई भी गीत सुनवा दें। दारा सिंह जी ने भी संदेश भेजा है चौटाला हरियाणा से। इन्होंने लिखा है, वैसे शायद इन्होंने चौटाला परिवार के सदस्यों के नाम लिखे हैं, लेकिन ये लिखते हैं कि दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा और ये क्या लिखते हैं कि अच्छा, इन्होंने अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। और साथ ही ये लिखते हैं कि जब कभी भी तनाव हो तो मैं खेत चला जाता हूँ और मेरे खेत में शीशम का पेड़ है बड़ा सा, उसकी छाया में बैठ जाता हूँ और मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर चाय बना लेता हूँ, पुराने गाने सुनता हूँ, फिर देर शाम को घर की तरफ चल देता हूँ। ऐसा मैंने सिर्फ 3-4 बार ही किया है, फिर एक नई पारी शुरू करता हूँ ये सोचकर कि जो होगा देखा जाएगा, जो है सो जो हो रहा है अच्छा ही है और उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भाई बहुत अच्छा। और आपने तो सच में हमारे लिए, जो शहरों में रहते हैं ना लोग, उन हमें तो चिढ़ हो रही है भाई, आपके पास इतना अच्छा खुला खेत है जहाँ जाकर आप अपनी टेंशन रिलीज कर लेते हैं। आपको एक अच्छा सा, आपका जो टेंशन है वो आपका आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, आप टेंशन फ्री हो जाते हैं ऐसे अच्छे से पेड़ के नीचे बैठ के। अब शहरों में तो हम तरस जाते हैं, आप देख लीजिए एक ही बारिश ने कितने पेड़ों को उखाड़ के फेंक दिया जड़ से। अब ये भी बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि हम शहरीकरण की तरफ तो बढ़ रहे हैं लेकिन पेड़ों को नहीं बचा रहे हैं। तो साथियों, फिल्मी गीत तो सुनते ही हैं, गीत सुनते सुनते हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साथ में ये भी अपने दोस्तों तक संदेश पहुंचाए कि पर्यावरण को भी बचाना है, तभी हम सुरक्षित भी रह सकते हैं। क्योंकि वरना आपने देखा कि दिल्ली और अन्य शहरों में कितनी तबाही मची और एक पहली बारिश ने ही ऐसा रौला डाला कि सब लोगों को परेशान करके रख दिया। और भी संदेश हम शामिल करेंगे लेकिन एक और बहुत ही खूबसूरत गीत जो आप सबके लिए बड़ी देर से इंतजार कर रहा है कि भाई मुझे सुनवाओ सुनवाओ सुनवाओ, तो भाई इसको भी सुनवा रही हूं। और गीत बहुत खूबसूरत है, श्रेया घोषाल और अजय की आवाज पे। जी हाँ, और ये है कौन सा गीत देखिए जी, सिंघम फिल्म से गीत है, बहुत ही खूबसूरत इसका।

पिक्चराइजेशन है। और अब आपको एक बार फिर से बता दें, जो साथी अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संकेत। और जो नए साथी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आप अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं IP Radio Delhi @gmail.com पर।

बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत ही अच्छी फिल्म भी है ये। और दोस्तों आप देख रहे हैं हम तुलसी मस्कीन हैं, उनका संदेश आया है और ये लिखते हैं कि मैं रेडियो और दोस्तों से मिलकर अपनी टेंशन दूर कर लेता हूँ और यही साथी यही मीत दर्द काटे गीत संगीत। ये लिखते हैं कि कोई भी गीत हमें सुना दें, मतलब किसी भी गीत में आप शामिल करें हमारा संदेश। और इन्होंने अपना संदेश भेजा है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, बीना मस्किन आशीष राजा चैतन्य चंडीगढ़ से, और राहुल खुराना रचिता खुराना और केशव रिधान खुराना ये साथी इनके चंडीगढ़ के हैं जिनके नाम भी इन्होंने लिख के दिए हैं। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा, साहिल इन्होंने संदेश भेजा है, बस अपना नाम सुनना चाहते हैं प्रोग्राम में। और देखिए दो दो तीन तीन बार इनका संदेश आया है। और ऐसे ही हमारे एक और साथी हैं जो अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं, नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु और अनिल मोहन जी का भी संदेश आया है हमें पहाड़कंज मुल्तानी ढांडा से, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक के साथ इन्होंने संदेश भेजा। और आज अनिल मोहन जी ने कुछ खास नहीं लिखा। देखिए अनिल जी, हमने आज पूछा था कि ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई काम, ऐसी कोई जगह, ऐसा कुछ करना आपको अच्छा लगता हो उस वक्त जब आप परेशान हो, ऐसी कोई परेशानी हो जब उसका हल नहीं मिल रहा और किसी से मन बात करने का ना कर रहा हो, या फिर किसी से बात करने का मन कर रहा हो और सोल्यूशन मिल जाए, तो जिससे मिलकर जिस काम को कर जादू सा हो जाए और छू मंतर करके सारी परेशानी दूर हो जाए। तो इसी के ऊपर आज हमारे साथी अपने जवाब हम तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद, मुझे लगता है आपने थोड़ा लेट हमारा कार्यक्रम सुनना शुरू किया था, तो अभी भी समय है, आप अपना भेज सकते हैं इस पर लिखकर अपना विचार। और आदरणीय मैडम सुषमा जी, आपको हार्दिक नमस्कार, बेहतरीन विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और ईशान छीपा, पूजा परिहार। और ये लिखते हैं कि रिश्ते अब चाहे समाज में हो या परिवार में हो या दोस्ती के हो, सभी में निस्वार्थ भाव से अपनत्व हो तो ताउम्र बने रहते हैं। यही एक जादू है, झुककर झुकाना पड़ता है, ताली दोनों हाथों से बजती है और अपनेपन का जादू रिश्तों में बनाए रखना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, कहते ना 100% की बात आपने कही है। और आजकल यही बात है, लोगों को समझ नहीं आती, बस इतना सच समझ जाए तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती है। और साथ ही लिखते हैं अपने संदेश में कि सिर्फ ईश्वर को सच्चे दिल से पुकारिए, कोई तनाव नहीं रहेगा, ईश्वर की ही परेशानी दूर करता है और अपने दूत को किसी भी रूप में भेजकर तनाव दूर कर देता है। तो लीजिए, मौसम का असर हम पर भी है थोड़ा सा, बारिश हुई है बहुत ज़बरदस्त दिल्ली में, तो थोड़ा भीगने तो हम भी ही हैं। और सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरब और इनके और भी साथी हैं एस के पप्पी, ये किसी भी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। इन्होंने फिल्म का नाम लिख कर दिया है हमारे पास। नवी हसन ने भी संदेश भेजा अपने साथियों के साथ और ये भी अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं, किसी इन्होंने फिल्म का नाम सुझाया है हमें। और ये संदेश इन्होंने किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से भेजा है। और देखिए, आपके सभी साथियों के नाम हम इस वक्त शामिल नहीं कर सकते, पर आपका संदेश शामिल किया क्योंकि आपने विषय पर पूरा अपना कुछ लिख के नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे संदेश भेजे हैं जिसमें लिखा है उन्होंने। और देखिए अगले साथी हैं, इन्होंने भी ये है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंढी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी और इन्होंने साथ में अल कबीर का भी नाम लिख कर दिया है। और ये अपनी पसंद के किसी फिल्म को गीत सुनना चाहते हैं। तो इन्होंने लिखा भी कि अगर हम जवाब नहीं देंगे कि आप हमारा संदेश शामिल नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है, हमने और भी साथियों का संदेश शामिल किया है। ख्याल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य, लाडो, साथ में इन्होंने लिखा है कि कोयल, और साथ ही शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल भाविक सिक्का का भी इन्होंने नाम लिखकर भेजा है संदेश में। और ये लिखते हैं कि दीदी जी, ये इनको हमेशा ये लगता है कि बस हमारी कोई सेटिंग है हमारे श्रोताओं के साथ जिनके संदेश हम शामिल करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिनके संदेश हमें स्क्रीन पर दिखते हैं और लगता है कि इस कार्यक्रम में हम शामिल कर सकते हैं, जो हमने प्रश्न पूछा उसका जवाब दे रहे हैं, उन्हें हम प्रायोरिटी विषय पर, मतलब प्राथमिकता के तौर पर शामिल करते हैं। तो देखिए, और ये लिखते हैं साथी कि हम तो अपनी बीवी से बात करके खुश हो जाते हैं जब घर होते हैं, जादू तो पति पत्नी के बीच चलता रहता है हर समय दीदी जी। ये लिखते हैं कि देखिए आपका प्रोग्राम

नाम हम आपका मैसेज शामिल कर चुके हैं कार्यक्रम में. और देखिए, ये तो रिश्तों में गूढ़ता है, उनकी प्रगाढ़ता है कि किस तरह से हर रिश्ते को निभाते हैं. और पति पत्नी के रिश्ते में जितनी मिठास रहेगी उतना ही अच्छा है, तो उतनी ही जिंदगी आपकी स्मूद भी चलेगी, यानी आसानी से जिंदगी को आगे बढ़ाते जाएंगे. और देखिए, अब एक साथी हैं जिन्होंने बड़े सॉरी गानों की फरमाइश भेज दी है, और ये हैं दिग्दर्शन और कविता गौर, बाईपास मेरठ रोड गांव शोभापुर से. तो आपको जो अगला गीत सुनने को मिलेगा, उम्मीद करती हूँ वो जरूर पसंद आएगा. और कुछ साथी हैं जो बार बार हमें अपना संदेश भेज रहे हैं. और देखिए, कुछ साथी, जी हाँ, ये हैं, देखिए, मस्कीन दादाजी का भी संदेश आया है और इनका संदेश हम शामिल कर चुके हैं. मशरूर हसन जी ने भी संदेश भेजा सहारनपुर से अपने साथियों के साथ. मशरूर जी, लिखते तो आप बड़ा बोल्ड करके हैं, लेकिन जो प्रोग्राम में हम पूछते हैं उसका जवाब बिल्कुल नहीं देते. मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन किरण ठाकुर जी ने भेजा है गुड मॉर्निंग, किसी भी सॉन्ग में शामिल करें. तो लीजिए, आपका संदेश शामिल हो चुका है. बिट्टू गगनेजा जी ने लिखा है कि हम जब भी तनाव में होते हैं तो रेडियो से जुड़ जाते हैं. तो ऐसे ही आप रेडियो को अपना संगी साथी बनाएं और इसके साथ जुड़ें, तो देखिए हर टेंशन आपकी छूमंतर रहेगी. जलालाबाद वेस्ट से इन्होंने पूनम गगनेजा, विशाल दिशानी और निमित आहूजा के साथ ये संदेश हम तक पहुंचाया है. दिग्दर्शन जी को हम शामिल कर चुके हैं. मेरठ कैंट से इन्होंने संदेश भेजा है. और रेडियो लिसनर क्लब है हमारा एक साथियों का, जिन्होंने ये संदेश भेजा और ये लिखते हैं कि जब भी मुझे कोई तनाव होता है तो मैं बुक रीडिंग करता हूं. श्रीनगर से सहिलदार उर्फी जान, इन्होंने रेडियो लिसनर एसोसिएशन की तरफ से यह संदेश भेजा है. बहुत अच्छा लगा, श्रीनगर से हमें संदेश आया है. इसके साथ ही आर कुमार जी ने भी वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा के साथ अपना संदेश हम तक पहुंचाया है. पंकज शर्मा जी का जी संदेश हम शामिल कर चुके हैं. अनु बरजाथिया जी ने संदेश भेजा और मुझे बहुत इंतजार था कि कोई महिला लिसनर हमें मैसेज भेजे, प्रोग्राम में शामिल हो. मुंबई से अनु बरजाथिया, शमशुल खान, अनुराज बेनारा के साथ इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है. और ये लिखते हैं कि मुझे टेंशन जब होती है तो बॉडी पेन होता है, पर कई पेन किलर, मैं कोई पेन किलर नहीं लेती हूं, बाकी घर के काम में बिजी रहती हूं. और आपका दिन शुभ हो, ये लिखते हैं. तो आपका भी दिन सभी साथियों का शुभ हो. और ये अच्छी बात है, पेन किलर जितना अवॉइड करें उतना कम है, और जब भी लें तो डॉक्टर की सलाह से ही लें. किशन विंजानी जी ने भी संदेश भेजा है. सुदर्शन मुखी जी का संदेश आ चुका है और बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने बार बार संदेश भेजे हैं. कुणाल सिंह जी का संदेश आया है और दादरी गेट भिवानी से इन्होंने ये संदेश भेजा है अपने साथियों के साथ. सुभाष योगी जी ने भी संदेश हमें भेजा है, अपनी पसंद का फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं. और साथियों, हमने भी आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत निकाल के रखा है. उम्मीद करती हूँ ये गीत आप जरूर पसंद करेंगे. और ये गीत है सोल्जर फिल्म से. समय भी कम है, घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का, लेकिन नहीं, हम साथ साथ कुछ संदेश अपने साथियों के और शामिल कर रहे हैं. जैसे बोधराज खोरवाल जी ने भी संदेश भेजा और ये लिखते हैं कि जब हमें कोई परेशानी महसूस होती है तो मैं रोड पर एक जगह बैठ जाता हूँ और आते जाते ट्रैफिक को देखता रहता हूँ. इससे मेरा ध्यान बट जाता है और मेरी सारी टेंशन जादू की तरह गायब हो जाती है. उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी और भानु प्रकाश के साथ इन्होंने संदेश भेजा. ये आइडिया भी अच्छा है, लेकिन हाँ, सड़क से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि आजकल ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं है, ऊपर भी चढ़ा देते हैं. बहुत सारे केसेस इस तरह के दिख जाते हैं, तो अपनी सेफ्टी के साथ ही आप इस तरह का काम करें. पंकज शर्मा ने भी संदेश भेजा है और बहुत सारे साथी हैं जो बार बार भेजते हैं. दिलावर खान जी ने भी संदेश भेजा रघुबीर नगर दिल्ली से, हसीना बानो और एलिजा नायाब और लड्डू के साथ.

सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली सुरेश नारंग जी ने संदेश भेजा है और ये भी यही कह रहे हैं कि किसी भी गीत में हमें शामिल करें। अनिल जैन जी का भी संदेश है मलियाना सरधना मेरठ से। जैन साहब, संयम, मुस्कान और दिव्यम जैन के साथ इन्होंने संदेश भेजा है। मास्टर अशोक जी का भी संदेश हम तक पहुंचा है।

0: और हरजीत सिंह जी ने भी संदेश भेजा है, ये जादू मैजिक ऑफ माय फ्रेंड ये लिख रहे हैं। मेरे दोस्त हरजीत सिंह जी का व्यक्तित्व और उनकी सहायता करने की प्रवृत्ति जीवन में जादू जैसा सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। वो निस्वार्थ सेवा करते हैं, चाहे कोई भी चैरिटी हो, कोई भी फंड हो, किसी व्यक्ति का निस्वार्थ भाव से मदद करनी हो, वास्तव में एक अद्भुत अनुभव होता है और ये तनाव कम करने का सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका है, क्योंकि ये हमारे मन में सुरक्षा और विश्वास की भावना भरता है। टीडी मल्होत्रा जी ने सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ये संदेश भेजा अपने साथियों के साथ, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह। और कालका से इन्होंने शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज, बिट्टा बजाज के साथ भी अपना संदेश शेयर किया है। तो ये आपने बहुत अच्छा लिखा है, और इस तरह का चैरिटी का काम अगर आप करते हैं तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती, और सच में ये बहुत ही मैजिकल है। और आपकी जो इंस्पिरेशन, आपकी जो मोटिवेशन है, ये लोगों के लिए भी बहुत इंस्पायर करने वाली बात है। ये मोटिवेशन लोगों को, हमारे और साथियों को भी मिलेगी जो प्रोग्राम सुन रहे होंगे। शाहजहां बेगम, मरियम जैनब ने भी दिल्ली से संदेश भेजा है और इन्हें पसंद आ रहा है प्रोग्राम, उसके लिए शुक्रिया। और देख रही हूँ कि मास्टर अशोक कुमार जी, आपने बहुत सारे संदेश भेज दिए हैं, और आपके इन्होंने सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित और मुकेश के साथ भेजा है और अपनी पसंद का गीत ये सुनना चाहते हैं। आर्यन वर्मा ने भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया है, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अर्चना, अनुज, आयुषी और अपने अन्य साथियों के साथ। साथ ही साथ हम देख रहे हैं पारा देवी हैं जिन्होंने अपना संदेश हम तक पहुंचाया। ये लिखती हैं कि जब भी हम उदास होते हैं तो हम तो बालकनी और छत पर लगे पेड़ पौधों से बातें करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि नेचर हमारी सारी बातें सुनते हैं, इससे मन को बड़ा अच्छा लगता है। जी बहुत अच्छी बात। रिवाड़ी हरियाणा से इन्होंने संदेश भेजा, और आपने सही कहा कि पेड़ पौधों से बातें करना, उनकी देखभाल करना और उनके आसपास रहना, सच में एक बहुत ही टेंशन रिलीविंग वाला ये हमारा काम होता है। कोई भी परेशानी हो, कुछ भी समस्या हो, पेड़ पौधे उस समस्या को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और बहुत सारे संदेश आए आज इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनके संदेश शायद हम अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए हों, तो उसके लिए दिल से, तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि अगर आप छूट गए, आपका संदेश छूट गया कार्यक्रम में शामिल करने से, तो अपनी इस छोटी सी नादान साथी समझकर उसे माफ़ कर देना। एक डोल राना है, चलते चलते उनका संदेश शामिल कर रही हूँ, और ये लिखते हैं कि किसी से सामने रखने से सुझाव भी मिलता है जब हम बात अपनी रखते हैं किसी के सामने, और ये संदेश इन्होंने भेजा नेहरू बिहार दिल्ली से। तो डीबी राणा जी हैं ये, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसी तरह से हमारे हर कार्यक्रम में जुड़े, और हो सकता है कि अगले हफ्ते आपकी और मेरी मुलाकात शनिवार और रविवार दोनों दिन हो, तो ऐसे ही हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें। और चलते चलते एक और मैं देख रही हूँ, स्टार रेडियो ग्रुप, ये भी डुमराव बिहार से है, इन्होंने भी संदेश भेजा है और मुंबई के कुछ साथियों के नाम भी हम तक पहुंचाए हैं लिखकर। तो आप सबका तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया, और इस कार्यक्रम से आपसे चाहते हूं विदा। नमस्कार, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है, और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच

0: मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ऑकलैंड में विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ तथा दोनों देश आपसी सहयोग और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देश एकमत हैं। स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमरीका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने बताया है कि प्रतिबंध दुबई स्थित ईरानी कारोबारी अली अंसारी और उनके वैश्विक वित्तीय नेटवर्क पर लगाए गए हैं। अमरीका का आरोप है कि ये नेटवर्क ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई और शासन से जुड़े अन्य प्रभावशाली लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाता है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान समझौता ज्ञापन अब समाप्त हो चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि तेहरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्कालीन शासी परिषद ने की थी। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. India and New Zealand today elevated their ties to a strategic partnership and set a 5-year target to double their annual bilateral trade in goods and services to 35,000 crore rupees by 2030, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon in Auckland. The meeting yielded several concrete outcomes. Key among them were a roadmap to expand ties in the next 4 years, a framework for enhancing Indo-Pacific maritime cooperation, and a reciprocal logistics support pact between the Indian Navy and the New Zealand Defence Force. A joint statement following the talks noted that both leaders exchanged views on the Indo-Pacific, reaffirming their shared commitment to a free, open and prosperous region. They also emphasized the importance of safeguarding sovereignty, territorial integrity and the rules-based international order. The two leaders welcomed the

और अब सबरस में आप सुनेंगे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में एक गजल।

मशहूर शायर सैयद राही जी ने लिखे हैं ऐसे और इसे अपने स्वर में, जैसे कि हमने बताया कि सजाया है जगजीत सिंह और चित्रा जी ने, बहुत ही खूबसूरत गजल है, सुनिए इसे।

बहुत ही खूबसूरत गजल ये आप सुन रहे थे अभी, और अगला तराना रूमाल लैला के स्वर में, ये भी बहुत ही खूबसूरत गीत है। साथियों आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं सबरस, और सबरस में आप सुनते हैं अलग अलग तरह के तराने, गीत, गजल,

अभी आप सुन रहे थे सबरस। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, 11:30 होने को हैं और अब आप सुनेंगे सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में मुराद अली से सारंगी पर राग वृंदावनी सारंग। तबले पर संगति कर रहे हैं अमान अली। तानपुरे पर साथ दे रहे हैं धीरज।

0: सुरभंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना मुराद अली से सारंगी पर राग वृंदावनी सारंग। तबले पर संगति कर रहे थे आमान अली। तानपुर पर साथ दे रहे थे धीरज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हमारे इस स्टेशन के साथ जुड़ने के लिए समय समय पर जो कार्यक्रम आप सुनते हैं उस पर अपने कार्यक्रमों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आप भेज सकते हैं मेल अपनी संदेश ipradiodelhi@gmail.com पर। और अब 12 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
1: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई।

0: जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
1: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon have decided to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Secretary East Rudrendra Tandon shared this in Auckland while addressing the special briefing on the Prime Minister's visit to New Zealand. He added that the Prime Minister's endorsed the India-New Zealand Strategic Partnership Roadmap to 2030 as a framework to guide the joint action over the next 4 years. He added this decision aims to take bilateral relations to a new level, strengthen the existing cooperation mechanisms, and explore new avenues for deepening cooperation both bilaterally and multilaterally.
3: Is the decision by the two prime ministers to raise the relationship to a strategic partnership. They also decided that this goal of a more strategic relationship would be approached systematically, for which they decided that there would be a roadmap to take us forward the next couple of years. This roadmap has been summarized, in fact, in a document which is being released along with the joint statement that the two prime ministers are issuing at the conclusion of their talks.
2: Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and

0: घर आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है और आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ रेनू
2: और मैं हूं दीपा। तो कीजिए स्वीकार हमारा
1: प्यार भरा नमस्कार।
2: दोस्तों आप हमें

0: सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़ पर।
1: और कैसी हो दीपा, आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है।
0: अरे रेनु, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो?
1: मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोता भी ठीक होंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला और सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत

0: आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने ये खूबसूरत गीत सुना। फिल्म थी वो कौन थी।
1: दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, स्वयं पर विश्वास रखिए, दुनिया आपके कदमों में होगी। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था, रेनू तुम बताओ।
0: हाँ, बिल्कुल, उनका मानना था कि हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति, प्रतिभा और संभावनाएं छिपी होती हैं। जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और कठिन चुनौतियां भी अवसर के रूप में बदलने लगती हैं और सफलता हमारी ओर स्वयं कदम बढ़ाती है।
1: और दोस्तों, इसीलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखिए, यही सफलता की पहली सीढ़ी है। याद रखिए, जो स्वयं पर विश्वास करता है वही अपने सपनों को साकार करता है।
0: बिल्कुल। तो दीपा, ये तो हुई हमारे आज के विचार की, सुविचार की, और इसी के साथ हम अपना आज का प्रश्न पूछ लें। क्यों? क्योंकि श्रोताओं को आजकल हमारे प्रश्न का बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि इससे हम उनसे बातचीत कर पाते हैं, सीधे बातचीत कर पाते हैं, और कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी कहते हैं। तो दीपा, जल्दी से बताओ कि हमारा आज का प्रश्न क्या है।
1: दोस्तों, फिल्में तो आप सभी देखते होंगे, और आज आपको बताना है कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपको

0: तक याद हो और आपने उसे कई बार देखा हो और आज भी उसे देखना चाहते हैं।
1: बिल्कुल, यानी आपको बताना है कि आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है और इसके बारे में हमें झटपट से लिख भेजिए, और पसंदीदा फिल्म का नाम, उसके साथ आप ये भी बताइए कि आपकी आपको ये फिल्म क्यों पसंद आती है, यानी आपकी नजर से उसमें क्या खासियत है। और इसके लिए हमारा मेल आईडी
0: दोस्तों नोट कर लें, fmgoldga@gmail.com।
1: तो हमें आपके मेल्स का बेसब्री से इंतजार है और आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी पसंदीदा फिल्म का नाम बताइए। तब तक सुनते हैं ये गीत।

0: अभी आपने ये गीत सुना आशा भोसले की आवाज़ में, और फिल्म थी तेरे मेरे सपने। और देखो इसमें जो है दीपा, मुख्य भूमिकाएं जो है इस फिल्म में मुमताज और देवानंद ने निभाई थी, और संगीत एस
1: बिल्कुल
0: डी बर्मन का था, और गीतकार, महान गीतकार जो है थे वो
1: यस।
0: इसमें गोपाल दास नीरज जी थे। और देखो अब तुम क्या बताने वाली हो आज,
1: मैं हाँ कुछ
0: दे
1: खास
0: विशेष क्या है?
1: आज दोस्तों, आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा की गई थी।
0: बिल्कुल, और इसका उद्देश्य देखो दीपा ये है इस दिवस को मनाने का कि जनसंख्या संबंधी समस्याओं पर, जो कि आज वैश्विक समस्या बन चुकी है, तो उस पर वैश्विक चेतना भी जागृत करना आवश्यक है, इसीलिए इस दिवस को इस रूप में मनाया जाता है। और देखो जब दिन विशेष की बात हम कर रहे हैं, तो दिन विशेष में आज हम बात करते हैं भीष्म साहनी की, जो कि आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। आज उनकी भी पुण्यतिथि है। और
1: भीष्म साहनी दोस्तों यथार्थवादी और प्रगतिशील एक ऐसे कथाकार थे जिनकी रचनाएं विभाजन की त्रासदी और शोषित वर्ग के संघर्षों की प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करती हैं।
0: बिल्कुल, भीष्म साहनी की रचनाएं समाज के दबे कुचले वर्गों की आवाज और यथार्थ का सटीक दर्पण हैं। उनका प्रमुख उपन्यास तमस विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिकता की विभीषिका पर आधारित एक प्रामाणिक दस्तावेज है। और पता है तुम्हें दीपा, इसी नाम से ना जो जाने माने निर्देशक गोविंद नहलानी जी हैं, उनके निर्देशन में एक फिल्म बनी थी तमस नाम से ही, और इसमें मुख्य किरदार जो था वो ओमपुरी जी ने निभाया था, और ये फिल्म भी बहुत लोकप्रिय हुई थी। और अब जब फिल्मों की बात चली रही है, तो हमारा आज का प्रश्न भी हमारा फिल्मों से जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारे हाथ में लगता है कि कुछ मेल्स आए हैं, जो तुम, कौन सा मेल है ये?
1: नवीन भाटिया जी हमसे जुड़े हैं, और उन्होंने कहा कि वक्त मूवी जो है उनकी और उनके पापा की फेवरेट फिल्म थी, और उन्हें बहुत पसंद थी, और उसमें मिलना बिछड़ना और काफ़ी उसमें जो चलता है वो उनको बहुत पसंद थे, उसके गाने भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद
0: हैं। हाँ भाई, ये मूवी तो बहुत अच्छी थी ही। बिल्कुल नवीन भाटिया जी, और आपने लिखा हमें, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नवीन भाटिया जी मोतीनगर से लिख रहे हैं ना, और देखिए सही बात है, वक्त फिल्म जो है मल्टी स्टारर एक फिल्म थी, और इसमें शानदार कहानी और तकनीक के प्रयोगों के लिए ये जानी जाती है। और इसमें जैसा कि तुम्हें भी दीपा, तुमने भी देखी होगी, इसमें राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, साधना और शमिला टैगोर, हाँ सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा अभिनय किया था, और वाकई इसमें कालजयी जो गीत संगीत था इसका वो भी था। और कौन सा मेल है?
1: और
0: ये है डी राजेश्वर राव, जो है ये लिखते हैं शक्करपुर मेन विकास मार्ग न्यू दिल्ली से। हाँ, तो इन्होंने भी कहा है कि भाई खट्टी मीठी यादें जो है ये तो हमारी मतलब है ही है पिक्चरों से जुड़ी हुई। और इसमें जो एक रेखा जी की फिल्म के बारे में इन्होंने लिखा है, तो ये फिल्म भी इनको बहुत पसंद है। और एक और ये पुलका भाटिया जी ने लिखा है कि इन्हें शोले फिल्म बहुत पसंद है। हाँ, तो शोले फिल्म तो भाई देखिए सबको ऑल टाइम फेवरेट है, सबकी बहुत पसंद है सबको। और इसमें इन्होंने लिखा है कि इनकी फेवरेट फिल्म तो है ही, और डीडीएलजे को भी कह रही हैं कि इनकी फेवरेट फिल्म है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और तो डीडीएलजे भी भाई बड़ी फिल्म अच्छी थी, और शाहरुख खान और काजोल की इसमें जोड़ी बहुत पसंद की गई थी, बहुत था। और जो प्रवासी भारतीयों के अंदर जो उनकी पारिवारिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित थी, तो भाई इसी तरह से जुड़े रहिए और हमारे साथ, और जो है इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने प्रश्नों का जवाब हमारे दीजिए। और फिर अब तक सुनवाते हैं ये गीत।

मेरा तूने बड़ा तंग किया, डोरी मेरे पास हो तो सैया तो ही खींच लूं, जाने ना दूं आंखों में बसा के आंखें।

0: दोस्तों, अभी आपने गीत सुना मोरी पायलिया, फिल्म थी जुगनू और गायिका थी लता मंगेशकर।
1: और दीपा, और कुछ मेल तो हमारे दर्शक करते जा रहे हैं भाई, ऐसा विषय ही है क्योंकि मूवी तो सबको बहुत पसंद आती है, हमारे मनोरंजन

0: का सबसे देखा जाए तो प्रमुख जरिया है और हम लोग सालों साल मूवी देखते आ रहे हैं। तो ये जो हमारे नियमित श्रोता हैं वो लिख रहे हैं, सुदर्शन मुखी, अमिता मुखी, सिमरन मुखी और शांति नगर सोनीपत से लिख रहे हैं कि ये इनको इनको भी वक्त मूवी बहुत पसंद आई है। अच्छा। और इन्होंने इसका कारण भी बताया है कि क्योंकि इस मूवी में जीवन की सच्चाई है इसलिए बहुत पसंद आई है। और इन्होंने एक चीज़ और भी लिखी है कि उम्मीद दूसरों पर करोगे तो ये तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी और उम्मीद खुद पे करोगे तो ये तुम्हारी ताकत बन जाएगी।
1: वाह
0: भाई वाह, क्या बढ़िया बात कही है इन्होंने। और देखिए, अगर मूवी देखी है इन्होंने और उससे कुछ उसका उद्देश्य और उसका मतलब जाना है, कुछ जीवन में अगर उन्होंने पाया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, सही बात है। फिल्में हमारे समाज का दर्पण होती हैं और इन फिल्मों से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। और तो ये फिल्में अगर सार्थक तभी हैं जब वो अपने संदेश देने में कामयाब हो जाएं, तो बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और इसके साथ ही ये महेश अग्रवाल जी हैं, इन्होंने भी लिखा है, ये हरियाणा से लिख रहे हैं, बहादुरगढ़ हरियाणा से। तो इन्होंने भी हम लोगों को नमस्कार भेजा है और कहा है कि इन्होंने बाजार फिल्म इन्हें बहुत पसंद है। तो भाई, बाजार फिल्म भी बहुत एक क्लासिक मूवी थी और बहुत ही अच्छी है, और ये फिल्म आपको पसंद आई तो सही बात है, याद दिला दिया आपने, ताजा कर दिया।
1: गाने
0: भी बहुत अच्छे थे, सही बात आप कह रही हैं। और बहादुरगढ़ से ही ये श्रीपाल गोयल जी लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं ये दीपा जी, आप बताइए।
1: हाँ, इनको जो है, इनको ये फिल्म बहुत पसंद है, फिल्म भावना जी, और इसमें ये कह रही हैं कि शबाना आजमी भावना की भूमिका में थी और ये इनको बहुत पसंद है। इसमें एक माँ अपने बच्चों के लिए कहाँ तक जा सकती है, इस फिल्म में इन्होंने बताया कि दिखाया गया है। और ये फिल्म में एक माँ की कहानी है जो अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ त्याग देती है।
0: अच्छा, भावना फिल्म के बारे में बता रहे हैं। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। और आपने एक अलग सी फिल्म पसंद की और इसको हमसे अपना विचार और अपने जो अनुभव हैं वो साझा किए, तो बहुत अच्छी बात है। और देखो, एक और मेल आया है, ये सोनाली का है और ये कह रही हैं कि इनको फिल्म आधी पसंद है। सुचित्रा सेन का किरदार बहुत अच्छा था, संजीव कुमार लेजेंड, सही बात है भाई, बहुत अच्छी फिल्म थी ये और बहुत इसके गाने भी पसंद हैं। तो सोनाली जी, महेश अग्रवाल जी और सुदर्शन मुखी जी, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम से और हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए और अपने विचार व्यक्त करते रहिए। और तब दीपा, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो तुम क्या बताने वाली हो?
1: मैं अब बताने वाली हूँ, हम बात करेंगे अब आर्थिक आत्मनिर्भरता और बचत की। दोस्तों, आर्थिक आत्मनिर्भरता की सबसे जो मजबूत नींव है वो है बचत। आय कम हो या अधिक, यदि नियमित बचत की आदत नहीं है तो आर्थिक सुरक्षा अधूरी रह जाती है। छोटी छोटी बचत ही समय आने पर सबसे बड़ा सहारा बनती है।
0: बिल्कुल सही बात कहा तुमने दीपा। और देखो ना, बचत को की इस जरूरत को और इसके महत्व को अगर सबसे ज्यादा समझा है किसी ने तो हमारे घर की महिलाओं ने, क्योंकि उन्होंने जो सीमित आय भी उनके पास अगर आती है तो जो पूरे घर का बजट बनाती हैं उसके बाद भी वो भविष्य में के लिए अपने लिए कुछ ना कुछ बचाकर जरूर रखती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा रेनू, और ये उनकी दूरदर्शिता तो है, लेकिन आज बैंकिंग व्यवस्था ने बचत को और अधिक सुरक्षित और लाभदायक बना दिया है। कई बैंक ऐसी सुविधाएं देते हैं जिनमें खाते की अतिरिक्त राशि स्वतः अधिक ब्याज वाले विकल्प में चली जाती है, यानी बचत भी सुरक्षित रहती है और उस पर बेहतर लाभ भी मिलता है। और अब सरकार भी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और कुछ ना कुछ सरकार भी कर रही है महिलाओं की बचत योजना के लिए।
0: बिल्कुल, तो दीपा बिल्कुल सही बता रही हो। और देखो ना, डिजिटल युग है तो इसका फायदा भी हमें उठाना चाहिए, क्योंकि ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि हमारे बहुत काम की चीज है, तो इससे इसके फायदा उठाना चाहिए। और कई सारी बचत की जो माध्यम है, कई सारी चीजें हैं, उसको जानना चाहिए और उसको उपयोग में लाना चाहिए। जैसे कि UPI का उपयोग करना चाहिए, अपने पैसों का हिसाब स्वयं रखिए, क्योंकि डिजिटल सशक्तिकरण ही आत्मनिर्भरता की पहचान बन रहा है और यही सही मायने में सशक्तिकरण है आपका।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना गीत आइए बाहर को हम बांट लें, फिल्म थी तकदीर और गायिका थी लता मंगेशकर।
1: और दीपा, जो हमारे श्रोतागण हैं वो देखो ना कितना, मतलब इस समय उनको आनंद आ रहा है और अपनी पुरानी फिल्मों के बारे में, अपने बारे में बता रहे हैं। तो अभी जो इस मेरे हाथ में इस समय जो मैसेज है वो है इदरीस सैफी जी का, ये भी बहुत पुराने श्रोता हैं हमारे। तो इन्होंने लिखा है कि प्रेम रोग फिल्म इन्हें बहुत पसंद है। भाई, ये बहुत अच्छी मूवी थी, सही बात है, हम सबको बहुत पसंद है। राज कपूर और पद्मिनी कोला पूरे इसमें मेन लीड रोल में, ऋषि कपूर और पद्मिनी कोला पूरे थे और बहुत ही अच्छी मूवी थी, इसके गाने भी बहुत अच्छे थे। और देखो, इसी के साथ हमारे पास रजत भूषण जी का भी ये मेल आया है और इसमें इन्होंने लिखा है कि इन्हें फिल्म अंगूर बहुत पसंद है क्योंकि बिना शोर शराबे के शानदार अभिनय और स्वाभाविक हास के दम पर ये मनोरंजन करती है। बिल्कुल सही बात आपने कही और याद आ गया मुझे भी उसके काफी सीन, और संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा इसमें डबल रोल में थे ना। हाँ, बिल्कुल सीन सीक्वेंस इतने बदलते थे इसके कि हाँ, मजा आ जाता था, बिल्कुल लगता था अगले पल क्या होगा। देखो, इन्होंने भी कुछ लिखा कि हर बार इसे देखने पर कोई ना कोई नया पहलू और नया हास्य सामने आता है, यही कारण है कि वर्षों बाद भी ये फिल्म उतनी ही ताजा और आनंद। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सच में ये फिल्म जब भी देखो तो हंसी आ ही जाती है, और हंसाना किसी फिल्म में जो अगर ये हंसाने का मादा रखती है कोई मूवी तो वाकई वो बहुत, हाँ, बहुत मतलब सशक्त मूवी होती है, तभी वो किसी को हंसा पाती है।
0: हम जाते इसलिए हैं कि हम मूवी देखकर खुश हों।
1: हाँ हाँ, सही बात है, और वो उस चीज को अगर फुलफिल करती है तो बिल्कुल बहुत अच्छी मूवी है। और इसी के साथ देखो, ये गौरी शंकर जी ने भी लिखा है नागलोई से, और गौरी शंकर नागलोई हैं ये, और इन्होंने लिखा है कि मतलब पहले तो ये हमें नमस्कार कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि सन 80 तक की फिल्में मैंने देखी हैं और ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और जितेंद्र जीने की राह फिल्म के बारे में ये बता रहे हैं, सुनील दत्त और नंदा मुझे बहुत अच्छी लगी और ये फिल्म भी इन्हें बहुत अच्छी लगी, और इसमें ये दिखाया गया है कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर हार नहीं मानना चाहिए, ये कुछ संदेश देती हुई फिल्म है और दर्शकों तक वो उतने संदेश पहुंचते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और दीपा, एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बात और जरूरी हमें करनी जरूरी

0: हो जाती है कि हम जो है बात करते हैं अगर, तो देखिए फोन हम सबके जीवन का हिस्सा बन चुका है,
1: बहुत ज्यादा आज के समय में तो बहुत ज्यादा
0: बहुत जरूरी है और सबके पास होता ही है, लेकिन अति ना किसी चीज की बहुत देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट डालती है। उसी में से एक है हेडफोन और ईयरफोन, अगर इसका आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जो है वो ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा रेनु, और ईयरफोन और हेडफोन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हमारे कानों और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहद ख़तरनाक है, और इससे आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे सुनने की क्षमता कम होना, कान में लगातार सीटी बजना या फिर संक्रमण। ये इतना ख़तरनाक है कि इससे आपके सुनने की क्षमता भी कम हो सकती है।
0: बिल्कुल, और ये देखो ना, ये तेज़ आवाज़ यानी कि 85 डेसिबल से ज़्यादा अगर आप लगातार संगीत सुनते हैं या गेम खेलने में कान खेलते हैं और हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे कान के आंतरिक हिस्से की कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं। इससे आपको बहरापन, टीनिटस की समस्या हो सकती है। टीनिटस यानी कि कानों में झनझनाहट, भनभनाहट या सीटी बजने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं।
1: और ईयरबड्स दोस्तों कान के बहुत अंदर तक जाते हैं, इन्हें ज्यादा देर लगाए रखने से कान के अंदर हवा नहीं जा पाती, जिससे नमी और बैक्टीरिया पैदा होते हैं। ये कान में दर्द और फंगल इन्फेक्शन का कारण भी बनते हैं।
0: बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर आप लंबे समय तक हेडफोन पहनते हैं तो दिमाग पर भी इसका दबाव पड़ता है, जिससे चक्कर आना, ध्यान केंद्रित होना और ना केंद्रित होना और स्ट्रेस जैसी मानसिक समस्याओं का भी सामना आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इसमें जो ना निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव जो होती है वो दिमाग पर बहुत बुरा असर डालती है,
1: और इसीलिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि हेडफोन का इस्तेमाल सीमित समय के लिए ही किया जाए, यानी दिन में केवल 1 से 2 घंटे ही, और अगर किसी काम से ज्यादा यूज करना पड़ रहा हो आपको तो बीच में ब्रेक जरूर लें।
0: बिल्कुल, और ये ब्रेक ना लेने का एक नियम है, जैसे कि 60-60 का नियम अपनाएं। जैसे इसका मतलब ये है कि 60% की वॉल्यूम पे आप कोई भी चीज सुनते हैं तो 60% की वॉल्यूम उसका रखें और 60 मिनट से ज्यादा तक उसका इस्तेमाल ना करें, यानी कि उसको ज्यादा देर इस्तेमाल नहीं करना है, ब्रेक लेना है। और ईयरफोन को हमेशा साफ रखें और कभी भी दूसरों के साथ अपना ईयरफोन शेयर ना करें। तो दीपा, ये तो बातें हो ही रही हैं, लेकिन एक बार मेल आईडी हम फिर से श्रोताओं को बता दें कि हमारी मेल आईडी क्या है, बताओ।
1: हाँ, हमारी fmgold@gmail.com।
0: तो इसी मेल आईडी पर आपके मेल्स का इंतजार है हमें, और प्रश्न तो आपको याद हो ही गया होगा अब तक कि आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी है जो आज तक आपको याद है और आपने कई बार उसे देखा है, और वो मूवी आपको क्यों पसंद है।

0: अभी आपने गीत सुना सुनो कहो, फिल्म थी आपकी कसम और गायक कलाकार थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर।
1: और ये देखो एक मेल और अब मेरे हाथ में है, वैसे तो इनका मेल पहले भी मैंने पढ़ा था लेकिन अभी इन्होंने मूवी का नाम लिखा है। ये डी राजेश्वर राव हैं जो शकरपुर मेन विकास मार्ग न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि इनको फिल्म चुपके चुपके बहुत पसंद है और ये बहुत ही मतलब अच्छा लगा इनको, इसमें धर्मेंद्र का जो है वो बहुत काम अच्छा लगा। तो ये मूवी तो सही में हम लोग को भी याद आ गई, कॉमेडी उस समय की थी, कॉमेडी के साथ और इतनी अच्छी थी और बहुत अच्छा संदेश इसमें था।
0: बहुत सारे कलाकार थे।
1: हाँ दीपा, और देखो ना उसमें उन्होंने बातों बातों में जो हिंदी का एक तरह से हिंदी और इंग्लिश का जो था उसमें उन्होंने ये एक तरह से संदेश उसमें दिया कि जो हिंदी का व्याकरण है ना वो हमारा इतना सशक्त है कि उसके मुकाबले अगर तुलना की जाए तो किसी और भाषा में वो बात नहीं आती जितनी कि हिंदी का व्याकरण सशक्त है। और दीपा कहना पड़ेगा ना कि हमारी फिल्में जो है ना वो वैश्विक पटल पर और हर जगह जो हमारा संस्कृति है, जो हमारी भाषा है, उसका सबसे बड़ा देखा जाए तो संदेश वाहक हमारी फिल्में होती हैं और बहुत ही अच्छी छाप इससे
0: संदेश दे पाती हैं। कई जो
1: इसीलिए ना मूवी को सॉफ्ट पावर कहा गया है कि वो हमारे देश की या किसी भी देश की सॉफ्ट पावर होती हैं। वो आसानी से आपकी संस्कृति और आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, सब कुछ जो है वो कन्वे कर देती हैं वैश्विक पटल पर। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छी मूवी है जो आपको पसंद आई है
0: और हमारे
1: अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं। और देखो एक और संदेश मेरे हाथ में है, ये कामायनी है, लक्ष्मी नगर से लिख रही हैं। इनकी फेवरेट मूवी है दो बदन और ये लिख रही हैं कि इसमें भावनाओं का ऐसा मार्मिक और मतलब जो इस ये वर्णन किया गया है वो किसी का भी इससे जो है वो संवेदना से देखा जाएगा तो जी भर आएगा। बिल्कुल सही बात कही कामायनी जी आपने और लगता है आप भी बड़ी संवेदनशील व्यक्तित्व रखती हैं तभी आपको ये चीजें और इस तरह की मूवी पसंद आती हैं। और देखिए कहीं ना कहीं होता है कि जो जैसा होता है या जैसी उसके विचार जहां पर मतलब कनेक्ट होते हैं उस मूवी को वो व्यक्ति पसंद करता है, ये भी एक बड़ी बात है।
0: और उस समय की रेनू ये भी बात थी कि मूवी के साथ साथ गाने भी बड़े अच्छे हुआ करते थे। आज तक सब लोग
1: बिल्कुल सही बात कही तुमने। और देखो ना इसी तरह से लोग हमें लिख रहे हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हमें जुड़ रहे हैं। लेकिन अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जो है वो दिल्ली वालों के लिए एक देखा जाए तो खासकर दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी बात है कि जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 1 जुलाई से लागू हो गई है। 31 मार्च 2030 तक ये प्रभावी रहेगी और ये नीति क्या है, आपको इसमें दिल्ली सरकार द्वारा कौन सी छूट या सब्सिडी दी जा रही है, बात करते हैं इस बारे में।
0: दोस्तों इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अगर आप लेते हैं तो इस पर आपको 30,000 तक की और थ्री व्हीलर लेना चाहते हैं तो इस पर आपको 50,000 तक की छूट यानी सब्सिडी दी जाएगी।
1: और अगर आप 30,00,000 तक की इलेक्ट्रिक कार लेते हैं तो इस पर आपको कोई रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है। इस पर दिल्ली सरकार द्वारा 100% सब्सिडी आपको दी जा रही है।
0: और इसी तरह अगर आप N1 कमर्शियल वाहन खरीदना चाहते हैं तो 1,00,000 तक की सीधी छूट आपको मिलेगी। इसके अलावा इस नीति के तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाकर नई ईवी खरीदने पर 1,00,000 तक का स्क्रैप इंसेंटिव भी आपको मिल सकता है।
1: तो इस नीति से जुड़ने के लिए दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं और इस तरह दे सकते हैं वायु प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान।

0: श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना कली कली, जिसकी फिल्म थी मंचली और गायिका थी लता मंगेशकर।
1: और दीपा, हमारा वक्त तो अब कार्यक्रम का समाप्ति की ओर है, लेकिन हमारे श्रोता जो है मेल भेजते जा रहे हैं, तो जल्दी से मैं कुछ मैसेजेस और ले लेती हूँ। इसमें देखो, ये मैसेज लिखा है रघुवर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब ने, और ये लिखती हैं कि इन्हें भी जो है वक्त फिल्म बहुत पसंद आई। और देखो, इन्होंने कहा है कि जो है वक्त में जो संदेश दिया गया था ना कि एरोगेंस जो है अच्छी बात नहीं है, तो वो नहीं करना चाहिए, तो भाई हमारे बड़े जागरूक श्रोता हैं, वो इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं और उसके संदेश को भी समझ रहे हैं। और इसी तरह से ये अखिलेश राठौर हैं, इन्होंने लिखा है कि मुझे हम आपके हैं कौन मूवी बहुत अच्छी लगी। तो भाई, अब इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त होता है, तो मुझे यानी रेनू को
0: और मुझे यानी दीपा को दे अनुमति,
1: नमस्कार।
2: घर आंगन, आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में भी श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत

0: भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि INS महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
1: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi arrives at Spark Arena in Auckland to address the Indian community. Around 10,000 people have already gathered at the venue. Members of the Indian diaspora from across New Zealand have come together for this special event. Prime Minister Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, have decided to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Secretary East Rudrendra Tandon shared this in Auckland while addressing the special briefing on the Prime Minister's visit to New Zealand. He added that the Prime Minister endorsed the India-New Zealand Strategic Partnership Roadmap to 2030 as a framework to guide joint action over the next 4 years. He added that this decision aims to take bilateral relations to a new level, strengthen existing cooperation mechanisms, and explore new avenues for deepening cooperation both bilaterally and multilaterally. Defence Minister Rajnath Singh has said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Vishakhapatnam today.
1: Multi-function radar ke saath.
3: It has a long-range surface-to-air missile combination with a multifunction radar that can detect and destroy any threat coming from the sky from a distance. And it has an indigenous rocket launcher, torpedo launchers, an integrated anti-submarine defense system, an electronic warfare suit, and a close-in weapon system too. These all things make INS Mahendragiri as invincible and strong as the Mahendragiri mountain.
1: Mahendragiri parvat ke saman hi abhed aur majboot banati hai.
2: Union Home Minister Amit Shah has appealed to the younger generation to connect with libraries, highlighting their significant role in shaping an individual's personality. inaugurating the Jayaprakash Narayan Public Library in New Delhi.

0: श्रोतो, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक थे राजा नवादे और निर्माता थे आर चंद्र। इस फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और गीत थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब के। इस जो फिल्म की कहानी थी वो कन्नड़ उपन्यास हंस गीते से प्रेरित थी। साथियों, इस फिल्म में जो मुख्य कलाकार थे वो थे भारत भूषण साहब, निमी जी, कुमकुम, ओम प्रकाश, लीला चिटनिस और मनमोहन कृष्ण।

साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि यह फिल्म अपने संगीत के कारण आज भी भारतीय सिनेमा की महान कृतियों में गिनी जाती है। दोस्तों, इस फिल्म के जो अभिनेता थे वो भारत भूषण साहब उस दौर के ऐसे अभिनेता थे जिन्हें संगीत प्रधान फिल्मों का बादशाह कहा जाता था। बैजू बावरा, मिर्जा गालिफ, श्री चैतन्य महाप्रभु और बसंत बहार जैसी फिल्मों ने उन्हें एक अलग ही पहचान दी थी। उनके अभिनय की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे भावनाओं को बहुत सहजता से चेहरे पर उतार देते थे। बसंत बहार में उन्होंने गायक गोपाल का किरदार निभाया, जिसे आज भी हम सभी याद करते हैं और हमारे दिलों में वो अभी भी बसते हैं।

साथियों, इस फिल्म के गीतों के साथ साथ इस फिल्म की जो कहानी है वो भी बड़ी दिल को छू लेने वाली है। कहानी है गोपाल नाम के एक प्रतिभाशाली युवक की। गोपाल बचपन से ही संगीत का दीवाना है। उसके पिता चाहते हैं कि वह पारिवारिक परंपरा निभाए, लेकिन गोपाल का मन केवल सुरों में बसता है। उसकी प्रतिभा से कई लोग ईर्ष्या भी करने लगते हैं। दरबारी संगीत प्रतियोगिता से पहले दोस्तों उसके विरोधी छल करते हैं और उसकी आवाज छिन जाती है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। आवाज खो चुका गोपाल टूट जाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है गोपी से। गोपी उसका हौसला बनाती है। साधना, विश्वास और कठिन परिश्रम के बाद गोपाल फिर से अपनी आवाज प्राप्त करता है और अंत में वह संगीत प्रतियोगिता जीतकर यह सिद्ध करता है कि सच्ची कला को कभी हराया नहीं जा सकता।

साथियों, बसंत बहार का संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। शंकर जयकिशन ने यह साबित कर दिया कि शास्त्रीय संगीत भी लोकप्रिय हो सकता है। फिल्म के गीतों को मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मन्ना डे और पंडित भीमसेन जोशी जैसे महान गायकों ने स्वर दिया। सत्या विशेष रूप से कीर्ति गुलाब जूही में मन्ना डे और भीमसेन जोशी की जुगलबंदी हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में अमर मानी जाती है।

दोस्तों, इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म की शूटिंग में संगीत की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। साथियों, मन्ना डे स्वयं कहते थे कि भीमसेन जोशी के साथ गाना उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। फिल्म का लगभग हर गीत किसी न किसी शास्त्रीय राग से प्रेरित है। दोस्तों, आज भी संगीत सीखने वाले जो विद्यार्थी हैं, इस फिल्म के गीतों को अध्ययन सामग्री की तरह सुनते हैं। साथियों, शंकर जयकिशन हिंदी फिल्म संगीत के सबसे सफल संगीतकारों में से गिने जाते हैं, लेकिन बसंत बहार उनके करियर की सबसे कठिन फिल्मों में से एक थी, क्योंकि पूरी फिल्म शास्त्रीय संगीत पर आधारित थी। उन्होंने भारतीय रागों को सरल और लोकप्रिय रूप से देकर हर वर्ग के श्रोताओं तक पहुंचाया है। साथियों, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने ऐसे गीत लिखे हैं जिनमें कविता भी है, दर्शन भी और संगीत की आत्मा भी। उनके शब्द आज भी उतने ही प्रभावशाली लगते हैं जितने कि 1956 में लगते थे।

0: दोस्तों, आज हमने जाना एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत को घर घर पहुंचाया। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ थी आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। लीजिए अब सुनते हैं समाचार
1: कुछ और गीता दे नाल।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते न्यूजीलैंड दे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने अज ऑकलैंड च वफद पद्धरी गलबात कीती। दोहां देशां ने पंज महत्वपूर्ण समझौतियां ते दस्तखत कीते ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज विशाखापट्टनम च स्वदेशी तौर ते विकसित स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी नूं समुद्री फौज दे बेड़े च शामिल कीता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लाइब्रेरियां दी अहमियत नूं उजागर करदिआं नौजवान पीढ़ी नूं इन्हां नाल जुड़न दी अपील कीती है। केंद्रीय सड़क आवाजाई ते शाहराह मंत्री नितिन गडकरी ने अज नागपुर विच ब्रिक्स देशां दे ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की तीजी मीटिंग की प्रधानगी की। भारत इंग्लैंड दरमियान पांच मैचों की 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लड़ी का पांचवां ते आखिरी मैच अज साउथहैम्पटन विखे खेडिया जाएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने अज ऑकलैंड विच वफद पद्धरी गलबात कीती। दोहां देशां ने रक्षा, पशु पालन ते डेयरी, सैर सपाटा, खेडां ते आफत प्रबंधन नाल संबंधित पंज महत्वपूर्ण समझौतियां ते दस्तखत कीते। रक्षा खेतर दे समझौते नाल फौजी सहयोग ते रणनीतिक भाईवाली नूं हुलारा मिलेगा। पशु पालन ते डेयरी संबंधी समझौता खोज, नवीनता ते उन्नत तकनालोजियां दे आदान प्रदान नूं उत्साहित करेगा। सैर सपाटे संबंधी समझौता दोवां देशां विचकार सैर सपाटे दे यात्रा नूं सहयोग नूं वधाएगा। खेडां दे खेतर विच इक सांझी कार्य योजना भी अपनाई गई है, जदों के आफत प्रबंधन समझौता आफत तैयारियां, राहत अते बचाव कार्यां विच सहयोग मजबूत करेगा। गलबात दौरान श्री मोदी ने कहा कि 40 सालां बाद किसे भारतीय प्रधानमंत्री दा न्यूजीलैंड दा दौरा दोहां देशां विचकार संबंधां विच इक इतिहासक मील पत्थर है। उन्होंने कहा कि दोहां देशां ने एक रणनीतिक भाईवाली स्थापित करने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जो भविख के सहयोग नूं एक नवी दिशा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते च हुई प्रगति की शलाघा की ते कहा कि भारत अते न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत खेतर विच शांति, स्थिरता अते सुरक्षा नूं मजबूत करने विच महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते ने। बाद विच दोहां प्रधानमंत्रियों ने ऑकलैंड विच गलबात कीती। भारत न्यूजीलैंड व्यापारिक शमूलियत 2026 प्रोग्राम विच भी हिस्सा लिया। इस मौके ते श्री मोदी ने कहा कि भारत अते न्यूजीलैंड विचकार सिर्फ 9 महीनों विच मुक्त व्यापार समझौते का पूरा होना दोवां देशां विचकार मजबूत भरोसे का प्रमाण।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रवाबित को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक बुलंद किया है। साल 2030 तक बाहमी तिजारत को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का हदफ रखा गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में जंगी जहाज INS महेंद्रगिरी को शामिल किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, खुद मुख्तार और मुस्तकबिल के लिए तैयार दिफाई फौज बना रहा है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के तावुन को मजबूत करने की खातिर ब्रिक्स वजारती एलामिया 2026 को इख्तियार किया गया है। बावी तूफान के सबब जापान और ताइवान में परवाजों को मनसूख करना पड़ा और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज इंग्लैंड के साउथैम्पटन में पांचवें और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और आज रात फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से, जबकि अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड ने आज अपने ताल्लुकात को तौसी देकर दिफाई शराकतदारी तक पहुंचाया और उन्होंने अशिया और खिदमात के शोबे में अपने सालाना दो तरफा ताल्लुकात को साल 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए की मालियत तक ले जाने के लिए 5 साल का वक्त मुकर्रर किया। ये फैसला ऑकलैंड में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के दरमियान बातचीत के बाद किया गया। मीटिंग में कई ठोस फैसले किए गए। इन कई फैसलों में से एक, अगले 4 साल में ताल्लुकात को तौसी देने का एक खाका, भारत बहरुल काहिल समंदरी तावुन में इजाफा करने का फ्रेमवर्क और भारतीय बहरिया नीज न्यूजीलैंड की दिफाई फौज के दरमियान एक दो तरफा लॉजिस्टिक्स मदद का मुआहिदा शामिल है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका ऐलानिये में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने भारत बहरुल काहिल के बारे में एक दूसरे को अपने ख्याल से आगाह किया, जिससे एक आजाद, खुले और खुशहाल खित्ते के तई उनके मुश्तरका अज़्म का इयादा होता है। उन्होंने खुद मुख्तारी की हिफाजत, इलाकाई सालिमियत और उसूलों पर मबनी बैन अल-अक़वामी निज़ाम की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने एक मुतवाजन, जामे और बाहम फायदेमंद भारत न्यूजीलैंड आज़ाद तजारती मुआहदे की तकमील और इस पर दस्तखत किए जाने का खैर मकदम किया। उन्होंने इस मुआहदे को जल्द अज जल्द लागू किए जाने और इस पर मुअस्सर तौर पर अमल किए जाने को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते रिश्तों के लिए न्यूजीलैंड में भारतीय बिरादरी का अहम रोल है। ऑकलैंड में भारतीय बिरादरी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे और मजबूत ताल्लुकात हैं।
1: हर युग में, हर दौर में भारत ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है और इसका कारण है हमारी सीखने की ललक। भारत सबसे सीखता है। हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने किसी फर्द की शख्सियत को बनाने में लाइब्रेरियों की अहमियत को उजागर करते हुए मुल्क की नौजवान नस्ल से कहा है कि वो लाइब्रेरियों का इस्तेमाल करें। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह करते हुए जनाब शाह ने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण एक अजीम मुजाहिद आज़ादी, मुफक्किर और कौमी लीडर थे जिन्होंने मुल्क के लिए अहम खिदमात पेश की थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क को और उसके लोगों को समझने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रिवायती दिफाई सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजियों को मजबूत करके एक ताकतवर, खुद मुख्तार और मुस्तकबिल के लिए तैयार दिफाई फोर्स बना रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की जंगें हो सकता है कि मस्नूई जहानत और दीगर उभरती हुई टेक्नोलॉजियों से लड़ी जाएं, लेकिन बिलाखिर वो बहादुर सिपाहियों और बासलाहियत फौजी ताकत के साथ ही जीती जाएंगी। छठे प्रोजेक्ट 17A के तहत मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्रगिरी F-38 को आज आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में मशरकी बेड़े में शामिल किए जाने के मौके पर जनाब राजनाथ सिंह खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि IND महेंद्रगिरी को शामिल किया जाना भारत की बहरी ताकत और मुल्क में ही तैयार करने की दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने की सम्त एक संगे मील है।
3: समुद्र हमारे सिक्योरिटी के साथ साथ हमारे ट्रेड, हमारे व्यापार, हमारी सप्लाई चेन, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की भी एक लाइफलाइन। आज के समय में पूरी दुनिया की निगाहें इंडो पैसिफिक रीजन पर और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में, एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है।
0: सड़क ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में तीसरी ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वजरा की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के बाद नामानिकारों से बात करते हुए जनाब गडकरी ने बताया कि शराकतदारों ने सड़क, रेल, फजाई और आबी ट्रांसपोर्ट को कार्बन के बगैर बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया और मुतबादल बायो ईंधन और आलूदगी से पाक टेक्नोलॉजियों को अपनाने पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि ज्यादा मरबूत, लचकदार और पायदार ट्रांसपोर्ट शोबे के लिए तावुन को मजबूत करने की खातिर ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के दरमियान जदीद टेक्नोलॉजियां और इख्तिरात का तबादला किया जा रहा है। ब्राजील, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, इथियोपिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के ट्रांसपोर्ट वजरा ने भी इस मीटिंग के दौरान अपने ख्यालात और बयानात पेश किए। रेलवे और IT के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज हैदराबाद को एक बड़ा तेज रफ्तार रेलगाड़ियों का हब बनाने का ऐलान किया। हैदराबाद को बुलेट ट्रेन के साथ पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु के साथ जोड़ने की तजवीज़ रखी गई है। हैदराबाद में एक सनती तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार रेल नेटवर्क सफर के वक्त को कम करेगा और जनूबी भारत के बड़े इक्तिसादी मरकजों के दरमियान कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। तूफान बावी आज मशरकी बुहेराए चीन में शिद्दत

0: के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके बाइस जापान के जनूबी जजायर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जबकि ताइवान और मशरकी चीन तूफान से निमटने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। 144 किलोमीटर फी घंटे की ज्यादा से ज्यादा मुसलसल रफ्तार वाली हवाओं के साथ इस तूफान के बारे में पेशगोई की गई है कि ये चीन के सूबे जेजियांग में कल सुबह सवेरे खुश्की से टकराने से पहले ताइवान के शिमाल से गुजरेगा। हुकाम ने समंदर में तुगयानी और बुलंद लहरों की वार्निंग जारी की, जिसकी वजह से जापान के ओकिनावा सूबे में 200 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी गईं और स्कूल भी बंद करने का ऐलान किया गया है। भारत साउथैम्पटन के यूटिलिटा बोल में T20 बैनुल अक्वामी सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच में आज इंग्लैंड से मुकाबला करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड 3-0 की बढ़तरी के साथ सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका है। फीफा आलमी कप में दीकर क्वार्टर फाइनल्स में आज रात मियामी गार्डन्स में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कैंसस सिटी में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रवाबित को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक बुलंद किया है। 2030 तक बाहमी तिजारत को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का हदफ रखा गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में जंगी जहाज INS महेंद्रगिरी को शामिल किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, खुद मुख्तार और मुस्तकबिल के लिए तैयार दिफाई फौज बना रहा है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के ताबुन को मजबूत करने की खातिर ब्रिक्स वजारती एलामिया 2026 को इख्तियार किया गया है। बावी तूफान के सबब जापान और ताइवान में परवाजों को मनसूख करना पड़ा और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और आज रात फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से, जबकि अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिडडे न्यूज। The headlines. India and New Zealand elevate ties to strategic partnership, set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. Prime Minister Narendra Modi says Indian community across New Zealand is a vital part of the shared journey among two nations, addresses Indian diaspora in Auckland. Defence Minister Rajnath Singh commissions indigenous stealth frigate INS Mahendragiri, says India building a strong, self-reliant and future-ready defence force. BRICS Ministerial Declaration 2026 adopted to strengthen technological and innovation-driven cooperation in transport sector. Typhoon Bavi forces flight cancellations and school closures in Japan and Taiwan. India to face England in fifth and final T20 international in Southampton, England this evening. And in FIFA World Cup, Norway to take on England and Argentina to face Switzerland in quarterfinals tonight. And now the news in detail. India and New Zealand today elevated their ties to a strategic partnership and set a 5-year target to double their annual bilateral trade in goods and services to 35,000 crore rupees by 2030, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon in Auckland. Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
2: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: Mr. Modi thanked the people and leadership of New Zealand for their warmth and support, saying the visit of an Indian Prime Minister after 4 decades reflects the growing strength of the partnership. Hailing the Free Trade Agreement or FTA between the two countries, Mr. Modi appreciated New Zealand's efforts in concluding the FTA process in a short period and thanked Prime Minister Luxon and his government for their leadership.

0: that the two countries have now taken a significant step by establishing a strategic partnership which will guide future cooperation.
1: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं।
0: Speaking on the occasion, the New Zealand Prime Minister announced that India and New Zealand will establish a strategic partnership to provide a broader framework for expanding cooperation across key sectors.
2: Today, I'm pleased to announce that Prime Minister Modi and I have agreed to elevate our relationship to a strategic partnership. And this is a significant step forward in a world that is increasingly volatile and uncertain. Strong partnerships are more important than ever before. And this provides a stronger platform for practical cooperation in prosperity, security, and people-to-people connections.
0: Prime Minister Modi has said that the Indian community in New Zealand is a vital pillar of the growing partnership between the two countries. He said that from Auckland to Wellington, from Christchurch to Queenstown, the Indian community spread across every corner of New Zealand is a vital part of this shared journey. Now we go over live to the Prime Minister addressing the Indian diaspora at a community event in Auckland.
1: अब इतना लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अब 40 साल नहीं लगेंगे, ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं, करूं? हां कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले हमारी इंडियन डायस्पोरा के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया है। हमारे बच्चे भारत को समझे और भारत की विविधता की बात दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए हमने भारत को जानो क्विज इसकी शुरुआत की है। अभी इसका कर्टन रेजरी हुआ है और हमारे साथियों ने इसमें ही जिस एनर्जी से पार्टिसिपेट किया है, मैं वही देखकर बहुत प्रभावित हूं।
0: डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज सेड टुडे दैट इंडिया इज बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंट एंड फ्यूचर रेडी डिफेंस फोर्स बाय स्ट्रेंथनिंग बोथ कन्वेंशनल डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज। He said future wars may employ artificial intelligence and other emerging technologies, but they will ultimately be won by national resolve, courageous soldiers, and capable military power. The defense minister said technology and conventional military strength complement each other, and India is committed to excelling in both under the vision of Atmanirbhar Bharat. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the sixth Project 17A indigenous stealth frigate, into the Eastern Fleet at Visakhapatnam today. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability.
3: मल्टीफंक्शन रडार के साथ
4: इट हैज अ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कॉम्बिनेशन विद अ मल्टीफंक्शन रडार दैट कैन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एनी थ्रेट कमिंग फ्रॉम द स्काई फ्रॉम अ डिस्टेंस। and it has an indigenous rocket launcher, torpedo launchers, an integrated anti-submarine defense system, an electronic warfare suit, and a close-in weapon system too. These all things make INS Mahendragiri as invincible and strong as the Mahendragiri mountain.
3: Mahendragiri parvat ke saman hi abhed aur majboot banati hai.

0: reinforces the need to improve maternal and child health through informed reproductive choices and quality family planning services. On to sports. India will face England in the fifth and final T20 international of the series today at Utilita Bowl in Southampton. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. England has already clinched the series with a 3-0 lead, while India will be aiming to register a consolation victory before the teams move on to the ODI series. In the FIFA World Cup, Norway will take on England, while defending champions Argentina face Switzerland tonight in the quarterfinals to determine the remaining semi-finalists. Spain and France have already booked their places in the last four. Spain secured a thrilling 2-1 victory over Belgium to advance, while France progressed with a comfortable 2-0 win over Morocco. The winners of tonight's quarterfinals will complete the semi-final lineup of the FIFA World Cup 2026. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and New Zealand elevates ties to strategic partnership, set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. Prime Minister Narendra Modi says Indian community across New Zealand is a vital part of the shared journey among two nations, addresses Indian diaspora in Auckland. Defence Minister Rajnath Singh commissions indigenous stealth frigate INS Mahendragiri, says India building a strong, self-reliant and future-ready defence force. BRICS Ministerial Declaration 2026 adopted to strengthen technological and innovation-driven cooperation in transport sector. Typhoon Bavi forces flight cancellations and school closures in Japan and Taiwan. India to face England in fifth and final T20 international in Southampton, England this evening. And in FIFA World Cup, Norway to take on England in Argentina to face Switzerland in quarterfinals tonight. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरि का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े पांच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।

0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
1: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
1: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
1: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लीड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीज

0: INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती है।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की यह बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चलीं और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गईं। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
3: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में स्मॉल सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाय इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
1: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए हैं। मानुष्रोतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है अगले कार्यक्रम का, जिसका नाम है एक ही कलाकार। आदाब, सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपकी अपनी दोस्त और इस लाइव रेडियो कार्यक्रम की होस्ट रहना तवर का खुशनुमा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम शुरू करने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हमारे सभी श्रोताओं को का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है एक ही कलाकार, और आज का ये आधा घंटा समर्पित है एक ऐसे अभिनेता को जिनका आज ही के दिन यानी 11 जुलाई को जन्मदिन होता है। तो सबसे पहले आकाशवाणी की ओर से हमारे इस अभिनेता को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और वो ये अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से लाखों दिलों की धड़कन बनकर इतिहास रच दिया। जी हाँ, तो इसी फिल्मी सफर में मेरे साथ यानी रैना तंवर के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि रैना है तो कुछ तो आपको कहना है। फिर जल्दी से फोन उठाएं और बताएं हम किस अभिनेता की आज फिल्मी दुनिया रोचक किस्सों और बातों नगमों को बहार को आज पेश करेंगे। आपको बस करना क्या है, आपको अपना जवाब लिखकर हमें भेजना है इस ईमेल आईडी पर, जो कि है ipradiodelhi@gmail.com। जो हमें सबसे पहले मैसेज करके सही जवाब के साथ हमें मैसेज करेगा वो हमारे आज के इस एक ही कलाकार कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता होगा। तो आपके

0: आपका इंतजार रहेगा इन्हीं अभिनेता के इस खूबसूरत नगमे के साथ।
1: ओए तौबा, ओए तौबा, ओए तौबा, क्या आवाज है।

जल्दी से गेस कीजिए और मैसेज कीजिए, इंतजार है आपके मैसेज का। और जो सबसे पहले मुझे मैसेज करेगा वो हमारे आज के इस कार्यक्रम का होगा फेवरेट श्रोता।

यस ओए तोबा, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं और जिन्होंने हमें सबसे पहले मैसेज करके सही जवाब दिया है वो है तुलसी मस्कीन। जी हाँ, और उन्होंने सही जवाब दिया है, सबसे पहले सही जवाब दिया है। तो आज आपको मिलता है हमारा फेवरेट श्रोता का खिताब। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो सभी श्रोताओं का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस बॉलीवुड सितारे की जिनका असली नाम मनोज तुली था, मगर फिल्मी दुनिया में उन्हें कुमार गौरव के नाम से जानते हैं। 11 जुलाई 1956 उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे प्रसिद्ध सुपरस्टार राजेंद्र कुमार इनके पिता थे, जिन्हें जुबली कुमार के नाम से भी जाना जाता था। और

में बहुत सारे मैसेज आए हैं, जिसके लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमें दिग्दर्शन गौर जी ने मैसेज किया है मेरठ से, और कविता गौर जी ने भी किया है, इसी तरीके से हमें बहुत मैसेज आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा। और नितेश देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूनाराम, कृष्णा देवांगन, स्वर्ण सिंगिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज

से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशुरिधान खुराना जी ने, और तनुजा जी ने भी हमें नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल, सावित्री बाई। तो अब हम सुनते हैं इनका ये अगला नगमा, बहुत ही खूबसूरत है।

जी हाँ, दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए। ये खूबसूरत सा नगमा तेरी कसम फिल्म से है और अमित कुमार की आवाज़ का ये खूबसूरत नगमा आपने अभी सुना। और आपकी पढ़ाई यानी कि इनकी पढ़ाई जब पूरी हो गई थी तो कुमार गौरव ने अपने ही पिता के प्रोडक्शन में बनी फिल्म लव स्टोरी से डेब्यू किया और ये फिल्म उस जमाने की ना ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हमारे पास इसी तरीके से ब्लॉकबस्टर मैसेजेस आ रहे हैं और इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हमें फारूक जी ने आदाब भेजा है और कुन्नौर यूपी से उन्होंने हमें मैसेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। हिरमानी वर्मा जी ने भाटा पारा से, अजीत भावस्कर ने जी, सुदर्शन मुखी ने अनीता, सिमरन शांति नगर सोनीपत से और इसी तरीके से धर्मेंद्र छिप्पा जी ने हमें, कपिल छिप्पा, पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से हमें मैसेज कर रहे हैं और उन्हें ये कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमें तुलसी मस्कीन जी ने भी हमें दोबारा हमें मैसेज किया है और गाने के लिए उन्होंने कहा बहुत खूबसूरत नगमे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हरजिंदर सिंह छिंदा और गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता और गीता भी हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम में। और हम बात कर रहे हैं जी कुमार गौरव की, जो अभिनेता बहुत ही खूबसूरत, उन्हें चॉकलेटी फेस और कहते हैं ना, उनकी जो मासूम मुस्कान थी युवाओं के दिल को छू जाती थी और रोमांटिक अंदाज और उनका हेयर स्टाइल युवाओं के बीच एक फैशन का ट्रेंड बन गया। और इसी तरीके से ट्रेंड बन जाती हैं कोई चीज़ें तो वो कोई कोई कलाकार होते हैं जो अपनी छाप दिलों में छोड़ जाते हैं कुछ इस तरह के नगमों के साथ।

किस किस ने अपने जमाने में ये गाना फिल्माया गाया किसी के लिए, तो ये मैसेज करके मुझे जल्दी से बताइए. ip radio delhi@gmail.com ip radio delhi@gmail.com.

ये गाना मेरा इतना फेवरेट है कि इस गाने को सुनते सुनते मैं भी थोड़ी बम्बल कर गई। खैर, और इतनी सारी चीज़ें हैं कि दिमाग में चलती हैं, आपसे बातें भी करनी हैं, कुछ नगमे भी सुनाने हैं, कुछ किस्से भी करने हैं। और जिन्होंने अभी भी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और मैं हूँ रैना आपके साथ, और अपना आपका कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें हम आज परिचित करा रहे हैं अभिनेता कुमार गौरव के फिल्मी सफर, उनका जीवन से जुड़े किस्से और खूबसूरत नगमों को। कुमार गौरव का बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के साथ बड़ा ही गहरा रिश्ता है। जब 1993 में संजय दत्त मुश्किलों में फंसे थे, तब कुमार गौरव ने उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। और कहा जाता है कि फिल्म लव स्टोरी की सफलता से पहले इनकी सगाई राजकुमार साहब की बेटी रीना कपूर के साथ हुई थी, मगर किसी कारणवश सगाई टूट गई और 1984 में अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस की बेटी नम्रता दत्त से उनकी शादी हुई। और इसी तरह से बहुत सारे मैसेज हमें आए हैं, आपका प्यार अगर इस तरह से आता है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमें आया है वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा जी का मैसेज, हमें आया है धर्मेंद्र चिप्पा जी का आया है, और इस तरह से बहुत सारे मैसेज हमें किए जा रहे हैं। उषा मोहन जी का भी हमें मैसेज आया है, और फारूक अली खान जी का हमें मैसेज आया है, और फरहीन फरहान फारिया ताहिरा, इन्होंने हमें मैसेज किया है। और इसी तरीके से उषा मोहन जी ने पीटीआई संसद मार्ग से हमें अनिल मोहन जी मैसेज कर रहे हैं, एक ही कलाकार के बहुत सारे श्रोता हैं जो हमें मैसेज करते हैं। हीरामणि वर्मा जी हमें भाटा छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज कर रहे हैं, और इशक मोहम्मद जी ने हमें छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज किया है। खतीबा मेगम मोहम्मद अशफाक आफरीन कौसर और मोहम्मद अल्ताफ नीलोफर फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इस प्रोग्राम के साथ हमें जो उन्हें अच्छा लग रहा है, रोजी डे कास्ट्रो के उन्होंने जॉन डिकोस्ट्रा रोजी पर्ल और विलिस ने भी हमें मैसेज किया, उनको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, कार्यक्रम सुनने के लिए और हमारे हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुनते हैं ये वाला अगला नगमा।

बिल्कुल, जिंदगी 4 दिनों की है, इसे खूबसूरती से बिताइए ना, क्यों गिले शिकवे और रोना धोना करें, अच्छे से जिंदगी बिताने का ही तो नाम है। और अभी हमें इसी तरीके से रोहित वशिष्ठ जी ने भी मैसेज किया है, राधा किशन, नवल किशोर और मधु, पूनम जोशी, शुभलता, प्रेम सागर का हमारे पास मैसेज आया है। और फिर उसी तरीके से हमें प्रकाश वर्मा जी ने भी मैसेज किया है, प्रिंस निखिल यशस्वी ने हमें मैसेज किया है। और उसी तरीके से हमारे पास महाराष्ट्र से यवतमाल विदर्भ और संतोष खडसे और विनोद खडसे जी का मैसेज आया है। और फारूक अली खान जी ने भी हमें मैसेज किया है, संदेश भेजा है। और इसी तरीके से आप हमें प्यार भेजते रहें और हम आपका प्यार इसी तरीके से स्वीकार करते रहेंगे। पहली फिल्म जबरदस्त सफलता के बाद कुमार गौरव जी की कई फिल्में जैसे तेरी कसम और स्टार बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, तब पिता राजेंद्र कुमार ने गौरव की करियर को वापस पटरी पर लाने के लिए 1986 में फिल्म नाम बनाई, जिसमें लीड रोल अभिनेता संजय दत्त को दिया, जिससे सफलता उन संजय दत्त की भी जो डूबता करियर था वो भी चमक गया। धीरे धीरे कुमार गौरव ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और मालदीव और खूबसूरत पर्यटन स्थलों पे ट्रेवल मैनेजमेंट कंपनी और कंस्ट्रक्शन कंपनी का बिजनेस खोलकर सफलता हासिल की। और आज वो अपनी पत्नी नम्रता दत्त और दोनों बेटियों साची और सिया के साथ एक बेहद शांत और सामान्य जीवन बिता रहे हैं। और जाते जाते ये वाला सॉन्ग तो हम सुना कर रहेंगे भाई, हमें बेहद पसंद है। और यही कहूँगी कि भाई निराश कभी ना हुए, है ना, और हमारा कार्यक्रम तो सुनते ही रहते हैं, इसी तरीके से सुनते रहिए। और ये सुनते हैं ये वाला रकमा।

भाई मुझे भी मत भूलिएगा। और संदीप मक्कड़ जी ने ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल और शांतनी पिंगा और चौवक खोरप जालंधर से हमें मैसेज कर रहे हैं। और उसी तरीके से बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए हैं। संतोष खाड़ी से कमी मैसेज आया है, और फिर अनिल मोहन जी ने मैसेज भेजा है कि फिल्म लस्टोरी के लिए बहुत सारे गीत हैं जो उन्होंने सुना। हमने बहुत कोशिश की आप सभी के नामों को इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम कहेंगे बातें बहुत हैं मगर समय वहीं, बस याद रखिएगा आज के दौर में भरोसा बनाना बहुत मुश्किल है, तो कभी किसी का भरोसा ना तोड़े, उसी तरह ट्रैफिक रूल्स का को भी ना तोड़े। एक सभ्य और एक अच्छा नागरिक बने, जितनी किसी की मदद कर पाएं करें, कुछ ऐसा करें जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कान और आपके दिल को मिले सच्चा सुकून। तो सुनते रहे आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली इंद्रप्रस्थ चैनल, क्योंकि हर आवाज़ कुछ कहती है मेरे दोस्त।

अभी आप सुन रहे थे एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब अगले कार्यक्रम का समय हुआ है, घड़ी के अनुसार 3 बजने को है, और अब समय हुआ है हमारे अगले कार्यक्रम बज्र माधुरी का।

0: नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो हमारे ब्रज में कोई भी आवे, चाहे वो भारत भूमि के काऊ भूभाग ते आयो भयो श्रद्धालु है या वो विदेशी कोई श्रद्धालु है, पर हमारी ब्रज संस्कृति को जो आकर्षण है ना वो राधे राधे के भाव में समाहित है। यानी कि जो राधे राधे की बात है वो हमारे ब्रज में अभिवादन को ना बहुत बड़ो आधार है।
1: अरे चंपा जी, आप भारत के संदर्भ में जब बात करेंगे तो पूरे भारत में अभिवादन के अनेकानेक शब्द हैं।
0: जी
1: अभिवादन दूसरे को स्वागत है,
0: जी
1: तो ये जो संवाद के और अभिवादन के अनेक रूप हैं, या को तो अगर हम देखें तो मनुस्मृति में बहुत सुंदर सो वर्णन है।
0: जी
1: आपको याद हो तो हमने 6वीं या 7वीं क्लास में एक श्लोक पढ़ो, आपने पढ़ो होगा।
0: नृत्य गोपाल जी, हमने तो पढ़ो है और याद भी है, पर बता आप दियो।
1: हाँ, बहुत चतुराई थे आपने बात कह दी है। पर देखो, हमने अभिवादन को एक श्लोक पढ़ो।
0: बताओ।
1: अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम्।
0: जी
1: यानी जो अपने बड़ेन को, आगंतुकन को, दूसरेन को आगे से चल के जो अभिवादन करे,
0: जी
1: वाकू चार चीज अपने आप ही प्रकृति से मिल जाए।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, देखो ये हमारी संस्कृति को परिचायक है कि हमारे सामने कोई बड़ो मिल गयो तो हम बातें नेक विनम्रता पूर्वक सिर झुका के हाथ जोड़ के राम राम कर लेंगे, श्याम श्याम कर लेंगे और नमस्कार कर लेंगे। अगलो वैसे ही कुशल क्षेम पूछेगो, वो कुशल क्षेम पूछेगो तो आप अपनी एक बात दो बात बताओगे तो आपको मन हल्को होएगो। बाकी परिणति ये होगी कि आपके मन को भी लगेगी कि चलो मैंने कितनो भलो काम करो, अभिवादन करो, दूसरे ने मोते मेरी कुशल क्षेम जानी, मोकू हिम्मत बढ़ाई, कोई बात ऐसी हते या मोकू आगे बढ़वे की जो सीख है तो सीख की बात बताई है। तो जो ये अभिवादन की परंपरा है ना, या के इतने आयाम हैं कि जरूरत तो या बात की है कि हम या परंपरा की ओर अग्रसर हुए।
1: जी हाँ चंपा, देखो तनिक आप याद करो ना कि हम ब्रज में जब चले
0: जी
1: तो हमारी बहन बेटी कोई घूंघटू मार के बहू निकल रही होगी,
0: हाँ
1: तो बड़ी बूढ़ी के चरणन में तनिक हाथन्ने कर दे,
0: पामन लगूं
1: पामन लगूं कह दे।
0: जी
1: और पामन लगवो कहते ही दूधन नहाओ पूतन फलो, तेरे
0: जी
1: भैया बहन बने रहे।

0: तेरो सुहाग बनो रहे, तेरे बाल बच्चे खूब बड़े हो।
1: हाँ आशीर्वचनन की जो बौछार है ना नृत्य गोपाल जी, बस बा में तो सरावर हो जाए अभिवादन करवे बारो। तो ये हमारी ब्रज धरा की ना एक अपने आप में इतनी समृद्ध विरासत है, इतनी समृद्ध संस्कृति है ना कि हर कोई ना यहाँ आवे है, यहाँ के नेह के वातावरण में रच बस जाए, पले बढ़े है। इच्छा यही हो कि मैं क्यों ना यहीं कोई बास कर लूं, यहीं कोई निवासी है जाऊं, यहीं पे ही बस जाऊं।
0: चंपा जी तनिक देखो, आशीर्वाद ऐसी चीज हो, या को वर्णन तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जी में जब वर्णन कर रहे हो ना कि राम जहाँ जहाँ है कि निकले वे सब संतन को बड़े को अभिवादन करके निकले
1: जी।
0: और आप गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कही कि प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहीं माथा।
1: जी
0: बोले सुबह सुबह उठ के राम जी कहा करें, बोले माता पिता और गुरु के चरण वंदन करें और याते अनेक अनेक आशीष प्राप्त करें।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी बिल्कुल सही बात है।
0: चंपा जी तनिक देखो कि जब राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या ते चले ना
1: जी,
0: तो सीता जी ने तो सबसे पहले सरयू जी को गंगा जी को नदीन के काजे प्रणाम करयो।
1: तो नृत्य गोपाल जी इन परम पावनी नदियन को प्रणाम सम्मान करते हुए हम एक भक्ति रचना अपने कार्यक्रम में सुन लें अब।
0: जी हाँ श्रोताओं आओ सुने ये भक्ति रचना।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये भक्ति रचना सुन रहे हते तो नृत्य गोपाल जी।
1: जी चंपा जी,
0: देखो जो ये अषाढ़ को महीना चल रहे हो ना, तो यहाँ में जो हमारे ब्रज को लोक जीवन है, चाहे तो अध्यात्म की बात करें या भक्ति भाव की करें या आम जनमानस की बात करें, तो अपने आप में ही है ना एक ऊर्जा को सो जो वातावरण है ना वो चारों ओर दिखाई पड़ रहे हो।
1: अब तनिक देखो ना चंपा, अगर आप अध्यात्म की बात करेंगे तो अभिवादन में राम राम जी कहें, राधे राधे कहें, जय श्री कृष्ण कहें, जोहारे कहें, भेंट कहें, या सब में तो हमारे लोक की ही ऊर्जा दिखाई पड़े है।
0: और नृत्य गोपाल जी, अषाढ़ को महीना परम पुनीत महीना है और यहाँ में देखो 84 कोस की जो परिक्रमा है उनको शुभारंभ हो गए हो, तो ये जो ध्वनि है अभिवादन की वो तो अपने आप में चारों ओर सुनाई पड़ रही है कि जो सुन रहे हो वही सुन के गदगद हो रहे हो। तो नृत्य गोपाल जी, फिर ऐसा करें कि काऊ चर्चा की ओर अपने भैया बहनान को ले चलें।
1: जी हाँ चंपा, अवश्य ले चलो। जी हाँ श्रोताओ, आज आपको सुनवा में एक भेंट वार्ता जाको विषय है आषाढ़ मास में आध्यात्म और लोक चेतना का समागम, और यह भेंट वार्ता में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित हैं चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार जी, और उनते बात कर रही है आपकी चंपा बहन।
0: ब्रज माधुरी कार्यक्रम में चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
2: सब श्रोता भैयन को राधे राधे। चंपा जी आपने बुलायो, जाके काजे आपको धन्यवाद।
0: सिकरवार जी देखो, हमारा तो जो भारत देश है तो वैसे तो अनेक ऋतुओं को और पर्वन को देश है, कितनी ऋतुआ में और हर ऋतु के ना अपने पर्व हैं, त्योहार हैं, और ब्रज में तो बड़ी विलक्षण परंपरा है, हम सब जाने ही हैं कि यहाँ 7 वार और 9 त्योहार हैं। तो यही क्रम में देखो, जो ये अषाढ़ को महीना चल रहे हो ना, तो यहाँ में आध्यात्म को तो अपना स्वरूप है ही, हम देख रहे हैं कि जो लोकमानस है, जो जनमानस है ना, उनकी जो भावनाएं हैं वो भी अनेकानेक रूप में प्रस्फुटित हो रही हैं। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो ये अषाढ़ को महीना है ना, या में जो हमारे ब्रज की संस्कृति को और हमारे जो ब्रज को लोक जीवन है बाको कहा विशेष महत्व है।
2: चंपा जी, जे अषाढ़ मास के बारे में आपने पूछो है, बहुत बढ़िया सवाल है
0: जी।
2: जब ब्रज भूमि को जो सांस्कृतिक जीवन है, जे जो है जो ऋतु चक्र हैं और धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं
0: जी,
2: हर महीना की वैसे तो अलग पहचान है, पर अषाढ़ मास की जो खास पहचान है वो जेठ की प्रचंड गर्मी के बाद जब वर्षा की पहली फुहार आवे,
0: पावस ऋतु लग जाए,
2: पावस ऋतु लग जाए, वासे जो धरती की जो शीतलता प्रदान हुए वासे जुड़े हुए जो महीना है
0: जी।
2: जो सूखी धरती यानी जेठ के जो सूखी धरती है, वर्षा ना हुए तो बाके बाद पहली हरियाली की चादर उड़वे लग जाए,
0: प्रकृति है वो हरी भरी चूनर को या अषाढ़ के महीना में उड़वे लग जाए। हाँ सही कह रहे हो। और आप तो सिकरवार जी यह बात को ज्यादा यू जानोगे, क्योंकि आप तो देखो बिल्कुल ही जड़न ते जुड़े भये हो, किसानी जीवन ते आपने अपने जीवन की शुरुआत करी है, आपके पास तो यह चीज को अपनो ही एक विशद अनुभव है। हम देखे हैं सिकरवार जी के जो ये ऋतु परिवर्तन होवे और प्रकृति को जो हरियालोपन है ऊया मास में दिखाई दे, पर हम देखे हैं कि धार्मिक दृष्टि से भी ये महीना है ना अषाढ़ को बड़ो महत्वपूर्ण महीना है।
2: अषाढ़ मास में ब्रज में खासकर जो लोक पर्व मनाए जाए वहाँ में गुरु पूर्णिमा जाए, मुड़िया पूनो कहे जाए
0: जी,
2: बहु आवे, गोवर्धन की परिक्रमा लगे, जाके अलावा जो है में सेवा दान और सामूहिक जो भक्ति को एक वातावरण बने, कजरी और जो मल्हार वर्षा के गीत गायो, हमारी जो गांवों में जो महिलाएं वो शुरू करें।
0: तो सिकरवार जी देखो, सावन की मल्हारन की जो बात आप कर रहे हो, कजरी गीतन की आप कर रहे हो, वो जो सावन की आहट अषाढ़ मास में होवे लग जाए है, पर अभी देखो जैसे आपने यूं कही के अषाढ़ को महीना तो पर्वन को महीना है, तो हमारे श्रोता भैया बहनान को ऐसे पर्वन के बारे में बताओ जिनकी ब्रज में विशेष मान्यता है या अषाढ़ के महीना में।
2: एक तो जगन्नाथ रथ यात्रा निकल है जो हमारे रंगजी मंदिर से वृंदावन में बहुत बड़ी है, जहाँ देश विदेश से लोग आमे और रथ खींच

0: बिल्कुल वैसे ही वातावरण है जैसे पुरी में हो।
1: जी। और एक जगन्नाथ जी को मंदिर हमारे वृंदावन में भी स्थित है ना, कौन
0: हाँ,
1: से घाट पे है?
0: केसी घाट पे है।
1: देखो सिकरवार जी, जो ये जगन्नाथ रथ यात्रा की आप अषाढ़ में कह रहे हो, एक तरफ तो ये भक्ति भाव और श्रद्धा को पर्व है, पर हम दूसरी तरफ या पर्व में देखेंगे प्रकृति को इतना बड़ा सानिध्य है कि भीगे भाई चना, भीगे
0: हाँ,
1: भाई मूंग,
0: मूंग,
1: आम,
0: हाँ
1: जामुन है, जो ये
0: बिल्कुल,
1: मौसमी और ऋतु फल है उनकी ही भोग प्रसादी हमें ठाकुर जी को इष्ट को
0: हाँ
1: निवेदित करी जाए
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल, बुई बुई लगाया जाए, भोग लगाया जाए बाको।
1: हाँ,
0: और
1: और शिकरवार जी, आप यह समागम की बात कह रहे हो, ये तो हमारे यहाँ जो पर्यटक आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्त ब्रज धरा में आ रहे हैं, बाकी बात रही, आप देखो कि जो हमारी ब्रज की लोक परंपरा है और जो हमारी ब्रज की लोक चेतना है ना, यह आषाढ़ के महीना को वाय का रूप में आप देखें।
0: चेतना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैसे ईश्वर केवल मंदिर तक ही सीमित ना आए, जाको एक संदेश दे जाए, जैसे मंदिर में जो जो हमारे
1: देवालय में
0: देवालय में के जो रथ खींचे वो
1: जी
0: भगवान जो है दर्शन देवी के काज खुद ही बाहर आ रहे हैं, और
1: जी
0: वहाँ में जो है सभी वर्ग के सभी तरीके के लोग जो है जाएं और रस्सी से भगवान ने खींचे, और ये बहुत बड़ा एक लोक उत्सव है, और ये भगवान से एक लोक को एक आत्मीय संबंध के रूप में देखा जाए एक तरीके से
1: मतलब
0: उदाहरण।
1: आपको कहवे को मतलब ये है सिकरवार जी के, जैसे भगवान जगन्नाथ अषाढ़ के महीना में जो रथ यात्रा निकलेगी, तो
0: जी
1: बाकी का जो कोई मतलब साधन की जरूरत ना है कि कोई बामे इंजन लगेगो, के कोई
0: हाँ
1: गाड़ी लगेगी, वह
0: बिल्कुल,
1: खींचवे को जो लोकमानस की ऊर्जा है उनकी, जो उनको जो शारीरिक सौष्ठव है वे ही रस्सी ने पकड़ के।
0: बे
1: हाँ,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो जो ये लोकमानस है ब्रज जीवन को और संपूर्ण भारत को भी हम देखें, तो वहां में जो आत्मीयता को लगाव है इष्ट के प्रति, बाको जी तो जाग तो उदाहरण है ये
0: बिल्कुल
1: रथ
0: बिल्कुल
1: यात्रा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वहां में तो जो है लकड़ी की रथ है और वही हर बार जो है भक्त खींचे और अपने को धन्य
1: धन्य
0: माने।
1: माने। तो शिकरवार जी, अब आप देखोगे ये जगन्नाथ रथ यात्रा की बात आषाढ़ मास में रही, हम देखें कि आषाढ़ शुक्ल की एकादशी है, जा में हमारे ब्रज में देव सोनी एकादशी भी कह
0: हाँ
1: में,
0: हाँ हाँ
1: और बाद ना हमारी जो भारतीय भी धार्मिक परंपराएं और जो हमारी ब्रज की मान्यता है उनमें भी ये त्योहार अपने आप में ना विशिष्ट स्थान रखे, तो याको ब्रज में कहा रूप है?
0: बिल्कुल सही सवाल करे आपने चंपा जी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव शयनी एकादशी माना जाए,
1: जी,
0: यानी विष्णु भगवान बाद चिर निद्रा में सो जाए,
1: चार महीना के
0: चार महीना
1: काजे
0: के काजे। तो
1: जी
0: आपने देखा होगा कि जिन 4 महीनों में शादी ब्याह आए हुए
1: जी
0: बैंड बाजे ना बजे, तो
1: जी
0: वो जो है वाको एक अलग महत्व, विष्णु भगवान जो माने जाए कि योग निद्रा में जो चले जाएं, तो
1: जी
0: जाए चातुर्मास प्रारंभ होता है जय दिना से
1: ब्रज में या की
0: एकादशी,
1: विशिष्ट कहा मान्यता है?
0: जाकि विशेष ये है कि ब्रज के जो मंदिर है उनमें विशेष पूजा हुए, भजन कीर्तन हुए, लोग व्रत रखें, और श्रद्धालु जा महीना में संयम से सात्विक से अपनों जो है भक्ति भाव में रहेंगे।
1: कि आपको कहने को मतलब है कि जो आस्था है, जो भक्ति को समागम है, बाकी जो धारा है वो या चातुर्मास में बह निकले,
0: बह
1: और
0: निकले
1: जो बाकी परंपरागत शुरुआत है वो चातुर्मास में
0: जी,
1: यानी कि देव शयनी
0: देव
1: एकादशी
0: शनि
1: दे बाकी
0: एकादशी से
1: शुरुआत
0: शुरुआत
1: हो जावे।
0: है जाए
1: तो
0: बिल्कुल।
1: हम देखे हैं सिकरवार जी कि कितने सारे जो पर्यटन के काजे जो लोग आम है उनकी अपनी मान्यताएं, पर जो आस्था को और श्रद्धा को भाव लेके जो श्रद्धालु और भक्त ब्रज आम है, तो हम देखे हैं कि वे 4 महीना के काजे ना ब्रजवास करें।
0: ब्रजवास वो माने जाए कि वो ब्रजवास करें, जैसे जमुना के किनारे
1: जी
0: भजन कर रहे हैं और वो जो है साधु संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं। इधर आपने देखा होगा कि आषाढ़ के बाद सावन महीना, ये जो महीना है 4 महीना, यहाँ में बड़ी भागवत होए, बड़ी
1: जी
0: जो है वो रासलीला होए,
1: वो तो
0: वो
1: एक उनकी
0: हाँ
1: आस्था हो गई, पर
0: जी
1: हम देखे हैं अपनी शारीरिक क्रियाएं उनके काजे भी, ये बड़ो पावन महीना है क्योंकि बहुत से लोग एक समय ही अन्न ग्रहण ब्रज में रह के करें, और उनकी जो खान पान की दिनचर्या है, उनकी जो खान पान की शैली है, वहां में इतने बदलाव देखवे के काजे मिले हैं कि हर कोई ब्रज धरा में जाए के और आए के अपने आप को ना बड़ो धन्य समझे
0: धन्य
1: है।
0: समझे, बिल्कुल सही बात कही आपने,
1: तो
0: बहुत सही।
1: सिकरवार जी, आपने भी कभी कोई ऐसे निविया तरीका को
0: ना
1: कोई
0: मैंने तो कोई साधना ना करी, पर मैं जान
1: जी
0: दूं कि चातुर्मास को हमारे ब्रज में महात्म है, और लोग जो है अपने कल्याण के काज हैं, अपने जो है जा महीना में पूजा पाठ करें और बाहर से हुआ में जा 4 महीना में श्रद्धा और भक्ति को वातावरण बने और चारों तरफ जो है हम देखें।
1: तो हम देखें ऐसे करवाड़ जी, जैसे हमारे ब्रज में तो देखो अब ये अषाढ़ को महीना विशेष रूप में यूं जानो जाए कि यहाँ पे गुरु पूर्णिमा को पर्व आवे, जाकू व्यास पूर्णिमा कह में है,
0: जी
1: तो आप देखो कि हमारे ब्रज में कहावत है गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छान के। तो जो इतनी विलक्षण बात गुरु के काजे, गुरु शिष्य की

0: परंपरा में हमारे ब्रज में ही प्रचलित है मान्यता, पौराणिक काल से ही प्राचीन मान्यता में भी ये बात प्रचलित है। तो हम देखे हैं कि जो ये गुरु पूर्णिमा को अवसर है, तो यादना हमें ये बताओ हमारे सब श्रोता भैया बहनान को कि यह अवसर पे जो आम जनमानस है ब्रज को, जो लोकमानस है, उनकी जो श्रद्धा है, उनकी जो आस्था है, वो कहा रूप में दिखाई दे।
1: हाँ जी, आपने चंपा जी बहुत अच्छा सवाल करे हो। ये जो है आषाढ़ मास के जो समापन है, यानी वो सावन महीना शुरू हुए, वो जो है पूर्णमासी हमारे यहाँ पे गुरु पूर्णिमा कही जाए, या आषाढ़ मास के जो समापन पे और जो सावन महीना लगे वह गुरु पूर्णिमा कहा जाए। तो वह दिन जो है खास महत्व ये है कि वो गुरु पूर्णिमा के रूप में जितने भी हमारे देवालय हैं वहाँ पे भक्त जाएं, अपने गुरु की पूजा करें। और वैसे भी हमारे तो पुराणों में माने गए कि भगवान से पहले गुरु है। हाँ। तो ब्रज के हरेक जगह पे एक तो गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी और सबसे बड़ा जो आयोजन हुए ब्रज में वो हुए गुरु पूर्णिमा पे गोवर्धन में, जय मुड़िया मेला का और वहां में जो है परिक्रमा लगे 5 दिना की, जो
0: सप्तकोशी परिक्रमा है कोई, वो तो अपनी अपनी आस्था है, करवार जी कोई परिक्रमा दे रहो है, कोई दंडौती दे रहो है ना, तो ये तो अपनी अपनी व्यवस्था है। और जैसे हमारी जितनी शारीरिक ऊर्जा है ना, पर ब्रज में आके ना हर कोई इन मान्यतान को निर्वाह तन मन धनते करे है।
1: बिल्कुल।
0: तो शिखरवार जी देखो बहुत अच्छी चर्चा आपके संग चल रही है। हम देखे हैं कि जो ये आषाढ़ को महीना है ना, यहाँ में कितने सारे पर्व हैं, उन पर्वन की अनेकानेक परंपरा हैं। तो एक जो ब्रज धरा में भाव हमें देखने को मिले, वहां पे सबसे महती परंपरा या बात की है कि वहां पे सामाजिक समरसता इतनी है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है बाको भी हम जितनी बात करें, तो या बारे में हमारे श्रोता भैया बहनान को कछु बताओ।
1: देखो ये गुरु पूर्णिमा पे जो श्रद्धालु गुरु की पूजा करें, चरण वंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, मंदिर और आश्रम में व्यास पूजा की जो एक कहावत है,
0: परंपरा
1: है जो व्यास पूजा की है
0: जी,
1: जहाँ में भजन कीर्तन प्रवचन प्रसाद वितरण ये सब होए, और ये आध्यात्मिक साधना को एक संकल्प लेके जाएं, और ये पर्व एक तरीका से कहा जाए कि ज्ञान विनम्रता और कृतज्ञता की भावनाएं मजबूत करें,
0: मतलब
1: अपने गुरु के प्रति,
0: अपने गुरु के प्रति, और सबसे बड़ी जो बात है अपने इष्ट के प्रति जो समर्पित भाव है वो या में हमारे ब्रज धरा में या वक्त देखने को मिले है। हम देखे हैं कि जो यह आषाढ़ को महीना है तो ब्रज के लोकगीत हैं, सावन के महीना की मल्हार है। तो हमारा जो लोक साहित्य है ना, वामे भी जो आषाढ़ मास को चित्रण है वो अनेकानेक रूप में मिले है, तो या के बारे में और चलते चलते।
1: बिल्कुल, आपने सही सवाल करे हो। ये जो है ऐसा है कि जो या आषाढ़ महीना में जो जैसे ही वर्षा की फुहार पहली पड़े
0: जी,
1: जेठ के महीना के बाद में, तो एक नए वातावरण एक परिवेश ऐसा है जाए,
0: विकसित है जाए
1: कि बामे एक नई तरंग पैदा हुई, और वही से जो है एक तरीका से जो जो हमारा जो माना जाए कि काले जैसे मेघ घुमड़ आ जाए, बिजली चमके, मोर नृत्य करें, पपिया पीहू पीहू करे, कोयल की ध्वनि जो है हमारे कानन तक आवे, वर्षा की फुहार के बीच में, तो फिर स्वाभाविक है जो हमारी महिला है ब्रज की वो लोकगीत गावे, और लोकगीत होते वो मल्हार कही जाए।
0: हाँ, और शिखरवार जी लोकगीत तो हमारी ब्रज की महिला गाएंगी, क्योंकि ऐसी मान्यता तो प्राचीन काल से ही चली आ रही है कि ब्रज में ऐसी कोई नारी ना होगी जहाँ पे एक रत्ती सोनो और एक लोकगीत ना यहाँ तो हो।
1: बिल्कुल।
0: तो शिखरवार जी आज आप हमारे ब्रज माधुरी कार्यक्रम में पधारे और आपने आषाढ़ मास की महत्ता पे, हमारे अध्यात्म और लोक चेतना पे इतनी विस्तार से चर्चा हमारे श्रोता भैया बहनान के काजे करी, तो याके काजे हम आपको बहुत बहुत आभार करें हैं और आपते निवेदन करें हैं कि आप ऐसे ही विविध विषय पे चर्चा करवे के काजे हमारे ब्रज माधुरी कार्यक्रम में समय समय पे आते रहे करो।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चंपा जी, आपने बुलाया ब्रज माधुरी में, सब भैया को राधे राधे।
2: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे ये भेंट वार्ता जाको विषय हो आषाढ़ मास में आध्यात्म और लोक चेतना का समागम। विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित है चंद्र प्रताप सिंह शिखरवार और उनसे बात कर रहे हैं आपकी चंपा बहन।
0: तो नृत्य गोपाल जी।
2: जी चंपा जी,
0: देखो आषाढ़ के परम पावन महीना में जो आध्यात्म बात है बाकी बानगी या वक्त ब्रज में देखते ही बन रही है, और जो ब्रज को लोक जीवन है ना वहाँ भी हम देख रहे हैं कि सब बढ़ चढ़ के बामे अपनी सहभागिता दर्ज कराए रही हैं। और वैसे भी हम देखे हैं कि जो ये आषाढ़ को महीना है ना, यहाँ हमारी जो ब्रज की संस्कृति है और जो बाकी संग लोक को जुड़ाव है ना, बाकी बात ही कछु

0: और है।
1: चंपा देखो, अब तो छोटे छोटे नीम के पेड़न पे अब जो छोटे छोटे बालकन के झूला पड़ गए ना, वहां में लोक संस्कृति अलग विकसित है रही है। आषाढ़ की पहली फुहार के संग किसान भैया बहन हर चलावे को चले जाए, धान रोपे की तैयारी कर रहे हैं या धान रोप गए हैं, रसिया गाय के मेघन को बुला में है। और तनिक देखो तो सही, भड़ैया नौमी जो आ रही है वहां की तैयारी खूब ब्रिज में चल रही है।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, भड़ैया नवमी की तो आप जरूर याद रखियो, क्योंकि आ रही है तो कहीं ना कहीं थे आपको नौ तो आएगो, लड्डू जलेबी आपके तो पक्के हैं। ये भड़ैया नवमी को अभूज सायो है और खूब या के देना गाजे बाजे ढोल ताशे इनके संग जो ब्याह होंगे, बाके बाद 4 महीना के काज विराम लग जाएगो। तो हम तो आपते यही कहें, कहीं नौ तो आयो हो तो भूल मत जाइयो, फिर 4 महीना के बाद ही आपको लड़ुआ खाएवे को मिलेंगे।
1: चंपा झोला लटका के तो आप निकल लेगी, हमें पतो है।
0: अरे नृत्य गोपाल जी, क्योंकि कहूँ जाएंगे तो पत्थर पर रोसा तो रख के लाएंगे ना झोला में।
1: हाँ, एक साड़ी मिल जाएगी, कोई सूट वूट मिल जाएगा।
0: हाँ साड़ी जरूर मिलेगी नृत्य गोपाल जी। और बाकी बात वो हम आपको देखें कि हमारे जो ब्रज लोक जीवन में है ना, गिरिराज जी की जो परिक्रमा है, दंडौती परिक्रमा है, उमड़िया पूनों पर लगवे वारी है, ब्रज लोक जीवन में बाकी का जो भी बड़ी तैयारी सबकी चल रही है, सब एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि भैया तू चलेगो, तू चलेगो, कौन कौन चलेगो, कब चलेंगे, या की भी बातचीत सबके घर घर में चल रही है।
1: जी हाँ चंपा, देखो परिक्रमा के काजे सामान्य परिक्रमा तो सब ही दें, पर ब्रजवासी जो दूध की परिक्रमा, दूध की धार जाते कहें, या जो दंडौती परिक्रमा करें, वाको आनंद कछु और हो है। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, उत जयमत गोवर्धन के संग इत राधा सो प्रीत लगाई, इत गोपिन सो कहत जिमावो, इत गोपिन सो कहत जिमावो, उत आपुन जयमत मन लाई, आगे धरे छहो रस व्यंजन, चहु दिसते अति अरग बढ़ाई, अंबर चढ़े देवगण देखत, जय ध्वनि करत सुमन बरसाई, सूर श्याम सबके सुखकारी, भक्त हेत अवतार सदाही, सूर श्याम सबके सुखकारी, भक्त हेत अवतार सदाही।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप गिरिराज जी को समर्पित ये भक्ति रचना सुन रहे हते। तो प्यारे भैया बहनाओं, असार मास के जो ये उत्सव हैं ब्रजलोक में, इनकी जो महत्ता है वाय देखवे के काजे आप अपने परिजनन के संग, अपने इष्ट मित्रन के संग ब्रजधरा में पधारो। ब्रजधरा आपको बुलाए रही है। प्यारे भैया बहनाओं, आप जानो ही हो, बात तो करवे के काजे बहुत सारी हैं, पर समय की अपनी सीमा है। इन्हीं प्यार भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होवे है। मोय अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
1: और मो नृत्य गोपाल को कार्यक्रम प्रस्तुत करता वी के तोमर के संग जाइवे की अनुमति प्रदान करें।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित कार्यक्रम सुनते हैं, बोलती कहानियां।
1: बोलती कहानियां क्रम में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी, लेखक का रेडियो नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशन काजल सूरी।
2: प्रातःकाल महाशय प्रवीण ने 20 दफा उबाली गई चाय का प्याला तैयार किया और बिना शक्कर और दूध के पी गए। यही उनका नाश्ता था। चाय पीकर उन्होंने कलम दवात संभाली और वे किताब लिखने में तल्लीन हो गए, जो उनके विचार में इस शताब्दी की सबसे बड़ी रचना होगी।

0: क्या तुम चाय पी चुके?
1: हाँ पी चुका, बहुत अच्छी बनी थी।
0: पर दूध और शक्कर कहाँ से लाए?
1: दूध और शक्कर तो कई दिनों से नहीं मिली मुझे। आजकल सादी चाय ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, दूध और शक्कर मिलाने से उसका स्वाद बिगड़ जाता है। डॉक्टरों की भी यही राय है कि चाय हमेशा सादी पीनी चाहिए। और यूरोप में तो दूध का बिल्कुल रिवाज ही नहीं है, ये तो हमारे यहाँ के मधुर प्रिय रईसों की इजाद है।
0: ना जाने तुम्हें फीकी चाय कैसे अच्छी लगती है, मुझे जगा क्यों नहीं लिया, पैसे तो रखे थे।
2: महाशय प्रवीण फिर लिखने लगे। सूर्योदय से आधी रात तक ये साहित्य का उपासक अंतर जगत में डूबा हुआ समस्त संसार से मुंह मोड़े हृदय के पुष्प और नैवेद्य चढ़ाता रहता था। कदाचित अब उसे ये ज्ञात होने लगा था कि उसकी रचनाओं में कोई सार कोई प्रतिभा नहीं है, और ये भावना अत्यंत हृदय विदारक थी। अगर कोई संतोष था तो ये कि उनकी जीवन सहचरी त्याग और तप में उनसे भी दो कदम आगे थी। सुमित्रा इस दशा में भी प्रसन्न थी। प्रवीण जी को दुनिया से शिकायत हो, पर सुमित्रा जैसे गेंद में भरी हुई वायु की भांति उन्हें बाहर की ठोकरों से बचाती रहती थी।
0: जाकर घंटा आध घंटा कहीं घूम क्यों नहीं आते? जब मालूम हो गया है कि प्राण देकर काम करने से भी कोई नतीजा नहीं, तो व्यर्थ क्यों सिर खपाते हो?
1: अरे भाई, लिखने में कम से कम ये संतोष तो होता है कि कुछ कर रहा हूँ। सैर करने में तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि समय का नाश कर रहा हूँ।
0: अरे इतने पढ़े लिखे आदमी हवा खाने जाते हैं तो क्या वो अपने समय का नाश करते हैं?
1: देखो सुमित्रा, इनमें अधिकांश वही लोग हैं जिनके सैर करने से उनकी आमदनी में बिल्कुल कमी नहीं होती। अधिकांश तो सरकारी नौकर हैं जिनको मासिक वेतन मिलता है, या ऐसे पेशों के लोग हैं जिनका

0: लोग आदर करते हैं। मैं तो मिल का मजूर हूँ। तुमने किसी मजूर को हवा खाते देखा है?
1: नहीं।
0: जिन्हें भोजन की कमी नहीं उन्हीं को हवा खाने की भी जरूरत है। जिनको रोटियों के लाले हैं वे हवा खाने नहीं चाहते। मेरे लिए तो जीवन भार है। इस भार को सिर पर कुछ दिन और बनाए रहने की अभिलाषा मुझे नहीं है।
1: निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सुनो, मेरा दिल कहता है तुम जैसे तपस्वी की कीर्ति कौमुदी एक दिन अवश्य फैलेगी।
0: अच्छा सुमित्रा, यहाँ के एक रईस के यहाँ कोई उत्सव है, उन्होंने मुझको भी निमंत्रित किया है।
1: अरे वाह, ये तो प्रसन्नता की बात है। इस बहाने कुछ महानुभावों से परिचय हो जाएगा। परिचय से कहीं ना कहीं लाभ मिलता ही है।
0: हाँ, मेरा मन भी आनंद के घोड़े पर बैठा हुआ नाच रहा है। पता नहीं राजा साहब किन शब्दों में मेरा स्वागत करेंगे और किन शब्दों में मुझे धन्यवाद देंगे, किन प्रसंगों पर वार्तालाप होगा और किन महानुभावों से परिचय होगा। लेकिन सुमित्रा, मुश्किल कपड़ों की है। मुद्दत गुजरी जब मैंने अचकन बनवाई थी, उसकी दशा भी मेरे जैसे जीर्ण हो चुकी है। जैसे जरा सी सर्दी या गर्मी से मुझे जुकाम या सिर दर्द हो जाता है ना, उसी तरह अचकन भी नाजुक मिजाज है। उसे निकालो और झाड़ पोंछ कर रखो।
1: मैं तो कहती हूँ तुमने व्यर्थ ही निमंत्रण स्वीकार किया।
0: क्यों?
1: लिख देते, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है।
0: अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं।
1: इन फटे हालों में जाना और भी बुरा है।
0: सुमित्रा, जिन्हें ईश्वर ने हृदय और परख दी है ना, वे आदमियों की पोशाक नहीं देखते, उनके गुण और चरित्र देखते हैं। आखिर कुछ बात तो है कि राजा साहब ने मुझे निमंत्रित किया है। मैं कोई ओहदेदार नहीं, जमींदार नहीं, जागीरदार नहीं, ठेकेदार भी नहीं, केवल एक साधारण लेखक हूं। लेखक लेखक का मूल्य उसकी रचनाएं होती हैं। इस एतबार से मुझे किसी भी लेखक से लज्जित होने का कारण नहीं है।
1: तुम कल्पनाओं के संसार में रहते रहते प्रत्यक्ष संसार से अलग हो गए हो।
0: कैसी बात कर रही हो?
1: मैं कहती हूँ राजा साहब के यहाँ लोगों की निगाह सबसे ज्यादा कपड़ों पर ही पड़ेगी।
0: अरे नहीं,
1: सरलता जरूर अच्छी चीज है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि आदमी फूहड़ बन जाए।
0: देखो सुमित्रा, मैं समझता हूँ, दीपक जल जाने के बाद जाऊं?
1: मैं तो कहती हूँ जाओ ही क्यों।
0: अरे अब तुम्हें कैसे समझाऊं, प्रत्येक प्राणी के मन में आदर और सम्मान की एक भूख होती है। तुम पूछोगी कि ये भूख क्यों होती है?
1: जरूर पूछूंगी।
0: हाँ, तो इसलिए कि ये हमारे आत्मविश्वास की एक मंजिल है। हम उस महान सत्ता के छोटे से अंश हैं जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। अंश के पूर्व के गुणों का होना लाजमी है। इसलिए कीर्ति और सम्मान, आत्मोन्नति और ज्ञान की ओर हमारी स्वाभाविक रुचि है। मैं इस लालसा को बुरा नहीं समझता सुमित्रा।
1: अच्छा भाई जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करती, लेकिन कल के लिए कोई व्यवस्था करते आना, क्योंकि मेरे पास केवल एक आना और रह गया है। जिनसे उधार मिल सकता था उनसे ले चुकी, और जिनसे लिया उसे देने की नौबत ही नहीं आई। मुझे अब और कोई उपाय नहीं सूझता।
0: हाँ, दो एक पत्रिकाओं से मेरे लेखों के रुपए आने वाले हैं, शायद कल तक आ जाएं। और अगर कल उपवास भी करना पड़े तो क्या चिंता। अरे भाई, हमारा धर्म है काम करना। हम काम करते हैं और तन मन से काम करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अगर इस पर भी हमें फाका करना पड़े तो मेरा दोष नहीं। हमारे जैसे लाखों आदमी रोज मरते हैं। संसार का काम ज्यों का त्यों चलता रहता है, फिर इसका क्या गम कि हम भूखों मर जाएंगे। मौत डरने की वस्तु नहीं है सुमित्रा।
1: क्यों इस तरह की बेढंगी बात करते हो? लो, मैं तुमसे बात नहीं करती।
0: क्यों सुमित्रा, मैं तो कबीर पंथियों का कायल हूं जो अर्थी गाजे बजाते ले जाते हैं। मैं इससे नहीं डरता।
1: चुप रहो,
0: तुम ही कहो। मैं जो कुछ करता हूं इससे अधिक और कुछ मेरी शक्ति के बाहर है या नहीं? सारी दुनिया मीठी नींद सोती है और मैं कलम लिए बैठा रहता हूं।
1: मैं भी तो यही कहती हूं कि लोग हंसी दिल लगी आमोद प्रमोद करते रहते हैं, तुम्हारे लिए ये सब वर्जित है। यहां तक कि महीनों से हंसने की नौबत ही नहीं आई। होली के दिन भी तुमने

0: छुट्टी नहीं मनाई। बीमार भी होते हो तो लिखने की फिक्र सर पर सवार रहती है।
1: हाँ सुमित्रा, सोचो तुम बीमार थी और मैं वैद्य के यहाँ जाने के लिए समय न पाता था।
0: तुम अपना कर्तव्य पूरा किए जाओ, अगर दुनिया नहीं कद्र करती तो ना करे। उसका प्रकाश फैलता है या उसके सामने कोई ओट है, हमें इससे प्रयोजन नहीं।
1: हाँ।

0: कि लोग मुझे बदनीयत नहीं समझते।
1: अच्छी बात है।
0: मेरी कुछ अधिक मदद न कर सकें पर उन्हें मुझसे सहानुभूति अवश्य है। मेरी खुशी के लिए इतना ही काफी है कि आज वो अवसर तो आया है कि एक राजा ने मेरा सम्मान किया।
1: मैं भी तो यही समझाती हूँ, कभी तो हमारे दिन बहुरेंगे।
0: नहीं, मैं अब रात को नहीं जाऊंगा। मेरी गरीबी अब रुसवाई की हद तक पहुंच चुकी है, उस पर पर्दा डालना व्यर्थ है। मैं इसी वक्त जाऊंगा।
1: इसी वक्त?
0: जिसे राजा महाराजा आमंत्रित करे वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हो सकता। राजा साहब साधारण रईस नहीं है, वो इस नगर के ही नहीं भारत के विख्यात रईसों में है। अगर अब भी कोई नीचा समझे तो खुद नीचा है।
2: संध्या का समय है। प्रवीण जी अपनी फटी पुरानी अचकन और सड़े हुए जूते और बेढंगी सी टोपी पहनकर घर से निकलते हैं। डील डॉल और चेहरे मोहरे के आदमी होते तो इस ठाट में भी एक शान होती। दीपक वही लबालब भरा होगा जो जला न हो।
0: आज राजा साहब का निमंत्रण मिला है तो क्यों न रास्ते में कुछ लोगों से मिल लिया जाए। उन्हें भी तो पता चले कि हम भी छोटे मोटे आदमी नहीं हैं।
2: प्रवीण जी अब तक जब घर से निकलते थे तो दुकानों से आंखें चुराते थे, पर आज वो गर्दन उठाए उनके सामने से जा रहे हैं। आज वो उनके तकाजों का जवाब देने को तैयार हैं। तब वो हाफिज समद की दुकान पर जाकर खड़े हो जाते हैं। हाफिज जी बिसाते का कारोबार करते हैं। बहुत दिन हुए प्रवीण इस दुकान से एक छतरी ले गए थे और अभी तक दाम न चुका सके थे।
3: ओ प्रवीण जी, महाशय, महाशय इधर भी।
0: जी जी।
3: अभी तक छतरी के पैसे नहीं आए, समझे? ऐसे 150 ग्राहक मिल गए ना तो दिवाला हो जाएंगे हम। अरे बहुत दिन हो गए, अब तो दे दो।
0: हाफिज मियां, मैं भूला नहीं हूं अभी तक। इन दिनों काम इतना ज्यादा था कि घर से निकलना मुश्किल हो गया था। रुपए तो नहीं हाथ आते, पर आपकी दुआ से कदर शिनासों की कमी नहीं। दो चार आदमी घेरे ही रहते। इस वक्त राजा साहब।
3: राजा?
0: अजी वही जो नुक्कड़ वाले बंगले में रहते हैं। हाँ, उन्हीं के यहाँ जा रहा हूं। अरे दावत है, रोज ऐसा कोई ना कोई मौका आता ही रहता है।
3: उनके यहाँ दावत है?
0: हाँ।
3: अच्छा, आप राजा साहब के यहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं?
0: जी जी।
3: हाँ ठीक है ठीक है। आप जैसे बकमालों की कदर रईस ही कर सकते हैं, और कौन करेगा भला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप इस जमाने के वक्ता हैं, अगर कोई मौका हाथ आ जाए ना तो इस गरीब को मत भूल जाइएगा है। आप राजा साहब की अगर निगाह इधर हो जाए तो बस फिर क्या कहना है। एक पूरा बिसाता तो उन्हीं के लिए चाहिए। 2.5-3 लाख सालाना आमदनी है।
0: 2.5-3 लाख?
3: हाँ।
0: अम्मा क्या कह रहे मियाँ, आप तो उन्हें अनाप शनाप कुछ भी बोल देते।
3: नहीं नहीं नहीं यार।
0: सुनिए, उनकी आमदनी 10 लाख से कम नहीं।
3: अच्छा?
0: हाँ, एक साहब का अंदाजा तो 20 लाख का है।
3: माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: इलाका है, मकानात हैं, दुकानें हैं, अमानती रुपए हैं, और फिर सबसे बड़ी सरकार बहादुर की निगाह है।
3: ये दुकान तो आप ही की है जनाब।
0: अच्छा?
3: बस बस इतनी सी अरज है। ए मुरादी, बात सुन, ये जरा नुक्कड़ वाले से 2 पैसे के अच्छे से बढ़िया से पान बनवा ले जनाब के लिए। जा जा जा, आइए आइए, आप जरा 2 मिनट बैठिए तो सही।
0: जी जी।
3: दुकान में कोई चीज पसंद हो तो दिखाऊं।
0: जी
4: जी हुजूर, पान ले आया हुजूर।
3: ले आए? बहुत खूब बहुत खूब, लीजिए लीजिए, नौश फरमाए। पान नौश फरमाए।
0: जी जी जी।
3: अरे बाजार के बेहतरीन पान है।
0: क्या बात है,
3: आपसे क्या, आपसे तो घर का वास्ता हो गया है।
0: बहुत स्वादिष्ट है।
3: शुक्रिया शुक्रिया।
0: देखिए इस वक्त तो मुझे माफ करिए।
3: अरे नहीं नहीं, आप बोलिए ना, मैं दिखाता हूँ जो जो चीज पसंद है बताए।
0: अरे वहाँ देर हो जाएगी जाने में, फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा।
3: चलिए ठीक है, हमारा सलाम कहिएगा।
0: जी जी जी जी जी।

0: यहाँ से उठकर प्रवीण एक कपड़े वाले की दुकान के सामने रुकता है। मनोहर दास नाम था इसका। प्रवीण को खड़े देखकर आंखें उठाई। बेचारा इनके नाम को रो बैठा था। समझ लिया शायद इस शहर में ही नहीं है, समझा रुपए देने आए हैं।
1: भाई प्रवीण जी, आपने तो बहुत दिनों से दर्शन ही नहीं दिए हैं? रुका कई बार भेजा, मगर प्यादे को आपके घर का पता ही नहीं चला। मुनीम जी, अरे ए मुनीम जी, अरे खाते में जरा देखो आपका, आपके नाम के क्या है।
2: जी हुजूर। लीजिए।
0: प्रवीण के प्राण तकाजों से सूखे जाते थे, पर आज वो इस तरह खड़े थे मानो उन्होंने कवच धारण कर लिया हो, जिस पर किसी अस्त्र का आघात नहीं हो सकता।

0: जरा राजा साहब के यहां से लौट आऊं तो निश्चित होकर बैठूं। इस समय थोड़ा जल्दी में आऊं।
1: पां तो खाते जाइए महाशय, राजा साहब एक दिन के हैं, हम तो 12 मास के हैं। कुछ कपड़े दरकार हो तो ले जाइए, और अब तो होली आ रही है, मौका हो तो जरा राजा साहब के खजानची से कहिएगा, अब पुराना हिसाब बहुत दिन से पड़ा है।
0: अच्छा अच्छा, कह दूंगा कह दूंगा,
1: अब तो सफाई हो जाए। हम सब ऐसा कौन सा नफा लेते हैं कि 2-2 साल हिसाब ही ना हो।
0: अरे मनोहर दास जी, अब मैं चलता हूँ।
1: अरे भाई, पान तो खाते जाइए।
0: इस समय पान तो रहने दो भाई, बहुत देर हो जाएगी। जब उन्हें मुझसे मिलने का इतना शौक है और मेरा इतना सम्मान करते हैं, तो अपना भी धर्म बनता है ना कि उनको मेरे कारण कष्ट ना हो।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: हम तो गुण ग्राहक चाहते हैं, दौलत के भूखे नहीं। कोई अपना सम्मान करे तो उसकी गुलामी करे। अगर किसी को रियासत का घमंड हो तो हमें उसकी परवाह नहीं।
2: प्रवीण राजा साहब के विशाल भवन के सामने पहुंचते हैं। दिए जल चुके हैं, अमीरों और रईसों की मोटरें चारों ओर खड़ी हुई हैं। वर्दीपोश दरबान द्वार पर खड़े हैं। एक सज्जन मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। प्रवीण जी को देखकर वे जरा झिझकते हैं।
3: आइए इस तरफ, तशरीफ लाएं। जी जी, तशरीफ लाएं आप। आइए आइए, सुनिए। अरे रुकिए।
0: अरे जी जी जी, कहिए कहिए।
3: आपके पास निमंत्रण पत्र है? है?
2: प्रवीण की जेब में निमंत्रण पत्र था, पर इस भेदभाव पर उन्हें क्रोध आ गया। उन्हीं से क्यों निमंत्रण पत्र मांगा जाए, औरों से भी क्यों ना पूछा जाए।
3: शकल क्या देख रहे हैं, बताइए, है निमंत्रण पत्र?
0: जी नहीं, मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। अगर आप अन्य महाशयों से निमंत्रण पत्र मांगते तो मैं भी दिखा सकता था, वरना मैं इस भेद को अपने लिए अपमान की बात समझता हूं। आप राजा साहब से कह दीजिए प्रवीण जी आए थे और द्वार से ही लौट गए, चलता हूं।
3: नहीं नहीं नहीं महाशय, अरे रुकिए रुकिए, आइए आइए, आप अंदर आइए, चलिए चलिए चलिए। मुझे आपसे परिचय ना था, बेअदबी माफ कीजिए, आप जैसे महानुभावों से ही तो महफिल की शोभा है। ईश्वर ने आपको वो वाणी प्रदान की है कि क्या कहना।
0: धन्यवाद महोदय, सुनिए, आगे से ध्यान रखिएगा।
3: जी जी जी।
2: प्रवीण अंदर पहुंचते हैं। 12 दरी के सामने विस्तृत और सुसज्जित प्रांगण में बिजली के कुमकुमे अपना प्रकाश फैला रहे हैं। मध्य में एक हौज है, हौज में संगमरमर की परी, परी के सर पर फव्वारा, फव्वारे की फुहारे रंगीन कुमकुमों से रंजित होकर ऐसी मालूम हो रही हैं मानो इंद्रधनुष पिघलकर ऊपर से बरस रहा है। हौज के चारों ओर मेजें लगी हुई हैं, मेजों पर सफेद मेजपोश, ऊपर सुंदर गुलदस्ते।
0: प्रणाम राजा साहब।
4: आइए आइए प्रवीण जी, आपकी पत्रिका में आपका लेख देखकर दिल खुश हो गया।
0: जी शुक्रिया।
4: अरे मैं तो चकित हो गया, मालूम ही ना था कि इस नगर में आपके जैसे रत्न भी छिपे हुए हैं।
5: क्या करते हैं?
4: सज्जनों, आपने महाशय प्रवीण का नाम तो सुना होगा, यह आप ही हैं। क्या ओज है, क्या भाव है, क्या सूझ है, क्या चमत्कार है, क्या प्रवाह है कि वाह वाह, मेरी तो आत्मा जैसे नृत्य करने लगती है।
2: एक सज्जन जो अंग्रेजी सूट में थे, प्रवीण को ऐसी निगाह से देखते हैं मानो वो चिड़ियाघर का कोई जीव हो।
3: लेखक महोदय, ये लेखक महोदय
0: जी,
3: आपने अंग्रेजी के कवियों का भी अध्ययन किया है? आई मीन बाइडन, शेली, कीट्स आदि?
0: हाँ जी हाँ। थोड़ा बहुत देखा है?
3: देखा है। गुड गुड गुड गुड। तो आप इन महाकवियों में से किसी की रचनाओं का अनुवाद कर दें।
0: अच्छा
3: अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आप ऐसा करेंगे तो समझ लीजिए कि आप हिंदी भाषा की अमर सेवा करेंगे।
0: देखिए, हमारे यहाँ आत्मदर्शन का अभी इतना अभाव नहीं है कि हम विदेशी कवियों से भिक्षा मांगे।
3: हैं?
0: जी हाँ। मेरा विचार है कि कम से कम इस विषय में भारत अब भी पश्चिम को कुछ सिखा सकता है। समझे आप?
3: नहीं, कुछ नहीं समझे। क्या बात करते हैं आप?
0: मेरा विचार है कि आपने वर्तमान कवियों का अध्ययन नहीं किया, या किया तो उत्तरी आंखों से।
3: ऐसा है, अपना विचार आप अपने पास रखें, समझे?
4: आप मिस्टर परांजपे हैं प्रवीण जी। आपके लेख अंग्रेजी पत्रों में छपते हैं और बड़े आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं।
2: इसका आशय ये था कि अब आप ना बहकिए। परांजपे के सामने प्रवीण को नीचा देखना पड़ता है। विदेशी वेशभूषा और भाषा का ये भक्त इतना सम्मान पाए, ये उनके लिए असह्य था। पर करते क्या, तभी उसी वेश के एक दूसरे सज्जन आते हैं। राजा साहब तपाक से उनका अभिवादन करते हैं।
4: आइए डॉक्टर, कैसे मिजाज है?
1: अरे साहब, आपके होते हुए तो अपने मिजाज ठीक ही रहेंगे। आपकी तारीफ।
4: आप महाशय प्रवीण हैं, आप भाषा के अच्छे कवि और लेखक हैं।
1: अच्छा, तो आप कवि हैं?
0: जी, लेखक भी।
2: ये वाक्य हर बार प्रवीण के हृदय पर एक नया आघात पहुंचाता है। उसके नीचे जो भाव था उसे प्रवीण खूब समझते हैं। उसका सीधा सादा आशय ये है कि तुम अपने ख्याली पुलाव पकाते हो, पकाओ, यहां तुम्हारा क्या प्रयोजन? तुम्हारा इतना साहस कि तुम इस सभ्य समाज में बेधड़क आओ? प्रवीण मन ही मन खुद से बोलता है।
0: मैंने तो निमंत्रण पाकर अपने को धन्य माना था, पर यहां आकर जितना अपमान हो रहा है वो असह्य है। प्रवीण, तुम जैसे सम्मान के लोभियों का यह दंड है। अब तो आंखें खुली तुम्हारी, तुम कितने सम्मान के पात्र हो? तुम इस स्वार्थमय संसार में किसी के काम नहीं आ सकते, न उन्हें तुम्हारे द्वारा कुछ पाने की आशा है। डॉक्टर या हकीम तुम्हारा सम्मान क्यों करें? उन्हें तुम्हारे घर बिना फीस आने की इच्छा नहीं। तुम लिखने के लिए बने हो, लिखते जाओ, बस लिखते जाओ, और संसार में तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं।
2: सहसा लोगों में हलचल मच जाती है। आज के मुख्य अतिथि का आगमन होता है। राजा साहब लपक कर उनसे हाथ मिलाते हैं।
4: आइए आइए, स्वागत है आपका। प्रवीण जी, आप अपनी कविता तो लिखे लाए होंगे?
0: मैंने कोई कविता नहीं लिखी।
4: सच? तब तो आपने गजब ही कर दिया। अरे भले आदमी, अब तो कोई चीज लिख डालो, दो ही चार पंक्तियां हो जाएं, बस। ऐसे अवसर पर एक कविता का पढ़ा जाना लाजमी है।
0: मैं इतनी जल्दी कोई चीज नहीं लिख सकता।
4: मैंने व्यर्थ ही इतने आदमियों से आपका परिचय करवाया।
0: जी बिल्कुल व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ।
4: अरे भाई, किसी प्राचीन कवि की कोई रचना सुना दीजिए।
0: क्षमा कीजिएगा राजा साहब, मैं किसी और कवि की कोई रचना नहीं सुना सकता। चलता हूं, प्रणाम।
2: राजा जी के यहाँ से निकलकर प्रवीण घर पहुंचते हैं। उनका चेहरा खिला हुआ है।
5: इतनी जल्दी कैसे आ गए?
0: सुमित्रा, मेरी वहां कोई जरूरत ही नहीं थी।
5: चलो, चेहरा खिला हुआ है, खूब सम्मान हुआ होगा।
0: हाँ, सम्मान तो मुझे इतना मिला कि जिसकी मुझे आशा ही नहीं थी।
5: खुश तो बहुत हो।
0: आज मुझे हमेशा के लिए सबक मिल गया। मैं दीपक हूं और जलने के लिए बना हूं। आज मैं इस तत्व को भूल गया था। ईश्वर ने मुझे ज्यादा बहकने नहीं दिया। मेरी ये कुटिया ही मेरे लिए स्वर्ग है, स्वर्ग। मैं आज ये तत्व पा गया कि साहित्य सेवा पूरी तपस्या है, पूरी तपस्या।

0: बोलती कहानियां क्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी लेखक का रेडियो नाट्य रूपांतरण। रेडियो नाट्य रूपांतरण और निर्देशन काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे उमेश दीक्षित, नितिन भसीन, संजय वर्मा, हर्ष ढींगरा और जसकिरण चोपड़ा।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित कार्यक्रम बोलती कहानियां। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
2: मैं हूं आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहां धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता। बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
3: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में

दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब हम थोड़ी सी सूचनाएं आपको बता दें कि अगले कौन से कार्यक्रम आप सुनेंगे। 5:10 पर आप सुनेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी और दैनिक कार्यक्रम 5:30 पर खेल जगत का खेल खिलाड़ी। और अब हमारा समय हुआ है हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का, तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुदेंद्र टंडन ने कहा कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
3: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन तक और क्राइस्टचर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का अपना ऐतिहासिक 2 दिन की यात्रा पूरी करके भारत के लिए रवाना हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन, जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्वकप के 4थे चरण में रजत पदक अपने नाम किया।

को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से 228-232 से हार का सामना करना पड़ा। लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 47 रन बना लिए हैं। भारत ने कल पहली पारी में 285 रन बनाए थे। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बना रखी है। फुटबॉल फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic two-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over four decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of five memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management, and dairy and animal husbandry. Hailing for the Free Trade Agreement, FTA, between the two countries, Mr. Modi appreciated New Zealand's efforts in concluding the FTA process in a short period and thanked Prime Minister Luxon and his government for their leadership.
1: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं।
0: A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Defence Minister Rajnath Singh has said today that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. He said future wars may employ artificial intelligence and other emerging technologies, but they will ultimately be won by national resolve, courageous soldiers and capable military power. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the sixth Project 17A Indigenous Stealth Frigate into the Eastern Fleet at Visakhapatnam today. West Bengal government has formed the nine-member committee to examine the draft bill of Uniform Civil Code for the state. A notification has already been published in this regard. Justice retired Ranjana Prakash Desai will be the chairperson. Former Meghalaya Governor Tathagat Roy is one of the members of the committee. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that differences of opinion are natural in a democracy, but commitment to the constitution and public welfare must remain paramount. Addressing the inaugural session of the orientation and training program for the members of the Bihar Legislative Assembly in Gaya Ji, Mr. Radhakrishnan called upon public representatives to accord the highest priority to democratic values, transparency and accountability towards the people. In United States, the Trump administration today imposed a fresh round of sanctions on Iran, targeting individuals and financial networks linked to the country's leadership in response to Tehran's attacks on commercial vessels in the Strait of Hormuz earlier this week. The latest measures mark another escalation in Washington's campaign against Iran following a series of retaliatory steps. In the FIFA World Cup, Norway will take on England while defending champions Argentina face Switzerland tonight in the quarterfinals to determine the remaining semi-finalists. Spain and France have already booked their places in the last four. India will face England in the fifth and final T20 International of the series today at the Utilita Bowl in Southampton. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. England has already clinched the series with a 3-0 lead, while India will be aiming to register a consolation victory before the teams move on to the ODI series. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब समय हुआ है गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं का। खोए पाए व्यक्तियों की सबसे पहली जो जानकारी प्राप्त हुई है वो है थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संडे मार्केट मेन रोड से एक अज्ञात शव प्राप्त हुआ है, जिनकी आयु 50 वर्ष पुरुष, कद 5 फुट 5 इंच। जिस किसी को भी इनके बारे में जानकारी लेनी हो कृपया संपर्क करें ग्राम देवला थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। अगली सूचना प्राप्त हुई है थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से एक अज्ञात व्यक्ति की, जो कि 14 जून 2026 को घूमखेड़ा कट के पास जीटीबी रोड किनारे पाए गए। इनकी आयु 45 वर्ष पुरुष, कद 5 फुट 5 इंच। जिस किसी को भी इनकी बारे में जानना हो नंबर है, संपर्क कर सकते हैं 8580483258, थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। अगली सूचना जो प्राप्त हुई है थाना सेक्टर 39 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से एक अज्ञात शव प्राप्त हुआ है। 13 जून 2026 महामाया फ्लाईओवर के पास सेक्टर 44 नोएडा से, आयु 60 वर्ष पुरुष, कद 5 फुट 3 इंच, भूरे रंग की आंखें। मृतक व्यक्ति उक्त अज्ञात अवस्था में मिले और अज्ञात मृतक के शरीर पर काफी चोटें हैं। जिस किसी को भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो कृपया इन नंबर पर संपर्क करें 8699274784, 8595902532, थाना सेक्टर 39 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। अगली सूचना प्राप्त हुई है थाना फेज 1 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से एक अज्ञात शव प्राप्त हुआ है, जो कि 2 जून 2026 हरोला सेक्टर 5 नोएडा के पास पाए गए। इनकी आयु 35 वर्ष पुरुष, कद 5 फुट 5 इंच, कंधे व कोहनी के मध्य एक टैटू का निशान है, रंग गेहुआ, इकरा मजबूत बदन। जिस किसी को भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो कृपया ये नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9759271932, थाना फेज 1 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। अगली सूचना थाना सेक्टर 20 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से प्राप्त अज्ञात शव प्राप्त हुआ है। फिल्म सिटी फ्लाईओवर के पास 15 जून को 2026 में, आयु 40 वर्ष पूर्व।

0: कद 5 फुट 3 इंच, काले रंग का लोअर पहना हुआ था। जिस किसी को भी इनके बारे में जानकारी लेनी हो कृपया इन नंबर पर संपर्क करें 8595902577। एक और नंबर है 8595902530, थाना सेक्टर 20, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। अगली सूचना थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से प्राप्त अज्ञात शव मिला है। पुरुष हैं, कद 5 फुट 5 इंच। जिस किसी को भी इनके बारे में जानकारी लेनी हो कृपया संपर्क करें थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। अगली जो सूचना प्राप्त हुई है थाना सेक्टर 63 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर, अज्ञात व्यक्ति एक पुरुष हैं, कद 5 फुट 5 इंच। अज्ञात व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल पाए गए। जिस किसी को भी इनकी जानकारी लेनी हो कृपया संपर्क करें थाना सेक्टर 63 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। और अंत में आखिर जो सूचना प्राप्त हुई वो है थाना इकोटेक 3 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर, एक अज्ञात शव पुरुष प्राप्त हुए जिनकी आयु है 42 वर्ष, कद 5 फुट 8 इंच। जिस किसी को भी इनके बारे में जानना हो कृपया संपर्क करें थाना इकोटेक 3 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। तो अभी आप सुन रहे थे गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप आगामी कार्यक्रमों की हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे

के 5:10 पर आप सुनेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी, 5:30 पर खेल जगत से जुड़े कार्यक्रम दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। और उसके बाद आप सुनेंगे लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार, जो कि होगा 6:30 पर। और उसके बाद 7:05 पर आप कार्यक्रम सुनेंगे कृषि जगत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 4:20 होने वाले हैं, यानी कि अब समय है हमारे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का।

0: basis through direct recruitment and carries pay matrix level 15, along with admissible allowances. The last date for submitting of online applications is 20th July 2026. Detailed eligibility criteria and the online application link is available on the website, that is at www.icmr.gov.in, or you could also go on to www.recruitment.icmr.org.in. SES Baba Nebraj Senior Secondary School, Lajpat Nagar 4, New Delhi, a linguistic minority managed, aided and recognized school, has invited applications for permanent teaching and non-teaching posts. Vacancies include 1 TGT Sindhi, 6 assistant teachers and 2 laboratory assistants, all in unreserved category. Pay, qualifications, age limit and recruitment rules will be as per the Directorate of Education, Government of NCT of Delhi norms. Applications in the prescribed format should be submitted within 21 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Applications may be sent by registered post or in person. Preference will be given to Sindhi candidates. The application form is available at the school and further details can be accessed through the Directorate of Education website, that is at www.edudel.nic.in. I repeat, it is www.edudel.nic.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित SES बाबा नेभराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। TGT सिंधी 1 रिक्ति, असिस्टेंट टीचर 6 रिक्तियां, लैब असिस्टेंट 2 रिक्तियां। ये सभी पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए हैं। भर्ती के नियम, वेतन, योग्यता और आयु संबंधी शर्तों के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के नियम लागू होंगे। आप देख सकते हैं वेबसाइट www.edudel.nic.in। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा, एसोसिएट प्रोफेसर खेल चिकित्सा, असिस्टेंट प्रोफेसर कोचिंग एथलेटिक्स। गैर शिक्षण पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद हैं परीक्षा उपनियंत्रक, सहायक लाइब्रेरियन, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, सहायक अनुभाग अधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरी सहायक और नर्सिंग अटेंडेंट। आवेदन फॉर्म, शुल्क, योग्यता के नियम, आवेदन कैसे करें आदि जैसी जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की वेबसाइट nsu.ac.in। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स आमंत्रित कर रहा है विजिटिंग मेडिकल कंसल्टेंट के पद के लिए आवेदन। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS एवं MD अथवा MS डिग्री धारी होना चाहिए। कंसल्टेंट को कार्य दिवसों में प्रतिदिन 2 घंटे के लिए मेहरौली नई दिल्ली स्थित C-DOT परिसर में उपस्थित होना होगा। ये अनुबंध प्रारंभ में 2 वर्षों के लिए होगा, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन एवं पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है। दिल्ली NCR के प्रतिष्ठित अस्पतालों, क्लिनिकों से जुड़े डॉक्टरों को वरीयता दी जाएगी। इच्छुक डॉक्टरों से अनुरोध है कि वे अपना बायोडाटा तथा MBBS एवं MD अथवा MS डिग्री प्रमाण पत्रों की प्रतियां ईमेल से इस ID पर प्रेषित करें admin.del@c.in। केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला

0: गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अपर डिवीजन क्लर्क के 3 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं और प्रतिस्थापन का स्थान रहेगा केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 4 से 10 जुलाई 2026 का रोजगार समाचार पत्र। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम परिक्रमा।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कराते हैं देश की परिक्रमा और साथ ही याद करते हैं कुछ खास हस्तियों को भी। ऐसी ही एक खास हस्ती भीष्म साहनी की आज पुण्यतिथि है, जो कहते थे कि मनुष्य का मन अपने अंदर से ही त्राण पाता है और अपने अंदर से ही असहाय क्लेश भी, यानी मन की गहराई से ही शांति और असहनीय पीड़ा दोनों उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब मन विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है तो ये स्वयं को हील करने की अद्भुत क्षमता रखता है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत अपने अंतर्मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के संकल्प के साथ करें। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना।
5: हेलो सरफिरोजी, नमस्कार एंड गुड डे एवरीवन। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड सरफिरोजी ऑलरेडी हैज इंट्रोड्यूस्ड यू टू आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा एंड वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू, बी इट सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। लेट्स बिगिन आवर प्रोग्राम विद द न्यूज हेडलाइंस। India and New Zealand elevate ties to strategic partnership, set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030.
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का अहम हिस्सा।
5: डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कमिशन्स इंडिजिनस स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी, सेज इंडिया बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंट एंड फ्यूचर रेडी डिफेंस फोर्स।
4: परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया।
5: टाइफून बावी फोर्सेस फ्लाइट कैंसिलेशंस एंड स्कूल क्लोजर्स इन जापान एंड ताइवान।
4: भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा।
5: एंड इन फीफा वर्ल्ड कप नॉर्वे टू टेक ऑन इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना टू फेस स्विट्जरलैंड इन क्वार्टर फाइनल्स टुनाइट। And now we are moving towards our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we are going to talk about World Population Day. Yes, so Sarfirozi, let me ask you a question. Have you ever visited the Kumbh Mela, a bustling market or a busy railway station during the festive season and thought, the sheer number of people here is unbelievable? That's the power and that's the challenge of population, isn't it?
4: बिल्कुल तन्वी, मैं कुंभ मेला तो नहीं जा पाई हूँ, लेकिन चाहे रेलवे स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन तो हम कुछ दिनों में विजिट करते हैं, महीने में या कई बार साल में, लेकिन मेट्रो स्टेशन जरूर रोज विजिट करते हैं। और बात कर रही हैं आप पॉपुलेशन के चैलेंज की, तो बढ़ती आबादी की जो चुनौती है उसे थोड़ा अगर हल्के फुल्के अंदाज में समझने की कोशिश करें तो ऐसा मान लीजिए एक म्यूजिकल चेयर का खेल है, जिसमें जो चेयर है यानी जो हमारे रिसोर्स हैं वो तो सीमित है, लेकिन जो खेल के खिलाड़ी हैं वो हर सेकंड बढ़ते जा रहे हैं। तो जब तक म्यूजिक बजता है तब तक सब ठीक लगता है, लेकिन फिर जब म्यूजिक रुकता है तो एक ही सीट के लिए 10 लोग दावेदार हो जाते हैं। आप हम लोग जैसे मेट्रो में आते हैं, जब ऑफिस आते हैं तो स्टेशन पर जब रुकती है मेट्रो, उससे पहले ही कि कोई निकले बाहर, चढ़ने वालों की इतनी हो जाती जाती है, भीड़ के वहां पे पैर रखने की जगह नहीं बचती, तो इस तरह की चुनौतियां हम रोज देख रहे हैं आबादी से जुड़ी हुई।
5: That's a perfect analogy.

जी, एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई 11th of July, दैट इज टुडे, इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, अ डे दैट आस्क्स अस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इज पॉपुलेशन सिंपली अबाउट नंबर्स, और इज इट अबाउट क्रिएटिंग अ बेटर लाइफ फॉर ईच एंड एवरी पर्सन?

0: तन्वी, पॉपुलेशन डे की बात कर रही हैं जो आज मनाया जा रहा है, लेकिन क्या हमारे दिमाग में ये बात आई कि आज ही की जो तारीख है इसे क्यों चुना गया पॉपुलेशन डे मनाने के लिए? इसका जवाब ढूंढने के लिए हम वापस जाएंगे साल 1987 में, जब 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी के 5 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था।
1: The day became famous as the day of 5 billion. That's a huge number. And it wasn't a celebration of a number. It was actually a wake-up call. A thought echoed across the globe. And can our planet continue to provide enough food, education, healthcare, jobs and even natural resources for each and everyone?
0: बिल्कुल तन्वी, और इसी सोच ने दुनिया भर में एक बहस छेड़ दी, और फिर 2 साल बाद 1989 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत की, और 1990 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसे हर साल मनाने को औपचारिक रूप से मंजूरी भी दे दी।
1: So here's a myth that I would like to bust. Population concern doesn't always include more people. Sometimes it means fewer young people. Our listeners might be surprised. So look at Japan and Italy, for instance. Their biggest concern isn't rapid population growth, but an aging population. A large share of their citizens is above 65 years of age, a trend often called the silver tsunami.
0: यानी इसका मतलब ये है तन्वी कि कहीं ना कहीं हम शुरू से गलत सवाल पूछ रहे हैं। क्या हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि किसी देश में लोगों की आबादी कितनी है, बल्कि शायद ये पूछना चाहिए कि कितनी ऐसी आबादी है जो पूरी तरह हेल्दी है, कितनी ऐसी आबादी है जो पढ़ी लिखी है, और क्या उस आबादी में से जो यंग लोग हैं उनके पास आगे बढ़ने के मौके हैं।
1: That's precisely the message behind this year's World Population Day theme is realizing the hopes and aspirations of young people today and for the future. Every child is born with dreams, but the real question arises here is, will they get the opportunity to fulfill them?
0: बिल्कुल सही कहा तन्वी, जब युवाओं को अच्छी शिक्षा, सही स्वास्थ्य सेवाएं, समान अवसर और बिना डरे सपने देखने की आजादी मिलती है तो वो सिर्फ अपना करियर नहीं बनाते बल्कि मजबूत परिवार और मजबूत देश का भी निर्माण करते हैं।
1: Absolutely. And as Gurudev Rabindranath Tagore beautifully wrote, where the mind is without fear and the head is held high. Those timeless words remind us that real development is not measured by population figures alone, but by whether people can learn freely, dream confidently and realize their true potential.
0: बिल्कुल तन्वी, और भारत जैसा जो देश है हमारा, इसे अलग अलग संस्कृतियों का समागम के देश के तौर पे तो जाना ही जाता है, साथ ही हमें देश के सबसे युवा देशों में भी शामिल किया गया है, और इस नाते हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा मिलता है। देश में युवा भारतीय स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं और खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तन्वी,
1: That's correct. And they are even making scientific breakthroughs, serving with pride in the armed forces and creating solutions that inspire the world. And that is why education remains one of the greatest investments any society can make.
0: बिल्कुल तन्वी, और विक्टर ह्यूगो ने भी कहा है कि जो इंसान स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जेल का दरवाजा बंद करता है, यानी शिक्षा अपराध और अज्ञानता को दूर करने का सबसे ताकतवर हथियार है, और जब हम युवाओं की शिक्षा और उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं तो हम उसी आबादी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल रहे होते हैं।
1: I truly agree. World Population Day is also closely linked to the Sustainable Development Goals, or as we commonly call them, SDGs. Two of them stand out in particular. The first one is SDG 3, which focuses on good health and well-being, and second is SDG 5, which promotes

0: gender equality. Well, listeners, imagine trying to build a house on a weak foundation. It simply won't last, right? The same is true for development.
1: बिल्कुल, अच्छी सेहत और लैंगिक समानता के बिना लंबे समय तक चलने वाली तरक्की हासिल करना मुश्किल है. और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि डेवलपमेंट ऐसा हो, इस हिसाब से हो कि जो हमारी दुनिया के संसाधन हैं वो असीमित नहीं हैं, उन्हें हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए

0: but not everyone's greed. It is a powerful reminder that sustainable development is not about consuming more, but about ensuring that every individual has a fair chance to live with dignity while protecting the resources that future generations will depend upon.
1: और अब बात करते हैं कि कैसे आज का जो दिन है पॉपुलेशन डे वो किस तरह दुनिया भर में मनाया जाता है। आज के दिन दुनिया भर में जागरूकता अभियान आयोजित होते हैं, स्वास्थ्य शिविर और परिवार नियोजन से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
0: एंड इवन पब्लिक डिस्कशंस, यूथ प्रोग्राम्स, कल्चरल इवेंट्स एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव्स आर आल्सो प्लान्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन दिस पर्टिकुलर डे। सो डियर लिसनर्स, प्लीज बिफोर वी रैप अप आवर टुडेस डिस्कशन, आई वुड लाइक आवर लिसनर्स टू कैरी वन क्वेश्चन with them. Can just a single day spark a global movement?
1: बिल्कुल तन्वी, और हमारे श्रोताओं के पास समय है इस सवाल का जवाब खोजने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि बड़े बदलाव और जो सफलता है वो रातों रात नहीं मिलते। ये रोज की छोटी आदतें, सब्र और निरंतर प्रयासों का परिणाम होते हैं। जैसे कि एक मजबूत इमारत की जो नींव है वो तुरंत नहीं बनती, वैसे ही अगर हमें जीवन में कोई लक्ष्य पाना है तो उसके लिए अनुशासन के साथ काम करने की जरूरत होती है। हालांकि जो लोग बदलाव को जल्दी अपनाते हैं वो अवसरों का सबसे पहले लाभ उठा सकते हैं।
0: I couldn't agree more. When future generations look back at us, they will remember us. Will they remember how many people lived on earth? Or rather, how well we cared for one another? Because World Population Day is obviously not just about counting people, it's actually about valuing people, isn't it?
1: बिल्कुल तन्वी, इसका मकसद है हर बच्चे को स्वस्थ शुरुआत देना, हर युवा को बराबरी के अवसर देना, हर महिला को समान अवसर देना और हर परिवार को सोच समझ कर फैसले लेने की आजादी देना। अपनी युवा आबादी और अपार प्रतिभा के साथ भारत के पास मिसाल बनकर नेतृत्व करने का अनोखा मौका है, लेकिन सोचना हमें यह है कि भविष्य हमारे दरवाजे पर दस्तक तो दे रहा है, लेकिन क्या हम उसका दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं? तन्वी, अब समय हो चला है अपने श्रोताओं को देश भर की परिक्रमा पर लेकर चलने का और उन्हें बताने का कि हमारे क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है।
0: So let's begin with the New Zealand PM community event. This community event at Auckland's Spark Arena was a celebration of the vibrant cultural ties between India and New Zealand. Alongside colourful performances by members of the Indian diaspora, the event reflected the shared values and traditions that continue to bring the two nations closer. More on this from our correspondent.
2: The colors of India and the traditions of New Zealand came together beautifully during Prime Minister Narendra Modi's visit to Auckland. Earlier, Prime Minister Modi witnessed a traditional Maori cultural performance and praised the iconic haka, describing it as a powerful expression of courage, pride and respect. Prime Minister Narendra Modi recalled New Zealand Prime Minister Christopher Luxon's visit to India during the Festival of Holi last year. In a remarkable coincidence, Prime Minister Modi's own visit to New Zealand coincided with Matariki, the Maori New Year. From Holi to Matariki and from the powerful haka to India's rich cultural traditions, the celebrations reflected a friendship rooted in mutual respect for each other's heritage, diversity and strong people-to-people ties. Manju Meena for Akashwani News, Auckland, New Zealand.
0: Moving towards Sambalpur, the Jagannath Rath Yatra is not just a festival. It is one of the most significant spiritual events in the Hindu calendar. Every year, the holy city of Puri in Odisha transforms into a sea of devotion. People travel from all over the world just to catch a glimpse of Lord Jagannath during this auspicious occasion. This year, the Rath Yatra will begin on 16th of July. More on this from our Sambalpur correspondent.
3: The Jagannath Rath Yatra is one of the biggest and most sacred festival in India. It is dedicated to Lord Jagannath, believed to be a form of Lord Vishnu. For millions of devotees, visiting Puri during this time is a deeply spiritual experience. The festival is held every year during the Hindu month of Ashad. This year, the Grand Rath Yatra will begin on July 16. On this day, thousands of devotees gather to pull the three giant wooden chariots carrying Lord Jagannath, his brother Lord Balabhadra and his sister Goddess Subhadra through the Grand Road of Puri. After spending a few days at the Gundicha temple, the deities will return to the Jagannath temple during the Bahuda Jatra on July 24. The next day on July 25, devotees will witness the famous Sunaveso when the deities are decorated with beautiful gold ornaments. One of the most unique traditions of the festival is the construction of the chariots. Every year, all three chariots are built from scratch using wood and age-old technique that have been followed for centuries. As we

0: Soon enter the final stage. The holy city of Puri is ready to welcome lakhs of devotees from across India and around the world for this grand celebration of faith and tradition. For Parikrama, this is Alok Chandra Barik, Akashvani, Sambalpur.
1: और तन्वी अब अपने श्रोताओं को संबलपुर से लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां आज युवाओं की ऊर्जा, नए विचार और भविष्य की दिशा एक ही मंच पर दिखाई दे रही है। यहां चल रहा है माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 और तन्वी, इस आयोजन में और क्या कुछ खास हो रहा है, उस पर एक खास रिपोर्ट है।
2: इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए करीब 5000 युवा शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को प्रदेश के विकास और नीति निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना है। सम्मेलन में शिक्षा, खेल, कृषि, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास जैसे 10 प्रमुख विषयों पर चर्चा हो रही है। विभिन्न कार्यशालाओं में युवा अपने सुझाव और नए विचार साझा कर रहे हैं। इन सुझावों के आधार पर मध्य प्रदेश युवा संकल्प 2026 नाम का एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा। ये दस्तावेज राज्य की भविष्य की युवा नीतियों का आधार बनेगा। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद नगर से निकली आजाद युवा बाइक रैली और ओंकारेश्वर से शुरू हुई शंकर संकल्प साइकिल यात्रा भी कार्यक्रम स्थल पहुंची। मुख्यमंत्री ने दोनों यात्राओं के प्रतिभागियों का स्वागत किया। युवा शक्ति को प्रदेश के विकास का भागीदार बनाने के उद्देश्य आयोजित ये कॉन्क्लेव पूरे दिन विभिन्न सत्रों और संवाद कार्यक्रमों के साथ जारी रहेगी। परिक्रमा के लिए अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
3: Moving towards Kozhikode, Kerala Institute for Research, Training and Development Studies of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been awarded the best tribal research center in the country. More on this from our correspondent.
4: The Union Ministry of Tribal Affairs selected Kirthad in Kerala as the best institution among the tribal research centers in various states based on its performance in the last 3 years. The institution, which started its operations in 1972 as a tribal research and training center, was recognized as Kirthad's in 1979. Today, Kirthad's is a special directorate that works for research, development studies, training and academic support required for policy formulation for the scheduled castes and scheduled tribe. One of the most important social research institutes of the government of Kerala, Kirthad's has various departments including research studies, development studies, training programs, evaluation studies, support for doctoral research, language studies, statistical analysis, cartography and a tribal heritage museum. Kirthad's has a rich collection of books in the field of social sciences. An extensive library is one of the main features of the institution. Kirthad's also has a museum and an open-air theater. Adjacent to this, the Tribal Studies Museum has an exhibition of weapons and tools used by tribals in ancient times and a wide range of books and other materials written in anthropology and social sciences. Kirthad's provides training through the Adigala Kendra to bring tribal arts and traditional dances to the new generation. Kirthad's director, Dr. Bindu S., received the national recognition from Ranjana Chopra, Secretary, Ministry of Tribal Affairs at the National Tribal Research Center's workshop in Bhubaneswar, Odisha. The Union Ministry, assessing that the activities being carried out by Kirthad's in Kerala can serve as a model for other tribal research centers in the country, has declared Kerala as a Mentor Tribal Research Center. This achievement is proof that Kerala's academic excellence, research capacity and commitment to tribal development have been once again recognized at the national level. Suresh VK for Parikrama, Akashvani News, Kozhikode.
1: तन्वी, जब हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा परिक्रमा, तो उसके बाद जो आपके पास समय बचेगा, क्या आपको पता है उसको कैसे यूटिलाइज करना है?
3: नो, फिल मी अप।
1: ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही वाइब्रेंट फेस्टिवल आयोजित हो रहा है नई दिल्ली के दिल्ली हाट में, जिसका नाम है मेघालय पाइनएप्पल फेस्ट 2026। इसका आप हिस्सा बन सकती हैं और साथ में हमारे श्रोता भी इसे विजिट कर सकते हैं। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में।
5: The annual festival has become the state's flagship platform for connecting pineapple growers with consumers, retailers, food businesses and export markets. Talking about the festival, Mr. Sindhia said that the festival reflects Prime Minister Narendra Modi's vision of local for global and local to global, adding

0: that it will help promote Meghalaya's farmers and expand their access to global markets. He said such programs promote trade and provide new impetus to the capabilities of farmers at the global level.
1: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable. It will be historic. Pineapple has gone to multiple countries across the world. We are looking at putting in place processing centers that will enhance the value addition to the pineapple product. We have seen a lot of that value addition in these stalls, and that is what's going to enhance the capability of our organic farmers to be able to grow beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: Meanwhile, Chief Minister Conrad Sangma said that the center's continued focus on the Northeast is accelerating the region's economic development and providing new opportunities for local farmers. He expressed happiness that programs like Meghalaya Pineapple Fest are providing a platform to the farmers of the state to showcase their product. With Arzu, Soumya Sharan for Parikrama.
2: श्रोताओं, आपको बताते चलें कि ये महोत्सव जो है वो शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित हो रहा है और इसके लिए आपको टिकट खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है.
3: And now we are talking about Delhi's fests and initiatives. The next initiative in the list is Delhi PMML School Initiative. To help young people better understand the constitution and democratic values, the Prime Minister's Museum and Library PMML today launched a new museum-based learning initiative, Jan Se Gan Tak, in New Delhi. A report on this.
4: The newly launched Jan Se Gan Tak initiative is an immersive museum-based program to familiarize higher secondary students with India's constitution, democratic traditions, and civic values. The initiative includes a scholar-led walkthrough of the museum's constitution galleries, followed by interactive discussions on justice, liberty, equality, fraternity, citizenship, and public participation. The program will be held every Friday for students nominated by participating schools with the aim of encouraging young learners to view the Indian Constitution not just as a legal text but as a living expression of India's aspirations and responsibilities. Schools that wish to nominate students or join future sessions can contact Pradhan Mantri Sangrahalay through the official email IDs on its website. With Arzu and Saklin Akhtar, Harshita Ojha for Parikrama.
2: श्रोताओं, अब आपको लेकर चल रहे हैं खेल के मैदान में और वहाँ की हलचल आपको देंगे. तो इस समय दुनिया भर में जिस एक खेल का बहुत ज़्यादा चर्चा है तन्वी, वो है फीफा. फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा. अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे. इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं. स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से और फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया था.
3: So apart from FIFA, we cannot forget cricket.
2: जी.
3: India will face host England in the 5th and final T20 international of the series today at the Utilita Bowl in Southampton. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. England has already clinched the series with a 3-0 lead, while India will be aiming to register a consolation victory before the teams move on to the ODI series.
2: श्रोताओं, अब हम याद करेंगे उन कुछ खास हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है. जिस एक शख्सियत का हमने शुरू में ही जिक्र किया था तन्वी, भीष्म साहनी को, तो आज सबसे पहले उन्हें ही याद कर लेते हैं. भीष्म साहनी की आज पुण्यतिथि है. ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से थे. रावलपिंडी में जन्मे साहनी ने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में MA किया. विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर पंजाब विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि हासिल की और समाचार पत्रों में लिखने का काम किया. तन्वी, जब हम अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं किसी शख्सियत की, तो इस तरह तो उनकी नॉलेज बढ़ती है, लेकिन जब एक शख्सियत अपने सफर के बारे में खुद बताता है तो कहीं ना कहीं उनसे अटैच हो जाते हैं. तो एक भीष्म साहनी के इंटरव्यू का एक चंक है जो हम अपने श्रोताओं को सुना दें, तो उन्हें पता चलेगा कैसे कितना लंबा सफर भीष्म साहनी ने तय किया.
3: जी,
5: मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था जब मैंने एक कहानी लिखी, तो इंटरमीडिएट कॉलेज था, उसकी पत्रिका में वो छप गई. मैं बड़ा खुश. फिर उसके बाद जब मैं लाहौर पढ़ने गया तो लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज की एक पत्रिका थी रावी नाम से, उसमें फिर दी कुछ एक और भी थी चलती रही। वो अबला नाम से था, अबला। और शायद हर हिंदी का लेखक पहले अबला से ही शुरू करता है। उर्दू के लेखक तो कुछ एक थे और गाहे गाहे मिलते भी थे, उनके साथ उठना बैठना भी था, लेकिन हिंदी लेखन में कोई नहीं था।

0: ज्यादा नहीं थे, लेकिन दिल्ली में मेरी फुफेरी बहन रहती थी, उसे लिखने का शौक था और उसके साथ मेरा संपर्क था। और फिर मैं जब बिजनेस करने लगा अपने पिताजी के साथ, तो मैं अक्सर दिल्ली जाया करता था।
1: So what amazing writing he has done, and we cannot forget to mention Tamas here, the work he has written, and even today we do research on it, we act on it, and this new generation, they can't help but be inspired by it.
2: बिल्कुल, और हमारे बहुत सारे श्रोता भी ये जानते होंगे कि इनकी इसी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था तन्वी, और इसी रचना पर इनकी एक फिल्म भी बन चुकी है। इसके अलावा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से भी विभूषित किया था।
1: एंड नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइटर्स, अनदर राइटर इन द लिस्ट इज अमिताभ घोष। टुडे इज हिज बर्थडे। एन अमेरिकन राइटर, ही वन द 54th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2018, इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। हिज एम्बिशियस नॉवल्स यूज कॉम्प्लेक्स नैरेटिव स्ट्रैटेजीज टू प्रोब द नेचर ऑफ नेशनल एंड पर्सनल आइडेंटिटी, पर्टिकुलरली ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया। ही हैज रिटन हिस्टोरिकल फिक्शन एंड non-fiction works discussing topics such as colonization and climate change. And he worked at the Indian Express newspaper in New Delhi and several academic institutions. His first novel, The Circle of Reason, was published in 1986. And apart from that, his other successful works are The Shadow Lines, The Glass Palace, and many more. The In an Antique Land, the book that came in 1992, and the one, The Great Deer Arrangement, Climate Change and the Unthinkable, that came in 2016, both are amazing works. So let's hear a short interview of his and understand his point of view.
3: Yeah, I mean, I think, you know, if we go back 100 years and we think of, let's say, Mahatma Gandhi, he articulated a very powerful challenge, you know, to this this kind of Western modernity. In fact, he said if at that point, there were only 300 million Indians. And he said, if 300 million Indians start living like Westerners, we'll consume the world like locusts. So even back then, he could see clearly that it's not necessarily anything to do with, he didn't know about the science of climate change or whatever. It was just common sense. If you overuse resources, at some point, you will have to pay for it. And that's exactly where we are.
2: और तन्वी, आज ही जयंती है टुन टुन की भी, जिनका नाम हम सभी ने सुन रखा है। ये भारतीय पार्श्व गायिका और हास्य अभिनेत्री थी। इनका असली नाम था उमा देवी खन्नी और इन्हें अक्सर हिंदी सिनेमा की पहली हास्य अभिनेत्री के रूप में भी संबोधित किया जाता है। ये फिल्मों में गाने गाती थी उमा देवी के नाम से। और अपने श्रोताओं को एक ट्रिविया भी दे देते हैं कि टुन टुन का जो प्रसिद्ध नाम पड़ा, ये नाम इन्हें अभिनेता दिलीप कुमार ने दिया था। इन्होंने गुरुदत्त की क्लासिक फिल्मों आर पार, मिस्टर एंड मिसेज बचपन और प्यासा में यादगार रोल किए, जो आज भी लोगों को याद हैं। इस अवसर पर आइए सुन लेते हैं टुन टुन क्या और अभिनेता महमूद के बीच एक कॉमेडी सीन।
4: वही बचपना, वही शरारत
5: है। क्या बचपन में हमने आपसे कोई शरारत की थी?
4: जी नहीं।
5: लेकिन मैडम, आपकी तारीफ।
4: मलका फिक्टोरिया।
5: मलका फिक्टोरिया,
4: याद है बचपन में मैंने आपसे शादी की बात की थी।
5: आपने हमसे शादी की बात की थी? उसके बाद हम क्या बेहोश हो गए थे?
4: जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
5: लेकिन मैडम फटोरिया, अब तो आपकी उम्र उम्रा हो चुकी है। हमारी शादी आप
6: एक्सक्यूज मी, वो शादी की बात मम्मी की नहीं, हमारी हुई थी।
5: अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका बाबा तो काफी हो चुका है।
4: ये बाबा नहीं है, ये तो बेबी चमेली है।
5: अच्छा, तो क्या इनकी शादी हो गई?
4: जी नहीं, बस आप ही की राह देख रहे थे। देखिए ना राजकुमार साहब, अब आप अपने घर में किसी भी औरत को ले आइए।
5: मलका फटोरिया, हम भी यही सोच रहे हैं कि हम किसकी औरत को अपने घर ले आए।
1: That's a wonderful comic timing by Tun Tun, the yesteryear actress. And today we are also remembering Giorgio Armani. Today is his birth anniversary, an Italian fashion designer and founder of the Armani luxury fashion house, widely regarded as among the most influential designers in contemporary fashion. Apart from this, today is also the birthday of Jhumpa Lahiri, a British-American author known for her short stories, novels, essays in English, and more recently in Italian as well. And it's also the birthday of Kumar Gaurav, an Indian actor who worked in Hindi cinema. He has done amazing movies, and let's hear a beautiful song picturized on him alongside Poonam Dhillon.

श्रोताओं, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और तन्वी खुराना को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: प्रधानमंत्री ने ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में प्रवासी भारतीय समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों के कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के CEO बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्षता करेंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही ये नाव होन में रुत नगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है।

0: The Indian women's compound team of Jyoti Surekha Venom, Prithika Pradeep and Chikita Taniparthi clinched the silver medal at the Archery World Cup Stage 4 in Madrid, Spain today. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, अब वक्त है लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंजनी का।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, आज के लोक रंजनी कार्यक्रम में सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं करमपाल शर्मा और मंजू शर्मा से ये लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे यमुना गर्ग से ये लोकगीत। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको एक और लोकगीत सुनवाते हैं। कलाकार हैं पुष्पा गोसाई।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे, ये लोकगीत कलाकार थी पुष्पा गोसाई, और इसी लोकगीत के साथ आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम
1: राम, राम।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और लीजिए अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
3: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
4: नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा खेल कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में, जहां हम आपको देते हैं खेल जगत से जुड़ी तमाम खेल खबरें। मैं हूं अमीषा पटेल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी
5: सिमरन सारवान।
4: नमस्कार सिमरन।
5: जी नमस्कार अमीषा।
4: तो सिमरन, आज हमारे खेल के पिटारे में हमारे श्रोताओं के लिए कौन कौन सी खबरें हैं?
5: जी आज हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की, जहां पर स्पेन के खिलाफ खेले गए स्पेन और बेल्जियम के बीच में खेले गए मैच पर बात करेंगे खेले जाने वाले नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड और अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड के बीच होने वाले मैच को भी प्रीव्यू करेंगे। साथ ही साथ क्रिकेट को भी लेते चलेंगे, आर्चरी भी पीछे नहीं छूटेगा। साथ ही साथ ISSF शॉटगन पर भी बात होगी, एशियन एथलेटिक्स को भी हम साथ साथ लेते चलेंगे।
4: जी तो अब हम शुरू करते हैं दुनिया भर में प्रसिद्ध फीफा विश्व कप 2026 से।
5: फीफा विश्व कप 2026 अब अपने रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। शुक्रवार को खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर शानदार अंदाज में सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ स्पेन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो इस विश्व कप में खिताब का सबसे मजबूत दावेदार है। मुकाबले की शुरुआत से ही स्पेन ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और लगातार बेल्जियम के गोल पर दबाव बनाया। इसी का नतीजा 30वें मिनट में देखने को मिला, जब मिडफील्डर फैबियन रुइज ने शानदार गोल करके स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी। हालांकि बेल्जियम ने हार नहीं मानी। पहले हाफ के खत्म होने से ठीक पहले 41वें मिनट में चार्ल्स जी कैटलेरे ने बेहतरीन फिनिश के साथ गोल दागा और स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया। इसके बाद दूसरे हाफ में दोनों टीमों के बीच तेज रफ्तार और रोमांचक फुटबॉल देखने को मिली। दोनों पक्षों ने कई मौके बनाए लेकिन गोल नहीं कर सके और मुकाबला अतिरिक्त समय की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा था। लेकिन मैच का सबसे बड़ा मोड़ 71वें मिनट में आया, जब बेल्जियम के अनुभवी गोलकीपर थिबाउट कोर्टुआ चोट के कारण मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गए। उनकी जगह सेन लामेंस को उतारा गया। मैच के 88वें मिनट में लामेंस गेंद पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख सके और स्पेन के मिकेल मेरिनो ने मौके का फायदा उठाते हुए गेंद को जाल में पहुंचा दिया। इस निर्णायक गोल ने स्पेन को 2-1 की यादगार जीत दिला दी। इस जीत के साथ स्पेन ने लगातार 36वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला बिना हार के पूरा किया। अब वो इटली के लगातार 37 मैच तक अजय रहने के रिकॉर्ड से सिर्फ एक कदम दूर हैं। स्पेन का शानदार प्रदर्शन इस विश्व कप में उसकी बेहतरीन लय और मजबूत टीम संयोजन को भी दर्शाता है। अब टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला स्पेन और फ्रांस के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें बेहतरीन फॉर्म में हैं और आक्रामक फुटबॉल खेल रही हैं। ऐसे में ये मुकाबला विश्व कप 2026 के सबसे बड़े और हाई वोल्टेज मैचों में से एक माना जा रहा है। फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें अब इसी सेमीफाइनल पर टिकी होंगी, जहां एक ओर स्पेन अपनी अजय लय को बरकरार रखना चाहेगा तो दूसरी ओर फ्रांस फाइनल का टिकट हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्पेन अपनी शानदार जीत की लय जारी रखते हुए फाइनल में जगह बना पाता है या फ्रांस उसकी राह रोकने में सफल रहता है।
4: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। आज खेले जाएंगे दो बड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले, जिन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। पहला मुकाबला भारतीय समय अनुसार 12 जुलाई को रात 2:30 बजे नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच होगा। कागजों पर इंग्लैंड मजबूत नजर आती है, लेकिन नॉर्वे ने इस वर्ल्ड कप में अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया है। राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर सबसे बड़ा उलटफेर किया था। उस मैच में अर्लिंग हालैंड ने 2 गोल किए जबकि गोलकीपर ओर्जन नेलैंड ने शानदार बचाव कर टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। नॉर्वे की ताकत उसका संतुलित खेल है। मार्टिन ओडेगार्ड मिडफील्ड को संभालते हैं, अलेक्जेंडर सोरलोथ और हालैंड आक्रमण में लगातार खतरा बनते हैं, जबकि जरूरत पड़ने पर बेंच से आने वाले खिलाड़ी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। दूसरी ओर इंग्लैंड ने मेजबान मेक्सिको को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। कप्तान हैरी केन और युवा स्टार जूड बेलिंगम बेहतरीन फॉर्म में है। केन अब तक 6 गोल और बेलिंगम अब तक 4 गोल कर चुके हैं। इंग्लैंड की उम्मीदें एक बार फिर इन दोनों पर होंगी। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच खेले गए

0: 12 मुकाबलों में से इंग्लैंड ने 7 जीते हैं, जबकि नॉर्वे को सिर्फ 2 जीत मिली है। हालांकि वर्ल्ड कप में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। वहीं दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल सुबह 6:30 बजे अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच खेला जाएगा। अर्जेंटीना को इस मुकाबले का एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में टीम को जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। कई मुकाबलों में पीछे रहने के बावजूद लियोनेल मेसी की टीम ने शानदार वापसी की है। यही जज्बा अर्जेंटीना की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। कोच लियोनेल स्कलोनी की टीम में मेसी, एंजो फर्नांडिस और एलेक्स मैक एलिस्टर जैसे खिलाड़ी किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। दूसरी ओर स्विट्जरलैंड की पहचान उनका मजबूत डिफेंस है। टीम पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 3 गोल खा चुकी है। कप्तान ग्रानिट जाखा मिडफील्ड से खेल को नियंत्रित करते हैं और टीम बेहद अनुशासित फुटबॉल खेलती है। अगर स्विट्जरलैंड को उलटफेर करना है तो उन्हें मजबूत डिफेंस और शायद पेनल्टी शूटआउट तक मुकाबला ले जाना होगा। हेड टू हेड की बात करें तो यह रिकॉर्ड भी अर्जेंटीना के पक्ष में है। दोनों टीमों के बीच खेले गए 7 मुकाबलों में अर्जेंटीना ने 5 जीते हैं, जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। स्विट्जरलैंड आज तक अर्जेंटीना को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में नहीं हरा पाया है। और अगर वहीं गोल्डन बूट की रेस की बात करें तो फ्रांस के केलिन एम्बापे और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 8-8 गोल के साथ सबसे आगे हैं। नॉर्वे के अर्लिंग हालैंड भी 7 गोल और इंग्लैंड के हैरी केन भी 6 गोल के साथ इस दौड़ में बने हुए हैं। ऐसे में आज के मुकाबले गोल्डन बूट की रेस को भी और दिलचस्प बना सकते हैं। ऐसे में आज के दोनों क्वार्टर फाइनल मुकाबलों का रोमांच अपने चरम पर रहने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड और अर्जेंटीना अपनी दावेदारी मजबूत करते हैं या फिर नॉर्वे और स्विट्जरलैंड एक और बड़ा उलटफेर कर वर्ल्ड कप को नया मोड़ दे सकते हैं।
1: जी, विंबलडन पर तो सबकी नजरें टिकी हुई हैं, साथ ही साथ क्रिकेट पर भी भारत की खासकर नजरें टिकी रहती हैं। तो बात करते हैं भारत बनाम इंग्लैंड की मेंस क्रिकेट की, जिसमें T20 मैच आज होने वाला है। तो सुनते हैं इस पर ये रिपोर्ट।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का 5वां और अंतिम मुकाबला आज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से बेनतीजा रहा था, जबकि अगले 3 मुकाबले जीतकर इंग्लैंड ने 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है। ऐसे में भारतीय टीम के सामने आज सिर्फ सम्मान बचाने ही नहीं बल्कि जीत के साथ दौरे का समापन करने की चुनौती भी होगी। दिलचस्प बात यह है कि 8 मार्च 2026 को T20 विश्व कप जीतने के बाद भारत एक भी T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं जीत सका है। टीम लगातार 6 मैचों से जीत का इंतजार कर रही है। यदि भारत आज भी हारता है तो यह पहली बार होगा जब टीम 3 या उससे अधिक मैचों की T20 श्रृंखला गवाएगी। वहीं इंग्लैंड के पास जीत के साथ भारत को पीछे छोड़कर T20 रैंकिंग में नंबर 1 बनने का मौका है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर भी अपनी पहली T20 अंतर्राष्ट्रीय जीत की तलाश में है। हालांकि उन्होंने मौजूदा श्रृंखला में 2 अर्धशतक लगाए हैं और पिछले मुकाबले में 49 गेंदों पर नाबाद 80 रन की शानदार पारी खेली है। भारत को युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से भी बड़ी पारी की उम्मीद होगी। 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अब तक उन्होंने 42 रन बनाए हैं, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौती बन सकती है। अगर दोनों टीमों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अब तक खेले गए 34 T20 मुकाबलों में भारत ने 18 और इंग्लैंड ने 15 मैच जीते हैं, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा। हालांकि इंग्लैंड की सरजमी पर मेजबान टीम का पलड़ा भारी रहा है। रोजबाउ स्टेडियम की बात करें, यहां की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग और अतिरिक्त उछाल देती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बल्लेबाजी आसान हो जाती है। इस मैदान पर T20 में पहली पारी का औसत स्कोर 166 रन है, जबकि दूसरी पारी का औसत 138 रन रहता है। यहां का सर्वोच्च T20 स्कोर 248 रन है, जो इंग्लैंड के नाम दर्ज है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या भारत जीत के साथ दौरे का अंत करेगा या फिर इंग्लैंड अपनी शानदार राय बरकरार रखते हुए क्लीन स्वीप की ओर एक और कदम बढ़ाएगा। फिलहाल क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक रोमांचक मुकाबले का इंतजार है।
1: जी, साथ ही साथ विमेंस क्रिकेट के भी मैच पर सबका रोमांच बना हुआ है। फिलहाल मैच चल रहा है इंडिया बनाम इंग्लैंड का, जो कि ऐतिहासिक लॉर्ड्स में हो रहा है। फिलहाल लंच ब्रेक चल रहा है, लेकिन स्कोर आपको बता दें 137 स्कोर चल 137 रन पर 5 विकेट गिर चुके हैं और 5 विकेट लेने वाले कौन है खिलाड़ी अमीषा?
0: जी बिल्कुल सिमरन, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि जो 5 विकेट हैं इंग्लैंड के, वो जो हमारे भारतीय बॉलर्स जिन्होंने लिए हैं वो हैं सैली सदघड़े जिन्होंने 1 विकेट लिया है, क्रांति गौर जिन्होंने 3 विकेट लिया है, स्नेह राणा है जिन्होंने 1 विकेट लिया।

0: गया है। और अब इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम शुरुआत करते हैं, अब विंबलडन ले चलते हैं आपको टेनिस के मैदान में।
1: टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन 2026 को उसके दो फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। इस बार खिताबी मुकाबला होगा दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच। सबसे बड़ी

0: गया। उनसे 15 साल छोटे यानिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्हें सीधे सेटों में 6-4, 6-4 और 6-4 से हराया। ये मुकाबला करीब 2 घंटे 20 मिनट तक चला, लेकिन जोकोविच एक भी सेट अपने नाम नहीं कर सके। इस जीत के साथ सिनर लगातार दूसरे वर्ष विंबलडन के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में मिली हार का भी बदला ले लिया। पूरे टूर्नामेंट में सिनर ने आक्रामक खेल दिखाया और अब तक बहुत कम सेट गंवाए हैं। पिछले साल उन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हराकर विंबलडन का खिताब जीता था और इस बार भी वो अपने खिताब का बचाव करने उतरेंगे। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने ब्रिटेन के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराकर पहली बार विंबलडन फाइनल में जगह बनाई। 29 वर्षीय ज्वेरेव 1995 के बाद विंबलडन फाइनल में पहुंचने वाले पहले जर्मन पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ज्वेरेव के लिए ये उपलब्धि इसीलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन जीतने के बाद अब लगातार दूसरे ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बना ली है। पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन बेहद संतुलित रहा है और उन्होंने अब तक सिर्फ 2 सेट गंवाए हैं। अब सभी की निगाहें रविवार को होने वाले फाइनल पर होंगी। एक तरफ होंगे मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर, जो लगातार दूसरा विंबलडन खिताब जीतना चाहेंगे, तो दूसरी ओर होंगे अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जो पहली बार विंबलडन चैंपियन बनने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगे। ऐसे में यानिक सिनर ने अपने होने वाले प्रदर्शन और फाइनल को लेकर भी क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
1: The atmosphere has been always amazing since the first day and it means a lot to me that I can play one more final here. It's the most special tournament we have and it means a lot to me and of course playing against Novak, you know, that what he is still showing is true inspiration. What he is still doing is amazing. I tried, you know, to mix up and yeah, so I'm very happy about the performance.
0: अलेक्जेंडर ने भी अपने फाइनल खेले जाने वाले मैच को लेकर कुछ यूं कहा।
2: It's amazing. This Grand Slam has always been the one that I struggle with the most, and I'm in the final of Wimbledon, so I'm incredibly happy, proud as well, I think, of the team, of everybody who was involved. But we got one more match to go on Sunday, and that's what the focus is on. I have to trust myself and I have to believe that I can win and that's what I'm going to do.
0: यानी विंबलडन 2026 का पुरुष एकल फाइनल सिर्फ दो खिलाड़ियों के बीच मुकाबला नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के दो सितारों के बीच टेनिस की बादशाहत की जंग भी होगा। अब अगर आज विंबलडन 2026 के विमेन सिंगल की बात करें, तो आज महिलाओं में एक नया चैंपियन बनने जा रहा है। सेंटर कोर्ट पर भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे होने वाले फाइनल में एक ऐतिहासिक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के महिला एकल फाइनल में चेक गणराज्य की दो खिलाड़ी आमने सामने होंगी। मुकाबला होगा कैरोलिना मकोवा और लिंडा नोस्कोवा के बीच। 10वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना मकोवा ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को बेहद रोमांचक मुकाबले में 6-2, 1-6, 7-6 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। ये मैच खास इसलिए भी रहा क्योंकि मकोवा ने एक मैच पॉइंट बचाते हुए शानदार वापसी की। ये उनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल है और विंबलडन में पहला। वहीं 9वीं वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को सीधे सेटों में हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में प्रवेश किया। पूरे टूर्नामेंट में नोस्कोवा ने आक्रामक खेल और दमदार सर्विस के दम पर शानदार प्रदर्शन किया है। अगर दोनों खिलाड़ियों के आपसी रिकॉर्ड की बात करें, तो कैरोलिना मकोवा को हल्की बढ़त हासिल है। दोनों की पिछली भिड़त यूएस ओपन में हुई थी, जिसमें मकोवा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन ग्रैंड स्लैम में फाइनल का दबाव बिल्कुल अलग होता है और नोस्कोवा अपने पहले बड़े खिताब के लिए पूरा जोर लगाएगी। ऐसे में टेनिस प्रेमियों को एक रोमांचक और यादगार फाइनल की उम्मीद रहेगी, जहां चेक गणराज्य की खिलाड़ी पहली बार विंबलडन 2026 की महिला एकल चैंपियन होगी। अपने फाइनल में खेले जाने वाले मैच को लेकर कैरोलिना मकोवा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
3: Honestly, I'm not really thinking about it yet. Tomorrow, I guess we'll go through preparation and maybe just talk with my coach and going into that, how to approach the match on Saturday and then focus on that. But for now, I'm honestly just happy. I'm just trying to enjoy that.
0: लिंडा नोस्कोवा ने भी फाइनल को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुने।
4: It's not gonna be easy, you know, playing against a friend. It's never easy. I have played against my good friends a couple of times, and it's a horrible feeling. But this is a Grand Slam final, so I don't think that either of us will hold back.
0: अब आपको ले चलते हैं स्पेन के मैड्रिड में, जहां आर्चरी वर्ल्ड कप के स्टेज 4 का सूरत हाल आपको बताते हैं। बात करें तीरंदाजी की तो स्पेन के मैड्रिड में खेले जा रहे आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 4 से भारत के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबरें सामने

0: आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी भारत की बेटियों की कामयाबी की, जिसमें ज्योति सुरेखा वेनम, चिकित्सा तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की तिकड़ी ने कंपाउंड वुमेन्स टीम इवेंट के फाइनल में जगह बनाकर देश का नाम ऊंचा कर दिया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना तीरंदाजी की महाशक्ति साउथ कोरिया से था, लेकिन हमारे भारतीय तीरों की धार के आगे कोरियाई टीम टिक नहीं सकी। एक बेहद रोमांचक और कांटे के मुकाबले में इंडियन तिकड़ी ने साउथ कोरिया को 231 और 228 के अंतर से मात दी। इसी धमाकेदार जीत के साथ ही भारत का सिल्वर मेडल पक्का हो गया था। फाइनल में हमारी टीम का मुकाबला टॉप सीडेड कोलंबिया के साथ हुआ, जहां संघर्षपूर्ण टक्कर में भारतीय टीम को 228 और 232 से सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। न्यू अमेरिकन कोच डेव कजिन्स के मार्गदर्शन में भारतीय टीम का यह प्रदर्शन वाकई लाजवाब रहा है। लेकिन श्रोताओं, कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। टीम इवेंट के बाद अब सबकी नजरें टिकी है इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत मुकाबलों पर। भारत की उभरती हुई 19 वर्षीय सनसनी प्रतिका प्रदीप ने विमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में स्पेन की घरेलू खिलाड़ी एंड्रिया मुनोज को 140 और 135 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े मुकाबले की। आज सेमीफाइनल में प्रतिका प्रदीप का सामना मलेशिया की अनुभवी और दिग्गज तीरंदाज फातिना नूर फतेह मात सलेह से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में सिर्फ कंपाउंड ही नहीं बल्कि रिकर्व इवेंट में भी भारत का जलवा देखने को मिल रहा है। भारत की एक और युवा तीरंदाज कीर्ति शर्मा ने विमेन्स रिकर्व इंडिविजुअल के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। कीर्ति शर्मा ने क्वार्टर फाइनल में दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी स्पेन की एलिना कैनालेस को 6-2 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। हालांकि सीनियर स्टार धीरज बोमदेवरा और ज्योति सुरेखा वेनम अपने अपने व्यक्तिगत मैचों में जल्दी बाहर हो गए, लेकिन इन युवा खिलाड़ियों ने भारत की मेडल की उम्मीदों को पूरी तरह जिंदा रखा है। वहीं पुरुषों के कंपाउंड टीम इवेंट में कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम की टीम ब्रोंज मेडल मैच में जर्मनी से बेहद मामूली अंतर 232 और 233 से हारकर चौथे स्थान पर रही।
1: अब बात करते हैं ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन की, जिसमें इटली के लोनेटो शहर में खेले जा रहे इस ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 से भारत के लिए सबसे बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। 10 और 11 जुलाई को शूटिंग रेंज पर भारतीय निशानेबाजों ने मिक्स्ड रिस्पांस दिया, जहां महिलाओं ने कमाल कर दिया, वहीं पुरुषों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं टूर्नामेंट की सबसे बड़ी सनसनी नीरू ढांडा की। 10 जुलाई को वुमेन्स ट्रैप क्वालिफिकेशन के पहले दिन नीरू ढांडा ने इतिहास रचते हुए 75 में से 75 का परफेक्ट स्कोर बनाया। इसके बाद 11 जुलाई यानी आज उन्होंने अपनी लय बरकरार रखी और क्वालिफिकेशन के अंतिम राउंड्स खत्म होने के बाद विमेंस ट्रैप फाइनल के लिए शीर्ष दावेदारों में अपनी जगह पक्की कर ली। जहां एक तरफ महिलाएं चमकी, वहीं पुरुषों के लिए ये दो दिन बेहद मुश्किल भरे रहे। मैंस ट्रैप इवेंट में भारत की सबसे बड़ी उम्मीदें किरण चेनई, शपथ भारद्वाज और एवर रिजवी पर टिकी थी। 10 और 11 जुलाई को हुए कड़े क्वालिफिकेशन मुकाबलों में इंटरनेशनल शूटरों से बेहद कड़ी टक्कर मिली। ऊंचे कट ऑफ स्कोर के दबाव के कारण कोई भी भारतीय पुरुष निशानेबाज अंतिम 6 के फाइनल राउंड में जगह नहीं बना सका। अब सिंगल्स इवेंट के बाद भारत की आखिरी उम्मीद कल यानी 12 जुलाई को होने वाले ट्रैप मिक्स टीम मैच पर टिकी है। क्या नीरू ढांडा ये परफेक्ट फॉर्म भारत को मेडल दिला पाएगी? इसके लिए जुड़े रहिए ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन के साथ।
0: जी सिमरन, अब हम अपने श्रोताओं को ले जाना चाहेंगे एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जहां भारत ने एक और सफल दिन का समापन किया है। तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने एक रजत और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं, जिनके साथ भारत की कुल पदक संख्या बढ़कर 11 हो गई है। भारत के खाते में अब 1 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य पदक हैं। दिन का सबसे बड़ा प्रदर्शन पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में देखने को मिला है, जहां भारत के शिवाजी परशुराम ने 29:33.54 के समय के साथ रजत पदक जीता। इस दौरान उन्होंने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी दर्ज किया है। जापान के योशिहारा कुसुओका ने स्वर्ण और चीन के शी जिंगजियांग ने कांस्य पदक जीता है। वहीं महिलाओं की डिस्कस थ्रो की बात करें तो इस स्पर्धा में भारत की प्रिया ने 50.44 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया है। इस स्पर्धा में चीन की चियाओजियांग ने स्वर्ण और उनकी हमवतन जिंगरू हुआंग ने रजत पदक जीता है।

0: इन पदकों के साथ भारत ने चैंपियनशिप में अपनी चुनौती और मजबूत कर दी है। अब सभी की निगाहें बाकी स्पर्धाओं पर होंगी, जहां भारतीय खिलाड़ी पदकों की संख्या में और इजाफा करने के इरादे से उतरेंगे। तो अब बात करते हैं मोनाको डायमंड लीग की, तो आइए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।
1: हमारे पास है ट्रैक एंड फील्ड की दुनिया से एक शानदार और ऐतिहासिक खबर। मोनाको डायमंड लीग 2026 में भारत के स्टार हाई जम्पर सर्वेश कुशारे ने अपने पहले ही डेब्यू में ब्रॉन्ज मेडल यानी थर्ड पोजीशन हासिल कर ली है। 31 साल के सर्वेश ने 2.12 मीटर, 2.16 मीटर, 2.20 मीटर, 2.23 मीटर और 2.26 मीटर की हाइट अपने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके सबको प्रभावित किया। हालांकि वो 2.28 पार नहीं कर पाए, लेकिन तब तक उनका ऐतिहासिक पोडियम फिनिश पक्का हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ कुशारे डायमंड लीग के टॉप 3 में जगह बनाने वाले केवल चौथे भारतीय एथलीट बन गए हैं। अब उनका नाम नीरज चोपड़ा, विकास गोड़ा और मुरली श्री शंकर जैसे दिग्गजों के साथ जुड़ गया है। सबसे खास बात यह रही कि सर्वेश ने टोक्यो ओलंपिक के ज्वाइंट गोल्ड मेडलिस्ट इटली के जियान मार्को टेम्बेरी और कतर के मुताज बरशिम को भी पीछे छोड़ दिया। इस इवेंट का गोल्ड यूक्रेन के वर्ल्ड इंडोर चैंपियन ओले डोरोशुक ने 2.32 मिनट के साथ जीता, जबकि सिल्वर ग्रेट ब्रिटेन के जैक किमानी के नाम रहा। कुछ ही हफ्ते पहले भुवनेश्वर में 2.31 मिनट का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले सर्वेश शानदार फॉर्म में रहे। उनका यह प्रदर्शन आने वाले कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम्स के लिए भारत की उम्मीदों को और मजबूत करता है। मोनाको में भारतीय सफलता के साथ कई बड़े रिकॉर्ड भी बने हैं। इमैनुअल वेनयोनी ने मेंस 1000 मीटर रेस 2:11.83 सेकंड में पूरी करके 27 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो नोआ गिनी के नाम था। वहीं ग्रीस के मिल्टियाडिस टेंटोग्लू ने लॉन्ग जंप में 8.61 मीटर की छलांग लगाकर इस साल का वर्ल्ड लीडिंग परफॉर्मेंस दर्ज किया। धमाका विमेंस फील्ड इवेंट में भी जारी रहा। चाइना की 18 वर्षीय यान झीयी ने जेवलिन थ्रो में 68.75 मीटर का शानदार थ्रो किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया की नीना केनेडी ने विमेंस पोल वॉल्ट में 4.95 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी बीच स्वीडन के वर्ल्ड नंबर 1 पोल वॉल्टर आर्म डुप्लेंटिस ने 6.07 मीटर की शानदार छलांग लगाकर मोनाको डायमंड लीग में एक बार फिर अपना परचम लहराया। मोनाको की ये रात एथलेटिक्स के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। अब फैंस की नजरें 18 जुलाई को होने वाले लंदन डायमंड लीग पर टिकी हैं।
0: तो अब सिमरन बात करते हैं जकार्ता में हो रही अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप की, जहां मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शुक्रवार को सेमीफाइनल में पहुंचकर कम से कम 6 पदक पक्के कर लिए हैं। अभियान की अगुवाई करते हुए एशियाई चैंपियन विश्वनाथ, जो कि 50 किलोग्राम में है, उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है और सऊदी अरब के इब्राहिम अलजुहानी को 5-0 से हराया है। इसके बाद गंगा, जो कि 55 किलोग्राम कैटेगरी में है, उन्होंने भी वियतनाम के क्वांग लोक ट्रान को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से शिकस्त दी है। वहीं वंशज, जो कि 65 किलोग्राम वर्ग में है, उन्होंने कजाकिस्तान के असल खान को 4-1 से हराया है, जबकि 70 किलोग्राम वर्ग में हितेश ने मेजबान इंडोनेशिया के रेडियानश्या को पहले ही राउंड में रेफरी द्वारा मुकाबला रोकना, जो कि जिसे हम कहते हैं RSSC के जरिए, पराजित कर शानदार जीत दर्ज की है। वहीं अंडर 19 महिला वर्ग में भारत की 8 मुक्केबाज गुंजन 48 किलोग्राम, चंद्रिका बी पुजारी 51 किलोग्राम, चिरोम जे देवी 54 किलोग्राम, प्राची 57 किलोग्राम और चाहत 60 किलोग्राम, अंशिका 75 किलोग्राम, मेघा जो कि 80 किलोग्राम वर्ग में है और प्राची टोकस जो कि प्लस 80 किलोग्राम में है, उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचकर कम से कम कांस्य पदक तो भारत के लिए सुनिश्चित कर ही लिया है। और कहीं ना कहीं हमारे मेडल्स भी इसमें पक्के हो गए हैं और अभी आने वाले जो हमारे परफॉर्मेंसेस हैं, हमें अपने भारतीय मुक्केबाजों से काफ़ी उम्मीदें हैं। आशा करते हैं कि वह इसमें और अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
1: जी, शानदार प्रदर्शन बॉक्सिंग में तो चल ही रहा है, साथ ही साथ भारतीय एथलेटिक्स की बात करें

0: तो वहां पर भी हमारे भारत के लिए बहुत ही खुशखबरी की हमारे पास खबर आई है, जहां पर हम बात करते हैं भारतीय एथलेटिक्स के उभरते सितारे अनिमेश कुजूर ने एक बार फिर अपनी रफ्तार से इतिहास रच दिया है। उड़ीसा के इस धावक ने प्यूमा फास्ट आर्म फर्स्ट लेग्स 2026 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ 10.14 सेकेंड से पूरी करके दूसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही वो विदेशी धरती पर 100 मीटर स्पर्धा में सबसे तेज दौड़ने वाले भारतीय बन गए हैं। हालांकि वो गुरविंदर सिंह के राष्ट्रीय रिकॉर्ड 10.09 सेकेंड से महज 0.05 सेकेंड से पीछे रह गए हैं। अनिमेश ने फाइनल से पहले ही हीट में 10.19 सेकंड का समय निकालकर अपनी शानदार फॉर्म का संकेत दे दिया था। फाइनल में उन्होंने अपने प्रदर्शन को और बेहतर करते हुए 10.14 सेकंड का समय निकाला, जो उनका नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ यानी पर्सनल बेस्ट भी स्कोर है। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ समय 10.15 सेकंड था। ये किसी भी भारतीय धावक की ओर से विदेशी धरती पर 100 मीटर से दर्ज किया गया सबसे तेज समय है। वहीं भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में ये दूसरा सबसे तेज समय भी है। अनिमेश अब भारत के सबसे तेज धावकों में अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं। देश के 5 सबसे तेज 100 मीटर समय में उनके नाम दर्ज हैं। भारत के सबसे तेज 100 मीटर समय की अगर बात करें तो गुरविंदर ने 10.09 सेकंड का समय लिया है, अनिमेश कुजूर ने 10.14 सेकंड का समय लिया है। अनिमेश कुजूर ने ही 10.05 सेकंड का समय लिया था, गुरविंदर सिंह ने 10.17 सेकंड का समय लिया और अनिमेश कुजूर ने इससे पहले 10.18 सेकंड का समय वो ले चुके हैं। इससे पहले जून में उड़ीसा के अनिमेश ने ही इंटरस्टेट राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 20.74 सेकंड का समय निकालकर एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया था। उन्होंने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 20.88 सेकंड के क्वालिफिकेशन मानक को आसानी से पार कर लिया था। हालांकि अनिमेश अपने समय से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि सच कहूं तो ये समय उनके लिए आसान नहीं था, उनका लक्ष्य एशियन गेम्स में क्वालिफिकेशन हासिल करना है। तो इस चीज से और उनके कोच ने भी उनकी रणनीति पर उनको काफी सराहा है। तो अनिमेश पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि 200 मीटर उनकी पसंदीदा स्पर्धा है, लेकिन पिछले एक साल में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 100 मीटर में आई है। उन्होंने कहा है कि 20 मीटर में उनकी प्रतिस्पर्धा उनकी सबसे पसंदीदा है, लेकिन भारत ने उन्हें 200 मीटर में ज़्यादा प्रतिस्पर्धा उन्हें नहीं मिली है। 100 मीटर में गुरविंदर, मणिकांता और प्रणव जैसे धावक हैं जो उन्हें बेहतर प्रेरित करते हैं और शायद यही वजह है कि उनका प्रदर्शन 100 मीटर में अच्छा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर अमीषा बात करें, चाहे वो हमारा एशियन गेम्स हो, चाहे हमारा भारतीय एथलेटिक्स हो, चाहे अंडर एशियन 23 एथलेटिक्स हो या फिर मोनैको डायमंड हो, हमारे जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ क्रिकेट में नहीं अदर स्पोर्ट्स में भी। तो इस पे तुम्हारा क्या कहना है?
1: हाँ बिल्कुल सिमरन, और हमें आने वाले जो एशियन गेम्स भी हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स भी हैं, उसमें भी हमें अपने भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनसे काफ़ी उम्मीदें भी हैं कि भारत के नाम और मेडल्स आ सकें और भारत भी अपना जो एक लेवल है वो स्पोर्ट्स की दुनिया में बढ़ा सके। तो यही उम्मीदें रहेंगी हमारी।
0: उम्मीदें तो हैं, साथ ही साथ उम्मीदें हैं फीफा वर्ल्ड कप में भी कि भारत, हालांकि क्रिकेट को ज़्यादा हम अगर अब देखें तो क्रिकेट प्रेमी हमारे भारत में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फुटबॉल की तरफ भी प्रेमियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। तो देखना ये होगा कि क्या भारत फुटबॉल में भी अपनी वो पहचान बना पाता है या नहीं, जिसका फुटबॉल प्रेमियों को इंतज़ार है। तो वो इंतज़ार रहेगा जारी। साथ ही साथ
1: हम अपने श्रोताओं को जाते जाते ये भी बताना चाहेंगे कि पिकल बॉल एसोसिएशन ने अपनी जो स्पर्धा है उसकी टीम, उनकी घोषणा उन्होंने कर दी है। यह जो लीग है वह 30 अगस्त से 6 सितम्बर तक होगी, जिसकी अगुवाई हर्ष मेहता करेंगे।
0: जी, तो ये थी आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं सिमरन सारवान और अमीषा पटेल आपसे लेते हैं अनुमति,
1: प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना PMFME ने देश भर में 2,00,000 से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गया जी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। आज के इस अंक में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा डूरंड कप ट्रॉफी का अनावरण और फ्लैग ऑफ समारोह, इंडिया फाउंडेशन और भारत पर्यावास केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम, 7 जुलाई मंगलवार को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा डूरंड कप ट्रॉफीज का अनावरण और फ्लैग ऑफ किया गया। इस अवसर पर टूर्नामेंट से जुड़े हुए सभी पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा,
1: देवियों और स्वजनों, फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। आजकल फीफा विश्व कप के मैच खेले जा रहा है। इस प्रतियोगिता में विश्व की श्रेष्ठ टीमों और खिलाड़ी अपने देश के फुटबॉल की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उन टीमों और खिलाड़ियों के प्रशंसक पूरे विश्व में फैले हैं जो उनके अच्छे प्रदर्शन की सराहना करते हैं। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन सभी खेल प्रेमियों को उत्साहित करता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है। हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार फुटबॉल में खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हुए टीम को विजेता बनाते हैं, उसी प्रकार हम सभी देशवासी एक दूसरे के साथ देते हुए विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। फुटबॉल के खेल में भारत को विश्व स्तर पर अपना स्थान बनाने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी है, इसी के लिए तैयार अभी से करना है। ये आयोजन फुटबॉल की प्रतिभा को निखारने में सहायक बने, इसी भावना के साथ मैं सभी का मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
0: छह जुलाई सोमवार को भारत पर्यावास केंद्र सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री तरनजीत सिंह संधू की गरिमामय उपस्थिति में श्री कांची कामकोटी पीठाधिपति जगतगुरु पूज्य श्री शंकरा विजेंद्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामी को आमंत्रित किया गया था। इस आयोजन में माननीय उपराज्यपाल श्री तरनजीत सिंह संधू ने अपने संबोधन में कहा,
2: India's oldest living spiritual tradition, representing an unbroken civilizational legacy of over 2,500 years. Pujya Swamiji accepted sannyas at the age of 13 and has devoted more than 4 decades to spiritual guidance, public service, and nation building. I had the honor to personally hear his thoughts and spiritual wisdom. Through extensive Vijay Yatras across the Northeast, Jammu Kashmir, Punjab and remote rural regions, His Holiness has strengthened national integration, cultural unity and social harmony. Initiatives such as Vishwa Shanti Havans in Jammu and Kashmir and cultural outreach in Nepal, Punjab, etc. reflect the PEET's commitment to peace, dialogue and civilizational connect. Delhi maintains an active spiritual and cultural connection with Punjab, home to revered shrines such as Sri Durgana Mandir Temple in Amritsar. I was delighted to hear the PEET's connection to all these places. Sri Kanchi Kamakoti Peeth, a living civilizational institution established by Jagatguru Adi Shankaracharya, one of India's most sacred spiritual centers and a renowned seat of Advaita, Vedanta and Vedic learning. The three pillars of Peeth's work, Veda, it represent dharma. They form the bedrock of our civilization. Kanchi math has preserved the rare

0: वेद शाखाज एंड फॉस्टर्ड इंटरेस्ट इन द यंगर जनरेशन टू स्टडी वेदास नर्चरिंग थाउजेंड्स ऑफ वेदिक स्कॉलर्स विद्या एनकंपासिंग ट्रेडिशनल एजुकेशन स्वामी जी हैज पायनियर्ड इंटीग्रेटेड पाठशालाज दैट सीमलेसली ब्लेंड एंशियंट नॉलेज ऑफ वेदा एंड शास्त्र ऑफ द मॉडर्न लर्निंग schools in Meghalaya and near Gangtok are one of its kind. I offer my respectful pranam to Pujya Swamiji and on behalf of everyone present, most humbly request His Holiness to bless us. Benedictory address.
1: इस अवसर पर श्री कांची कामकोटी पीठाधिपति जगतगुरु पूज्य श्री शंकरा विजेंद्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामी ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा,
2: जो व्यास मुनि ने कहा है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम दूसरों को हिंसा नहीं करना, अपने जो आत्मदर्शन का स्वभाव होना, त्वयी मयि च अन्यत्र एको विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि मयि असहिष्णुः सर्वस्मिन्नपि पश्य आत्मानं सर्वत्र उत्सृज भेद अज्ञानम। आपके और हमारे सभी का मन में एक ही भगवान है, सब जगह आत्मदर्शन कीजिए, द्वेष मत कीजिए, प्रेम से जो दूसरों को हित के लिए भलाई के लिए जो कर सकते हैं हाथों से ज्ञानेंद्रिय से और कर्मेंद्रिय से जो जो उपकार कर सकते हैं वैसे कीजिए। ऐसे व्यास मुनि ने अग्नि पुराण कूर्म पुराण वायु पुराण पद्म पुराण ब्रह्मांड पुराण विष्णु धर्मोत्तर पुराण गरुड़ पुराण ऐसे अनेक पुराण है, पुराणों के द्वारा वेदों का संदेश सरल भाषा में वेदों का जो भाव है पुराणों के द्वारा तो प्रकट होता है, प्रचार में होता है। इसलिए हमारे पूर्वज लोगों ने राम कथा भागवत कथा उसका आयोजन करते थे। इसलिए सत्संग अपना शरीर के द्वारा अच्छे काम होना है, वैसे उन्होंने युवा पीढ़ी को संबोधित किया। संस्कृत भाषा में जितना भी शिला लेख है अफगानिस्तान में इंडोनेशिया में पाली में नेपाल में ऐसे अनेक विदेशों में अपने भारतवर्ष में भी उत्तर में दक्षिण में जितने भी शिलालेख हैं वो संस्कृत भाषा में उसका अंग्रेजी अनुवाद के साथ वो प्रिंट करना शुरू किया। वो उसमें पूरा ही विवरण है। आज हमको नया बात हो सकता है, आज के लिए जो हम बोल रहे हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः उसका शिलालेख 1400 वर्ष पहले अफगानिस्तान आज का अफगानिस्तान में प्राचीन गांधार में हुआ है, उसका पब्लिश किया है। आज का जो भी कबूल वगैरह है उसमें फलाना राशि में फलाना नक्षत्र में प्रतिष्ठापित पितम सिद्धि विनायक बिंबम गणेश मंदिर प्रतिष्ठा हुआ 600 एडी में हुआ। यह सब प्रमाण सहित देश का इतिहास, हम कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कौन आयाम क्या है, ये रमण महर्षि ने आत्मदर्शन के लिए वेदांत का प्रचार तो हुआ, महाराज ने वेदांत का प्रचार के साथ साथ हम कौन है, भारतीय कौन है, अपने सनातन परंपरा क्या है उसके लिए प्रचार। इधर भी हम दिल्ली के आसपास इधर से दिल्ली से कश्मीर तक जो काम है पंजाब में भी हम कुछ काम करना चाहते हैं, वैसे वहाँ भव्य मंदिर का ये सब करना चाहते हैं, हर मंदिर तिरुपति हो रहा उस हमारा काम होता है, हमारा प्रोत्साहन भी सरकार धार्मिक कार्यक्रमों के लिए होगा। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की हर हर नमः पार्वती पतये हर हर हर शंकर जय जय शंकर।
1: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है।

0: आदौ मुख्याः वार्ताः। भारत न्यूजीलैंड देशयोः द्विपक्षीय संबंधाः सामरिक सहभागिता स्तरे समेधिताः। त्रिंशदधिकद्विसहस्र वर्षं यावत् पारस्परिक व्यापारं द्विगुणीकृत्य पञ्चत्रिंशत् सहस्र कोटि रूप्यकाणां लक्ष्यं निर्धारितम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कथनम्। न्यूजीलैंड देशे निवसता भारतीय समुदायेन द्वयोः राष्ट्रयोः विकास यात्रायाम् एकः महत्वपूर्णो भागः ऊढः। ऑकलैंड नगरे विशालं भारतीय प्रवासी समुदायं च संबोधितवान् असौ। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन स्वदेशी तन्त्रेण निर्मितस्य INS महेन्द्रगिरी युद्धपोतस्य विधिवत् जलावतरणं विधापितम्। संसूचितं च यत् भारतम् एकं सुदृढं आत्मनिर्भरं भविष्योन्मुखं च रक्षाबलं निर्माति। परिवहनक्षेत्रे प्रौद्योगिकी नवोन्मेष संचालित सहयोगं सुदृढं विधातुं ऐतिहासिकं ब्रिक्स मंत्री घोषणापत्रं सर्वसम्मत्या अंगीकृतम्। बावी चक्रवातस्य कारणात् जापान तैवानयोः विमानयात्राः निरस्तीकृताः। शैक्षणिकाः संस्थाः च स्थगिताः। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये पञ्चमान्तिम च T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा अद्य सायं साउथैम्प्टन नगरे आयोजयिष्यते। अपि च फीफा विश्व चषक पाद कन्दुक प्रतिस्पर्धायाः अन्तिम उपान्त्य स्थानानां निश्चयार्थम् अद्य रात्रौ प्रागुपान्त्य चरणे नॉर्वे इंग्लैंड दलयोर अथ अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड देशयोर मध्ये स्पर्धा भविता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य ऐतिहासिकीं द्विदिवसीयां न्यूजीलैंड यात्रां सम्पाद्य अद्य भारताय प्रस्थितवान्। विगत चतुर्दशकेभ्यः अपि अधिक समयांतराले कस्यचित् भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या द्वयोः देशयोः पारस्परिक सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्व्यूढवती। तत्र तावत् अद्य प्रधानमन्त्री मोदी सहैव न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लेक्सिन इत्येतौ ऑकलैंड नगरे द्विपाक्षिक वार्तानन्तरं उभयोः देशयोः सम्बन्धान् सामरिक सहयोगित्वेन रूपान्तरितवन्तौ। अनेनैव सह त्रिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षं यावत् उभयदेशयोः वार्षिक द्विपक्षीय व्यापारं द्विगुणीकृत्य पञ्चत्रिंशत्सहस्रकोटिरूप्यकात्मकं विधातुं पञ्चवर्षीयं लक्ष्यं निर्धारितवन्तौ। शिष्टमण्डलस्तरीयमन्त्रणायां प्रधानमन्त्रिणा गदितं यत् स्वकीयः अयं न्यूजीलैंड प्रवासः द्विपाक्षिक सम्बन्धेषु केनचन ऐतिहासिक कीर्तिस्तम्भत्वेन सेत्स्यति। उभाभ्यां नेतृभ्यां प्रतिपादितं यत् हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं भारत न्यूजीलैंड देशौ प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुं शक्नुतः। उभयदेशयोः मध्ये सम्पन्नस्य मुक्त व्यापार सहभागित्वस्य प्रशंसा कुर्वता श्रीमोदिना न्यूजीलैंड देशस्य क्षिप्र प्रयासाः श्लाघिताः। सहैव तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणः लेक्सिन वर्यस्य कुशल नेतृत्वाय च धन्यवादः प्रकटितः।
1: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं।
0: अत्रावसरे न्यूजीलैंड प्रधानमन्त्रिणा आधिकारिकरूपेण घोषितं यत् इयं प्रस्ताविता सामरिक सहभागिता प्रमुखाणां क्षेत्राणां विकासार्थं सहैव पारस्परिक सहयोगस्य विस्ताराय च कञ्चन व्यापकं तन्त्रं प्रदास्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम राम, राम।
0: तो नीलम बहन हम हाजिर हैं अपने बहन भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के। और बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं आज शनिवार है, तो आपको सुनने को मिलेगा आप ही की पसंद पर लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज हम विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं, जिसमें हम तेजी से बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बहन भाइयों, विश्व भर में 8 अरब से अधिक लोगों के साथ कई क्षेत्र सीमित संसाधनों, स्वास्थ्य समस्याओं और पर्यावरणीय दबाव से जूझ रहे हैं। तो हम जागरूकता फैलाकर और परिवार नियोजन का समर्थन करके हम एक सतत और न्याय संगत भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल शशि भाई, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या और सामूहिक समाधानों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। 1900 के दशक की शुरुआत में दुनिया की आबादी लगभग 1.6 अरब थी। अब 100 साल से कुछ अधिक समय के बाद हमारे विश्व की आबादी 8 अरब से अधिक हो गई है। इस वृद्धि ने प्रगति तो लाई है, लेकिन साथ ही नई चुनौतियां भी खड़ी की हैं। अत्यधिक जनसंख्या गरीबी, प्रदूषण, वनों की कटाई और पानी और भोजन की कमी को भी बढ़ा देती है। विकासशील देशों में एक प्रमुख चुनौती है, जहां स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक सीमित पहुंच के कारण जन्म दर अधिक है। लैंगिक समानता के कारण महिलाओं के पास अक्सर प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी अपर्याप्त जानकारी मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में योगदान देती है। ये ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर विश्व जनसंख्या दिवस के दिन हर वर्ष चर्चा की जाती है।
0: बिल्कुल, एक सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करना, पर्यावरण संरक्षण करना और समान अधिकारों की वकालत करना जैसे छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो हम सब आज इस विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर ये जिम्मेदारी लें, अपने समुदाय को शिक्षित करें और एक सतत विश्व के लिए मिलकर काम करें। तो बहन भाइयों, ये तो आपने जाना विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। और नीलम बहन, एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है भारत सरकार का, जिसका नाम है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब बरसात का मौसम है, ऐसे में जो मच्छर हैं, मक्खियां हैं, कीड़े हैं, कांटे बहुत अधिक निकलते हैं, जिनकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं और अनेक प्रकार के रोग हमको घिर लेते हैं। तो इन रोगों पर नियंत्रण करने के लिए ही ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये भारत सरकार का एक प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्य करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य मच्छरों और अन्य कीड़ों यानी कि वेक्टर से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण करना है।
1: बिल्कुल शशि भाई, ये कार्यक्रम मुख्यतः 6 वेक्टर जनित बीमारियों पर केंद्रित है, जिनमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी बुखार, कालाजार, लासिका फाइलेरियासिस शामिल है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बीमारियों के मामलों की तुरंत पहचान करना, मरीजों का निशुल्क इलाज और मच्छरों के प्रजनन को रोकना है।
0: बिल्कुल, और इसके साथ ही बहन भाइयों, आपको बता दें कि सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश से मलेरिया को पूरी तरह खत्म करना है। इसके अलावा फाइलेरिया और काला आजार जैसी बीमारियों के उन्मूलन के लिए विशेष अभियान जैसे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चलाए जाते हैं। तो बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की। और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार की। हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं गांव पनियास्ता से विनोद बोल रहा हूँ जी।
0: विनोद भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: सत्यदेव सागर को सुनना चाहूंगा जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: बच्चों के नाम जी?
0: जी,
2: साहिल, रोहित, कविता, ममता, राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
2: राम राम साहब।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?

0: खुर्जा उत्तर प्रदेश के तिलक राज अरोड़ा।
1: तिलक राज जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
0: आज सत्यदेव सागर को सुनवा देना।
1: जरूर सुनवाएंगे।
0: और मेरे साथ सुनेंगे प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा।
1: फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार, राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
2: घनश्याम बोल रहा हूँ, गलगंगा नए वास्ते से।
1: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: सत्यदेव की।
1: जरूर सुनवाएंगे। हाँ बोल दीजिए ना।
2: मेरी भाई ज्ञानपति आनंदी और ज्ञानदास प्रसाद जी है और आकाशवाणी को सबको राम राम।
1: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं मांगेराम बोल रहा जी, खेड़ा कोस्तान डिस्ट्रिक्ट शामली।
1: मांगेराम जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: सत्यदेव सागर जो।
1: जरूर सुनवाएंगे।
3: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी। हेलो ग्राम संसार।
4: भाई साहब जी को राम राम।
1: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं गांव लोहारा डाकखाना में नगर सराय जिला बागपत मिस्त्री राकेश कुमार बोलला जी।
1: राकेश जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: सत्यदेव सागर जी।
1: जरूर सुनवाएंगे।
4: दो नाम और है जी।
1: हाँ बोल दीजिए।
4: छोटी लड़की है अन्नू, बड़ी लड़की है सालू, घरवाली है सामो और गांव सराय से नरेंद्र यादव। राम राम भैया।
1: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
5: सर जी नमस्कार।
1: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
5: सर दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा बोल रहा हूँ सर जी।
1: मेहरा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: सत्यदेव सागर को सुना देना सर जी।
1: जरूर सुनवाएंगे।
5: बच्चों के नाम है सर जी?
1: हाँ बोल दीजिए।
5: कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
6: मैं सोनू गाँव डोर जिला मेंदरा हरियाणा से बोल रहा हूँ।
1: सोनू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: आज सत्यदेव सागर को सुनना चाहिए।
1: जरूर सुनवाएंगे।
6: एक नाम है।
1: हाँ बोल दीजिए।
6: मेरे पिताजी अमन वर्मा से, मेरी मम्मी फूलपति। नमस्ते।
1: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
7: शशि भैया नमस्कार।
1: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
7: मैं गांव चौधरी वासी राजोगर।
1: राजू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: आज सत्यदेव सागर को सुना देना जी। और कुछ साथी हैं, लीलाधर शर्मा, मंटू शर्मा, सुशीला शर्मा।
1: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर सत्यदेव सागर से ये उपदेश।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम संसार सचिव भाई, राम राम। चंद्रपाल
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: जाखड़।
0: चंद्रपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: प्रियंका चौधरी को सुनवाइयो।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: दो चार नाम है।
0: हाँ बोल दीजिए।
1: टुन्नी प्रधान, कल्लू राहुल, धर्मपाल और विनोद मास्टर जी। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई
2: मैं
0: बोल रहे हैं?
2: खजान सिंह जौहरीपुर से बोल रहा हूँ जी।
0: खजान भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: प्रियंका चौधरी को किसी रागिनी सुनवा दिया।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: कुछ नाम है जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
2: रामबती, खजान सिंह, अजय कुमार, चंद्रकांता, मोहन। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो ग्राम संसार।
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
3: इंद्रवीर तेवतिया, गाँव डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: तेवतिया जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: प्रियंका चौधरी की गाई हुई बढ़िया सी रागिनी सुनवा देना।
0: जी
3: कुछ नाम लेने चाहूंगा।
0: हाँ बोल दीजिए।
3: सुमित तेवतिया, प्रिंस छोटू, प्रत्यक्ष निष्कर्ष, सिद्धार्थ हमारी बुआ जी है राजगी जी, और गांव मनौना से मुंशी जी विक्रम सिंह, और गांव खुशियालपुर से मास्टर जी शेर सिंह मोदी, और पनजी रतनलाल, गांव क्यामपुर से मास्टर जी हरेंद्र सिंह।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: अशोक कुमार शर्मा, ब्लॉगर।
0: अशोक भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: आज प्रियंका चौधरी को सुनने जी, और मेरे साथ में रिशु, नीरज शर्मा, देव शर्मा, गर्व शर्मा, गणेश शर्मा। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो शशि भाई को नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: महेंद्र सिंह बोल, विकासपुरी गांव बराने जिला बुलंद शहर।
0: महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: प्रियंका चौधरी को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: और मेरे साथी आरती भारती स्वाती मिसेज कविता देवी।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
6: हेलो ग्राम संसार जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: हिसार से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ शशि जी।
0: सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: प्रियंका चौधरी को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: साथ में बनवारी लाल यादव जी गामड़ी से, शमशेर जी द्वारका से, विजय लखेरा जी महेंद्रगढ़ से, राहुल सैनी हिसार से। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
7: हेलो ग्राम संसार सर, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?

0: जी मैं करमवीर सिंह ढिलोड़ बोल रहा हूँ, मुरादनगर गाजियाबाद से।
1: करमवीर जी कार्यक्रम में स्वागत है, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
0: जी प्रियंका चौधरी को सुनवा देना, और क्या नाम दो नाम लूंगा सर जी,
1: हाँ
0: मेरी बेटी है रोनिका ढिलोड़ और मेरा भाई है सूरजमल ढिलोड़ जी।
1: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर प्रियंका चौधरी से ये रागनी।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हाँ जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं शेर सिंह बोल रहा हूँ जी, रजपुरा ममाना रोड में से जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: ब्रह्मपाल नागर को सुनवा दो जी, कुछ
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: नाम है जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
1: हाँ परमाल है, मेरा दोस्त है, मोती सिंह भाई है, मेरा लड़का किशन पाल है, पीयूष है। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। हेलो ग्राम संसार,
2: हेलो ग्राम संसार,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं ब्रजपाल बोल रहा, गांव रामसावाड़ा, जिला सहारनपुर से जी।
0: ब्रजपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: ब्रह्मपाल नागर को सुना दियो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: चार बच्चों के नाम लूंगा सर।
0: हाँ बोल दीजिए।
2: वरदान, उन्नति, उत्सव, वंश और हमारे बड़े भाई हैं रंडेड़ी से बसेसर बटार। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं हरी सिंह सैनी, पशुआ नंगला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: ब्रह्मपाल को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: और कुछ नाम है जी? देवचंद है, राकेश, मुकेश, बलेश और कुछ पोती पोता, नीतीश, हेमपाल, ललित, चंदन, पुष्पंदर, जीतू, भूमेश, छवि, निशा, कंचन और भांजा, गोविंद, मनोज, हरिचंद और रिश्तेदार मनी, संजीव, ज्योति, गीता, गाँव की पूरे की फरमाई।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार, सेवा को नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
0: डॉक्टर साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: ब्रह्मपाल नागर को।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
5: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: मैं जगदीश सिंगारिया बोल रहा जी, डाने निर्साण से, जिला भिवानी जी।
0: जगदीश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: ब्रह्मपाल नागर को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: बच्चों के भी नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
5: राजवीर सिंगारिया, सतीश सिंगारिया, ऋतिक सिंगारिया, केला देवी जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। हेलो ग्राम संसार।
6: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: जी लक्ष्मण सिंह बात कर रहा है सर, दमोह मध्य प्रदेश से।
0: लक्ष्मण जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: ब्रह्मपाल जी हैं, उनके लिए सुनना चाहेंगे।
0: जरूर सुनवाएंगे। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ब्रह्मपाल नागर से ये देशभक्ति गीत।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112347331 और दूसरा नंबर है 0112347332। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी

0: समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्म जोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2,00,000 से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रथिका प्रदीप और चिकित्सा तनिपार्थी की तिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से 228-232 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रथिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक अपने नाम किया। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारे जो किसान बहन भाई हैं उनकी जो खेती में लागत है वो कम हो और पैदावार ज्यादा हो, उनको मुनाफा ज्यादा हो। और ये तभी संभव होगा जब हमारे

0: किसान बहन भाई अपनी खेती में आधुनिक तकनीकों और कृषि यंत्रों का उपयोग करेंगे। आजकल तो बहुत सारे कृषि यंत्र आ चुके हैं, तकनीकियां आ चुकी हैं, जिनका उपयोग हमारे बहुत से किसान भाई कर रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। तो तकनीकी की बात करें तो आज हम बात करेंगे कृषि में सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हमारे किसान भाई कैसे लाभान्वित हो सकते हैं और किस तरह से वो अपनी खेती में लागत कम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से सोलर उपकरण हैं। तो किसान बहन भाइयों, आपको बता दें कि आपकी खेती को आसान बनाने के लिए आजकल सोलर वाटर पंप है, सोलर ड्रायर है, सोलर फेसिंग है और देखिए सोलर फ्रिज भी है। बहुत सारे सोलर यंत्र हैं जिनका उपयोग करके आप अपनी खेती को आसान बना सकते हैं और खेती में बहुत लागत को कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल शशि भाई, और सबसे पहले बात करें सोलर पंप की, तो ये सूर्य की रोशनी से चलता है। इससे हमारे किसान भाई आसानी से सिंचाई कर सकते हैं और साथ ही साथ डीजल और बिजली का खर्च भी बचा सकते हैं। इससे दिन में धूप के समय आसानी से सिंचाई होती रहती है। और अब बात करें सोलर ड्रायर की, तो ये अनाज, फल और सब्जियों से नमी सुखाते हैं। इससे जो कृषि उत्पाद हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चलने वाले शीत ग्रहों में फसलें सड़ती नहीं हैं। और इसके बाद बात आती है सोलर ग्रीन हाउस की, तो ये सर्दियों में पौधों को उचित मात्रा में तापमान देते हैं और सोलर फेसिंग खेतों की सुरक्षा के लिए काम करता है।
0: बिल्कुल, इसके अलावा सौर ऊर्जा से चलने वाले कीटनाशक छिड़काव यंत्र का भी इस्तेमाल हमारे किसान बहन भाई आसानी से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और सौर ऊर्जा की मदद से गांव और शहरों में बिजली उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है और लोग सौर ऊर्जा की मदद से अपने घर को रोशन करने में सफल भी हुए हैं। सोलर पैनल लगवाने पर सरकार भी किसान भाइयों की मदद कर रही है।
0: बिल्कुल, जिसके लिए भारत सरकार कुसुम सोलर योजना चला रही है। इस योजना का उद्देश्य है कि हमारे किसान बहन भाइयों को सोलर पंप लगाकर उनके कृषि व्यवसाय को बेहतर बनाया जाए और साथ ही इस योजना के अंतर्गत आप किसान भाइयों को सस्ते दामों पर सोलर पंप लगाने की सुविधा दी जाती है, जो आपकी कृषि खेती के लिए जल सप्लाई की समस्याओं को हल करता है। इस योजना के तहत आप किसान भाई कुल लागत का मात्र 10% लगाकर सोलर पैनल लगवा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और कुसुम योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान करना है। और इस योजना के तहत डीजल सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में बदला जा रहा है। देश के जो किसान भाई सिंचाई पंपों को डीजल या पेट्रोल की मदद से चलाते हैं, अब उन पंपों को इस कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा।
0: बिल्कुल, तो और क्या-क्या उपयोग सौर ऊर्जा के कृषि में हो सकते हैं, तो इसी क्रम में अपने बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक जानकारी जिसका विषय है कृषि में सौर ऊर्जा का महत्व। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर YP सिंह और इनसे बात कर रहे हैं शिव नंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और विशेष तौर पर जब हम खेती की बात करें तो उसमें अगर हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करें तो आपकी लागत में भी बचत आएगी। और दूसरी बात यह है कि जो आपकी सौर ऊर्जा है अपार है, जो खत्म होने वाली नहीं है, तो उसका भी आप सही से उपयोग कर पाएंगे। और इसका किस तरीके से उपयोग करें इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी हैं डॉक्टर YP सिंह जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: तो डॉक्टर साहब, जैसे जो सौर ऊर्जा है उसमें कृषि में क्या महत्व है, और आज के परिवेश में अगर हम उसे देखें तो इसकी क्यों आवश्यकता बढ़ती जा रही है?
3: किसान भाइयों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो सौर ऊर्जा एक ऐसी चीज है, चाहे हमारा खेती हो चाहे अदर जितने भी इंडस्ट्री, हर जगह ऊर्जा प्रमुख रूप से हमारे विकास में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अभी देखें तेल, जो डीजल, गैस आदि की जो हमारे यहाँ समस्या पेट्रोल की हो रही है, ये ऊर्जा बाहर से ही हमारी आ रही है। अगर किसान भाई थोड़ा सा यहीं पे हम, अब भारत सरकार भी कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा PM कुसुम योजना जो 8 मार्च 2019 को शुरू किया गया था। पीएम कुसुम का अर्थ है प्रधानमंत्री किसान

0: ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान
1: जी
0: पीएम कुसुम नाम से शुरू किया गया था। ये जो आज परिस्थिति बन रही है, हमारी सरकार द्वारा बहुत पहले से ही इस पर सोचा गया, क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारे किसान भाइयों को ऊर्जा जो है, जो कि हमारे पास अपार ऊर्जा है
1: जी
0: लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम किसान भाइयों तक कैसे पहुंचाएं, किस रूप में करें, उस पर ध्यान देते हुए पीएम कुसुम योजना लॉन्च की गई, जिसमें सरकार अपनी तरफ से उसमें 30-30-40 केंद्र सरकार, 30 राज्य सरकार और 40 किसानों के इस तरह करके 60% सब्सिडी हो गई और 40% किसानों को देने के बनाया गया।
1: डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जो सौर ऊर्जा है उसका किसान कृषि के किन किन कामों में उपयोग ले सकते?
0: आज किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी की, जरूरत होती है जल की, जरूरत है।
1: जी
0: और उसके लिए हम क्या करते हैं, नहर पे, ट्यूबवेल पे आज जगह आश्रित होते हैं। ट्यूबवेल पे गए तो या तो हमारे पास इंजन है तो उसके लिए डीजल, पेट्रोल या जो भी अदर गैस आदि से महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे कास्ट बढ़ रहा है। तो उसके लिए हमारी सरकार ने किया कि सौर पंप के लिए उसमें है कि एक पैनल जो होता है 0.25 HP का होता है, तो हम अगर 3 हॉर्स पावर का ले रहे हैं तो उसमें 12 पैनल लगेंगे। इस तरह सरकार का वो था कि 30-30-40-60% सरकार की सब्सिडी थी और 40% किसानों को देना है। तो उसमें सोलर पंप के द्वारा दो चीजें होती हैं सोलर पंप में, एक तो जैसे नहर पे से पानी जा रहा है तो खेत में पहुंचाने के लिए उसको पंप करना है, किसान को कहीं कोई जरूरत नहीं होती, वो सीधे ले जाकर सोलर पैनल लगाता है और डायरेक्ट जो है उसमें दो चीजें होती हैं कि एक है कि बैटरी के द्वारा बिजली को इन्वर्टर के रूप में इकट्ठा करके उसको चालू करते हैं, दूसरा है कि सोलर के द्वारा डायरेक्ट मोटर से कनेक्ट होती है, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पैदा होती है और मोटर कनेक्ट होती है, DC रूप में सीधे जो है पंप पानी चल जाता है और पंप सीधे किसानों को खेत पे जाता है। इसमें किसानों को बैटरी का कास्ट भी नहीं होता और सीधे वो किसान उसका फायदा लेते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आपकी आज बिजली है नहीं है, किसी कारण से आंधी बारिश आ गई, कोई समस्या आ गई, उस समय भी हमारा सोलर जो है काम करता है, क्योंकि भारत जैसे देश में साल में लगभग 300 दिन सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ सोलर की समस्या हमारे रूप में कभी नहीं होगी।
1: तो डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह से अगर हम देखें, सोलर पंप हमारे डीजल या बिजली पंप से बेहतर है। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे देश की जोत छोटी है और बहुत किसान सीमांत हैं, तो क्या इनके लिए भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है?
0: सबसे ज्यादा सीमांत छोटे किसानों के लिए ही सरकार के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है, क्योंकि यह छोटे किसान के लिए सबसे उपयुक्त इनको, क्योंकि कनेक्शन और वो सब कास्ट के लिए उनकी बचत हो जाती है। और ये जो है एक ही रूप में नहीं है, किसान केवल सोलर पंप के लिए, सोलर जो है तो सोलर ड्रायर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सोलर ड्रायर में होता है कि चाहे अनाज है या सब्जियां हैं, उसको जो हम खुले धूप में जैसे अनाज को सुखाते हैं, उसमें दो तीन चीजें हमारी समस्या आती है। एक सबसे बड़ी समस्या आती है धूल मिट्टी डस्ट आ जाता ही है, और तीसरी समस्या जो आती है उसे फंगस बैक्टीरिया फफूंद आदि का इन्फेक्शन होता है। सोलर ड्रायर में ये समस्या एकदम नहीं आएगी। और रही सब्जियों का, जैसे कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसको हम ड्राई करके बाद में हम उसको सूखा करके बेचते हैं, जैसे हमारी मेथी होती है या टमाटर का, उसको हम प्यूरी करके बाद में हम उसको टमाटर का पाउडर फार्म में भी टमाटर अब आने लगा है। ये सारी चीजें जो हैं हम उसको तैयार करके सोलर ड्रायर के द्वारा उससे हम अपने किसान भाई अपना ये काम कर सकते हैं। दूसरा है सोलर काम है कोल्ड स्टोरेज, जो सनफ्रिज के रूप में हमारे यहाँ पूसा संस्थान में एक सनफ्रिज भी बनाया गया है, या किसान अपने खेत पर एक छोटा सोलर फ्रिज के रूप में अपना बना सकता है, जैसे कोई लीफी वेजिटेबल है या अदर जो भी वेजिटेबल है उसके लंबे समय तक रखने के लिए, जिससे मंडी में रेट कम है या रेट जब ज़्यादा आए उस कंडीशन में, या आपका प्रोडक्शन अचानक ज़्यादा हो गया मार्केट में इकट्ठा ना जाए, रेट अच्छा मिले, उस कंडीशन में भी आप अपने सोलर फ्रिज में उसको रख कर आप उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। और साथ में एक और इस किसानों के लिए उपयोग का है ग्रीन हाउस
1: जी,
0: उसका तापमान भी जो है नियंत्रण करने के, उसमें भी सोलर पैनल क्या करते हैं हम उसके ग्रीन हाउस के छत पे लगा के जो हमें बिजली की ग्रीन हाउस में बाहर से फैन वगैरह के लेते हैं, क्योंकि 0.25 HP का एक पैनल होता है, हमें वहां अगर मान लीजिए 10,000 स्क्वायर फीट का एक ग्रीन हाउस है तो उसमें 2 HP का हमें लगेगा, तो मीनिंग हमें 8 पैनल से ही हमारा जो है काम हो जाएगा।
1: तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि इसका सोलर पंप है, आपका सोलर ड्रायर है और आपका सोलर फ्रिज के रूप में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है, तो किसान भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं और जो आपने कुसुम योजना का जिक्र किया उसका लाभ लें, तो किसान भाई किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं?
0: किसान भाइयों, इसमें कुछ नहीं करना है। हर जिले में डीडी एग्रीकल्चर, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो होते हैं,
1: जी
0: वहाँ उनको सारी योजना के बारे में बताई जाएगी। या तो चाहे तो एक वेबसाइट है, PM कुसुम.MNRE.GOV.IN, पर जाकर आप अपना पूरा लॉगिन करें, आपको डिटेल मिल जाएगा। उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, किसानों का अपना आधार नंबर, किसान का नाम, जोत जो फरद कहते हैं या खतौनी कहते हैं, वो डाल के आप डिटेल, आपको क्या चाहिए, कितना सीमांत किसान है या बड़े किसान है, उस हिसाब से आप सबमिट कर दीजिए, आपको सारी सब्सिडी या सारा रूल आपको आ जाएगा।
1: यानी शुरुआत में आप जब आप लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ लागत आपको अपनी पार से भी
0: हाँ,
1: लगानी पड़ती है।
0: 40% लागत किसानों को अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी, 60% सरकार की तरफ से है, लेकिन कुछ कंडीशन में 60 से ज्यादा भी% जो है, वहाँ जिला कृषि अधिकारी के यहाँ जाएं, आप बात करें, आपको मिल सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब, जब कोई भी उत्पादन या कृषि में सौर ऊर्जा का हमारे अगर किसान भाई प्रयोग करते हैं तो क्या उनकी आय में भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है?
0: जब उनका कास्ट ही कम हो जाएगा तो आय अपने आप बढ़ जाती है। जो हमारे प्रधानमंत्री का है कि डबलिंग फार्मर्स इनकम, किसानों की आय दुगुना करना, तो उस कंडीशन में अपने आप है कि हमें सबसे बड़ी उसमें उत्पादन लागत को कम करना है और उत्पादन को बढ़ाना है। जब हम लागत कम कर देंगे और किसानों को सही समय पे, वो क्योंकि बिजली पे निर्भर नहीं रहेंगे, बिजली या हमारे डीजल पेट्रोल आदि पे, तो सही समय पे अपने किसान अपने खेत को, अनाज को, पानी खेतों को दे सकता है, तो अपने आप वो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। कास्ट कम हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, तो उनकी इनकम ऑलरेडी अपने आप बढ़ेगी, और
1: जी
0: सब्जियों में आदि का वो स्टोरेज कर लेंगे, अच्छे टाइम पे अच्छे समय पे बाजार में ले जाएंगे, तो इससे उनको उसका उचित मूल्य भी मिलेगा।
1: जिस तरीके से आजकल देखते हैं कि प्रदूषण की भी समस्या है, डीजल इंजन इस तरीके से चलाते हैं, तो अगर हमारे किसान भाई सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो प्रदूषण में भी जो हमारा पर्यावरण संरक्षण की भी बात हो सकती है।
0: इसमें तीन चार चीजें किसानों को सबसे अच्छा वो है, उनकी लागत में कमी होगी, पर्यावरण जो है अच्छा रहेगा क्योंकि प्रदूषण नहीं फैलेगा, और जो बिजली कटौती आदि समय पे हो जाती है, जिस समय किसानों की जरूरत होती है,
1: जी
0: किसी कारण से आंधी आ गई कुछ, क्योंकि गांव एरिया में, अर्बन एरिया में तो नहीं, गांव एरिया में आज भी अगर आंधी या किसी कारण से आ जाती है तो लंबे समय तक, 1 हफ्ते 10 दिन तक अगर गैप हो जाता है, तो किसानों को उस समय पानी की जरूरत है, तो पानी न मिलने के कारण उनका उत्पादन घट जाता है,
1: फसल
0: इसलिए
1: खराब हो
0: फसल
1: जाती
0: खराब होती है। और सौर ऊर्जा जो है हमारी, सूर्य का, ये कभी इसकी कमी नहीं है हमारे भारत देश में, विशेष रूप से भारत के परिप्रेक्ष्य जो हमारे देश का क्लाइमेट है, यहाँ 300 दिन तक सौर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिए उपलब्ध रहती है। और साथ में सबसे बड़ी है कि अगर किसान थोड़ा सा बड़ा पैनल लगाते हैं तो उनकी जितनी बिजली की खपत, अगर उस समय उनको जरूरत है, उस समय अपने खेत पे यूज करें, नहीं कर पा रहे हैं, तो वह ग्रिड से कनेक्ट होता है, वो ग्रिड वापस चला जाता है, जब किसान को बाद में जरूरत होती है, ग्रिड उतने का उनको जो है बिजली दे देती है।
1: थोड़ा सब, क्योंकि सौर ऊर्जा के लाभ ही लाभ हैं, तो फिर भी हमारे किसान भाइयों को कुछ न कुछ चुनौतियां रहती हैं इसको अपनाने में, क्या?
0: अभी इसके लिए थोड़ी चुनौती है कि इसको मेन जो समस्या आ रही थी कि इसकी जानकारी की अभाव था, इसके लिए हर जगह प्रशिक्षण के द्वारा, सरकार की योजना के द्वारा बताया जा रहा है, गोष्ठी सेमिनार आदि करके, उसमें थोड़ा सा किसान भाई भी बाद में थोड़ी उनको असुविधा होने लगी, जो लगाए कि उससे प्रसार में कि बिजली कम पैदा हो रही थी, तो उसमें समस्या ये नहीं आई थी, समस्या ये आ रही थी कि पैनल के ऊपर डस्ट और आदि जम जाते थे, जिसके कारण सौर ऊर्जा जो है वो कम आ पा रही थी। बाद में किसानों को ये इसीलिए कहा जा रहा है कि आसपास अगर कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ, या कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जाके उनसे 1-2 दिन की 3 दिन की एक प्रशिक्षण ले लें, उसको कैसे क्लीनिंग करें। हर किसान अगर जो पैनल लगा रहे हैं, महीने में एक बार उसकी जो है पानी से या वाइपर के द्वारा उसकी सफाई कर दें, तो उनकी बिजली की उत्पादन है वो अच्छा बना रहेगा और किसानों को भरपूर उससे लाभ मिलेगा। साथ में किसान एक चीज और वो करें कि उससे केवल वही नहीं है, किसान अपने घर की भी बिजली जो है सौर ऊर्जा के द्वारा वो उसको इन्वर्टर फार्म में, क्योंकि रात में जरूरत होगी तो वो उसको इन्वर्टर फार्म में कर सकता है, लेकिन खेत पे अगर उसको दिन में है तो वहाँ इन्वर्टर फार्म न करके डायरेक्ट डीसी के द्वारा पैनल से मोटर को कनेक्ट करेगा, वो कर सकता है। और एक और वो है एग्री वोल्टाइक्स, उसमें होता है कि

0: हमारे यहाँ दिल्ली में एक केवीके है, वहाँ जाके देख सकते हैं। ऊपर सौर ऊर्जा है, नीचे जो है उसकी खेती भी उसकी छाया में हम कर रहे हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल, अगर सही देखभाल हमारे किसान भाई सोलर पैनल के करते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें ज़्यादा ऊर्जा बराबर लगातार मिलने की संभावना रहती है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो हमारे सौर ऊर्जा है उसके अगर भविष्य देखा जाए तो क्या संभावना है?
0: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हुए भविष्य हमारा सौर ऊर्जा या सोलर पावर पर ही चलेगा, और इसको टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है और अच्छे से किया जाएगा, क्योंकि हमें देश को भी और हमारे किसानों को भी सबसे ज्यादा ऊर्जा पे ही आत्मनिर्भर होना होगा। जब तक हम ऊर्जा पे आत्मनिर्भर नहीं होंगे, हमें किसी पे डिपेंड रहना होगा। अगर हम दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो हमारे उत्पादन पर भी उसका असर पड़ेगा।
1: तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई सौर ऊर्जा के पैनल लगवाएं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप अपने यहाँ जो आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ से जानकारी प्राप्त करें। जिला कृषि अधिकारी या डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के यहाँ से जाकर वो पहले जानकारी प्राप्त करें, फिर पीएम किसान जो पोर्टल है उस पर अप्लाई करके सौर ऊर्जा का घर के लिए भी, और अगर छोटे किसान हैं या बड़े किसान जिस तरह के भी आपको जरूरत है वहां पे, आप सौर ऊर्जा की तरफ, सोलर पावर की तरफ आप जाइए। आपको लाभ ही लाभ है उसमें, कहीं से कभी भी कोई नुकसान नहीं किसी किसानों को हो पाएगा। किसान भाइयों को हमेशा लाभ मिलेगा, चाहे वातावरण के द्वारा, चाहे हमारे लागत में कमी होगी, या हमें समय की भी हमारी बचत होगी।
1: जी बिल्कुल, डॉक्टर वाईपी सिंह जी, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी कि किस तरीके से हमारे किसान भाई सौर ऊर्जा का उपयोग अपनी कृषि में करके अपनी लागत में कमी ला सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि में सौर ऊर्जा का महत्व। किसान भाइयों, आप सुन रहे थे ये बातचीत। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर वाई पी सिंह, और इनसे बात कर रहे थे शिव नंदन लाल।
3: और अब किसान बहन भाइयों, आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं खजान सिंह।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे ये उपदेश, कलाकार थे खजान सिंह।
1: और अब किसान बहन भाइयों, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। लेकिन अनुमति लेने से पहले आपको बताते चलें कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम के बारे में।
0: कल के ग्राम संसार कार्यक्रम में बहन भाई सुनेंगे पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। इसके साथ ही बहन भाई चर्चा सुनेंगे रेत और धूल भरी आंधी से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर और अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस पर भी। साथ ही अटल पेंशन योजना की जानकारी भी दी जाएगी।
1: और कल के कृषि जगत कार्यक्रम में किसान बहन भाइयों के पत्रों के उत्तर और उनकी पसंद के लोकगीत सुनवाए जाएंगे। साथ ही किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह पर चर्चा सुन सकेंगे। और साथ ही आपको डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन योजना की जानकारी दी जाएगी। तो किसान बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम की। लेकिन आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 और 12 सेकंड हुए हैं। हाजिर हैं हम लेकर कुछ चुनिंदा गजलें खास आपके लिए। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं निदा फाजली साहब की कलम से निकली और आशा भोसले और जगजीत सिंह साहब की पुरसुकून आवाज में इस गजल के साथ।
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मासूम के लिए भूपिंदर सिंह और सुरेश वाडेकर साहब की आवाज़ में ये बेहद खूबसूरत गज़ल।

इसी के साथ गजल के इस कार्यक्रम से मुझे यानी दीप्ति पाठक को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी। राष्ट्रीय राजधानी में उद्योग और निवेश को प्रोत्साहन देने के उपायों पर उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन पर 2 एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव का निर्णय लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। पुस्तकालयों को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम बताया और पीएमएमएल ने विद्यार्थियों में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करने के लिए जन से गढ़ तक पहल शुरू की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के माध्यम से राजधानी के इतिहास को शोध आधारित और प्रमाणिक रूप में नई

0: पीढ़ी और दुनिया भर के शोधकर्ताओं तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होगा। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप का उद्देश्य अभिलेखों पर उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देना, अभिलेख प्रबंधन को मजबूत बनाना, ऐतिहासिक रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करना और ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेजों तक लोगों की पहुंच को और आसान बनाना है। वहीं पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप का उद्देश्य दिल्ली के समृद्ध स्थलों और स्मारकों का अध्ययन, संरक्षण और संवर्धन करना है। श्रीमती गुप्ता ने बताया इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष एक वर्ष की अवधि के लिए कुल 12 फेलो नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें प्रतिमाह 25,000 से 50,000 रुपए फेलोशिप प्रदान की जाएगी। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राजधानी में व्यापार और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने, नए इंक्यूबेशन सेंटर विकसित करने और निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर चर्चा की गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने बताया कि बैठक में उद्योगों से संबंधित नीतिगत सुधार और राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए जा रहे प्रशिक्षण की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक उद्यमियों तक पहुंचाने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने यमुना डायलॉग्स पहल के अंतर्गत पहली स्टेक होल्डर परामर्श कार्यशाला आयोजित की। ये पहल दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू द्वारा यमुना के बाढ़ मैदानों के प्रारंभिक दौरों और उसके बाद DDA के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठकों के बाद शुरू की गई। कल आयोजित इस कार्यशाला में DDA के उपाध्यक्ष ने चर्चा का नेतृत्व किया। बैठक में यमुना के बाढ़ मैदानों के अनुरूप विकास की रूपरेखा तैयार करने और पर्यावरण अनुकूल घाटों के निर्माण जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। DDA ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से दिल्ली यमुना कॉम्पैक्ट की नींव रखी गई, जो यमुना कॉरिडोर के पुनरुद्धार, संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन के लिए साझा रोडमैप के रूप में कार्य करेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री और बवाना विधानसभा से विधायक रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज बवाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान श्री सिंह ने सड़कों की स्थिति, जल निकासी व्यवस्था, नालों की सफाई तथा क्षेत्र के अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को जन सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता बनाए रखने तथा प्रत्येक समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही श्री सिंह ने जनता दरबार में क्षेत्र से आए नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज राजधानी के राजा विहार में वर्षा के कारण उत्पन्न जल भराव की स्थिति का निरीक्षण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल जल निकासी सुनिश्चित करने और समस्या के समाधान के लिए प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महान स्वतंत्रता सेनानी जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह करते हुए कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह भी उपस्थित रहे। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी के उद्यान मार्ग पर स्थित इस 2 मंजिले पुस्तकालय में 35,000 से अधिक पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं और संदर्भ प्रकाशनों का समृद्ध संग्रह उपलब्ध है। शोधार्थियों और अनुसंधान करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक विशेष अध्ययन सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि देश और उसकी जनता को समझने के लिए पढ़ने की आदत होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जो पुस्तकों में अंकित की है, उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए।

0: कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
1: वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी के लिए यह पुस्तकालय एक अमूल्य उपहार है। उन्होंने दिल्ली के सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को इस पुस्तकालय में लाने और उनमें पढ़ने की आदत विकसित करने का आग्रह किया।
2: सार्वजनिक पुस्तकालय सब युवाओं के लिए एसेट का काम करेगी। वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं, उनको एक जो माहौल मिलना चाहिए पढ़ाई का, इस लाइब्रेरी के माध्यम से मिल पाएगा।
1: प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
3: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने दिल्ली कालका एक्सप्रेस और दिल्ली दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस के लिए दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर भी रुकने की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्णय के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राजधानी के यात्रियों को सुविधा मिलेगी और क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय से कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ और कालका की यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले पर्यटकों के लिए भी ये सुविधा अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। उत्तर रेलवे ने परिचालन दक्षता, राजस्व अर्जन, टिकट जांच तथा यात्री सेवाओं के क्षेत्र में वित्त वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उत्तर रेलवे ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ट्रेन्स ऑन डिमांड योजना के अंतर्गत 1,887 विशेष रेलगाड़ियों का सफल संचालन किया गया, जिससे लगभग 185 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जीत हुआ। वहीं प्रतीक्षा सूची की नियमित निगरानी करते हुए विभिन्न रेलगाड़ियों में 4,120 अतिरिक्त कोच लगाए गए, जिससे 28 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर टिकट जांच से अर्जित राजस्व के आधार पर जोनल रैंकिंग में उत्तर रेलवे ने इस वर्ष अप्रैल और मई में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि जून में पूरे भारतीय रेल में प्रथम स्थान हासिल कर उत्कृष्ट दर्ज की। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली मेट्रो से यात्रा के दौरान सहयात्रियों से संवाद किया और उनकी दैनिक यात्रा, नागरिक सुविधाओं तथा राजधानी के विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि यात्रियों के साथ बातचीत से उन्हें उनकी अपेक्षाओं और दैनिक अनुभवों को समझने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि प्रभावी और जन केंद्रित शासन के लिए नागरिकों की बात सुनना और उनकी जरूरतों से जुड़े रहना आवश्यक है। श्री संधू ने कहा कि लोगों के रोजमर्रा के अनुभवों को समझने से शासन को अधिक उत्तरदायी और नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में मदद मिलती है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने ब्लू लाइन का व्यापक निरीक्षण कर विभिन्न स्टेशनों पर चल रहे आधारभूत संरचना और यात्री सुविधाओं के उन्नयन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन रीमॉडलिंग, नए एस्केलेटरों की स्थापना, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटों के पुनर्व्यवस्था तथा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने से जुड़े अन्य कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डॉ. कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास और उन्नयन कार्यों के दौरान यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्ध निष्पादन और यात्रियों को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। इस योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण दौर में शुरू की गई ये योजना आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभा रही है।
4: वो एक ऐसा दौर था जहां पे देश भर में ही नहीं दुनिया में एक महामारी की परिस्थिति उत्पन्न थी। कोविड के दौर से हम लोग उस वक्त गुजर रहे थे और उस वक्त ये सोच और उस वक्त कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिन्होंने आने वाले समय में भारत भारतीयों को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका

0: यकीनन वो एक ऐसा दौर था जहां सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत चुनौतियां चल रही थी, जहां हम लोग को इस बात का एहसास हो रहा था कि कल को भविष्य में अगर दोबारा कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां पे बाधाएं आती हैं, ऐसे में कैसे हम लोग आत्मनिर्भर बने।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। युवाओं को संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की बेहतर समझ विकसित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली में जन से गढ़ तक नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य छात्रों को भारत के संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं और नागरिक कर्तव्यों से परिचित कराना है। एक रिपोर्ट।
2: जन से गण तक एक अनुभवात्मक संग्रहालय आधारित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को भारत की संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं और नागरिक मूल्यों से परिचित कराना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में संग्रहालय की संविधान दीर्घाओं का भ्रमण कराया जाएगा। इसके बाद न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, नागरिकता और जनभागीदारी जैसे विषयों पर संवादात्मक सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के पहले सत्र में दिल्ली के 5 स्कूलों के 21 छात्रों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को सहभागी विद्यालयों द्वारा नामित विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने बताया है कि जो विद्यालय अपने विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के लिए नामित करना चाहते हैं या भविष्य के सत्रों में शामिल होना चाहते हैं, वे इसके आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ईमेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
1: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज रोहिणी में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में श्री गुप्ता ने कहा कि निरंतर जन भागीदारी और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रयासों के कारण रोहिणी आज दिल्ली के सबसे हरित क्षेत्रों में से एक बन चुका है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी नागरिकों से स्वस्थ, समावेशी और टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन पर 2 एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव का निर्णय लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया और पीएमएमएल ने विद्यार्थियों में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करने के लिए जन से गढ़ तक पहल शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज हमने आपके लिए बज़्म मुशायरे का एहतमाम किया है। जैसा कि आप सभी बखूबी वाकिफ हैं कि हमारे इर्द गिर्द के हालात के साथ ज़हन व दिल के मामलात को लफ्ज़ों का बेहतरीन जामा पहनाकर जिस शक्ल में हमारे सामने पेश किया जाता है उसे हम शेर कहते हैं और शेर के तख्लीककार को शायर कहते हैं। हर ज़माने की सच्ची अक्कासी यही शायर व अदीब अपने अपने अंदाज में पेश करते रहे हैं, जिसे सुनकर हम आह और वाह कर उठते हैं। अदब व सकाफत हमारी ज़िंदगी में अहम मकाम रखते हैं। हम उन बातों को जो कहते हुए कतराते हैं या उज़्र पेश करते हैं, ऐसे वाक़ियात व हादसात को शेर व अदब के ज़रिए हम बआसानी कह देते हैं और वक्त आने पर उसे सनद के तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं। तो सामईन, हम मुशायरे का आगाज़ करें और मुशायरे की महफिल में आपको लेकर जाएं। उससे पहले हम आपको ये भी बताते चलें कि आज 11 जुलाई है और हर दिन अपने आप में एक तारीख़ी मकाम रखता है। पूरी दुनिया में आज के दिन को याद किया जाता है। अक्वामे मुत्तहिदा ने तेज़ी से बढ़ते हुए आबादी के मद्देनज़र 1989 में 11 जुलाई को यौम आबादी यानी आलमी यौम आबादी के तौर पर

0: मनाने का फैसला किया। इसकी बुनियादी वजह यह रही कि 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब तक पहुंच गई थी। इस दिन का बुनियादी पैगाम यह है कि अगर लोग कम होंगे तो सबको अच्छी खुराक और तालीम मिल सकेगी। तो इसका आप भी ख्याल रखें और लीजिए समाप्त कीजिए ये मुशायरा।
1: मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के इस बावक़ार मुशायरे में जो शोरा इकराम शरीक हो रहे हैं उसमें जनाब जावेद नियाज़ी, जनाब इमरान अज़ीम, जनाब हबीब सैफ़ी साहब और मैं नाचीज़ एमआर कासमी। तो हम शुरू करते हैं आज का ये मुशायरा। मैं सबसे पहले जनाब जावेद नियाज़ी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने कलाम से नवाजें।
2: बहुत शुक्रिया सर।
1: इशार
2: का मतलब पेश करता हूँ डॉक्टर साहब
1: जी।
2: तुमको कोई हुनर नहीं आता,

0: इश्क करना अगर नहीं आता।
1: बहुत अच्छे।
0: इश्क करना अगर
2: क्या बात है। वाह वाह वाह वाह,
0: बहुत शुक्रिया। तुम

0: आता। शेर पेश करता हूँ हसन इकराम,
1: इरशाद अली।
0: तेरा चेहरा उदास था वरना।
2: क्या मिस्रा है, बहुत अच्छा।

0: लौट कर
1: नहीं आता,
0: नहीं आता।
1: क्या क्या क्या क्या
0: मैं कभी लौट कर नहीं आता। ये भी शेर पेश करता हूँ आज़रीन
2: जी।

0: हुनर नहीं आता,
1: नहीं आता इश्क करना, अगर नहीं आता। ये भी बतौर खास पेश करता हूँ शेर
0: जी,
2: जता की
1: रोशनी के बिना किसी का भी,
2: रोशनी के बिना किसी का भी।

0: जब तलक उस कदर नहीं चलते है बस
1: अकीदत से
0: दत से जब तलक उस
2: कदर
0: नहीं आता। बहुत शुक्रिया। तो

0: नहीं, बहुत शुक्रिया।
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब, बड़ी मनफरद गज़ल। और इस गज़ल की ख़ास बात ये थी कि कहीं रदीफ इस्तफामिया थी और कहीं इंकारिया थी और कहीं इस बात का सबूत भी दे रही थी। एक ही कैफियत की बड़ी अच्छी गज़ल आपकी माशाल्लाह, बड़े होनहार नौजवान शायर को हम सुन रहे थे। अब मैं गुजारिश करता हूँ एक ऐसे हमारे अलीगढ़ के साथी और बहुत कामयाब वकील और कई किताबों के खालिक, बल्कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि शायरी इनको वरासत में मिली, इल्म और अदब का माहौल, माशाल्लाह इनके वालिद साहब भी बहुत अच्छे तख्लीककार शायर और राइटर थे, इनकी खुद अहलिया बहुत अच्छी फिक्शन राइटर हैं और ये ख़ुद बहुत अच्छे शायर भी हैं, और इनकी जो अदबी और तनकीदी तजिया निगारी है उस पर मबनी जो इनकी किताबें हैं, देख कर बड़ी हैरानी होती है। मेरी मुराद है जनाब इमरान अजीम साहब से।
2: गज़ल का मतलब अर्ज कर रहा हूँ
1: जी।

0: अपने ही दम पे जीते रहे कुछ कहा नहीं,
1: अपने ही दम पर दम
0: अपने
1: पे
0: ही दम पे जीते रहे
1: कुछ कहा नहीं,
0: कुछ कहा नहीं, हमने किसी का कोई हवाला दिया नहीं,
1: क्या
0: हमने
1: बात
0: किसी
1: है?
0: का
1: क्या
0: कुछ
1: बात
0: हवाला
1: है?
0: कोई हवाला दिया नहीं,
1: क्या बात,
0: काटी तमाम उम्र बहुत सादगी के साथ,
1: काटी तमाम उम्र
0: बहुत सादगी के साथ, हमने भी इश्क विश्क का किस्सा कहा नहीं, हमने भी इश्क विश्क का किस्सा कहा नहीं, तिश्ना लबी को मेरी बुझाने के वास्ते, तिश्ना लबी को मेरी
2: बुझाने
0: के वास्ते, दरिया शबाब पर था मुझी ने पिया नहीं,
1: क्या बात है, फिर पढ़े फिर पढ़े, वाह वाह,
0: तिश्ना लबी को मेरी बुझाने के वास्ते, दरिया शबाब पर था मुझी ने पिया नहीं,
2: बहुत उम्दा वकील साहब,
0: मेरी दरीदा पी रहनी, मेरी दरीदा पे रहनी देखते हो क्या, मेरी दरीदा पे रहनी देखते हो क्या, दामन हुआ था चाक गिरेबा सिया नहीं, दामन हुआ था चाक गिरेबा सिया नहीं,
1: जी।
0: और बातें इधर उधर की वो करते रहे बहुत,
2: बातें
0: इधर उधर की वो करते रहे बहुत, कुछ भी लिया नहीं कभी कुछ भी दिया नहीं, कुछ भी लिया नहीं
2: कभी कुछ
0: कभी कुछ भी दिया नहीं, वो होंठ अपने खोलते फरियाद करते कुछ,
3: क्या बात है,
1: वो होंठ अपने खोलते
0: फरियाद करते कुछ, सुनते किसी की बात वो मौका दिया नहीं,
1: क्या बात,
0: सुनते किसी की बात
1: वो
0: मौका
1: दिया नहीं।
0: और मख्तार है, गुर्बत में काट दी है अजीम अपनी जिंदगी,
2: गुर्बत
3: में काट दी है अजीम
0: अजीम अपनी जिंदगी, मौका मिला जमीर का सौदा किया नहीं,
3: बहुत अच्छा शेर, क्या बात है,
0: बहुत जमीर का
3: सौदा किया नहीं, बहुत अच्छा शेर।
0: और जनाब दूसरी गजल का मतलब हाजिर है
1: जी,
0: जिंदगानी बदल रही है क्या,
1: जिंदगानी बदल रही है क्या,
0: हाथ अपने वो मल रही है क्या, हाथ अपने वो मल रही है क्या,
1: जी
0: कैसा निखरा बदन है तेरा फजा, कैसा निखरा बदन है तेरा फजा, रोज कपड़े बदल रही है क्या, रोज कपड़े
3: बदल रही
0: बदल रही है क्या, सबके तेवर बदल गए अब तो,
1: सबके
0: तेवर बदल गए अब तो, रोशनी सी मचल रही है क्या,
3: रोशनी सी
0: रात की बात कर रहे हैं वो, रात की बात
1: कर रहे हैं
0: वो, शम्मा जैसी पिघल रही है क्या,
1: वाह,
0: पढ़ने लिखने लगी है नस्ले नो,
2: पढ़ने लिखने लगी
0: है नस्ले नो, सोच सबकी बदल रही है क्या, सोच सबकी बदल रही है क्या, हर तरफ अब भड़क उठे शोले
1: जी,
0: हर तरफ अब भड़क उठे शोले, सूखी लकड़ी सी जल रही है क्या, सूखी लकड़ी सी जल रही है क्या। और मख्ता देखिए साहब, देखना है अजीम साहब अब,
2: देखना
0: है अजीम साहब अब, जिंदगी चाल चल रही है क्या,
1: वाह,
0: जिंदगी चाल चल रही है क्या,
1: क्या बात, वाह वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब इमरान अजीम साहब, जो अपनी गज़लों से अपनी शायरी से हमें महसूस कर रहे थे। अब मैं ऐसी मुनफरिद और फाल और हम जहत ऐसी शख्सियत जिसने उर्दू शेर व अदब में, न सिर्फ उर्दू शेर व अदब में बल्कि तनकीद, फिक्शन, मजामीन और उनकी जो एक हर मौजू पर
2: जी
1: बड़ी फिलबदी अंदाज में जो तहरीरें और उनकी शायरी और उनकी तमाम चीज़ें, बच्चों के अदब पर भी उनका काम है, गज़ल उनकी गज़ल में हर रंग देखने को और सुनने को हमें मिलता है। मेरी मुराद है बहुत फाल और बहुत सरगर्म और उर्दू शेर व अदब के एक ऐसे जांबाज सिपाही

0: कि जिनके यहाँ उर्दू के लिए मोहब्बत है और खलूस है, मेरी मुराद है जनाब हबीब सैफी साहब से कि वो अपने कलाम से नवाजें।
1: शुक्रिया कासमी साहब। अपनी गजल से पहले चंद मुतफर्रिक अशआर पेश करना चाहता हूँ।
0: जी इरशाद अली।
1: मेरी आंखों के सहरा में कहत साली थी बरसों से,
2: क्या कह
0: मेरी आंखों के सहरा में
1: कहत साली थी बरसों से,
0: हाँ
1: अचानक याद वो आए मेरे आंसू निकल आए,
2: क्या कह।
1: मेरी आंखों के सहरा में कहत साली थी बरसों से,
0: हाँ
1: अचानक याद वो आए मेरे आंसू निकल आए। बला की तीरगी में जब सितारे गुम हुए सारे, बला की तीरगी में जब सितारे गुम हुए सारे, दिखाने रास्ता मुझको कई जुगनू निकल आए,
2: क्या कहना,
1: दिखाने रास्ता मुझको कई जुगनू निकल आए।
2: बहुत उम्दा।
1: एक दो शेर और
0: जी।
1: के वो पलकों के सलीबों से अगर आंसू गुजारेंगे,
2: क्या
1: वो पलकों के सलीबों से अगर आंसू गुजारेंगे, यकीनन गाल होंगे तर हमी को बस पुकारेंगे, यकीनन गाल होंगे तर हमी को बस पुकारेंगे। और गुलाबों के जो गमले हैं,
2: गुलाबों के जो गमले हैं
1: तुम उनमें कैक्टस बोलो, गुलाबों के जो गमले हैं तुम उनमें कैक्टस बोलो, नई तहजीब के हामी है कुछ उनको निहारेंगे।
2: बहुत अच्छा,
1: नई तहजीब के हामी है कुछ उनको निहारेंगे।
0: क्या बात,
2: क्या बात है भाई, वाह वाह।
1: और एक दो शेर और फिर गजल मुकम्मल। के पने जो आस्तीनों में उन्हीं से खदशा रहता है, पने जो आस्तीनों में उन्हीं से खदशा रहता है, कोई शे है नहीं ऐसी जिसे देखूं मैं डर जाऊं,
2: क्या कहना,
1: कोई शे है नहीं ऐसी जिसे देखूं मैं डर जाऊं, फले फूले मोहब्बत तो मुअत्तर हो फजा सारी,
3: क्या कहना,
1: फले फूले मोहब्बत तो मुअत्तर हो फजा सारी, मेरे दिल की ये ख्वाहिश है मैं खुशबू सा बिखर जाऊं,
2: क्या कहना,
1: मेरे दिल की ये ख्वाहिश है मैं खुशबू सा बिखर जाऊं। और एक शेर और, के इधर रिश्ते उधर दुनिया मेरी ख्वाहिश उसूलो हक, इधर रिश्ते उधर दुनिया मेरी ख्वाहिश उसूलो हक, समझ में कुछ नहीं आता परेशान हूँ किधर जाऊँ,
2: किधर जाऊँ,
1: समझ में कुछ नहीं आता परेशान हूँ किधर जाऊँ। और एक गजल
2: जी आता,
1: के उसे दुस्दीदा नजरों से बहुत से तकने वाले हैं, उसे दुस्दीदा नजरों से बहुत से तकने वाले हैं, किसी को दे न दे लेकिन अभी सिक्के उछाले हैं, किसी को दे न दे लेकिन
2: अभी सिक्के
1: उछाले हैं। और तासुब की ये दीमक कितने ही औराक खाए अब, तासुब की ये दीमक कितने ही औराक खाए अब, भरे तारीख में अपने हवाले ही हवाले हैं, भरे तारीख में अपने हवाले ही हवाले हैं। और अभी तो खून रिश्ता है न जाने मुंदमिल कब हो, अभी तो खून रिश्ता है न जाने मुंदमिल कब हो, तुम्हारे बख्श जख्मों से ही कुछ कांटे निकाले हैं, तुम्हारे बख्श जख्मों से ही कुछ कांटे निकाले हैं। और गलत में लिख न सकता था सहाफत छोड़ दी मैंने,
2: बहुत उम्दा,
1: गलत में लिख न सकता था सहाफत छोड़ दी मैंने, ताल्लुकात में लेकिन कई अखबार वाले हैं, ताल्लुकात में लेकिन कई अखबार वाले हैं। और हमें मालूम था एक दिन सपोले साहब बनते हैं,
0: हमें मालूम,
1: हमें मालूम था एक दिन सपोले सांप बनते हैं, तभी तो एहतियातन नेवले हमने भी पाले हैं, तभी तो एहतियातन नेवले हमने भी पाले हैं। उसे दुस्दीदा नजरों से बहुत से तकने वाले हैं, किसी को दे न दे लेकिन अभी सिक्के उछाले हैं।
0: एक गजल के लिए और गुजारिश करता हूँ
1: जी। शुक्रिया। मुझे तन्हा किसी सूरत,
2: मुझे तन्हा किसी सूरत
1: कभी रहने नहीं देता, मुझे तन्हा किसी सूरत कभी

0: मिलने नहीं देता, किसी लम्हा बितो खुद से मुझे मिलने नहीं देता, किसी लम्हा बितो खुद से मुझे मिलने नहीं देता, और तेरे रुखसार पे पहरा लटों ने तेरी डाला है, तेरे रुखसार पे पहरा लटों ने तेरी डाला है, जो कहना चाहूं गर कुछ भी तो फिर कहने नहीं देता। तुम्हारे जिस्म की खुशबू मेरी सांसों में रहती है, तुम्हारे जिस्म की खुशबू मेरी सांसों में रहती है, मैं सोते जागते उसको अलग रहने नहीं देता, मैं सोते जागते उसको अलग रहने नहीं देता, और तेरे मानूस लहजे की खनक महसूस करता हूँ, तेरे मानूस लहजे की खनक महसूस करता हूँ, तुझे में जोर से कुछ भी यूं बस कहने नहीं देता, और गमे सैलाब में हस्ती तेरे जज्बों की बह जाती, गमे सैलाब में हस्ती तेरे जज्बों की बह जाती, तेरी आंखों से अश्कों को अगर बहने नहीं देता, तेरी आंखों से अश्कों को अगर बहने नहीं देता, मुझे तनहा किसी सूरत कभी रहने नहीं देता, किसी लम्हा बितो खुद से मुझे मिलने नहीं देता।
1: वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब हबीब सैफी और मैं एम आर कासमी आपके सामने एक गज़ल के कुछ शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएं। मतलब यूँ है कि उतरना अब हवा से चाहता हूँ,
2: उतरना अब हवा से चाहता हूँ,
1: उतरना अब हवा से चाहता हूँ, मैं जीना इब्तदा से
0: चाहता हूँ। क्या बात है।
1: उतरना अब हवा से चाहता हूँ, मैं जीना इब्तदा से चाहता हूँ। और ये शेर देखें कि तेरी सांसों से जो आती है छनकर, तेरी सांसों से जो आती है छनकर, वही खुशबू सबा से चाहता हूँ।
0: बहुत अच्छा।
1: वही खुशबू सबा से चाहता हूँ, और न शोला हूँ न हूँ आतिश फशा में, न शोला हूँ न हूँ आतिश फशा में, उलझना क्यों हवा से
0: चाहता हूँ,
1: उलझना क्यों हवा से चाहता हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: और ये शेर बहुत एक आलमी मंजरनामा शेर देखिए बतौर खास
0: जी, पता कीजिए
1: कि मिटा दे तीरगी कल्बो नजर की, मिटा दे तीरगी कल्बो नजर की, तजल्ली वो रिदा से चाहता हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: मिटा दे तीर की,
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे,
1: मिटा दे तीर की कल्बो नजर की, तजल्ली वो रिदा से चाहता हूँ, और दवाएं कारगर हों भी तो कैसे।
0: क्या बात है।
1: दवाएं कारगर
0: भी हों तो कैसे,
1: हों भी तो कैसे
0: जी,
1: शिफा माँ की दुआ से चाहता हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा शेर।
1: दवाएं कारगर हो भी तो कैसे, शिफा माँ की दुआ से चाहता हूँ। और मक्ता देखिए कि जिया हूँ कासमी जिस तरह अब तक,
0: अच्छा
1: जिया हूँ कासमी जिस तरह अब तक, वही तेवर कजा से चाहता हूँ, वही तेवर कजा से चाहता हूँ, और तेरी सांसों से जो आती है छनकर, तेरी सांसों से जो आती है छनकर, वही खुशबू सबा से चाहता हूँ, और दवाएं कारगर हों भी तो कैसे, शिफा माँ की दुआ से चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर और मैं पेश कर रहा हूँ, देखिए इसमें यासियत या मायूसी तो नहीं है, लेकिन हाँ अलबत्ता तजर्बात बोल रहे हैं
0: जी, अता कीजिए
1: कि कितनी बेएतबार है दुनिया,
2: कितनी बेएतबार,
0: क्या सच्चाई है, क्या मिसरा,
1: कितनी बेएतबार है दुनिया, सिर्फ गर्दो गुबार है दुनिया।
0: क्या बात है, क्या
1: सिर्फ गर्दो गुबार है दुनिया, और हैसियत कोई नहीं है, लेकिन हैसियत कोई नहीं है, लेकिन सबके सर पे सवार है दुनिया।
0: जी जी,
1: सबके सर पे सवार है दुनिया, और जब से तुम छोड़

0: छोड़कर गए मुझको, जब से तुम छोड़कर गए मुझको, किस कदर ना गवार है दुनिया, किस कदर ना गवार है दुनिया। और शेर देखें कि जिसके पाने को मर रहे हैं सब,
1: क्या कहने,
0: जिसके पाने को मर रहे हैं सब, चार दिन की बहार है दुनिया।
1: क्या सच्चाई है,
0: जिसके पाने को मर रहे हैं सब, चार दिन की बहार है दुनिया। सच से रगबत नहीं उसे कोई, झूठ का कारोबार है दुनिया, झूठ का कारोबार है दुनिया। और एक झटके में जिब्ह करती है,
1: एक झटके में जिब्ह करती है,
0: एक झटके में जिब्ह करती है, किस कदर धारदार है दुनिया, किस कदर धारदार है दुनिया। एक दिन उसको सौंपना होगी,
2: एक दिन उसको सौंपना होगी,
0: एक दिन उसको सौंपना होगी, हम पे जिसकी उधार है दुनिया, हम पे जिसकी उधार है दुनिया। कासमी कहना है दानाओं का, कासमी कहना है दानाओं का, एक दुनिया के पार है दुनिया, एक दुनिया के पार है दुनिया। फिर देखिए कि न ये कि अपना ही मंजर नजर में रखा जाए,
1: न ये कि अपना ही मंजर नजर में रखा जाए,
0: न ये कि अपना ही मंजर नजर में रखा जाए, ख्याले हम सफरा भी सफर में रखा जाए। ख्याले हम सफरा भी सफर में रखा जाए। और शेर समाज फरमाएं कि भड़क गया तो ये मुमकिन है घर जला डाले,
1: भड़क गया
0: तो ये मुमकिन है घर जला डाले, किसी की याद का शोला न घर में रखा जाए,
1: किसी की याद का शोला
0: न घर में रखा जाए, भड़क गया तो ये मुमकिन है घर जला डाले, किसी की याद का शोला न घर में रखा जाए।
2: क्या कहने,
0: ये शेर बतौर खास
2: जी आताओ
0: कि बहुत जमाना हुआ साहिलों पे रहते हुए,
2: बहुत जमाना हुआ साहिलों पे रहते हुए,
0: बहुत जमाना हुआ साहिलों पे रहते हुए, मैं चाहता हूँ कदम फिर भंवर में रखा जाए। मैं चाहता हूँ कदम फिर भंवर में रखा जाए, और न ये कि अपना ही मंजर नजर में रखा जाए, ख्याले हम सफरा भी सफर में रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।
3: वाह वाह वाह, क्या बात है। अभी आप समाप्त कर रहे थे मुशायरा। इस बज़्म में जिन शोरा ने शिरकत की थी उनमें जावेद नियाज़ी, इमरान अजीम, हबीब सैफ़ी और निज़ामत के फ़रायज़ अंजाम दे रहे थे एमआर कासमी। तो सामीन, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी, अपनी मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 8:30 और ये वक्त है फिल्म संगीत का, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ तलत। सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत।

और जी मौसम है बड़ा मज़ेदार और उस पे है ये वीकेंड का वार भी। और इस वक्त मौसम जो है ना बहुत मज़ेदार हो रहा है, बारिश है, हवा है और हवा में घुली मिट्टी की खुशबू है और उसके साथ मज़ेदार फ्राइड कुछ आइटम भी हैं। और शाम का ये वक्त है, कुछ लोग खाना खा चुके होंगे और कुछ लोग इस इंतज़ार में होंगे कि पकौड़ों की एक गर्मा गर्म प्लेट आती होगी।

जी छमछम अगर वीक डेज में हो तो ज़रा सी बुरी लगती है, वाकई में उस वक्त ज़्यादा बुरी लगती है जब आपको कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी निकलना हो और एकदम छमछम झमझम हो जाए। और लेकिन लेकिन लेकिन जो सप्ताह का आखिरी ये 2 दिन होते हैं ना, सैटरडे और संडे, उसमें बहुत सारे लोग घर पर होते हैं, तो जो बारिश का असली मज़ा है ना वो तभी है, और तब भी है कि जब आप अपनी उस जगह पर पहुंच जाएं जहां आपको सूखे सूखे पहुंचना है। और अब यह इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आपने फिल्म संगीत का आनंद लिया। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे समय होगा इवनिंग न्यूज का और 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में खबरें।

0: 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संस्कृति भारती और ठीक 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ठीक 11 बजे सुनेंगे आप हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। आइए पहले सुनते हैं समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के 4थे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के

0: प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
0: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436789155235214 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का

0: रहे है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
2: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रुपाई का काम पूरा हो चुका।

0: ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक बिना विकेट गंवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry.

0: rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan in West Bengal, Sikkim and Bihar for tomorrow. In the FIFA World Cup, Norway will take on England, while defending champions Argentina will clash with Switzerland in the quarterfinals to determine the remaining semi-finalists. The third quarterfinal match between Norway and England will be played at Miami Stadium, with kickoff scheduled for 2:30 a.m. Indian Standard Time. Later, Argentina will face Switzerland at Kansas City Stadium at 6:30 a.m. Indian Standard Time. The Indian women's compound team of Jyoti Surekha Venam, Preetika Pradeep and Chikita Taniparthi clinched the silver medal at the Archery World Cup Stage 4 in Madrid, Spain today. The Indian trio went down 228-32 to Colombia in the final. Meanwhile, in women's individual compound event, teenage archer Preetika Pradeep produced a stunning turnaround to beat world number 11 Hazel Borun of Turkey 145-142, clinching her maiden World Cup bronze. In the historic one-off women's test at Lord's Cricket Ground in London, India was 63 for no loss in their second innings on day two when reports last came in. Earlier, England were bowled out for 170 runs in their first innings today. Amy Jones was the top scorer with 53 runs for India. Kranti Gourde took a 5-wicket haul, while Sayali Satkare and Sneh Rana scalped 2 wickets each. In men's cricket, England were 241 for 1. In 18.3 overs against India in the fifth and final T20 international of the series in Southampton when reports last came in. Earlier, India won the toss and elected to field. England has already clinched the series with a 3-0 lead, while India will be aiming to register a consolation victory before the teams move on to the ODI series. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister expressed condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of Uniform Civil Code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का तारीखी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आने के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तिजारती समझौते से एक तरक्की याफ्ता मुल्क की समत भारत के सफर में तेजी आएगी। वियतनाम में कश्ती के एक हादसे में 15 भारतीय अफराद की मौत हो गई है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने ताजियत का इजहार किया है। मगरबी बंगाल सरकार ने यकसां सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में नौरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। जुनूबी भारत की सरकर्दा गुलकारा एस जानकी का इंतकाल हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 4-5 दिन के दौरान मुल्क के शिमाली और मशरकी हिस्सों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा, जबकि मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। और मैड्रिड में तीरंदाजी वर्ल्ड कप के चौथे मरहले में भारतीय खवातीन की कंपाउंड टीम ने चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का 2 दिन का तारीखी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आने के लिए रवाना हो गए हैं। पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का न्यूजीलैंड का ये पहला दौरा था। जनाब मोदी के इस दौरे से बाहमी ताल्लुकात को बड़ी तकवीयत मिली है। इस दौरे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत की। दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में मुख्तलिफ शोबों में 5 मुफाहमतनामों का तबादला किया गया। इनमें दिफा, सियाहत, खेल, कुदरती आफात से पैदा सूरत हाल से निमटना, डेयरी और मवेशी परवरी शामिल हैं। जना मोदी के इस दौरे की एक बड़ी खासियत ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में कम्युनिटी का प्रोग्राम था, जिसमें भारतीय बिरादरी के 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए जना मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का मुस्तकबिल एक दूसरे के साथ मुंसलिक है और दोतरफा तजारत के समझौते से एक तरक्की याफ्ता मुल्क की सम्त भारत के सफर में तेजी आएगी।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत को एक भरोसेमंद दोस्त करार दिया और न्यूजीलैंड की तरक्की में भारतीय बिरादरी के लोगों के रोल की सताइश की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत को सराहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब क्रिस्टोफर लक्सन की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए तशक्कुर का इजहार किया और कहा कि भारत न्यूजीलैंड ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज हुआ है। किसी भारतीय वजीर आजम के गुज़श्ता दौरे के बाद से 40 साल के वक्फे का तस्करा करते हुए जना मोदी ने कहा कि अगले दौरे में इतना वक्त नहीं लगेगा।
2: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
1: आज वियतनाम के फू क्वोक जजीरे के नजदीक एक कश्ती के डूब जाने से 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई है। वियतनाम में भारतीय सिफारतखाने ने तस्दीक की है कि महलुकीन में 13 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सिफारतखाने ने महलुकीन की वो फहरिस्त पोस्ट की है जो वियतनाम के अहलकारों ने फराहम की थी। सिफारतखाने के मुताबिक हलाक होने वालों में से 10 का ताल्लुक तमिलनाडु से, 3 का आंध्र प्रदेश से और 2 का केरलम से था। इस कश्ती में 36 लोग सवार थे, जिनमें 32 भारतीय सयाह, अमले के 3 अफराद और एक अटेंडेंट शामिल था। 17 मुसाफिरों और अमले के 4 अफराद समेत 21 अफराद को बचा लिया गया और अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जिंदा बच जाने वालों में से 2 की हालत नाजुक है और इंतहाई तिब्बी निगहदाश्त में उनका इलाज चल रहा है। बचाव मिशन के दौरान वियतनाम के साहली गार्ड रीजन 4 कमांड ने अपने अहलकार तैनात किए और बचाव से मुतालिक सामान का इस्तेमाल किया। मुतासरा कुनबों को मालूमात और मदद फराहम करने के लिए हो ची मिन्ह शहर में भारतीय कौंसल जनरल में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इसके नंबर इस तरह से हैं, +84 36 210 7930, +84 91 552 7314 और +84 33 452 0414। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सिफारतखाने ने कहा है कि हनोई में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है और उसका नंबर है +84 91 308 9165। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू क्वोक जजीरे के नजदीक कश्ती के अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है, जिसमें भारतीय शहरी भी शामिल हैं। हादसे पर रंजोगम का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सोगवार कुनबों से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में सभी जख्मियों की जल्द और मुकम्मल शिफायाबी की दुआ की। وزیر اعظم مودی نے اس حادثے میں جان گنوانے والوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی. انہوں نے کہا کہ ویتنام میں بھارتی سفارت خانہ اور قونصل خانہ سبھی ضروری مدد فراہم کر رہا ہے اور ویتنام کے عہدیداروں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں.

मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने के लिए 9 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन पहले ही शाया कर दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई इस कमेटी की चेयरपर्सन होंगी। मेघालय के साबिक गवर्नर तथागत राय कमेटी के अरकान में शामिल हैं। यकसां सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने की खातिर कमेटी तश्कील देने के बारे में इस महीने की 2 तारीख को काबीना की मीटिंग में फैसला किया गया था। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय एक फितरी अमर है, लेकिन आईन और अवामी बहबूद के तई अहद मुकदम रहना चाहिए। गया जी में बिहार कानूनसाज असम्बली के अरकान के लिए तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो जमहूरी अकदार, शफाफियत और अवाम के तई जवाबदही को अव्वलीन तरजीह दें। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने एक फर्द की शख्सियत निखारने में लाइब्रेरियों के नुमाया रोल को उजागर करते हुए नौजवानों से अपील की है कि वो लाइब्रेरियों के साथ मुंसलिक हों। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण एक अजीम मुजाहिद आज़ादी, मुफक्किर और ऐसे कौमी रहनुमा थे जिन्होंने मुल्क के लिए काबिल कद्र खिदमात अंजाम दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क और उसके आवाम को समझने के लिए पढ़ना जरूरी है। जनाब अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर जोर दिया कि वो शहर में सभी लाइब्रेरियों को बाहम मुंसलिक करे और स्कूलों के साथ उन्हें जोड़ने का एक जामिया मंसूबा मुरतब करे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन मेंबर पार्लियामेंट पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से हुक्मरानी मुस्तहकम होगी, अखराजात कम होंगे और मुल्क की मईशत को फायदा होगा। गोवा में नामानिगारों से खिताब करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि सभी बड़ी सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाली 41 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर रही है ताकि सरकारों, सियासी पार्टियों, आईनी माहिरीन, सिविल सोसाइटी और दीगर मुतालिका अफराद की राय मालूम की जा सके। इस सिलसिले के तहत गोवा ऐसी नवी रियासत है जहां कमेटी के अरकान दौरा कर रहे हैं। छोटे फूड प्रोसेसिंग इदारों को बाज़ाब्ता शक्ल देने की प्रधानमंत्री स्कीम ने पूरे मुल्क में 2 लाख से ज्यादा छोटे फूड प्रोसेसिंग इदारों के लिए कर्जे मंजूर करने का संगे मील हासिल कर लिया है। मस्कूरा स्कीम के तहत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोजेक्ट सरमायाकारी की गई है और रोजगार के तकरीबन 11 लाख बराह रास्त और बिलवास्ता मौके पैदा हुए। आज नई दिल्ली में एक खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए खुराक को डिब्बाबंद करने की सनअतों के मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा कि ये कामयाबी महज जश्न मनाने का एक संगे मील नहीं बल्कि फूड प्रोसेसिंग के फरोग के भारत के सफर के अगले मरहले की एक मजबूत बुनियाद है। जनाब पासवान ने अपना कारोबार करने वाली खवातीन की शमूलियत को उजागर करते हुए कहा कि इससे खवातीन की जेरे कमान तरक्की के हकीकी जज्बे की अक्कासी होती है जो विकसित भारत की बुनियाद भी है। जुनूबी भारत की सरकर्दा गुलकारा एस जानकी का कर्नाटक के मैसूरू में इंतकाल हो गया। वो 88 साल की थीं। वो ज़ईफ़ुल उम्री से वाबस्ता बीमारियों में मुबतला थीं। एस जानकी ने 60 साल से ज़्यादा के अपने करियर में मुख्तलिफ ज़बानों में तकरीबन 48,000 नगमे गाए। इनमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी ज़बान शामिल हैं। एस जानकी को पद्म भूषण अवार्ड से सरफराज किया गया था। उन्हें 4 नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सरफराज किया गया। इसके अलावा उन्हें 33 स्टेट फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया।

0: बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी से बात करते हुए आईएमडी के साइंसदान डॉक्टर नरेश ने कहा कि आइंदा दो दिनों में मुल्क के शुमाल मशरक़ी हिस्सों में बहुत शदीद बारिश का इम्कान है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 12 सेंटीमीटर हो सकती है। डॉक्टर नरेश ने मजीद कहा कि कम दबाव के किसी खास हलके की गैर मौजूदगी के बायस आइंदा 6 से 7 रोज़ में शुमाल मगरब वस्ती और मुल्क के जज़ीरानुमा ज़्यादातर हिस्सों में बारिश के मामूल से कम रहने की उम्मीद है। उन्होंने मजीद कहा कि अलनीनो की वजह से मुल्क में मानसून की मजमूई बारिश मामूल से कम हो गई है। न्यूज डेस्क से उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: रेलवे और आईटी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज हैदराबाद को हाई स्पीड रेल मरकज के तौर पर फरोग देने के मंसूबों का ऐलान किया और उन्हें चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों को बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से मरबूत करने की तजवीज पेश की। हैदराबाद में सनद से मुतालिक एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से मुल्क के अहम जनूबी इकतसादी मराकज के दरमियान सफर के वक्त में कमी आएगी और कनेक्टिविटी मुस्तहकम होगी। ईरान के रहबरे आला आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई ने अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की मौत का इंतकाम लेने का अहद किया है, जो इस साल के अवाइल में अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे और उन्हें उसे मुल्क की जिम्मेदारी करार दिया। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात मायामी स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात देर गए 2:30 बजे शुरू होगा। एक और क्वार्टर फाइनल मैच में कंसास सिटी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे शुरू होगा। आज स्पेन के मैड्रिड में तीरंदाजी आलमी कप स्टेज 4 में भारतीय खवातीन ज्योति सुरेखा वेनम प्रतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी पर मुश्तमिल कंपाउंड टीम ने चांदी का तमगा जीता। फाइनल में तीनों खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम कोलंबिया से 228-232 से हार गई। चांदी के इस तमगे के साथ टूर्नामेंट के आखिरी मरहले में भारत ने अपना खाता खोला है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का तारीखी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आने के लिए रवाना हो गए हैं। वजीर आजम ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तजारती समझौते से एक तरक्की याफ्ता मुल्क की समत भारत के सफर में तेजी आएगी। वियतनाम में कश्ती के एक हादसे में 15 भारतीय अफराद की मौत हो गई है। सदर जमहूरिया नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने ताजियत का इजहार किया है। मगरबी बंगाल सरकार ने यकसा सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में नौरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। जनूबी भारत के सरकर्दा गुलकारा एस जानकी का इंतकाल हो गया है। फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा, जबकि मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। और मैड्रिड में तीरंदाजी वर्ल्ड कप के चौथे मरहले में भारतीय खवातीन की कंपाउंड टीम ने चांदी का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवा, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, तो कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है, कैच द रेन, वेयर इट फॉल।

फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहाँ भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है। उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहां आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं। इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देह, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देह पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नवदिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्नवेदी को छोड़कर पुरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ठ संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार के सेवायत कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्री गुंडीचा के पहला दिन नेत्र उत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है। फांसी, इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा यही रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुभ दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भोर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहियों में एक अक्ष संजोग किया जाता है। प्रभु के आज्ञामण आने से बाद हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारंभ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुभ किया जाता है। भौरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अक संजोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
0: श्री क्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती है, पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
3: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का 12 ग्रही दैतापति हूँ। प्रभु स्नान का बाद में अंदर जाते हैं हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, बेस करते हैं, रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है, ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जी की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेद पथी पांचन होता है, आम केला कनस सपुरी सपटा, ये 5 प्रकार फल भोग होता है। पथी होता है मूंग और नारियल का कोरा जल, लवंग जायफल दे के चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का भजन का जो बाजा सब गाना होता है मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीया तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
0: अनसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अनसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा, ताल ध्वज, देव दलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
1: रथखला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निश्चलानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा पोहरा करते हैं। और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है, पर प्रभु की अनंत लीला श्री मंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। श्री मंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा

0: कवि इस दृश्य को शब्दबद्ध करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं। देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की, आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती, बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं, बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास है।
2: मैं डॉक्टर ए के सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों पे एक दूसरे को एक मिठास के रूप में ये परिचित करा सकें। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है, और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियां उगाई जाती हैं। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे, और 6 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कंप्लीट कवर किया।
3: डॉक्टर नितेंद्र विक्रम सिंह है, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई हैं आम की। पूसा सूर्या है, पूसा अरुणिमा, पूसा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में हैं। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीपशिखा भी रिलीज की है। मोस्टली ये अम्रपाली और संचेषण के संकरण से बना है, पर कुछ किस्में उसमें दशहरी और लाल सिंगरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखते हैं, आम महोत्सव यहाँ चल रहा है और आम के नाम पे देखिए दिल्ली की जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए, आंध्रा में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। तो ऐसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
4: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठियावाड़ा से आया हूँ। ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है, और ये हमारे कठियावाड़ा में होता है, हमारे गांव में। और भी बहुत सारी वैरायटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
5: मेरा नाम रामकिशोर मौर्या है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें खट्टे मीठे हैं, और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेष कर, जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है, ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी, हमारे पैतृक वैरायटियाँ है वो जीवित रहने, अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
6: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है, मेरा पुरखों से काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं।

0: प्यार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वरायटी है, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, राम केला है, चन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वरायटी। इतनी वरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती है।
1: ये आम कुछ खास हैं। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

पाटा अटारी ये थे हमारे ध्रुव उहे के जन्म है मोर। कुछ दिन हम अटारी में रहें, फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी में ले इस वहाँ हमार लालन पालन हुई। हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुक लाल रही से। छह भाई बहनी रहे हैं, दो भाई चार बहनी। गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से। अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग लैका ला छोड़ के चल देवे। भाई बहनी मन के पूरा देखभाल ला मैं करूँ। हमन छयो भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं है। हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे। माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लग गए। लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेते रहे हूँ। माँ गावे आरू

0: या या जनकारी राम राम अहो लाला सोला चेली के झूमी जाए हो।
1: बाटी भौरा भी अब्बड़ खेलत रहे हूँ, कबड्डी खेलत रहे हूँ, सुर खेलत रहे हूँ, खो खो खेलत रहे हूँ। तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के धनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, तेमे भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से। बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो हम ऐसे टेर लगाईस द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गई। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एकर आवाज और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारत है। अब ये लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो ओला जपरी कहा भी। 11-13 के लगभग में रही हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर एकर दिल में लगाव है। तो सुने पर आते कि वो छोटे से चटाई निकाली से कथे में बैठ बेटा, इमें बैठ। अब कतका कन सुने ऐसे कि कही तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाए रही से नहीं, तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आंखी में आंसू आ गए। उसी समय वो बोलीस कि बेटा मोर घर में हीरा है हे प्रभु, और मैं नहीं परखे सकी हूँ इसी की। आज भी गुंजा थे टेर के आधार पे ही मैं टेर लगा था जब पंडवानी गाता हूँ। तो

गदगद कर दी थी। ऐसे लग जाते कि हम धरती में नहीं कि स्वर्ग में हनका ऐसे लागते, मोर मन लागते भाई। जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन ला सुनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है, उन मन रोना शुरू कर देते, हम उसका सम्मान पा के अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देते थे। हमला कई कौन सी मिट्टी में बना के हमला भेजी, घर से हमला सब लोग ले सम्मान और प्यार मिला थे। ये में अब बड़ा आनंद आते, आज भी वही है, अब आगे बार मालिक के हाथ।

0: मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तो दुगुना आनंद आते। मैं अपन आप लग, मैं भीम समझे लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जो शीला गदा पकड़ के रिंग था तेकर कारण हुई है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम के रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते। चाहते हो तो मैं पंडवानी ला आजकल के आधुनिक युग में आधुनिक रूप से काम कर सकत रहे हूँ, ओला एती तेती बहका सकत रहे हूँ, वो मैं अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखतीस, वो तो बर्बाद हो जातीस ना, फिर नाम कहाँ होतीस। तो ये चीज बचाए के खातिर हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे माँ, हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है, सिखाए में जो आनंद आते मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे। कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाते आ तो बोले भूर यारो बोल चुचकारो ये गाडर ही ते गाडर भी बेटा बहुत सुंदर गाले था, बोले बढ़ावा भी दो, तो ये में बड़ा आनंद आते मैंने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मुला बहुत अच्छा लगते, लेकर मल्ला सिखा के दे दो।
1: तपी करत मैं धुरुला भेटे हूँ और नरसिंह ला भेटे हूँ खंभा भूर बिनत सौरी ला भेटे हूँ क्यों टल भेटे हूँ गंगा माँ।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेनस्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेनस्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ

भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यहीं संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामावर्पु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामावर्पु माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामावर्पु शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामावर्पु विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामावर्पु माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।
1: बॉर्न टू डॉक्टर रामावर्पु शरत बाबू एंड लेट श्रीमती रामावर्पु विजयलक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। She began her training in Veena at an early age under the guidance of her mother, a well-known Veena guru, and even gave her first presentation at the age of 8. She later honed her skills under the tutelage of the renowned Veena artist, late Dr. ई मणि शंकर शास्त्री. Dr. Madhuri Devi has earned her PhD degree for her thesis on the rasa elements in Telugu musical compositions of the prominent composers since Annamacharya up to 19th century. As an artist, she has performed extensively in respected platforms all over the globe and is the recipient of a number of awards, titles and felicitations. Her music has been appreciated for expounding the rasa and bhava aspects of melody, manodharma and her command over laya. She also has a number of compositions to her credit.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर रामावर्पु माधुरी देवी की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद।
1: In tonight's concert, Dr. Rama Varapu Madhuri Devi is accompanied

0: accompanied by Sri Mahadasu Edukondalu on the Mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the Ghatam.
1: Dr. R. Madhuri Devi, आज के कार्यक्रम का आरंभ नाटराग में मुत्तैया भागवतार की रचना शक्ति गणपतिम से कर रही हैं, जो कि रूपक ताल में निबद्ध है.
0: डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी बिगिन्स हर कॉन्सर्ट विथ शक्ति गणपतिम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तैया भागवतार इन नाटरागम रूपक तालम.

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नु विड़ची कदलकुरा, जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है।
1: She next presents a composition of Saint Tyagaraja in Riti Gaula Ragam, Triputa Talam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमालीय जीआर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the Ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present Janaki Ramana, a composition of Vanamaliya J.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

0: यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येडुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद ने। डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Suryaprasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behagragam Aditalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर समय होगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long. Defence Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh said this while addressing the commissioning ceremony of the INS Mahindragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Visakhapatnam. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability. 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. The Embassy of India in Vietnam confirmed that the deceased include 13 men and 2 women. According to the embassy, 10 of the deceased were from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The boat was carrying 36 people, including 32 Indian tourists, 3 crew members and 1 attendant. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolence at the tragic accident. The West Bengal government has formed the 9-member committee to examine the draft bill of Uniform Civil Code for the state. A notification has already been published in this regard. Justice retired Ranjana Prakash Desai will be the chairperson. Former Meghalaya Governor Tathagat Roy is one of the members of the committee. Union Railways and IT Minister Ashwini Vaishnav today announced plans to develop Hyderabad as a major high-speed rail hub, with proposed bullet train corridors linking the city to Pune, Chennai and Bengaluru. Speaking at an industry event in Hyderabad, he said the high-speed rail network will significantly reduce travel time and strengthen connectivity among South India's major economic centres. Legendary playback singer S. Janaki, fondly known as the Nightingale of the South, passed away at the age of 88 today in Mysuru, Karnataka, after battling age-related

0: 23 अप्रैल 1938 को जन्मी सिस्तला श्री रामामूर्ति जानकी जी आज इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। जानकी जी वो हस्ती हैं जहां पर आवाज के साथ साथ भाषाओं का कोई बंधन नहीं रहा। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में अपनी आवाज दी, और आवाज इस तरह से दी और इस कदर खूबसूरती से दी कि उन्हें नाइटिंगेल का खिताब दिया गया। जानकी जी को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
1: वेलकम फ्रेंड्स टू द शो दैट नेवर एंड्स। आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस। यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव टू द बीट। सो देन व्हिच बीट वुड यू लाइक? दोस्तों कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा?
2: नो।
1: सांबा?
2: नो।
1: रॉम्बा?
2: नो।
1: सांबा?
2: नो।
1: टेक्विला?
2: नो।
1: टैंगो?
2: नो।
1: चार्ल्स्टन?
2: नो।
1: पोल्का?
2: नो।

लगभग लगभग 48,000 गानों में अपनी आवाज़ देने वाली, और आवाज़ भी इस अंदाज़ में कि आप उनका मॉड्यूलेशन सुने तो बस मज़ा ही आ जाए। हर एक अल्फाज की अदायगी इस कदर साफ कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि वो किस ज़बान से और कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं। यही खूबसूरती एस जानकी जी की रही, और उन्होंने देश

देश में इतनी इतनी अपनी प्रतिभा के नगीने बिखेरे कि आज हर एक कोई उनको याद कर रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी दिया गया, अब हम वो सुनेंगे। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दुनिया से चला जाता है, लेकिन जब तक दुनिया रहती है उसका नाम कहीं नहीं जाता, उसका काम कहीं नहीं जाता। ऐसी ही शख्सियत हैं एस जानकी जी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ तलत। तो अब सिलसिला शुरू करते हैं आपके मैसेजेस लेने का। हमारे पास मैसेज आया है टीडी मल्होत्रा का और आप हमें मोहाली से मैसेज कर रहे हैं। गगनदीप ठांडी ने हमें मैसेज किया है और यासीन अनजान ने हमें मैसेज किया है, साथ ही की है गीत की भी फरमाइश। अनिल कुमार गौहानकर का मैसेज हम तक पहुंच चुका है। ताज मोहम्मद ने हमें मैसेज किया है और सतीश अनेजा जी का भी हमारे पास मैसेज आ चुका है। इसके साथ साथ हमारे पास मैसेज आया है कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह का और मैसेज हमारे पास आया है सतेंद्र चंसौलिया जी का। आप हमें उत्तर प्रदेश जालौन से मैसेज करते हैं। पी एस नवहानकर का हमारे पास मैसेज आया है, कमल ने हमें मैसेज किया है और कल्पना झा एक गीत की फरमाइश कर रही हैं। साथ ही राजेश वर्मा ने कहा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें आप हमें। भजन मऊनाथ भजन से मैसेज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। इसके साथ सुदर्शन शाह का भी मैसेज हमारे पास आ चुका है। नबी हसन का मैसेज हमारे पास आया है और आपने कहा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत प्ले कर दीजिए। और इसी सिलसिले में आगे अकरम हुसैन प्रिंस ने भी हमसे यही कहा है कि हम अपनी पसंद का कोई गीत प्ले कर दें। कमल बालूजा जी का हमारे पास मैसेज आ गया है और संजय ठिंगिया ने भी हमें मैसेज किया है। स्वर्ण सिंह ने हमें मैसेज किया है ठाकुरावाला से और अब सुन लेते हैं आपकी ही फरमाइश का कोई एक गीत।

मोहब्बत रास आए ये भी एक बड़ी बात होती है, लेकिन मोहब्बत जो है ना वो मोहब्बत ही होती है, वो रास आने वाली चीज़ ही होती है और वो पास रहने वाली चीज़ होती है। बस उसे सही जगह पर सही तरीके से बांटना ज़रूरी है। और अब वक्त ये है कि हम आपको बताएं और कौन कौन हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस कार्यक्रम में। राजकुमार डूडी ने हमें मैसेज किया है हिसार से, और आपके साथ हैं प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र। किशन सिपकल जी का हमारे पास मैसेज आ चुका है। हरजिंदर शिंदा जी ने हमें मैसेज किया है। जसवीर जस्सी आपके साथ हैं, आप पंजाब से हमें मैसेज कर रहे हैं। इसके साथ हमें मैसेज मिला है किशन वंजानी जी का, और आपने गीत की फरमाइश की है। प्रकाश गोगिया ने हमें मैसेज किया है, और प्रकाश जी आपकी जो फरमाइश है उस फिल्म का वो गीत तो नहीं मिला, लेकिन उसी फिल्म का एक और बहुत खूबसूरत गीत है, उम्मीद है वो हमारे सभी सुनने वालों को पसंद भी आएगा, तो वो मैंने क्यों कर रखा है। राजपाल शर्मा ने हमें मैसेज किया है, और आप कह रहे हैं कि एनी सॉन्ग। इसके साथ हमारे पास मैसेजेस की झड़ी जो लगाई है वो लगाई है रियासत हुसैन साहब ने। आप एक साथ इतने सारे मैसेजेस कर देते हैं कि बड़ी परेशानी हो जाती है। आप सिर्फ एक या दो मैसेज करें तो यकीन मानिए कि नंबर सबका आता है। इसके साथ मैसेज हमारे पास आया मुकेश भट्टा जी का, आप हमें पटियाला से मैसेज कर रहे हैं। मोहम्मद कमर ने हमें मैसेज किया है, और रमेश कुमार का हमारे पास मैसेज आया है पटेल नगर मलोट से, आपके साथ हैं गीता रानी जजौरिया। दिग्दर्शन गौड़ हमें मैसेज कर रहे हैं मेरठ कैंट से, आपके साथ हैं कविता गौड़। एस एम जावेद ने हमें मैसेज किया है, और आपने जिस गीत की फरमाइश की है जावेद साहब, बहुत खूबसूरत गीत है, मैंने भी देखा है और सुना भी है, और ये गीत जितना सुनने में खूबसूरत है उतना देखने में भी अच्छा लगता है। हाजी मजहर का भी हमारे पास मैसेज आया है, आपने कहा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें। बबलेश पंवर जी ने हमें मैसेज कर दिया है, और बोधराज खोरवाल जी ने भी हमें मैसेज किया है। इसके साथ अनिल मोहन हमें मैसेज कर रहे हैं, और आप सभी जानकी जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुनील पाठक ने हमें मैसेज किया है, और वो सुबह की राम राम कह रहे हैं। जनाब आप अगली सुबह की राम राम कह सकते हैं अब से 42-47 मिनट बाद, क्योंकि अभी तो रात है जनाब। मैसेज हमारे पास भगवत वर्मा जी का आया है, आप हमें मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। गव्या मल्होत्रा का मैसेज हमारे पास आ गया है, और अब सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

जी कश्ती का अगर ना खुदा ही खुदाई पर आ जाए तो फिर उस कश्ती का खुदा ही मालिक होता है और वो सिर्फ भंवर में डूबने के सिवा उसका और कोई अंजाम नहीं होता। तो कश्ती जिसकी भी हो और अगर ज़िंदगी की वो कश्ती है तो ना खुदा वो आप उसके खुद हैं। ना खुदा वो होता है जो कश्ती चलाता है, उर्दू में उसे नाविक को ना खुदा कहते हैं। तो अपनी कश्ती को, आप अपनी जीवन की कश्ती को बखूबी निभाइए, बखूबी चलाइए, क्योंकि अगर आप उसके साथ दगाबाजी करेंगे तो फिर उस कश्ती को कोई पार नहीं लगा सकता। आगे बढ़ते हैं और मैसेज है हमारे पास अहमद बागवान का, और रियासत हुसैन जी ने मैसेज कर दिया है बहुत सारे, और इसके साथ साथ हमारे पास मैसेज आया है फारूक अली खान का, आपने ईद की फरमाइश की है। मधु किरण ने हमें मैसेज किया है, शिष्यपाल वर्धन का हमें मैसेज मिला है और आपने कहा है कि किसी भी गीत में आपको शामिल कर लें, और आपका सरनेम अकेला है तो अकेला मत समझिए, आपके साथ सभी हैं, और अकेला रह जाना और हो जाना या फिर डिक्लेयर कर देना अकेला ज़रा अजीब बात हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी से जुड़े हुए ज़रूर होते हैं, तो वो जुड़ाव आप महसूस कीजिए, आपको मिल जाएगा। राजू तो तेजा जी ने हमें मैसेज किया है, और इसके साथ साथ हमारे पास मैसेज आया है इंद्रभान सिंह का। हाँ जी, मज़हर का मैसेज हम तक पहुंच चुका है, और मीरा सिंह ने हमें मैसेज किया है। इसके साथ साथ दारा सिंह हमें चौटाला हरियाणा से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा।

कभी कभी अपनी आरजुएं नादान लगने लगती हैं, और दिल की जो आरजू होती है ना, वो कभी कभी नादान लगती है। लेकिन जब सोचते हैं उस वक्त लगता है ये क्या सोच लिया, लेकिन जब वो सच में और हकीकत में आपके सामने आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत खूबसूरत सी दो लाइनें हमारे सामने हैं, और वो लाइन्स ये हैं कि बादलों की रिमझिम पुखारे, मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू, बारिश का ये मौसम जैसे प्रकृति का हो कोई खूबसूरत जादू। बहुत खूबसूरत लाइंस लिखी हैं। रघुवीर नगर से हमारे पास मैसेज आया है ये दिलावर खान, हसीना बानो और अलीज़ा नायाब और लड्डू ने। बहुत सच्ची बात है ये कि बारिश जो है उसने हर एक शय को धो दिया है, हर एक किसी को उसने अच्छे से साफ कर दिया है। और इसकी जो खूबसूरती है, हरा रंग सभी का है लेकिन हर एक रंग का एक अलग टेक्सचर है, ये कुदरत का ही जादू है वाकई। हमारे पास अगला मैसेज है आनंद जोशी का, और इसके साथ हमारे पास नंद किशोर घाटे जी ने मैसेज किया है, आपकी फरमाइश हम तक पहुंच चुकी है। छोटे अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप चेतना को बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं। आप

खुश रहें, आबाद रहें। संभल से आप हमें मैसेज कर रहे हैं, लेकिन अंसारी साहब चेतना नहीं, गलती से मैं तलत हूँ इस कार्यक्रम में, और आपका मैसेज मैं चेतना तक पहुंचा दूंगी कि आप उन्हें याद कर रहे हैं। अगली बार वो ज़रूर आपके सामने होंगी। अगला मैसेज हमारे पास आया है दिलावर खान का, और स्वीटी जोड़ा हमें मैसेज कर रही हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से। आपके साथ हैं सिटी दीवान। इसके साथ साथ हमारे पास सुदर्शन मुखी जी का मैसेज आया है। आपके साथ हैं अनीता मुखी सिमरन, और आप शांति नगर सोनीपत से हमें मैसेज कर रहे हैं। उषा मोहन ने हमें मैसेज किया है, और आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी। सुनते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गीत।

जी, और ये गीत ख़त्म हुआ और वक्त जो है हमारे पास वो कह रहा है कि अब मैं भी जाने को हूँ। मेरा इस जगह पर अभी ये वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वक्त रुकेगा नहीं, वो अपनी रविश से, अपनी रवानी से रवान दवा रहेगा। सुनते हैं एक और बहुत खूबसूरत सा गीत।

और अब जो घड़ी है वो कह रही है कि बस फटाफट से अलविदा कह दीजिए, और आपको अलविदा कहने का वाकई दिल नहीं चाहता है, और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं होती है, चाहता है कि बहुत देर तक आप सभी से बातें की जाएं, आपकी बातें सुनी जाएं, बहुत अच्छे अच्छे गीत सुने, क्योंकि बहुत कीमती लम्हात हैं ज़िंदगी के। और बस ये है कि सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और आप सुनते रहें आकाशवाणी। नमस्कार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। एआईआर लाइव न्यूज़ 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। और अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे। ठीक 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 12:10 पर समय होगा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने बंदरदेवा स्थित रोगोंगे मेगा फूड पार्क के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने फूड पार्क के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जन से गण तक नाम

नामक नई संग्रहालय आधारित शिक्षण पहल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को भारत के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध दिग्गज पार्श्व गायिका एस जानकी का कल कर्नाटक के मैसूर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 33 राज्य पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साउथहैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Singer. Spanning over 6 decades, her career saw her singing in nearly 48,000 songs in multiple languages, including Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam, and Hindi. She is conferred with 33 state film awards. She was chosen for Padma Bhushan in 2013. Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Shivraj Singh Chauhan will participate in the Paryavaran Sanrakshan Sankalp program at Pusa campus in New Delhi today. On the occasion, he will interact with nearly 17,000 Vriksh Mitras from across the country and call for transforming environmental conservation into a nationwide people's movement through active public participation. In men's cricket, England defeated India by 56 runs in fifth and final T20I at Southampton to sweep five-match series 4-0. And in the FIFA World Cup, Norway will face England in the third quarter-final at Miami Stadium tonight. The match will begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार दोस्तों, आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर, जिसमें इस घंटे के प्रोग्राम का नाम है सुरों का सफरनामा। आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्म संगीत के उस संगीतकार की जिसने 90 के दशक और नई सदी की शुरुआती वर्षों में अपनी धुनों से करोड़ों दिलों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जी, हम बात कर रहे हैं अनु मलिक जी की। 2 नवंबर 1960 को मुंबई में जन्मे अनु मलिक जी को संगीत विरासत में मिला। उनके पिता सरदार मलिक जी भी हिंदी फिल्मों के जाने माने संगीतकार थे। शुरुआती संघर्षों के बाद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और देखते ही देखते बॉलीवुड के सबसे व्यस्त संगीतकारों में शामिल हो गए। आज के सफर की शुरुआत करते हैं उस फिल्म से जिसने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया।

दोस्तों, अन्नू मलिक जी की सबसे बड़ी खूबी यही रही कि उन्होंने हर दौर की पसंद को समझते हुए गीत रचा। रोमांटिक गीत हो या जोशीले नगमे, उनके धुनों में हमेशा एक नया पन सुनाई देता है। उन्होंने कुमार शानू जी, अलका याग्निक जी, उदित नारायण जी, सोनू निगम जी, अभिजीत जी और कई गायकों के साथ मिलकर ऐसे ऐसे गीत दिए जो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में धड़कते हैं और उनके दिलों की धड़कनों को धड़काते भी हैं। सुनिए।

दोस्तों, अनु मलुक जी ने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि भावनाओं को भी संगीत के माध्यम से आवाज दिया। साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का संगीत आज इतने वर्षों बाद भी ताज़ा ही लगता है और ये अनु मलिक जी का ही कमाल था। अगला गीत सुनते ही हर हिंदुस्तानी के दिल में देश की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों की तस्वीर खुद ब खुद उभर ही आती है।

दोस्तों, अनु मलिक जी के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया था जब उनकी धुनें हर तरफ सुनाई दे रही थी। 90 के दशक के आखिरी वर्षों और नई सदी के शुरुआत में अधिकतर संगीत अनु मलिक जी का ही था। जी हाँ, उस दौर के उनके गीत सिर्फ लोकप्रिय ही नहीं हुए बल्कि समय के साथ सदा बहार भी बन गए। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही प्यारा सा गाना फिल्म रिफ्यूजी से।

दोस्तों, अनु जी ने ऐसा किया कि युवा पीढ़ी को जो उनकी पसंद को समझा और उनके समझते हुए ऐसे गीत रचे जिनमें आधुनिक संगीत के साथ साथ भारतीय सुरों की मिठास भी सुनाई देती है। साल 2004 में आई फिल्म मैं हूँ ना का संगीत आज भी इतना लोकप्रिय है कि अक्सर आप रेडियो में इन गानों को सुन सकते हैं। तो प्रस्तुत है इसी फिल्म से ये बेहद ही प्यारा सा नगमा।

रोमांस, दोस्ती, उत्साह और पारिवारिक भावनाएं उनके संगीत में हर रंग दिखाई देता है। यही वजह है कि रेडियो के फरमाइशी कार्यक्रमों में अधिकतर उन्हीं के गानों की फरमाइश आती है। अनु मलिक जी को बाजीगर फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, रिफ्यूजी फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

दोस्तों अनु मलिक जी ने 300 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया। उनका संगीत आज भी दिलों में शामिल है। संगीत देने के साथ साथ ही अनु मलिक जी ने कई फिल्मों के गीतों में अपनी आवाज़ भी थी और टीवी के लोकप्रिय संगीत के कार्यक्रमों में निर्णायक की भूमिका निभाई है। तो साथियों, सुरों का सफरनामा में हमारे आज के सितारे थे संगीतकार अनु मलिक जी। इस कार्यक्रम से अब हमें दीजिए इजाज़त।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे। पहले आप समाचार सुनेंगे हिंदी में और उसके बाद सुनेंगे आप अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने बंदर देवा स्थित रोगोंगे मेगा फूड पार्क के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने फूड पार्क के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जन से गण तक नामक नई संग्रहालय आधारित शिक्षण पहल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को भारत के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध दिग्गज पार्श्व गायिका एस जानकी का कल कर्नाटक के मैसूर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 33 राज्य पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साउथहैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन

से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 257 रन बनाए और भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के जॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीत सुनहरे के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए, आपके पास आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 पर आपके लिए लेकर आए हैं सुरो के उन सितारों को अपने साथ जो आज भले इस दुनिया में ना हो लेकिन रहती दुनिया तक वो हम सब के दिलों में हमेशा रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे।

साथियों, समय कितना भी बदल जाए लेकिन इंसानी जज्बात और चाहतें कभी नहीं बदल सकती। तभी तो ये पुराने गीत आज भी दिलों की गहराइयों में उतरने की पूरी पूरी ताकत रखते हैं।

दोस्तों, पता है आपको, मोहब्बत एक ऐसी शय है, एक ऐसा दरिया है जिसमें इंसान जब डूबता है तो उसकी चाहत ये नहीं होती कि कोई उसे बचा ले। वो तो उस दरिया में और गहरे और गहरे और गहरे डूबते ही चले जाना चाहता है।

दोस्तों, मौसम का असर दिल पर होता तो ज़रूर है और इस असर को खुशनुमा बना देते हैं गाने। आइए सुनते हैं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 का ये गाना जो मौसम के बदलते मिजाज से दिल के तारों को जोड़ देता है बहुत ज़ोर से।

दोस्तों, रात के इस पहर में हमें अक्सर याद आते हैं वो लोग जो दिल के बहुत करीब होते हैं या करीब आ जाते हैं। शायद इसकी वजह ये चुप होती होगी, ये खामोशी होती होगी जो रात की चादर में ओढ़ के ले आती है अपने साथ वो सारी खूबसूरत यादें।

दोस्तों, जिंदगी तो हम सभी के पास है, लेकिन उसे जीने का अंदाज ही तय करता है कि आप कैसे हो। चलिए गीता दत्त जी की आवाज में समझते हैं जिंदगी के इस दौर को।

दोस्तों आप हमारे ना सबसे प्यारे वाले दोस्त हो और हमारे साथ हो रात के इस पहर में भी। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी कहानी।

दोस्तों, मुश्किलें किसे नहीं होती, लेकिन बार बार उनसे निकल आना ही तो ये बताता है कि हमारा हौसला कितना बुलंद है।

जो हुआ सब भूल जाइए, अच्छा या बुरा। कल की सुबह नया सूरज एक नई रोशनी और ताकत के साथ हम सब के लिए एक नई ताजगी लेकर फिर से आएगा, एक नई रोशनी देने के लिए।

दोस्तों, दुनिया में तमाम तरह की मुश्किलें कठिनाइयां भले ही हो, लेकिन हम सबके पास एक नाम, एक सहारा है जो हमेशा हमें फिर से एक नई शुरुआत करने की ऊर्जा देता है। वो नाम है परमात्मा का। तो अगला गाना फिल्म पवन पुत्र हनुमान से रफ़ी साहब की आवाज़ में।

जब से ये दुनिया बनी शायद मोहब्बत की शुरुआत भी तभी से हुई हो और शायद तभी से लोगों को इसके ज़रिए ज़िंदगी को और करीब से जानने की वजह मिल गई हो।

दोस्तों सहेली और दोस्त ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा होते हैं जिनसे हम कभी कुछ छिपा नहीं सकते, कुछ छुपा नहीं सकते, और उनसे कोई भी बात, कोई भी राज उनसे बचा हुआ नहीं होता है हमारा, क्योंकि सहेली और दोस्त अब से नहीं है, वो तब से है जब से ये दुनिया बनी, जब से ये कायनात बनी, है ना।

घटा लाई क्या छुपा के, घटा लाई क्या छुपा के, बिन पारे बदरा के कैसी बरस गई बरसात, ये तो बतला।

0: दोस्तों, गीत सुनहरे में पुराने गानों के साथ वक्त कैसे गुजर जाता है देखिए ना, पता ही नहीं चलता। और ये गीत इतने प्यारे होते हैं, इतने प्यारे हैं कि ताउम्र हम सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, ऐसा ही तो दिल चाहता है। लेकिन अब वक्त है समाचारों का, क्योंकि ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। अभी आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेज़ी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने बंदरदेवा स्थित रोंगोगे मेगा फूड पार्क के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने फूड पार्क के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निरीक्षण भी किया। वेनेजुएला में 24 जून को आए भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,333 हो गई। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रभावित लोगों को आवास उपलब्ध कराने का काम अगले सप्ताह से शुरू होगा। भूकंप के कारण लगभग 17,000 लोग बेघर हो गए हैं। इस बीच अधिकारी ने बताया कि मृतकों में से 315 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस आपदा में 16,740 लोग घायल हुए, जबकि 6,462 लोगों को बचाया गया है। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपनी ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ मुचोवा विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली लगातार 4 वर्षों में तीसरी चेक खिलाड़ी बन गई हैं। उनसे पहले मार्केटा वोद्रोसोवा ने 2023 और बारबोरा क्रेजिकोवा ने 2024 में यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती थी। साउथम्पटन में खेले गए पांचवें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है और अब समय है कार्यक्रम गीत बहार का, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं नॉनस्टॉप लगातार कुछ ऐसा संगीत जो आपको आपके दिल को और सुकून देता है और खुशी देता है।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में

0: यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। वेनेजुएला में 24 जून को आए 2 भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,333 हो गई। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रभावित लोगों को आवास उपलब्ध कराने का काम अगले सप्ताह से शुरू होगा। भूकंप के कारण लगभग 17,000 लोग बेघर हो गए। इस बीच अधिकारी ने बताया कि मृतकों में से 315 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस आपदा में 16,740 लोग घायल हुए, जबकि 6,462 लोगों को बचाया जा सका। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने जकार्ता में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 पुरुष वर्ग में 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आदित्य ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में फिलीपींस के बरोइस एफ्रेम जॉन को 5-0 से हराया, जबकि 60 किलोग्राम में सिकंदर ने ताजिकिस्तान के शरीफ खोन नूरालियेव को 4-1 से शिकस्त दी। साउथहैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड के जॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ मुचोवा विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली लगातार 4 वर्षों में तीसरी चेक खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कंक्लूडेड हिज हिस्टोरिक टू डे विजिट टू न्यूजीलैंड एंड डिपार्टेड फॉर इंडिया। The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over four decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत गजल, जिसकी पहली प्रस्तुति है आपके लिए।

0: इस गजल के साथ ही आज का गजलों का ये कार्यक्रम होता है यही संपन्न। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे सरस्वती राजगोपालन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती राजगोपालन प्रस्तुत करेंगी श्री दयानंद सरस्वती की रचना भो शंभो।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अब सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से सी राजगोपालाचार्य की रचना कुरई ओनरुम इल्लई।

0: और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।

आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 4:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत पर आधारित कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वायलिन वादन कलाकार हैं जी उमा, आपके साथ मृदंगम पर संगत किया है MV चंद्रशेखर ने। तो लीजिए प्रस्तुत है जी उमा का वायलिन वादन।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम आद ब्रह्ममी अभी आप सुन रहे थे वायलिन वादन कलाकार थी जी उमा और आपके साथ मृदंगम पर संगत किया एमवी चंद्रशेखर ने। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर आज रविवार है। शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 जुलाई 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर सुनिएगा

कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे योग दीर्घ श्वास प्रेक्षा और आसन। 5:20 का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का और 5:30 हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी में सुनिए बिमल मुखर्जी का सितार वादन। आज आप प्रस्तुत करेंगे राग भटियार। भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा 6:10। 6:40 पर चिंतन प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार। 6:45 पर सुनिएगा रामचरितमानस से पाठ। इसके अंतर्गत आज बाल कांड का भाग 114 सुनवाया जाएगा। संस्कृत में समाचार का समय रहेगा 6:55। साथ ही सुनिएगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सुबह 7:10 पर संगीतिका प्रसारित की जाएगी। सुनिएगा आज इस कार्यक्रम में भूषण त्रिपाठी के गाए भजन। 7:30 गीतो भरी गुड मॉर्निंग ये कार्यक्रम सुनाया जाएगा। 8:45 पर सुनिएगा साहित्य की। आज इसमें परिचर्चा का विषय रहेगा हवाओं की बस्ती, भरोसे के लोग, अंतरजाल की दुनिया में किताबों की महत्ता। 9:15 पर सुनिएगा हमारे अतिथि। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राधा वेंकट रमन कड़ी 2। प्रस्तुत करेंगी काजल सूरी। भेंट करता होंगी नीलम मलकानी। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। आज ही कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगी जसपाल कौर।

0: सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में आज आप सुनिएगा वायलिन वादन। कलाकार होंगी प्रमिता मुखर्जी। आज आप सुनेंगे राग अलहिया बिलावल। बारह से दस मिनट पर सुनिएगा महिला कार्यक्रम। साथियों, ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्षता

अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का यह युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे और जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनाने का आह्वान करेंगे। केंद्रीय मंत्री वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भाजपा नेता ने मांग की है कि श्री उमर अब्दुल्ला या तो अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करें या फिर अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के कल वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुए दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने वियतनाम में हुई पर्यटक नौका दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 257 रन बनाए और भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा। इंग्लैंड के टॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उधर चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। इस ऐतिहासिक जीत के साथ मुचोवा विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली लगातार 4 वर्षों में तीसरी चेक खिलाड़ी बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कंक्लूडेड हिज हिस्टोरिक टू डे विजिट टू न्यूजीलैंड एंड डिपार्टेड फॉर इंडिया। द विजिट, द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू न्यूजीलैंड इन ओवर फोर डेकेड्स, गेव अ मेजर बूस्ट टू बायलैटरल टाइज। During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of five memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है।

मैं योगाचार्य सुनील गौतम आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए, अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है, ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, दीर्घ श्वास के अभ्यास से बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रखने में समर्थ। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति, इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरे में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स DRM 810 किलो हर्ट्स पर सुबह के 5:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत आकाशवाणी दिल्ली का। ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के 5:30 बजने वाले हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं बिमल मुखर्जी का सितार वादन, आपने प्रस्तुत किया है राग भटियार।